0: फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है, साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं, भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो बद्री विशाल के दरबार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें दर्शन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ रही और सुगम तौर पर बद्री विशाल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुरी में 16 जुलाई को शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं, ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथ पूर्व मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पूरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के बीच दो कार में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यहां पानी के तेज बहाव में दोनों कार बहने लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक कार के ड्राइवर और दूसरी कार से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार को भी पानी से बाहर निकालकर सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
2: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।

0: अगर मैं ल्हासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं या आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक ब्रह्मानंद टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई पिकातन ने शुरू किया था। यहां हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारतवर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया में यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
0: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि बार बार भगवान शिव की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
0: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: सदियों पुराने इस मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के कारण ये मंदिर उपेक्षित हो गया था। बाद में आए भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से साल 2006 के जावा भूकंप के बाद मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से खोज हुई, उसके बाद संरक्षण का काम शुरू किया गया। अब खास बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1927 में जावा और परमानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला। आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहाँ शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। सीएम योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल आईडी दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से 2 विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों, खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया उन्हें मनोरंजन के साथ एजुकेट भी करेंगी।
2: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम?
2: कहाँ दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात करो, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना।
1: अच्छा, सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
1: यूपी तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था, एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
4: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, उससे आम आदमी को उससे क्या रहती है। आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
5: सब नॉर्मल है, सब खाली चलते रहते हैं, सब नॉर्मल।
1: ट्रस्ट की बात है,
5: वो उनका अपना पर्सनल मामला है, मामला
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
5: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
5: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों ने।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
3: नहीं,
1: नॉर्मल है,
3: नॉर्मल।
6: कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी घोटाला किया है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से। और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, SIT की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला। उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट में देख रहा हूँ भीड़ है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा नहीं, युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
7: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
7: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर अंदर में,
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।
7: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है?
8: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमने की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहां बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दमकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहां सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक करा रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है। और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता हैं श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
9: मजा आ रहा है,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
9: हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला, कानपुर से
1: आए हैं। जो आप जैसे घूम रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे, पहले भी शायद आए ही होंगे, कोई बदलाव है? सब पहले जैसा ही नॉर्मल?
9: उस पे तो कोई बदलाव नहीं,
1: बदलाव
9: वो ना,
1: सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
9: रास्ता में तो कमी थोड़ी है लोग।
0: आखिरकार हमारी टीम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वार यानी राम मंदिर पहुंची और जहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी यही सवाल पूछा। लोगों ने कहा राम जी के आगे कुछ हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ेगी।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं। घटनाएं कुछ भी हो जाएं लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती, उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और आवागमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या माहौल है चाची, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है?
10: भैया जाए
1: लग रहा है,
10: अच्छा माहौल लग रहा है।
1: कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है अयोध्या में? जो चंदा चोरी की खबरें आई उसके बाद कुछ बदलाव तो नहीं है, सब नॉर्मल है?
10: सब नॉर्मल तो भैया दिखात है, चोरी वोरी वाला हमें सब कुछ पता नहीं चला है।
1: देखिए एमपी से परिवार आया है, क्या बढ़िया तस्वीर, आप देखिए खुद देखिए, यही श्री रामचंद्र की आस्था है अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कराने के लिए। जहाँ एक बेटा आता है और राम मंदिर में दर्शन कराता है तो कैसे कह दिया जाए कि अयोध्या बदल गई है, या कैसे कह दिया जाए कि इस चोरी का असर जमीन पर भी है। जरूर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें, नजीर बने नए लोगों के लिए, लेकिन अयोध्या अभी भी वैसे ही है, रामचंद्र को लेकर आस्था अभी भी वैसी है, सरयू का वो कलकल बहता जल अभी भी वैसा ही है।
0: हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
12: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म ग्रहों में तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीयू बिश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
13: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगे। कौन हो तुम?
14: तुम्हारी हमदर्दी। वो मुझसे बदला लेना चाहता है।
12: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजवीर शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली कर।
11: इसी के साथ न्यूज़पत में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
16: You hear it once and remember everything.
17: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
16: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

भैया हनुमान जी के चरित्र को ना कोई कभी गा नहीं सकता, इतना विराट चरित्र है। हम अभी जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो प्रवीण जी भी बैठे थे, सब पत्रकार थे बांदा के, तब हमने वहां एक बात कही, हनुमान जी ना मल्टी टैलेंटेड है। क्या है बोलो ना? मल्टी टैलेंटेड। इसलिए हमने हनुमान जी पर एक पुस्तक भी लिखी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्यों? ज्ञानी भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। हनुमान जी श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है, लेकिन सबके लिए प्रेरणादायक। कोई विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला बच्चा हनुमान जी से सीख सकता। क्या हनुमान जी से सीखो जरा, बाल काल में ही हनुमान जी को भूख लगी तो महाराज हमको भी भूख लगती। अरे वो वाली भूख नहीं कह रहे, पहले समझो तो जरा नक्कटा। हनुमान जी को भूख लगी, सूर को खाया, बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। सूर क्या है? विद्या के देवता। कौन से देवता? विद्या के देवता, उनको भास्कर कहा। बुद्धि के देवता सूर्य हैं, उन्होंने सूर्य को खा करके ये प्रमाण दिया कि बाल काल में ही बचपन में विद्यार्थी को विद्या की इतनी भूख रहनी चाहिए कि वो हरदम केवल विद्या के बारे में विचार करे, पढ़े पढ़े सीखे, याद करे, ताकि जीवन में वो काम आ सके। एक सुभाषतानी का श्लोक है, प्रथमे न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने पहली अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, दूसरी अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया, तीनों अवस्थाओं में जिसने धर्म नहीं किया, वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठठरी भर जाएगी। तो हनुमान जी से सीखो क्या? विद्या। हनुमान जी को विद्या की भूख है। आप कहो महाराज हम तो पुलिस में हैं, हनुमान जी पुलिस वालों के मोटिवेशनल हैं क्या? हाँ हैं। इंटरनेशनल चोरी हमारे भाई साहब ने ही पहली खोली है, अंतरराष्ट्रीय चोरी का खुलासा। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक है हनुमान जी महाराज। पूछो कैसे? जब लंका का राजा रावण माता जानकी जी को चुरा करके ले गया, तब हनुमान जी ही तो वो चोरी खोले हैं। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी। आप कहो महाराज हम तो डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टरों के हनुमान जी प्रेरणादायक है? बिल्कुल है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। सुरसा नाम की माता आई ना, जब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत योजन तही आनन कीना, अति लघ रूप पवन सुत लीना। सौ योजन का मुख जब सुरसा ने बनाया, बोली हमें देवताओं ने भेजा। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले कहे हम समोसा है जो तो हमें खाओ। बोले बनाना ना हमारा भोजन हो। आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुरसा ने कहा आज देवताओं ने हमको भोजन दिया। हनुमान जी बोले कौन सा भोजन? सुरसा बोली तुम। हनुमान जी बोले हम कचौड़ी थोड़ी है, तो खा जाओ। माता ने माता हमें मत खाओ, बाद में खा लेना, अभी हम काम करने जा रहे हैं। राम काज कर फ्री में आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो। राम जी का काम कर आऊं, मैं माता जानकी जी का पता राम जी को दे दूं। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो, इसके बाद में तुम हमें खा लेना। सुरसा जी बोली नाना इतनी देर इंतजार नहीं हो सकता, भूख ज्यादा लगी है। हनुमान जी बोले बाहरी माता अभी खाओगी? हाँ ठीक है तो खाओ। अब सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। अब भैया विचार करो, पानी पूरी बड़ी हो मुंह छोटा हो। कई लोगों का गुटखा खाते खाते मुंह ऐसा हो जाता है कि पानी पूरी नहीं खा पाते, फोड़ फोड़ खाते। हाँ तो हनुमान जी ने वही कृपा की, सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। सुरसा सोरह योजन मुख तई भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जैसे ही उसने सोरह योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। लो खाओ, हम टूट तो सकते नहीं है, कचौड़ी थोड़ी है टूट जाए। तो सुरसा ने क्या किया? सत योजन ती आनन कीना, 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुंह बनाया लगभग।
हनुमान जी ने विचार किया, वाह ये 100 योजन की हो गई और कहीं हम भी इससे डबल भय तो नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान माता जानकी जी के पास। तो हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया, पता है क्या किया, सत जोजन ती आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए, मुख में गए। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। हाँ, चेक कर रहे लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बढ़िया है कि नहीं, लंग्स काम कर रहा कि ठीक है कि नहीं कर रहा। और पूरा प्रवेश करके पूरा छानबीन करके बाहर आ गए। तो किसी ने कहा वाह जब सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया। तो किसी ने कहा वाह छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़े दरवाजे को बंद होने में देर लगती है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा। 100 योजन का मुख है, जब तक बंद हुआ तब तक तो हनुमान जी ने रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर दी कि किडनी लीवर ठीक है माता जी। हाँ, बाहर आ गए। तो डॉक्टरों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी हैं। कोई घमंडी हो ईगो वाला उसके भी प्रेरणादायक हनुमान जी है। पूछो कौन, पूछो हनुमान जी, पूछो कैसे, जरा जोर से पूछो। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तब हनुमान जी कितने बने, अति लघु। लघु मतलब छोटा, और छोटे में भी जो छोटा हो वो अति लघु। रामायण में सुंदरकांड में है अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, या अति लघु रूप पवन सुत भयउ, छोटा रूप। क्यों पूछो क्यों, अरे पूछो, जब तक ठीक से नहीं पूछोगे हम ना बताएंगे। और ठीक से पूछो, सुनो, जब विपत्ति सुरसा की तरह बड़ी हो जाए तब उसका सामना नहीं करना चाहिए, छोटे बन करके विपत्ति के निकलने का इंतजार करना चाहिए। आंधी आती है, आंधी तूफान जब आता ना, तूफान में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी, बड़े बड़े मकान गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। पर एक बात बताओ, गार्डन की बाग की घास गिरती क्या, वो उखड़ती क्या, जरा जोर से बोलो, पेड़ उखड़ जाते, मकान उखड़ जाते, बड़े बड़े टेंट उखड़ जाते, पर बगीचे की घास उखड़ती क्या, नहीं उखड़ती ना। पूछो क्यों, जब आंधी आती है तब पेड़ तने रहते खड़े रहते तो वो उखड़ जाते, लेकिन जब आंधी आती है तो घास जमीन पर गिर जाती है, विनम्र होकर के झुक जाती, और जो झुक जाता है वो कभी उखड़ता नहीं है। विनम्रता आदमी को कभी उखड़ने नहीं देती। याद रखना मेरे पागलो, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी से सीखो, इतने बलवान हनुमान जी, इतने विद्यावान हनुमान जी, इतने ताकतवर हनुमान जी, पर भैया रावण के सामने भी हाथ जोड़े हैं, सुरसा के सामने भी छोटे बने। हनुमान जी बड़े भी बन सकते थे, वो सत योजन की बनी, हनुमान जी 400 योजन के बन सकते थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के 8 सिद्धियां हैं, हनुमान जी उनका प्रयोग करके और बड़े हो सकते थे। लेकिन हनुमान जी बड़े क्यों नहीं हुए, बड़े बने रहना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनना भी बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के छोटों को भी बड़ा बनाना बड़ी बात है। बड़ा वो नहीं है जो बहुत नाम वाला है, या बहुत गाड़ियां हैं, या बहुत बंगले हैं, या बहुत पैसा है, या बहुत फेमस है, भैया वो आदमी बड़ा नहीं है। हमारी नजर में तो 2 लोग बड़े हैं, कौन पूछो कौन, जिनके पास धन भले ही कम हो पर रात को परिवार के साथ घर पे भोजन साथ में पाते हो, वो बड़े हैं। हमारी नजर में दूसरा बड़ा आदमी वो है कि किसी के पास धन भले ही कम हो पर भैया कोई छोटा बगल में खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए। धन्य है हनुमान जी, विनम्रता ना ये हनुमान जी से सीखो। कोई भी हनुमान जी की महिमा को नहीं गा सकता, कभी भी नहीं गा सकते, न इनकी महिमा का कोई पार है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा हनुमान चालीसा,

तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने उपकार किया सुग्रीव पर। बोले क्या? बोले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। और एक बात और, बोले क्या? राम मिलाय राजपद दीना। देखो हनुमान जी ने भैया राजा बनाने का काम किया है। क्या बनाने का काम किया? बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो, क्या बनाने का काम किया हनुमान जी ने? राजा। देखो भैया सुग्रीव को राजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हनुमान जी ने। अच्छा विभीषण को राजा किसने बनाया? बोलो बोलो हनुमान जी ने। यहां तक कि अंगद जी को युवराज किसने बनवाया? हनुमान जी ने। यहां तक कि राम जी को भी फिर से राजा किसने बनवाया? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? राजा बनवाते हैं। क्या करते हैं? अब जिन जिन को राजा बनना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। है? किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो ना, क्योंकि

राम जी ने हनुमान जी ने उपकार सुग्रीव के ऊपर किया। सुग्रीव के ऊपर क्या उपकार किया? राम जी आए ऋष मुख पर्वत नियर आया। राम जी जब वन में जानकी माता रावण चोरी करके ले गया तो राम जी घूम रहे। सबरी माता ने कहा, महाराज ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का बाण रहता है, उनसे यदि आप मित्रता करो तो शायद जानकी माता का पता लग जाए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे माता जानकी जी की खोज में। ऋषिमुख पर्वत आया तो राम जी नजदीक पहुंचे। ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लिए हुए आ रहे, तो सुग्रीव को डर लगा, हो सकता बाली ने मारने वाले भेजे। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी सचिव थे, सलाहकार तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। जिसके सलाहकार है ना, उसका कभी राजपद नहीं जाने दिया। एक बात बोले बांदा बालो, कह दो बोलो, किससे सलाह लेते हो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। सलाह यदि तुम मंथरा से लोगे तो बेटा हाथ से चला जाएगा, और सलाह यदि तुम कृष्ण से लोगे तो खोया राज्य प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आई? सलाहकार मतलब कान भरने वाले। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं भाई। भैया हम लोग कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें। ये चुगलखोर ना बहुत खतरनाक होते हैं। चार कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से। चार कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, हाँ, चार कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर, बड़े खतरनाक है। जो कल तक राजा बनने वाले थे ना राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया, पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे बोलो ना। तो सलाह देने वालों से सावधान रहिए। एक बांदा की हिरनी थी, हिरनी तो बगल में, यहां बांदा में एक नदी है केन। केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी बांदा में। ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा, पानी कितना है? ऊंट बोला, घुटनों तक। बोले सही में? बोले कसम से। और हिरनी ने कहा, जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। और जैसे ही वो गई, सोई डुब पड़ गई। मरते मरते बची, बड़ी मुश्किल से निकली। तो बाहर आकर के ऊंट को गाली देखी, बोली कि बड़ी बेशरम हो तुम, बड़े बेशरम हो तुम, तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो एक बार में ही डूब गई। ऊंट बोला, मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा है, मेरे घुटनों तक था, तुम्हारे वाले का तो तुम जानो। इसलिए कई बार कोई सलाह देना तो थोड़ा सावधान रहना। सलाह देने वाले अपने हिसाब से सलाह देते हैं, उसको लेना अपने हिसाब से, बुद्धि अपनी प्रयोग करना। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं, पर सुनना तुम अपनी समझदारी से। कि हम कह दें, एक जगह हमने कथा कही, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा, वो एक यहाँ यूपी में हमारी कथा हुई, ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंडी है, और ठंडियों में तो भैया पूछो ही मत। कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह है, वो भी दो रजाई में सो रहे। जिनके नाम ज्वाला सिंह है वो भी ठंडी में रजाइयों में सो रहे हैं। तो ठंड तो बड़ी विचित्र होती है, और ठंड में कई लोग तो कथा में बिना नहाए मत आना, सुन लो चाहे जितनी ठंडी हो। और ठंड से बचने का हमारे पास उपाय, तो हमारी यूपी में झांसी में एक कथा हुई, झांसी के पास एक गांव में, बहुत पुरानी बात है भैया, कथा हुई। तो हमने एक चेला से कहा कि कल राम जन्म है, गांव में बुलौवा दे दो, अपने बुंदेलखंड में बुलौवा चला, हमका बुलौवा दे दो भैया, निमंत्रण दे देना, कल राम जन्म है। बोला गुरुजी हम ना जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं है ठंडियों। हमका बेटा कितने दिन? बोले कम से कम एक सप्ताह है। तो बोले हमने सुना गुरुजी तुम तो मंत्र वंत्र जानो, तो मंत्र बता दो ठंड ना लगे। हमने कहा जिससे प्रेम करते हो, बाल्टी में पानी लो, उसका नाम लिखो, एक डब्बा डालो, उसका नाम लो। हमने कहा भगवान से प्रेम, जिस भगवान से प्रेम, अच्छा भगवान कहना हम भूल गए, हमारे मुंह से निकला जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड भग जाएगी। वो दूसरे दिन आया, बोले गुरु। हमने कहा चेला,
अरे बोले गुरु गजब का मंत्र दिया, आप तो हम रोज नहाएंगे। हमने कहा क्या दिया? बोले आपने कहा था जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेना, ठंड भग जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा मंत्र बोला? हमने कहा जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हम कहा बेटा ये कौन सा मंत्र? बोले गुरु जी हमारी लोगाई का नाम है। हमका भैया लुगाई का कब से मंत्र बन गया? बोले आपने ही तो कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो ठंड नहीं लगेगी। तो हमका जय हो तेरी। अच्छा विचार करो, शांति बाई घरवाली का नाम लेने से ठंड भग सकती है, भगवान का नाम लेने से भूत नहीं भग सकते हैं क्या? लुगाई का नाम लेने से जब ठंड दूर हो सकती तो भगवान का नाम लेने से क्या संकट दूर नहीं हो सकते हैं? बोलो जरा जोर से बोलो। तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी सलाहकार होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया सलाहकार यदि मंथरा हो तो जिंदगी नरक। अब तुम्हें सलाह किसकी लेनी?

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? क्या अंक 22 के साथ भाग्य ज्यादा होता है? क्या 31 अंक वालों का वैवाहिक जीवन खराब होता है? क्या है अंक 4 की विशेषताएं और इसका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। With Spectrum Fiber Powered Internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: एनसीआर पर मॉनसून मेहरबान, रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की अपील, अलर्ट पर राहत और बचाव दल। काशी में सावन की तैयारियां तेज, सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन की सुविधा रहेगी बंद। आज भारत इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच, ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मुकाबला, सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायकों पर भी दिखा असर, मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने वाली पेस्ट्री की बड़ी डिमांड, अलग अलग देश के मुताबिक तैयार किए गए फ्लेवर्स।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: दिल्ली एनसीआर पर मॉनसून मेहरबान, रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को मिली राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की।

प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी में अगले कुछ दिनों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 12 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। मुंबई और आसपास के इलाकों में मॉनसून सक्रिय, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में हो सकती है भारी बारिश। मॉनसून की बारिश के बीच केदारनाथ धाम में दिव्य प्राकृतिक नजारा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु। हिमालय की वादियों में बादलों और कोहरे से घिरे केदारनाथ में रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1,500 श्रद्धालु, अब तक करीब 14,00,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहारा, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट, तीर्थयात्रियों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ में बारिश में भी भारी दिखी श्रद्धालुओं की आस्था, बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 11,00,000 रुद्राक्ष की मालाओं और डमरू से होगा केदारनाथ धाम मंदिर का भव्य श्रृंगार, वडोदरा का संस्थान कर रहा है विशेष तैयारी। महादेव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां हुई तेज, भक्तों को सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार। पूरे सावन के माह बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी और स्पर्श दर्शन की सुविधा रहेगी बंद, इंटरनेट के जरिए मिलता रहेगा बाबा का लाइव दर्शन। सावन के दौरान काशी आने वाले भक्तों की हर सुविधा का ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, मेडिकल से लेकर साफ सफाई और पीने के पानी की भी जा रही व्यवस्था। इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास का समय, 80,00,000 के करीब भक्तों के आने की उम्मीद। भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा एजेंसी सतर्क, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है हर संभव कदम। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां जोरों पर, रथों की सजावट का काम जारी। पुरी में 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा, लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु। ओडिशा में सदियों पुरानी परंपरा के अद्भुत रंग, भगवान जगन्नाथ के ठीक होने की कामना के साथ देउली मठ से फल और भेंट लेकर अंसर फलभार जुलूस निकला। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की मान्यता, एकांतवास के दौरान भगवान के लिए काकतपुर के श्रद्धालु देते हैं फल फूल तुलसी के पत्तों की भेंट। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां, पुरी के कलाकार कर रहे हैं रथों की सजावट का काम। अमरनाथ यात्रा का आज 7वां दिन, जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, इस बार यात्रियों की संख्या में देखने को मिल रही है अच्छी बढ़ोतरी। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे शिव भक्त, श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए, पहली बार बेस कैंप पर बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर भी बनाए गए। अमरनाथ यात्रा में छोटे बच्चों वाले परिवारों को मिली है बड़ी राहत, बालटाल और नूनवान बेस कैंप में शुरू किए गए हैं चाइल्ड केयर सेंटर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच सामने आई अनोखी तस्वीर, नदी की तेज धारा में भारी तादाद में बहते दिखे गैस सिलेंडर। भारी बारिश के कारण एचपीसीएल पाताल गंगा के बॉटलिंग प्लांट से बह रहे करीब 3,000 सिलेंडर, जिला प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर को घरों में ना ले जाने की अपील की। रायगढ़ प्रशासन ने नदी में बहते हुए सिलेंडर से सुरक्षा को लेकर जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश से तेज धारा में बही सड़क, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी।

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी, कई सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही पर पड़ा असर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पहाड़ों का बदला नजारा, शांत वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर, प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से जलभराव हुआ, सड़कों और इमारतों के परिसर में पानी जमा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। अमरावती में लगातार बारिश के बीच पूर्णा परियोजना के दो गेट खोले गए, नदी किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया। बगहा में दिखा नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से छोड़ा गया 85,000 क्यूसेक पानी। नदी किनारे बड़ी सतर्कता, बैराज और नदी के जलस्तर पर लगातार रखी जा रही निगरानी, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बादल फटने की घटना, प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत में बाढ़ जैसे हालात, पांडेसरा क्षेत्र में कृष्णानगर और गड़ानगर में फंसे 150 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, कमर तक भरे पानी के बीच रिहायशी इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उत्तराखंड में जोशीमठ एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता, हेडरेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया गया। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फेज टू और फेज थ्री से बनाई जा रही है सुरंगें आपस में जुड़ी, निर्माण कार्य में तेजी आने से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होने की उम्मीद। मॉनसून के चलते वैष्णो देवी में मूसलाधार बारिश, बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद किया गया। सम्राट कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई, पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा भुसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। इस परियोजना पर लगभग 348.90 करोड़ की आएगी लागत, एम्स पटना के विस्तार से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं का होगा विस्तार। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 देशों की यात्रा में ऑस्ट्रेलिया पीएम का दूसरा पड़ाव, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का किया मेगा स्वागत, होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के लगाए नारे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, पीएम ने तबला वादन का आनंद लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए अहम है ये यात्रा, इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्निक और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा।

0: सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक। बैठक में अवैध घुसपैठ रोकने की रणनीति पर होगी चर्चा। डेमोग्राफिक बदलावों की भी समीक्षा। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने किया लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सुरक्षा हालात, ऑपरेशनल तैयारी और लड़ाई के लिए तैयारियों का लिया जायजा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों के बारे में भी आर्मी चीफ ने ली पूरी रिपोर्ट। अलग एजेंसीज के बीच तालमेल पर दिया जोर। गृहमंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, किंजरापू की मीटिंग। देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा। चेन्नई के एगमोर इलाके में बच्चों के अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। स्वास्थ्य सुविधाओं का किया औचक निरीक्षण। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिराका का किया सफल परीक्षण। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया पिराका का सफल परीक्षण। 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से किया गया इस रॉकेट का परीक्षण। रॉकेट ने योजना के अनुसार अपने सभी इन फ्लाइट कर्तव्य दिखाए, साथ ही अनुमानित ट्रैजेक्टरी का सटीक पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर एकदम सटीक प्रहार किया। स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि ये पिनाका रॉकेट, जिसे रक्षा डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्था ने स्वदेशी रूप से इसे विकसित कर रही है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और इंडस्ट्री को दी बधाई। सफल परीक्षण से जुड़ी सभी टीमों की सराहना की। चित्रकूट दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 124 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। अलवर दौरे पर सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। गडकरी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। एक्सप्रेसवे पर होने वाले काम के ऑडिट के दिए आदेश। जिस ठेकेदार का काम खराब मिलेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रेमनगर आश्रम में चल रही है मुरारी बापू की रामकथा में हुए शामिल। रामकथा आयोजन पर सभा भक्तों और प्रशासन को दी गई बधाई, बोले देवभूमि पर भक्तों का हमेशा स्वागत। हाईटेक हुआ इंदौर का कमला नेहरू चिड़ियाघर। देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार। दिखाई जाएगी वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी की गई है तैयार। मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना इस नए प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य। बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया है बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। तेलंगाना में सिक्कों के रूप में की गई बचत के एक शख्स ने पूरा किया बाइक खरीदने का सपना। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। चिटियाला मंडल के बाइक शोरूम में खरीदारी के लिए लगाया 10 रुपए के सिक्कों का ढेर। हजारों सिक्कों के रूप में अदा किए 1,10,000 रुपए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? क्या अंक 22 के साथ भाग्य ज्यादा होता है? क्या 31 अंक वालों का वैवाहिक जीवन खराब होता है? क्या है अंक 4 की विशेषताएं और इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपने घरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए घर में तमाम तरह के चित्र लगाते हैं। इन चित्रों को लगाने का एक तरीका है और इन चित्रों को लगाने के नियम भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए घर में कैसे चित्र आपको लगाने चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपके घर के चित्रों के बारे में। घर में जो चित्र लगते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने लोगों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र लगाते हैं। और जो चित्र हम अपने घर में लगाते हैं ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं। जब आप इनको देखते हैं तो इनकी तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं और इसी कारण से चित्रों का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। जब आप चित्रों के संपर्क में आते हैं तो ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्र का प्रयोग करके मन को प्रभावित किया जा सकता है और इसके अलावा स्वभाव पर, ग्रह पर और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। अलग अलग तरह के चित्र आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच पर असर डालते हैं। चित्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो अपनी जरूरत के हिसाब से सुंदरता बढ़ाने के लिए हम घर में अलग अलग चित्र लगाते हैं। तो घर में कैसे चित्र लगाने चाहिए आइए जानते हैं। पूजा उपासना करने के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र आप लगा सकते हैं। ये चित्र
जितना साफ होगा और जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इन चित्रों को पूजा स्थान पर या अपने कार्य स्थल पर लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र आप लगा सकते हैं, या पति पत्नी का संयुक्त चित्र जिसमें पति पत्नी दोनों मौजूद हों, ऐसा चित्र भी लगा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन का चित्र उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है, अपने पूर्वज आदि का चित्र लगाना है, तो इसको दक्षिण दीवार पर लगाना बेहतर होगा। घर के डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में संयुक्त परिवार का चित्र लगाना फायदेमंद होता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका जो संयुक्त चित्र है वो डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, मुख्य द्वार पर फूलों का या पानी का चित्र लगाना अच्छा होगा। आर्थिक संपन्नता के लिए, पैसे रुपए के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र आपको लगाना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र आप लगा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और काम में नाम और यश के लिए उगते हुए सूर्य का चित्र अपने काम के स्थान पर लगाइए। हर तरह के कष्ट का नाश चाहते हैं तो पूजा स्थान पर शिव जी या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाना बेहतर होगा। अब जब आप चित्र लगाते हैं तो चित्रों को लगाने में सामान्यतः किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। जहां तक हो सके घर में कोई भी चित्र लगाएं, रंगीन और सुंदर चित्र लगाना बेहतर होगा। जंगली जानवरों के, आग के, कांटों के, युद्ध के चित्र ना लगाएं। चित्रों को साफ सुथरा रखिएगा और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिएगा। पूजा के स्थान पर पति पत्नी और बच्चों का चित्र मत लगाइए।
और अपने बेडरूम में सामान्यतः देवी देवताओं के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। घर में बहुत सारे चित्र लोगों के न लगाएं, क्योंकि बहुत सारे चित्र लगाने से रिश्तों में उलझन पैदा होती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। तो आज हमने बात की घर में लगाए जाने वाले चित्रों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। भोजन जब भी करें हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। अगर आप तनाव में, चिंता में भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन विष के समान होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को, किसी भी भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: दिल्ली NCR पर मॉनसून मेहरबान, रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की अपील, अलर्ट पर राहत और बचाव दल। काशी में सावन की तैयारियां तेज, सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार होंगे 7 प्रवेश द्वार, VIP और स्पर्श दर्शन की सुविधा रहेगी बंद। आज भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच, ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मुकाबला, सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायकों पर भी दिखा असर, मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने वाली पेस्ट्री का बड़ा क्रेज, अलग अलग देश के मुताबिक तैयार किए गए फ्लेवर्स।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंक 4 के बारे में, ज्योतिष में अंक 4 का क्या महत्व है और ये अंक 4 हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: अगर आप जोखिम वाले रिस्क वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने गले में एक चांदी का तारा बनवा करके धारण करिए। खास तौर से अगर आप स्टॉक्स में, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो अपने गले में एक चांदी का तारा पहनने से आपको लाभ होगा।
3: और आइए अब जान लेते हैं 9 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:37 तक, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अंक 4 के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं अंक 4 का ज्योतिष में आखिर महत्व क्या है।
4: जी, देखिए आज हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर चार की, और अंक चार वास्तव में चार अंकों में बंटा हुआ है। नंबर चार से संबंध रखने वाले इन चारों अंकों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अंक चार का महत्व क्या है। देखिए अंक चार मुख्य रूप से राहु का अंक है और कहीं कहीं पर न्यूमरोलॉजी में इसको नकारात्मक सूर्य का अंक भी कहा जाता है। अंक चार जब जीवन में प्रभावशाली होता है तो ये अंक जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है, लेकिन चार अंक में रहस्यमयी शक्तियां भी होती हैं और इस अंक में कई बार बहुत सारा ग्लैमर और बहुत सारा नेम एंड फेम भी होता है। चार अंक में थोड़ी मात्रा में डिप्रेशन यानी अवसाद भी पाया जाता है। इस अंक के मुख्य रूप से चार लोग होते हैं जिन लोगों का जन्म महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मुख्य अंक 4 होता है। तो जन्म की तारीख के हिसाब से 4 का अंक 4 भागों में बंटा है। पहला खुद नंबर 4, दूसरा 13, तीसरा 22 और चौथा 31।
3: और चलिए अब जानते हैं जिनका जन्म किसी भी माह की 4 तारीख को हुआ हो उनकी विशेषताएं और भविष्य कैसा रहेगा।
4: जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है उनका भविष्य क्या है। 4 का केवल 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये शुद्ध रूप से राहु का अंक है। इसमें राहु की भूमिका होती है और 4 अंक वालों के अंदर राहु की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आम तौर पर जिनका अंक केवल 4 होता है आरंभ में जीवन में इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है और उम्र के मध्य आयु के बाद 35-36 साल की उम्र के बाद इनको सफलता जीवन में ज्यादा मिलती है। और केवल अगर 4 है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो विवाह के बाद इनकी उन्नति के योग ज्यादा होते हैं। अगर आपका नंबर केवल 4 है तो आपको धन के उतार चढ़ाव से बचना चाहिए और जितना संभव हो अधिक से अधिक अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा।
3: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
4: मेष राशि, सेहत की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्याओं से बचें, वाद विवाद से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब जानते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो उनका भविष्य कैसा रहेगा।
4: अब बात करते हैं जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो। देखिए, 13 के अंक को सामान्यतः लोग अशुभ अंक या निगेटिव अंक मानते हैं, जबकि 13 नंबर अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक बुद्धिमता पैदा करता है। 13 अंक जिनकी जन्म की तारीख का है, इस अंक के लोग अपनी बुद्धि से जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं और 13 अंक वालों को घर से दूर जाकर जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। 13 अंक वालों को लोग निगेटिव समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अपनी बुद्धि और काबिलियत से ये जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। 13 अंक की जो निगेटिव बात है वो ये है कि ये अक्सर डिप्रेशन के या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। जीवन में अकेलापन इनको परेशान करता है। अगर आपका अंक 13 है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, अवसाद में जाने से बचिए। और जब भी मौका मिले आपको ध्यान करना चाहिए, आपको साधना करनी चाहिए, ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा।
3: और अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
4: कर्क राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रह सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न ज्ञानेश्वर जी ने राजस्थान से हमें लिखा है। 23 अप्रैल 2003 का जन्म है, 11:15 रात को उदयपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ज्ञानेश्वर जी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए शनि आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और जो मंगल के हालात हैं उसके हिसाब से इतना जल्दी विवाह होने की संभावना नहीं बनती है। 26 साल आप पूरा करेंगे 2029 में, उस समय आपके विवाह की संभावना बन सकती है। आप विवाह के लिए और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है जहां अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल, तो जानेंगे पंडित जी से वो आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न दीपा वरुण देवपा जी ने हमें उत्तराखंड से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 जनवरी 2010, 7:08 शाम को नैनीताल। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी 11वीं की पढ़ाई ह्यूमैनिटी से कर रही है, उसके करियर की दिशा और दशा क्या रहेगी। दीपा जी आपके पुत्री की कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आप उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि मेंटली परेशान होने की या मानसिक रूप से चिंता करने की संभावना बनती है। आपकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजी में या रिसर्च के क्षेत्र में जा सकती हैं और इसके अलावा आपकी पुत्री प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती हैं। ये संभावना इनके लिए दिखाई दे रही है। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा पहना दीजिए और इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ हो, आइए जानते हैं उनके भविष्य के बारे में।
0: अब बात करते हैं उन चार नंबर वालों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है। देखिए 22 तारीख को 22 को मास्टर नंबर कहा जाता है। ये एक विशेष अंक है जन्म की तारीख के अनुसार। इस अंक के लोगों के पास आम तौर पर काफी सफलता होती है, कला, टेक्नोलॉजी और राजनीति के क्षेत्र में 22 अंक वाले बहुत सफल होते हैं। लेकिन 22 के साथ भी एक खास बात यह है कि जिनकी जन्म की तारीख महीने की 22 तारीख है, उनको भावनात्मक समस्याएं और डिप्रेशन, अवसाद काफी ज्यादा हो सकता है। इन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम से और डिप्रेशन से बचना चाहिए। और 22 वाले पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, पैसे की चाह इनकी खत्म नहीं होती। तो अगर आपका नंबर 22 है तो केवल पैसे के पीछे भागने से बचिएगा। 22 नंबर वाले जिनका जन्म महीने की 22 तारीख को हुआ है, अगर ये लोग आध्यात्मिक हो जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं, तो जिंदगी बेहतर हो जाती है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, परिवार की समस्या आपकी दूर होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ हो, आइए जानते हैं उनके भविष्य के बारे में।
0: अब एक और चार नंबर वाले की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ है, उनका नंबर भी चार है। ये अंक 31 का अंक ज्ञान,

0: जारी दिखाते हैं जीवन में अत्यधिक बुद्धिमानी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मुश्किल में पड़ते हैं और अक्सर बिना सोचे विचारे बड़े निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और इस वजह से जीवन में असफलता मिलती है। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 31 तारीख है, 31st है, तो भैया जीवन में निर्णय लेने में हमेशा सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके निर्णय आपको जीवन में मुश्किल में डाल सकते हैं।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज के अंतिम राशि के राशिफल को, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, मानसिक समस्या इस समय आपको हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न ज्योत्सना गोस्वामी जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है। 13 जनवरी 1953 का जन्म है, 8 बजे प्रातः, झांसी उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, इलाज मेरा चल रहा है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन आपके बेहतर हो जाने की संभावना बनती है और आगे का जीवन आपका बेहतर रहेगा, ये स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है। आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने।

0: सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें। भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकती हैं करिए, उससे आपकी स्थितियों में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न कैलाश सिंगला जी ने दिल्ली से लिखा है। 31 मार्च 2001 का जन्म है, 4:15 शाम को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करना चाहता हूं, उसमें अड़चन बहुत आ रही है, तो क्या मैं अपना व्यापार कर पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कैलाश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा बुध की चल रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में या अगले साल के आरंभ में जनवरी फरवरी में आप अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे और जुलाई 2027 के बाद आपका व्यापार ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल था, जिनके जीवन में भी 4 अंक का कोई ना कोई लिंक हो, तो उसे अपने कौन से भगवान, कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किलें ना हो।
0: जी देखिए, अगर आपका अंक 4 किसी भी तरीके से है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, मूलांक 4 है, या 4 नंबर से आपका कनेक्शन बार बार बनता है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव जब भी आपके जीवन पर होगा, कुंडली से हो, डेट से हो, तो वो जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है और हेल्थ में, स्वास्थ्य में विचित्र बीमारियां भी व्यक्ति को देता है। तो अगर आपका अंक 4 का अंक है, तो आपको 2 काम नियमित रूप से करना है। एक, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि 4 अंक वालों को डिप्रेशन हो जाने की, मानसिक बीमारियां होने की, मानसिक चिंता होने की संभावना बहुत होती है। तो अगर 4 का अंक है तो मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। और दूसरे नंबर पर जितना संभव हो सके भगवान शिव की पूजा करिए। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे, उतना ही 4 अंक की नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर जो मिट्टी की मूर्तियां काफी पुरानी हो गई हैं, उनका क्या करें? घर के पूजा स्थान की मिट्टी की मूर्तियों को हर साल दीपावली पर या नवरात्रि पर बदल देना चाहिए, लेकिन इनको इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिएगा। या तो इनको जल में प्रवाहित कर दें या इनको मिट्टी में दबा दें, वही करना उचित होगा।
1: और अब जानेंगे 9 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का जो वर्तमान समय है वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय आपके स्वास्थ्य के हाल में, आपकी चिंताओं में सुधार होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई शादी, विवाह, कोई फंक्शन, कोई शुभ कार्य होना है और आप चाहते हैं कि बिना बाधा के शुभ कार्य हो, तो क्या करेंगे? शुभ काम की शुरुआत के एक दिन पहले गणेश जी को दूर्वा की माला यानी दूब घास की माला अर्पित करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर देंगे और शुभ काम जब संपन्न हो जाए बिना किसी दिक्कत के, तो उस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब बात जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की, जो एक हफ्ते बाद अपने भव्य और दिव्य रथ पर सवार होकर आने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। उससे पहले आस्था के इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी ली गई। रक्षा एजेंसीज ने जगन्नाथ मंदिर के नजदीक के अलावा रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर एंटी टेरर मॉकड्रिल की।
2: बुधवार का दिन दोपहर का वक्त जगत के पालनहार की नगरी पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। पवित्र क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर अचानक उठा और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन को सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ संदिग्ध लोगों ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर पर भक्ति और आस्था के रंग में बाधा डालने की कोशिश की है। उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन की घेरेबंदी के बीच स्पेशल टेक्निकल यूनिट के कुछ कमांडोज इमारत में दाखिल हुए और वहां पहरा दे रहे आतंकी को ढेर कर दिया। इसके बाद इमारत में कुछ आतंकियों को काबू किया गया ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। पूरी तरह ये भरोसा कर लेने के बाद कि अब कोई आतंकी खुला नहीं घूम रहा, प्रशासनिक भवन में मौजूद सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में तैनात घायल पुलिस कर्मियों को स्ट्रेचर से निकालना शुरू किया गया ताकि आतंकियों की गोली से घायल हुए पुलिस वालों को तुरंत से तुरंत इलाज मिल सके। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन के बाहर आम लोगों की भी भीड़ लग गई, जिन्हें कुछ देर बाद ये बात समझ आ गई कि जगन्नाथ यात्रा से पहले वहां मॉक ड्रिल हो रही है ताकि जगन्नाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर खतरों से निपटने के लिए आपसी तालमेल और तैयारियों को परखा जाए। यही वजह रही कि तलाशी अभियान और लोगों के बचाव के लिए रिमोट कंट्रोल रोबोटिक वाहन और डॉग स्क्वाड भी ऑपरेशन में शामिल हुए। ऐसी ही तस्वीर पुलिस रेलवे स्टेशन पर भी सामने आई, जहां स्पेशल टेक्निकल यूनिट को हावड़ा पुरी एक्सप्रेस में यात्रियों को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद वहां भी बगैर वक्त गवाए स्पेशल टेक्निकल यूनिट के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया ताकि ट्रेन की बोगी में बंधक बनाए यात्रियों को छुड़ाया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरी रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन स्थितियों से निपटते हुए सुरक्षा कर्मियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।
3: रथ यात्रा 2026 के लिए व्यापक पुलिस बंदोबस्त करा जा रहा है। इसमें प्राय 12,000 से अधिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो है इसमें मुतयन करी जाएंगी। सभी कंटीजेंसी के विषय में चिंता करा गया है और उसके बारे में प्रबंध करे जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए व्यापक प्रबंध करा जा रहा है। भारी संख्या में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। उत्तराछक से लेकर पुरी तक और पूरा पुरी शहर रथ यात्रा के समय में सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेगा। उसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर्स स्थापित करे जा रहे हैं विभिन्न जगह में। मैं आप सभी के जरिए जनसाधारण से अपील करता हूं कि जब वो रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी की तरफ आते हैं तो विभिन्न समय में पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक विंग की तरफ से जो जो एडवाइजरी दी जा रही है उसका वो ध्यान करें और उसका पालन करें।
2: सनातन धर्म के लिहाज से अति महत्वपूर्ण चार धामों में से प्राचीन नगरी पुरी एक है, जहां सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की तैयारी अंतिम दौर में है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में माहौल ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बन रहे रथ करीब 90% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल भी कर जाएंगे।
4: ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है, बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
5: भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
4: अब इन तस्वीरों को देखिए, इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए, कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा, बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
8: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
7: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: तेज बारिश के चलते आज गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर।
15: हरियाणा और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की अपील, अलर्ट पर राहत और बचाव दल।
1: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के सातवें दिन भगवती नगर बेस कैंप से छठा जत्था रवाना, जत्थे में 10,000 से ज्यादा भक्त हैं शामिल।
15: इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में AI करेगा मदद, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकरीबन 2500 CCTV से लैस।
1: ओडिशा में साइबर धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए शुरू की गई E0 FIR प्रणाली, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील।
15: मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, आज पीएम एल्बनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
15: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
15: शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून से करेंगे। दिल्ली एनसीआर पर बारिश नॉनस्टॉप जारी है। कल रात ही लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इसके कारण लोगों को पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और सारी तस्वीरें थोड़ी देर में होंगी बस आपके सामने। तो वहीं उधर सावन का इंतजार खत्म होने वाला है। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन की खास तैयारियां की जा रही हैं और इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो बाहर जम्मू कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की भी करेंगे, आपको दिखाएंगे श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, किस तरह धूमधाम से ये सालाना तीर्थ यात्रा जारी है। लगातार श्रद्धालुओं के जत्थे जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में तीर्थ यात्रा से जुड़ी हर ताजा तस्वीर होगी आपके सामने। आपको ओडिशा भी लिए चलेंगे जहां पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भगवान की रथ को सजाया संवारा जा रहा है और इस बीच रथ यात्रा उत्सव के सिलसिले में रस्में भी निभाई जा रही हैं, तो वहां की तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। तो वहीं आज चौथा T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 0-2 से पिछड़ा हुआ है, ऐसे में श्रेयस एंड कंपनी की निगाहें आज वापसी पर हैं। अगर टीम इंडिया बाकी दोनों मैच जीत जाती है तो वो सीरीज बराबर कर लेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
16: दिल्ली एनसीआर पर मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान है। तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। लगातार बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम विभाग का कहना है 12 जुलाई तक ऐसे ही बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम खुशनुमा होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
15: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। रथों को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। 16 जुलाई को निकलने वाली इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसी बीच भगवान जगन्नाथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ अनसर फलभार जुलूस भी निकाला गया, जिसमें फल फूल और तुलसी की भेंट अर्पित की गई। सदियों पुरानी इस परंपरा की भक्ति और आस्था पूरे ओडिशा में दिखाई दे रही है।
16: जम्मू कश्मीर में श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा जारी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से करीब 10,000 यात्रियों के जत्थे बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं।
15: महादेव की नगरी काशी सावन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार बाबा विश्वनाथ के आसन दर्शन के लिए और आसान दर्शन के लिए मंदिर में 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पूरे सावन VIP और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे, जबकि इंटरनेट पर बाबा के लाइव दर्शन मिलते रहेंगे। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले सावन में करीब 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, इलाज, साफ सफाई और पीने के पानी की खास व्यवस्था की है।
16: वडोदरा में 11 लाख रुद्राक्ष से केदारनाथ मंदिर के रेप्लिका बनाने की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस काम में जुटे हुए हैं।
15: उत्तराखंड के जोशीमठ में NTPC के तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी मिली है। हेड रेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू हो गया, यानी फेज 2 और फेज 3 से बनाई जा रही सुरंगें अब आपस में जुड़ गई हैं। इससे निर्माण कार्य और तेज होगा और उम्मीद है कि ये बड़ा बिजली प्रोजेक्ट तय समय से जल्द पूरा हो सकेगा।
16: एक्ट्रेस सोमा कुरैशी श्रीनगर में अपनी फिल्म बेबी डू डाई डू का प्रमोशन करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने फिल्म के अन्य कलाकारों के साथ फैंस से मुलाकात और बातचीत की।
15: फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंग अब खाने पीने पर भी चढ़ गया है। मियामी की ममन बेकरी में फुटबॉल जैसे दिखने वाली खास क्रोसांट लोगों को खूब पसंद आ रही है। अलग अलग देशों के झंडे और उनके स्वाद से सजी पेस्ट्री वर्ल्ड कप के साथ दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का भी जश्न मना रही है।
16: मोनाको में एनर्जी बोट चैलेंज प्रतियोगिता की 13वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। भारत की टीम सी शक्ति इसमें स्वदेशी हरित समुद्री प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने पहुंची है।

0: तो शुभ समाचार में बात मॉनसून की मेहरबानी की कर लेते हैं, जिसका असर दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम इलाकों में साफ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, कहीं झमाझम तो कहीं तेज, कहीं रुक रुक कर तो कहीं धीमे धीमे, लेकिन बीती रात भर लगातार बारिश हुई है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में धरती भंग हो गई है और गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली है। तपती हुई धरती को तरावट मिली है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मॉनसून की ये मेहरबानी किसी वरदान से कम नहीं। वहीं महाराष्ट्र में भी मुंबई सहित तमाम इलाकों में बरसात लगातार जारी है, जिसके कारण मुंबई और दूसरे इलाकों में पानी की किल्लत दूर हो सकती है। बता दें कि पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी बारिश का अलर्ट है, जबकि पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में 48 घंटे बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित बहुत से इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मौसम के जानकारों ने अगले सप्ताह भर बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण मौसम ठंडा बना रहेगा। हालांकि पहाड़ों की ओर जाने वाले सैलानियों के लिए सावधानी बरतने का समय है, ताकि लैंडस्लाइड और सैलाब के खतरों से बचाव हो सके। वहीं मैदानी इलाकों में हो रही बारिश तो कुदरत की उस नेमत के समान है, जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों को था। हालांकि इस बार अलनीनो के कारण मॉनसून कमजोर रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों में बरस रहे बादल राहत देने वाले हैं।
1: तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं तेज बौछारें हैं, और रात भर बारिश से पूरी दिल्ली बारिश के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश हो रही है और रात भर से बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर यहाँ जल जमाव की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन राहत की फुहारें लोगों को अब राहत दे रही हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। दिल्ली के पास नोएडा के पास कैसा है बारिश के बाद का नजारा, वो आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
2: दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मसलन आप नोएडा में देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है और सेक्टर 16 का इलाका है। ये सड़कों पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा, हालांकि ज्यादा नहीं, एक फिट ही है, लेकिन रेड अलर्ट के बाद बारिश जो है और इसका असर अब दरअसल पूरे इलाके में देख रहे हैं। हमने पहले गुड़गांव में देखा, गुरुग्राम में कैसे उस तरह से सड़कें दरिया बन गई थी, और अब आप ये नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां भी सब कुछ जलमग्न हो चुका है और ये सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ेगी और ये पूरे इलाके में होगा। तो रेड अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, एनसीआर के इलाकों में ज्यादा दिक्कत होगी। लगातार बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे में सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा करने से बचे, बाहर ना निकले।
0: तो उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत तक मॉनसून पूरी ताकत के साथ बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में बारिश न सिर्फ मौसम बदला है, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी उसने ला दी है और हवा भी साल की सबसे साफ हवा बन गई है।
3: बुधवार को जिस तरह सुबह से शाम और फिर रात तक बारिश का सिलसिला चला, उसने कम से कम दिल्ली वालों का दिल खुश कर दिया। दिल्ली और नोएडा में दिन भर थम थम कर बारिश होती रही, लिहाजा न सड़कों पर ज्यादा पानी भरा और न ही रास्तों पर ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा। कुल मिलाकर मॉनसून से दिल्ली की ये मुलाकात खुशनुमा रही।
4: दिल्ली में फिलहाल बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि फिलहाल दिल्ली में मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। आईएमडी का जो नोटिफिकेशन था वो असल में लाइट रेन्स या वेरी लाइट रेन्स को लेकर था, और शाम के समय हवाओं की रफ्तार तेज होगी, ये भी मौसम विभाग ने कहा था, और दिल्ली वाले भी इस मौके का लुत्फ उठा रहे हैं, बारिश को फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं।
3: दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि 12 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, तो कहीं कहीं तेज बौछारें या फिर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मतलब दिल्ली अगले कुछ दिनों तक न केवल बारिश में भीगेगी, बल्कि तेज हवाएं दिल्ली को उमस से भी बचाती रहेंगी।
5: अगर बात उत्तर भारत की जाए तो मैदानी राज्यों पे फिलहाल येलो अलर्ट है। 12 जुलाई तक जो है इसी तरीके से हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश होगी, लोगों को उमस से जो है निजात मिलेगा। लेकिन पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल की बात की जाए तो येलो अलर्ट जो है वहां के लिए जारी किया गया है।
3: फिलहाल दिल्ली केवल भीग नहीं रही बल्कि साल की सबसे साफ हवा का आनंद भी ले रही है। बारिश का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की हवा पर भी दिखा है। लगातार बारिश के बाद बुधवार को दिल्ली का AQI गिरकर 59 पर पहुंच गया, जो साल 2026 का अब तक का सबसे कम स्तर है। यानी मानसून ने न केवल गर्मी को गायब कर दिया है बल्कि दिल्ली की हवा को भी धोकर साफ कर दिया है।
6: क्योंकि कुछ दिन पहले, दो दिन पहले इतनी गर्मियां थी, इतनी उमस हो रही थी, लोग बाग बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन आज इतना मौसम सुहाना हो गया, बरसात हो गई है, लोगों को बहुत ही अच्छी राहत मिली है।
3: मौसम ने फिलहाल तो दिल्ली का दिन बना दिया है। दिन भर बादलों का डेरा है, रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं, हवाओं का जोर है और साफ हवा का आनंद है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 तारीख तक दिल्ली वालों की ऐसी ही मौज रहने वाली है। दिल्ली से मनीष लड्डा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो दिल्ली में बारिश झमाझम हो रही है। दिल्ली में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और कई इलाकों में रात भर से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और उमस से राहत मिली है। आपको बता दें अभी तक दिल्ली में सामान्य से अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें जारी रहने की संभावना है।
0: तो अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बेवजह घर से बाहर ना निकले, और अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी देख लें। तो चलिए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। पिछले कई दिनों से मॉनसून बेहद सक्रिय है महाराष्ट्र में और लगातार तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई में भारी बारिश और हाई टाइड की संभावना बनी हुई है। वैसे इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हैं मरीन लाइंस की, जहां लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नजर निकले हैं और हाई टाइड भी है, लेकिन उस बीच लोगों का मॉर्निंग वॉक भी जारी है। कई इलाकों में रात भर से बारिश हो रही है और मुंबई में तो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उस बीच सुबह सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी है और हल्की फुहारें पड़ रही हैं, लोग मॉर्निंग वॉक का मजा लेने के लिए बीच के किनारे पहुंच चुके हैं।
1: और चलिए आपको पहाड़ों की तरफ लिए चलते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल का हाल आपको बताते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश राहत के साथ चुनौती भी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन इन सब के बीच जहां सुरक्षित माहौल है वहां लोग भी मानसून का पूरा आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बारिश लगातार बरस रही है, लेकिन चिंता का विषय भी बनी हुई है। जिस तरह से 48 घंटों से यहाँ पर भारी बारिश है और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित माहौल है और लोग भी यहाँ पर मॉनसून का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है।

और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना कर ली है। माना यह जा रहा है कि पिछले 4 दशकों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यात्रा के लिए उत्साह ऐसा है कि अगले कई दिनों तक के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फुल है और प्रशासन लोगों से इंतजार करने की अपील कर रहा है।

0: यह आस्था का सैलाब है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भीड़ है पर हर कोई अपने आप से छूटा हुआ है। मन में बस एक उमंग, बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचना है। बस एक चाह कि महादेव के दर्शन से जीवन धन्य करना है। बस एक गूंज है बम बम भोले की। बस एक उद्घोष है हर हर महादेव। बालटाल हो या पहलगाम रूट, दोनों ही मार्ग पर शिव भक्तों की रौनक है। कोई घोड़े या खच्चर पर सवार है तो कोई पालकी पर, तो कोई मस्त मगन पैदल चलते हुए दर्शन के लिए दौड़ा चला जा रहा है। बेस कैंपों पर तो जैसे उत्सव का माहौल है। बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
1: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कबूतर भी पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
2: ये यात्रा कैसी रही, इतनी लंबी यात्रा?
1: बहुत अच्छी रही यात्रा, सब कुछ यात्रा दुपहर हम चलते हैं यात्रा की।
3: जी मेरा नाम गगनराज जुतावत है, मैं इंदौर शहर से हूँ। हम लोग आए थे दर्शन करने, साथ ही लोग हम एक ग्रुप के हैं। हम बाबा के यहाँ दर्शन करने गए थे, बहुत ही बढ़िया सुकून मिला हमको बाबा के दर्शन करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा सबको ही दर्शन दे रहे।
0: हालांकि अमरनाथ गुफा में बर्फ का बना प्राकृतिक शिवलिंग 90% पिघल चुका है, यानी बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन शिव भक्तों की आस्था तो बाबा से जुड़ी है। इसलिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का जोश जस का तस है।
4: यात्रियों में दिन प्रतिदिन बाबा अमरनाथ के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। 10,000 लोग हैं जत्था में और बहुत उत्साह है भगवान के प्रति और सब लोग चाहते हैं भगवान के दर्शन मिले हम लोगों को। बाबा के जब शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे तो हम लोगों को यह मन में है कि हम बाबा की गुफा तक ही पहुंचे, बाबा के स्थान तक पहुंचे और वहां बाबा को प्रणाम करके आए। सर
5: सुना है कि बाबा भोले शंकर की जो स्वरूप है वो लुप्त होता जा रहा है, पर भक्तों की आस्था है, भक्तों का एक विश्वास है हमें वहाँ दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और हम अपनी आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहाँ बाबा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे और जा रहे हैं।
6: मायूस होने की जरूरत नहीं है, देखो महादेव जी तो कन कन में है। एक ये उन्होंने अपना स्वरूप उठाया था वहाँ पे, ठीक है, जो अमर कथा सुनाई थी गुफा में, जगह मगर वहाँ पर शिवलिंग स्तंभ नहीं है, लुप्त हो चुका है, बाबा जी अंतर ध्यान हो चुका है। उस जगह मत्ता तो है जहाँ माता पार्वती जी ने भोले बाबा से अमर कथा सुनी, अमर कबूतर है वहाँ पर। जो मैं मानता हूँ, जो हमारा मानना है, शिवलिंग की महत्ता तो है ही है, उस जगह की महत्ता बहुत ज्यादा है जहाँ पर भोले बाबा ने अपना आसन दिया।
0: यूं तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है चाइल्ड केयर सुविधा। असल में 13 साल से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा कारणों से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे में कई श्रद्धालुओं के सामने बच्चों की देखभाल को लेकर परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पहली बार बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में विशेष चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल में छोड़कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं।
7: ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों के केयर के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था हो?
8: चाइल्ड केयर जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास है तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे तो 2-3 बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का जोश कैसा है इसे इस बात से समझिए कि अगले कई दिनों तक के सभी पंजीकरण स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वे फिलहाल यात्रा पर न आएं और नए स्लॉट उपलब्ध होने का इंतजार करें। बालटाल से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
9: और बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्मी धमाल की।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
12: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध?

0: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: तेज बारिश के चलते आज गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर।
10: हरियाणा और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। अलर्ट पर राहत और बचाव दल।

0: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के सातवें दिन भगवती नगर बेस कैंप से सातवां जत्था रवाना। जत्थे में 10,000 से ज्यादा भक्त है शामिल।
1: इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में एआई करेगा मदद। फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकरीबन 2500 सीसीटीवी से होगी निगरानी।
0: ओडिशा में साइबर धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए शुरू की गई ई-जीरो एफआईआर प्रणाली। लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील।
1: मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज पीएम एल्थनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती।
2: नीचे
3: ये भी गया।
2: कौन?
3: जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात फिल्मी दुनिया की कर लेते हैं। सिनेमा की दुनिया में इस हफ्ते मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है। एक तरफ कॉमेडी का तड़का लगाने आ रही है धमाल, तो वहीं हॉरर फिल्म इविल डेड बर्न भी रिलीज हो रही है, जो इविल डेड फ्रेंचाइजी की छठी मूवी है। वैसे बारिश की फुहार के बीच कॉमेडी का तड़का लगने वाला है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के साथ रवि किशन, संजय मिश्रा जैसे दिग्गज हंसी का ओवरडोज लेकर आ रहे हैं। हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज धमाल 4 है, जो इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। वहीं एक गुड न्यूज ये है कि ओ माय गॉड 2 जैसी सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म का डायरेक्शन करने के बाद अमित रॉय के एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं। उनकी अगली फिल्म ओ माय डॉग का ऑफिशियल टीजर एक दिन पहले रिलीज किया गया। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका विषय और इसकी स्टार कास्ट है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ साथ एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा कुत्ते नजर आने वाले हैं। फिल्म इसी महीने की 31 तारीख को रिलीज होगी।
2: ये तो गया।
3: ये भी गया।
2: कौन?
3: जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
1: और चलिए अब आप बात करते हैं डिफेंस सेक्टर से आई बड़ी खबर की। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के स्वदेशी गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल टेस्ट किया है। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में हुआ और इस दौरान कम से कम 60 किलोमीटर की रेंज तय की गई थी। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रॉकेट ने अपने निर्धारित लक्ष्य को अत्यंत सटीकता के साथ भेदते हुए अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है और इस तरह से इसकी सफल टेस्टिंग हो चुकी है। तो भारत के बेड़े में
0: जेल का नाम सुनते ही सजा और सलाखों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर की एक जेल कैदियों को नई पहचान और नया हुनर दे रही है। यहाँ कैदियों के हाथों से तैयार किए गए मुक्ति ब्रांड मसाले, सत्तू और दूसरे उत्पाद अब जेल की चारदीवारी से निकलकर बाजार तक पहुंच चुके हैं और लोगों की पसंद बन गए हैं।
4: कहने को ये जेल है, लेकिन यहाँ मुक्ति की अनोखी बयार बह रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल इन दिनों अपने खास मुक्ति ब्रांड से पहचाना जा रहा है। बंदियों के हाथों तैयार किए गए इन उत्पादों ने न केवल अलग पहचान बनाई है, बल्कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट की डिमांड जेल से बाहर भी तेजी से बढ़ी है।
5: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद अब सेल से लेकर के मॉल तक पहुंचने लगी है और उसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी हो रही है, क्योंकि इसकी शुद्धता और गुणवत्ता दोनों बेहतर। हमारे साथ जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या उत्पाद तैयार हो रहा है और उसका क्या रिस्पांस है।
6: ये मुक्ता जो निर्माणशाला इकाई है, ये तो पूर्व से ही चला आ रहा है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में, परंतु इसका रिवाइवल जो हुआ है विस्तारीकरण पुनः 2023 में इसका मुक्ति ब्रांड के नाम से हुआ है। तो वर्तमान में मेनली सभी तरह के मसाले, विभिन्न सामग्री बन रही हैं, जैसे मसाले हैं जो कि अभी हम लोग, और सरसों तेल जो कि मॉल में भी हम लोग यहाँ खादी मॉल में भी सप्लाई कर रहे हैं।
4: जेल के भीतर मुक्ति नाम की आर्थिक क्रांति ने कारागार के मायने बदल दिए हैं। यहाँ जेल के कैदी पूरी शुद्धता के साथ हल्दी, मिर्च, धनिया जैसे बुनियादी मसाले तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सत्तू, सरसों का तेल, साबुन और हाई क्वालिटी के लकड़ी के फर्नीचर भी जेल में तैयार किए जा रहे हैं।
6: रिस्पांस उसका शहर में भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसका इन्वेंट्री चेक करते हैं और यहाँ से इन्वेंट्री भिजवाते हैं। और अपने कैंपस में भी एक मुक्ति का आउटलेट है जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं खुद, और स्टाफ लोग भी परचेस करते हैं, परिजन आते हैं वो लोग करते हैं, कोर्ट के लोग भी आते हैं वो लोग भी करते हैं, तब तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है।
4: जाहिर है जेल के भीतर बन रहे इन उत्पादों का खुद में एक ब्रांड बन जाना एक शानदार कहानी के साथ शानदार पहल है। जेल में कैदियों की सोच को कैसे बदला जाए और रिहाई के बाद उन्हें कैसे आत्मनिर्भरता की राह पर लाया जाए, मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल उसकी एक मिसाल बनकर सामने आया है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे।
0: बात काशी की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन के लिए कमर कस ली है। सावन के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए तमाम नियम बनाए गए हैं, तो वहीं काशी के लोगों को भी सावन से पहले एक शुभ सौगात मिली है।

0: जो सावन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। उस सावन के स्वागत के लिए ये काशी की तैयारी है। काशी केवल एक धाम भर नहीं है, ये शिवत्व का संपूर्ण संस्कार है। सावन में केवल काशी ही शिव के रंग में नहीं रंगती, बल्कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु शिवमय नजर आता है। सावन में हर हर महादेव की गूंज काशी में साधना बन जाती है और ये शिव का लोक और भी अलौकिक नजर आता है। लेकिन इस बार सावन के लिए काशी की तैयारी कुछ खास है। ये सावन न केवल काशी वालों के लिए सौगात लेकर आ रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास होने जा रहा है। बाबा के धाम तक सीधे पहुँचने वाला यही वो मार्ग है जो विशेष रूप से काशी में रहने वालों के लिए बनाया गया है। वैसे तो काशी का होना खुद में सौभाग्य है, लेकिन इस स्पेशल रास्ते से सीधे बाबा के दर्शन पाने का सौभाग्य पाकर काशी के लोग खुश हैं।
1: काशी वासियों के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती है, क्योंकि वे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में बगैर भीड़ का हिस्सा बने और बगैर रोक टोक के सीधे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दर्शन कर पा रहे हैं, प्रवेश कर पा रहे हैं। इसको लेके अलग से प्रवेश मार्ग काशी वासियों हेतु स्थानीय परिचय पत्र सहित जो मार्ग है ये शुरू कर दिया गया है, और द्वार संख्या 4 भी काशी द्वार काशी वासियों हेतु विशेष द्वार तैयार भी कर दिया गया है। अब मंदिर खुलने से 15 मिनट बाद से लेकर मंदिर बंद होने के 15 मिनट पहले यानी सुबह 4:15 बजे से लेकर रात्रि 11:15 बजे तक जो स्थानीय काशीवासी हैं, श्रद्धालु हैं, अपना कोई भी स्थानीय पहचान पत्र दिखाकर या सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाकर वह एंट्री कर सकते हैं, सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा सकते हैं।
0: दरअसल मंदिर परिसर में भारी भीड़ की वजह से काशी के लोगों को भी अब तक बाकी श्रद्धालुओं की तरह लंबी लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने पड़ते थे, लेकिन इस नए रास्ते ने मानो काशी के लोगों की मनोकामना पूरी कर दी है।
2: हम तो गदगद है साहब, हम तो बाबा विश्वनाथ पर केस करने वाले थे कि आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दर्शन आज से शुरू हो गया। इन्होंने बताया कि आज से आधार कार्ड लगाने पे दिव्य हो गया।
3: बहुत बढ़िया, हमको तो सुन के बहुत खुशी हुई। स्पेशल रास्ता मिल रहा है, हम लोग जाके दर्शन करेंगे।
1: तो आए थे किस अभी प्रयोजन से आए थे? क्या
3: हमारे बेटा का शादी हुआ, दर्शन करने आए हैं।
1: तो आए हैं यहाँ तो पता चला है ये बात?
3: हाँ, अभी आपसे पता चली है।
4: नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि हम लोग काशी के होके दर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, तो हमारे लिए तो एक यहाँ रहने का एक फायदा ही हमारे लिए बिल्कुल।
0: सावन से पहले केवल काशी वालों को ही सौगात नहीं मिली है, बल्कि काशी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सावन में दर्शन सुगम बनाने की तैयारी है। अनुमान है कि सावन में काशी विश्वनाथ धाम में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए इस बार 7 एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। पूरे सावन वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा जारी रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। कतारों में लगे श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एयर कूलर लगाए जाएंगे। जगह जगह ठंडे पेयजल और ORS की व्यवस्था होगी। धाम परिसर में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
1: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी।
0: मंदिर प्रशासन का कहना है कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। जो श्रद्धालु काशी नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए मंदिर की वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और प्रसारण माध्यमों पर बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने सावन में काशी आने वाले लोगों से अपील की है कि वो निर्देशों का ध्यान रखें।
5: तो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। भगवान शिव आनंद के देवता हैं, आप आनंद में रहें, आनंद पूर्वक यहाँ पर आएं। धाम की तरफ से यहाँ पर ग्लूकोज की, ओआरएस की, पानी की, पेयजल की, सूक्ष्म जलपान की सारी व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की सारी व्यवस्था की जाएगी। परंतु बहुत बड़ी भीड़ के दृष्टिगत उस समय बैगेज काउंटर हमारे यहाँ बिल्कुल संचालित नहीं होते, तो जो भी आपकी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, पेन है, चाबी का छल्ला है, इस प्रकार की धातु की वस्तुएं हैं, नुकीली वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं अपने ठहरने के स्थान पर, अपने लॉज में, अपने गेस्ट हाउस में, अपने होटल में, अपने आवास पर, रिश्तेदार के यहाँ जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ छोड़ कर आएँ, उन्हें लेकर यहाँ पर ना आएँ। एक परिवार के लोग जब आ रहे हैं तो एक तरह की पहचान अपने साथ रखें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें। हालांकि खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन कोई असुविधा उत्पन्न ना आए, इस नाते हम लोग पहले से यह अनुरोध करके रखते हैं।
0: कुल मिलाकर सावन में काशी लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। प्रशासन की कोशिश यही है कि बाबा के इस दिव्य धाम में श्रद्धा भी बहे और व्यवस्था भी सुचारू रहे।
1: सबसे खास बात यह है कि इस बार किसी भी प्रकार का स्पर्श दर्शन, वीआईपी दर्शन या विशेष आग्रह दर्शन पूरी तरह से सावन के दौरान रुका रहेगा और ये रोक, ये प्रतिबंध पूरे सावन पर्यंत तक चलती रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
6: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच रथ यात्रा उत्सव के तहत काकतपुर के देवली मठ में भगवान के लिए अनसर फलभार रस्म निभाई गई। आपको बता दें इसके तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्दी ठीक होने की कामना की जाती है और इसके साथ भक्तों ने उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद भी भेजा है। अगले हफ्ते 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसे लेकर भक्तों के अलावा रथ निर्माण से जुड़े हुए कलाकार भी भावुक हैं।

0: ऊर्जा शिखर।
1: ये आस्था का वो रंग है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, सारे तर्क धरे रह जाते हैं, प्रेम भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एक सार होकर सुकून के एक झोंके की तरह वातावरण में घुल मिल जाते हैं। ये तस्वीरें पूरी रथयात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की है, जिसके तहत काकतपुर के देउली मठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए जिस तरह से बैलों और बैलगाड़ी की साज सज्जा की गई है, सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही है, जिस तरह भाव विभोर महिलाएं बार बार धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार, उनके आराध्य देव नहीं, बल्कि मीठे रिश्तों की डोर से भी बंधे हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में केवल फल नहीं, उनका अगाध प्रेम, अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देउली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और उनके भाई बहन के लिए भेजा गया। काकतपुर देउली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटूडिसला यानी जन्म स्थान माना जाता है। ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल फूल तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है। तीनों रथ सज धज कर तैयार है, बस उन्हें अंतिम टच दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। अब बस इंतजार 16 जुलाई की उस तारीख का है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीनों की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब आपको रांची लिए चलते हैं, जहां जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ और अन्य देवी देवता मौसीबाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे सजाया सवारा जा रहा है। यहां भी पुरी की तर्ज पर ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार ने।
3: इस मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ, यहां पे भी जगन्नाथ भगवान, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो विग्रह है उसको हर साल उस मंदिर की स्थापना के बाद से यात्रा के तौर पे निकाली जाती है। भव्य मेला का आयोजन होता है और 500 मीटर की दूरी पे गुडियच्चा यानी मौसीबाड़ी है, भगवान के मौसी की का घर है, जहां वो 9 दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस अपने मंदिर में चले आते हैं जहां भक्तों को वो दर्शन देते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जोरों पे है। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगा, उसके पहले कई कस्टमरी जो ट्रेडिशंस हैं उसको निभाया जाएगा, रिचुअल्स को निभाया जाएगा, उसके बाद भक्त जन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। पूरी के तर्ज पे ही यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, साथ ही साथ ये मंदिर जो है पूरी के तर्ज पे ही बनाया गया है, उसी का रेप्लिका माना जाता है। आस पास के राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं, जब जैसे उड़ीसा जो है वो, उसके अलावा बंगाल जो एडजॉइनिंग जो जिले हैं जो झारखंड से सटते हैं, वहां से लोग दूर दूर से आते हैं। मेले की तैयारियां जोरों पे है और भक्तों को भी अब मेले के आयोजन की का इंतजार है और 16 तारीख को भव्य पूजा और रथ को खींचकर मौसी बारी तक पहुंचाने के लिए उनके नयन जो है वो बिल्कुल इंतजार में है और यहां भक्तों का हुजूम उमड़ेगा उस वक्त। और सिक्योरिटी को लेकर इलैबोरेट अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं कि कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वॉच टावर्स बनाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं, ड्रोन उड़ाए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट उस दिन ना हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।
2: और अब आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे स्कूल में लेकर चलेंगे जो रंगों से सजा हुआ है। यहाँ पढ़ाई के साथ मधुबनी पेंटिंग सिखाई जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्कूल एक शमशान घाट में चल रहा है और वही शमशान घाट जिसे जिंदगी की आखिरी मंजिल माना जाता है, लेकिन यहाँ नई जिंदगी के सपने गढ़े जा रहे हैं।
0: चित्रकारी करते ये नन्हे हाथ सिर्फ रंग नहीं भर रहे बल्कि अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। कोई लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा उकेर रहा है तो कोई पक्षियों और प्रकृति को अपनी कल्पना के रंगों से सजा रहा है। इन रंगों में छिपी है आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। सबसे खास बात ये कि हुनर किसी आर्ट स्कूल में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के एक शमशान घाट में चल रहे अपन पाठशाला में निखर रहा है।
4: मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम शमशान घाट में चलने वाली अपन पाठशाला के बच्चों के बीच हम हैं और आज इसलिए हमारी मौजूदगी है कि तमाम बच्चे मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें सम्मान करने वाले लोग खरीदारी करते हैं तो इन बच्चों को कुछ आमदनी भी हो जाती है। क्या बनाई हो तुम?
5: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग तो बनाने आ गया?
5: आ गए।
4: तो एक चीज तो पढ़ाई के अलग भी एक चीज सीखने को मिला।
5: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा एक यही चीज भी सीखने को मिला है।
0: इस स्कूल में 28 बच्चे रोजमर्रा की पढ़ाई के साथ मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बच्चे राधा कृष्ण मछलियाँ मोर पक्षियों से जुड़े खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। इन पेंटिंग्स की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। लोग न सिर्फ बच्चों के बनाए चित्र खरीदते हैं बल्कि उन्हें सम्मानित भी करते हैं।
6: मधुबनी और मिथिला पेंटिंग इसलिए क्योंकि इन लोगों में पढ़ाई के साथ साथ इनकी सर्वांगीण विकास हो और इसका डिमांड भी आ गया। जैसे हमने एक दिन लगाया तो लोगों ने कहा कि जे सुमित जी ये जितने भी बनाएंगे आप हमें दे दीजिएगा, जितने आप कॉस्ट कहेंगे। हम कहे कि नहीं, इसके मालिक बच्चे हैं, जितना वह कॉस्ट कहेंगे आपको उतना देना पड़ेगा। वो कहे कि नहीं, हम बढ़ा कर देंगे। एक का 150-150 200-200 रुपया आया ऐसा उनका, और 28 बच्चे इसमें सीख रहे हैं और या सीख लेंगे तो इन्हीं का एक बैंक बना देंगे।
0: यहाँ ट्रेनिंग ले रहे बच्चे अभी पेपर पर पेंटिंग करना सीख रहे हैं, कल यही बच्चे बड़े कैनवस पर पेंटिंग करेंगे। इस स्कूल ने उन्हें सिर्फ एक कला नहीं सिखाई बल्कि अपनी संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी दिया है।
4: फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है आज, तो एक अलग चीज तुम सब बना रही हो।
7: बहुत खुशी हो रहा है।
4: बहुत खुश हो रहा है। क्या बनाई हो?
7: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग में क्या थीम है?
7: ये इसमें होता है जो इसमें कलर,
4: बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व का ये थीम है। आप देख सकते हैं सूर्य देव को अर्घ देती छठवर्ती का ये मधुबनी पेंटिंग है।
0: ये पहल बता रही है कि सही शिक्षा और सही हुनर मिल जाए तो हर मुश्किल जगह भी उम्मीदों की नई पाठशाला बन सकती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए रवीना टंडन की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: मैं मोटी हूँ क्या?
9: क्या हो गया?
8: जब तक एक लड़की की हेल्थ ठीक है वो एक्टिव है, 2-4 किलो इधर उधर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
10: तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी।
11: ये तुम्हारा वहम है।
10: क्या वहम है?
11: कि मैं नींद में थी।
10: इसका मतलब सच में गाली दे रही थी।
2: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
12: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
18: तेज बारिश के चलते आज गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। हरियाणा और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार में अगले 3 घंटे होगी जबरदस्त बारिश, अलर्ट पर राहत और बचाव दल। पिंपरी चिंचवाड़ में कल हुए हादसे के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 14 लोगों की बचाई गई जान, चिंचवाड़ फायर ब्रिगेड NDRF और सेना की टीमें रेस्क्यू में जुटी। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन भगवती नगर बेस कैंप से 7वां जत्था रवाना, जत्थे में 10,000 से ज्यादा भक्त शामिल हैं। इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में एआई करेगा मदद। फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकरीबन 2500 सीसीटीवी से होगी निगरानी। मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपने घरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए घर में तमाम तरह के चित्र लगाते हैं। इन चित्रों को लगाने का एक तरीका है और इन चित्रों को लगाने के नियम भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए घर में कैसे चित्र आपको लगाने चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:37 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपके घर के चित्रों के बारे में। घर में जो चित्र लगते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने लोगों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र लगाते हैं। और जो चित्र हम अपने घर में लगाते हैं ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं। जब आप इनको देखते हैं तो इनकी तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं और इसी कारण से चित्रों का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। जब आप चित्रों के संपर्क में आते हैं तो ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं
और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्र का प्रयोग करके मन को प्रभावित किया जा सकता है और इसके अलावा स्वभाव पर, ग्रह पर और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। अलग अलग तरह के चित्र आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच पर असर डालते हैं। चित्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्याओं से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से सुंदरता बढ़ाने के लिए हम घर में अलग अलग चित्र लगाते हैं, तो घर में कैसे चित्र लगाने चाहिए आइए जानते हैं। पूजा उपासना करने के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र आप लगा सकते हैं। ये चित्र जितना साफ होगा और जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और इन चित्रों को पूजा स्थान पर या अपने कार्य स्थल पर लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र आप लगा सकते हैं, या पति पत्नी का संयुक्त चित्र जिसमें पति पत्नी दोनों मौजूद हों, ऐसा चित्र भी लगा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन का चित्र उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है, अपने पूर्वज आदि का चित्र लगाना है, तो इसको दक्षिण दीवार पर लगाना बेहतर होगा।
घर के डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में संयुक्त परिवार का चित्र लगाना फायदेमंद होता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका जो संयुक्त चित्र है वो डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। केले का दान कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, परिवार की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, मुख्य द्वार पर फूलों का या पानी का चित्र लगाना अच्छा होगा। आर्थिक संपन्नता के लिए, पैसे रुपए के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र आपको लगाना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र आप लगा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और काम में नाम और यश के लिए उगते हुए सूर्य का चित्र अपने काम के स्थान पर लगाइए। हर तरह के कष्ट का नाश चाहते हैं तो पूजा स्थान पर शिव जी या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाना बेहतर होगा। अब जब आप चित्र लगाते हैं तो चित्रों को लगाने में सामान्यतः किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। जहां तक हो सके घर में कोई भी चित्र लगाएं
रंगीन और सुंदर चित्र लगाना बेहतर होगा। जंगली जानवरों के, आग के, कांटों के, युद्ध के चित्र न लगाएं। चित्रों को साफ सुथरा रखिएगा और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिएगा। पूजा के स्थान पर पति पत्नी और बच्चों का चित्र मत लगाइए और अपने बेडरूम में सामान्यतः देवी देवताओं के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। घर में बहुत सारे चित्र लोगों के न लगाएं, क्योंकि बहुत सारे चित्र लगाने से रिश्तों में उलझन पैदा होती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की घर में लगाए जाने वाले चित्रों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। भोजन जब भी करें हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। अगर आप तनाव में, चिंता में भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन विष के समान होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को, किसी भी भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: May I have your attention, please?
1: College has been out of reach for too many for too long, but talent is everywhere. Opportunity isn't. WGU changes that. We're an online nonprofit university built for working adults, caregivers, first-generation students, and anyone overlooked by traditional colleges. And with low tuition and millions in need-based scholarships awarded each year, WGU makes college possible. This is education without limits. Accessible, affordable, and built for all. Learn more at WGU.edu.
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे

भैया हनुमान जी के चरित्र को ना कोई कभी गा नहीं सकता, इतना विराट चरित्र है। हम अभी जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो प्रवीण जी भी बैठे थे, सब पत्रकार थे बांदा के, तब हमने वहां एक बात कही, हनुमान जी ना मल्टी टैलेंटेड है। क्या है बोलो ना? मल्टी टैलेंटेड। इसलिए हमने हनुमान जी पर एक पुस्तक भी लिखी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्यों? ज्ञानी भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। हनुमान जी श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है, लेकिन सबके लिए प्रेरणादायक। कोई विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला बच्चा हनुमान जी से सीख सकता क्या? हनुमान जी से सीखो जरा, बाल काल में ही हनुमान जी को भूख लगी तो महाराज हमको भी भूख लगती। अरे वो वाली भूख नहीं कह रहे, पहले समझो तो जरा नकटा। हनुमान जी को भूख लगी, सूर को खाया, बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। सूर क्या है? विद्या के देवता। कौन से देवता? विद्या के देवता।

जी को विद्या की भूख है। आप कहो महाराज हम तो पुलिस में हैं, हनुमान जी पुलिस वालों के मोटिवेशनल हैं क्या? हाँ हैं। इंटरनेशनल चोरी हमारे भाई साहब ने ही पहली खोली है, अंतरराष्ट्रीय चोरी का खुलासा, तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक है हनुमान जी महाराज। पूछो कैसे, जब लंका का राजा रावण माता जानकी जी को चुरा करके ले गया तब हनुमान जी ही तो वो चोरी खोले हैं, तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी। आप कहो महाराज हम तो डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टरों के हनुमान जी प्रेरणादायक है? बिल्कुल है। पूछो कैसे, अरे पूछो ना, सुरसा नाम की माता आई ना, जब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा सत योजन तेहि आनन कीना अति लघ रूप पवन सुत लीना। सौ योजन का मुख जब सुरसा ने बनाया बोली हमें देवताओं ने भेजा। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले कहे हम समोसा है जो तो हमें खाओ। बोले बनाना ना हमारा भोजन हो। आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुरसा ने कहा आज देवताओं ने हमको भोजन दिया। हनुमान जी बोले कौन सा भोजन? सुरसा बोली तुम। हनुमान जी बोले हम कचौड़ी थोड़ी है तो खा जाओ। माता ने माता हमें मत खाओ, बाद में खा लेना, अभी हम काम करने जा रहे हैं, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो, राम जी का काम कर आऊं, मैं माता जानकी जी का पता राम जी को दे दूं, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो, इसके बाद में तुम हमें खा लेना। सुरसा जी बोली नाना इतनी देर इंतजार नहीं हो सकता, भूख ज्यादा लगी है। हनुमान जी बोले बाहरी माता अभी खाओगी? हाँ ठीक है तो खाओ। अब सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। अब भैया विचार करो, पानी पूरी बड़ी हो मुंह छोटा हो, कई लोगों का गुटखा खाते खाते मुंह ऐसा हो जाता है कि पानी पूरी नहीं खा पाते, फोड़ फोड़ खाते। हाँ तो हनुमान जी ने वही कृपा की, सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। सुरसा सोरह योजन मुक्त ही भयो तुरत पवन सुत 32 भयो, जैसे ही उसने सोरह योजन का मुख बनाया हनुमान जी 16 योजन के हो गए। लो खाओ, हम टूट तो सकते नहीं है, कचौड़ी थोड़ी है कि टूट जाए। तो सुरसा ने क्या किया, सत योजन ती आनन कीना, 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुंह बनाया लगभग। हनुमान जी ने विचार किया वाह ये 100 योजन की हो गई, और कहीं हम भी इससे डबल भय तो नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान माता जानकी जी के पास। तो हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया, पता है क्या किया, सत योजन ती आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए, मुख में गए। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। हाँ चेक कर रहे लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बढ़िया है कि नहीं, लंग्स काम कर रहा कि ठीक है कि नहीं कर रहा, और पूरा प्रवेश करके पूरा छानबीन करके बाहर आ गए। तो किसी ने कहा वाह जब सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? तो किसी ने कहा वाह छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़े दरवाजे को बंद होने में देर लगती है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा, 100 योजन का मुख है, जब तक बंद हुआ तब तक तो हनुमान जी ने रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर दी कि किडनी लीवर ठीक है माता जी। हाँ बाहर आ गए। तो डॉक्टरों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी हैं। कोई घमंडी हो ईगो वाला उसके भी प्रेरणादायक हनुमान जी हैं। पूछो कौन, पूछो हनुमान जी, पूछो कैसे, जरा जोर से पूछो। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तब हनुमान जी कितने बने? अति लघु, लघु मतलब छोटा, और छोटे में भी जो छोटा हो वो अति लघु। रामायण में सुंदरकांड में है अति लघु रूप धरेव हनुमाना, या अति लघु रूप पवन सुत भयो, छोटा रूप। क्यों, पूछो क्यों, अरे पूछो, जब तक ठीक से नहीं पूछोगे हम ना बताएंगे, और ठीक से पूछो। सुनो जब विपत्ति सुरसा की तरह बड़ी हो जाए तब उसका सामना नहीं करना चाहिए, छोटे बन करके विपत्ति के निकलने का इंतजार करना चाहिए। आंधी

0: आती है
1: आंधी।
0: तूफान जब आता ना, तूफान में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। बड़े बड़े मकान गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। पर एक बात बताओ, गार्डन की, बाग की घास गिरती क्या, वो उखड़ती क्या? जरा जोर से बोलो। पेड़ उखड़ जाते, मकान उखड़ जाते, बड़े बड़े टेंट उखड़ जाते, पर बगीचे की घास उखड़ती क्या? नहीं उखड़ती ना। पूछो क्यों? जब आंधी आती है तब पेड़ तने रहते, खड़े रहते, तो वो उखड़ जाते, लेकिन जब आंधी आती है तो घास जमीन पर गिर जाती है, विनम्र होकर के झुक जाती, और जो झुक जाता है वो कभी उखड़ता नहीं है। विनम्रता आदमी को कभी उखड़ने नहीं देती। याद रखना मेरे पागलो, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी से सीखो, इतने बलवान हनुमान जी, इतने विद्यावान हनुमान जी, इतने ताकतवर हनुमान जी, पर भैया रावण के सामने भी हाथ जोड़े हैं, सुरसा के सामने भी छोटे बने। हनुमान जी बड़े भी बन सकते थे, वो सत योजन की बनी, हनुमान जी 400 योजन के बन सकते थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी उनका प्रयोग करके और बड़े हो सकते थे, लेकिन हनुमान जी बड़े क्यों नहीं हुए? बड़े बने रहना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनना भी बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के छोटों को भी बड़ा बनाना बड़ी बात है। बड़ा वो नहीं है जो बहुत नाम वाला है, या बहुत गाड़ियां हैं, या बहुत बंगले हैं, या बहुत पैसा है, या बहुत फेमस है। भैया वो आदमी बड़ा नहीं है। हमारी नजर में तो दो लोग बड़े हैं। कौन? पूछो कौन? जिनके पास धन भले ही कम हो पर रात को परिवार के साथ घर पे भोजन साथ में पाते हो, वो बड़े हैं। हमारी नजर में दूसरा बड़ा आदमी वो है कि किसी के पास धन भले ही कम हो पर भैया कोई छोटा बगल में खड़ा हो जाए, वो भी बड़ा हो जाए। धन्य है हनुमान जी। विनम्रता ना ये हनुमान जी से सीखो। कोई भी हनुमान जी की महिमा को नहीं गा सकता, कभी भी नहीं गा सकते, न इनकी महिमा का कोई पार है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा हनुमान चालीसा,

तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने उपकार किया सुग्रीव पर। बोले क्या? बोले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। और एक बात और, बोले क्या? राम मिलाय राजपद दीना। देखो हनुमान जी ने भैया राजा बनाने का काम किया है। क्या बनाने का काम किया? बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो, क्या बनाने का काम किया हनुमान जी ने? राजा। देखो भैया, सुग्रीव को राजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हनुमान जी ने। अच्छा, विभीषण को राजा किसने बनाया? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। यहां तक कि अंगद जी को युवराज किसने बनवाया? हनुमान जी ने। यहां तक कि राम जी को भी फिर से राजा किसने बनवाया? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? राजा बनवाते हैं। क्या करते हैं? अब जिन जिन को राजा बनना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। है? किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो ना, क्योंकि

जी ने, हनुमान जी ने उपकार सुग्रीव के ऊपर किया। सुग्रीव के ऊपर क्या उपकार किया? राम जी आए, ऋषमुख पर्वत नियर आया। राम जी जब वन में जानकी माता रावण चोरी करके ले गया तो राम जी घूम रहे। सबरी माता ने कहा, महाराज ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का बाण रहता है, उनसे यदि आप मित्रता करो तो शायद जानकी माता का पता लग जाए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे माता जानकी जी की खोज में। ऋषमुख पर्वत आया तो राम जी नजदीक पहुंचे। ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लिए हुए आ रहे, तो सुग्रीव को डर लगा, हो सकता बाली ने मारने वाले भेजे। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी सचिव थे, सलाहकार तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। जिसके सलाहकार है ना, उसका कभी राजपद नहीं जाने दिया। एक बात बोले बांदा बालो, कह दो बोलो, किससे सलाह लेते हो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। सलाह यदि तुम मंथरा से लोगे तो बेटा हाथ से चला जाएगा, और सलाह यदि तुम कृष्ण से लोगे तो खोया राज्य प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आई? सलाहकार मतलब कान भरने वाले। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं भाई। भैया हम लोग कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें, ये चुगलखोर ना बहुत खतरनाक होते हैं। चार कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। चार कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर, बड़े खतरनाक हैं। जो कल तक राजा बनने वाले थे ना राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया, पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी, अरे बोलो ना। तो सलाह देने वालों से सावधान रहिए। एक बांदा की हिरनी थी, हिरनी तो बगल में, यहां बांदा में एक नदी है केन, केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी बांदा में। ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा, पानी कितना है? ऊंट बोला, घुटनों तक। बोले सही में? बोले कसम से। और हिरनी ने कहा, जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। और जैसे ही वो गई, सोई डुब पड़ गई। मरते मरते बची, बड़ी मुश्किल से निकली। तो बाहर आकर के ऊंट को गाली देखी, बोली कि बड़ी बेशरम हो तुम, बड़े बेशरम हो तुम, तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो एक बार में ही डूब गई। ऊंट बोला, मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा है, मेरे घुटनों तक था, तुम्हारे वाले का तो तुम जानो। इसलिए कई बार कोई सलाह देना तो थोड़ा सावधान रहना। सलाह देने वाले अपने हिसाब से सलाह देते हैं, उसको लेना अपने हिसाब से, बुद्धि अपनी प्रयोग करना। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं, पर सुनना तुम अपनी समझदारी से कि हम कह दें। एक जगह हमने कथा कही, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा, वो एक यहाँ यूपी में हमारी कथा हुई, ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंडी है, और ठंडियों में तो भैया पूछो ही मत, कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह है, वो भी दो रजाई में सो रहे। जिनके नाम ज्वाला सिंह है वो भी ठंडी में रजाइयों में सो रहे हैं, तो ठंड तो बड़ी विचित्र होती है। और ठंड में कई लोग तो कथा में बिना नहाए मत आना, सुन लो चाहे जितनी ठंडी हो गए। और ठंड से बचने का हमारे पास उपाय, तो हमारी यूपी में झांसी में एक कथा हुई, झांसी के पास एक गांव में, बहुत पुरानी बात है भैया, कथा हुई तो हमने एक चेला से कहा कि कल राम जन्म है, गांव में बुलौवा दे दो, अपने बुंदेलखंड में बुलौवा चलाऊंगा, बुलौवा दे दो भैया, निमंत्रण दे देना, कल राम जन्म है। बोला गुरुजी हम ना जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं है ठंडियों। हम कहा बेटा कितने दिन? बोले कम से कम एक सप्ताह। तो बोले हमने सुना गुरुजी तुम तो मंत्र वंत्र जानो, तो मंत्र बता दो ठंड ना लगे। हमने कहा जिससे प्रेम करते हो, बाल्टी में पानी लो, उसका नाम लिखो, एक डब्बा डालो उसका नाम लो। हमने कहा भगवान से प्रेम, जिस भगवान से प्रेम, अच्छा भगवान कहना हम भूल गए, हमारे मुंह से निकला जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड भग जाएगी। वो दूसरे दिन आया, बोले गुरु। हमने कहा चेला
अरे बोले गुरु गजब का मंत्र दिया, अब तो हम रोज नहाएंगे। हमने कहा क्या दिया? बोले आपने कहा था जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेना, ठंड भग जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा मंत्र बोला? हमने कहा जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हम कहा बेटा ये कौन सा मंत्र? बोले गुरु जी हमारी लोगाई का नाम है। हमका भैया लुगाई का कब से मंत्र बन गया? बोले आपने ही तो कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा जय हो तेरी। अच्छा विचार करो, शांति बाई घरवाली का नाम लेने से ठंड भग सकती है, भगवान का नाम लेने से भूत नहीं भग सकते हैं क्या? लुगाई का नाम लेने से जब ठंड दूर हो सकती तो भगवान का नाम लेने से क्या संकट दूर नहीं हो सकते हैं? बोलो जरा जोर से बोलो। तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी सलाहकार होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया सलाहकार यदि मंथरा हो तो जिंदगी नरक। अब तुम्हें सलाह किसकी लेनी?

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
9: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद कर करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: दिल्ली NCR में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, जगह जगह जल जमाव के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हरियाणा और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार में अगले 3 घंटे होगी जबरदस्त बारिश अलर्ट पर राहत और बचाव दल। पिंपरी चिंचवाड़ में कल हुए हादसे के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 14 लोगों की बचाई गई जान। चिंचवाड़ फायर ब्रिगेड, NDRF और सेना की टीमें रेस्क्यू में जुटी। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन भगवती नगर बेस कैंप से 7वां जत्था रवाना, जत्थे में 10,000 से ज्यादा भक्त शामिल हैं। इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में AI करेगा मदद, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लास तकरीबन 2500 CCTV से होगी निगरानी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत, पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: राजधानी में मॉनसून की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के तुगलकाबाद में सुबह से हल्की बारिश जारी। बारिश के बाद दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। बादलों की चादर और ठंडी हवाओं ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में पूरी रात बरसे बदरा। आज सुबह भी बूंदाबांदी से मौसम बना हुआ है खुशनुमा। मॉनसून की बारिश से दिल्लीवासियों के चेहरे खिले। ठंडक भरे मौसम के साथ राजधानी में अब सुहावने दिनों का एहसास। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जलभराव मुक्त इलाकों की तस्वीरें। मिंटो ब्रिज, रोहतक रोड, अंडरपास, आईटीओ, NH24, विनोद नगर समेत कई जगहों की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर पर मॉनसून मेहरबान। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। नोएडा सेक्टर 62 में लेबर चौक पर जल भराव हुआ। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। राहत और बचाव दलों को किया सतर्क। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली बड़ी राहत। बारिश के फुहारों से गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। स्कूल बंद, जल भराव की चुनौती के बीच लोगों ने राहत की सांस ली। गाजियाबाद में तेज बारिश के चलते कक्षा 12 तक के बच्चों की छुट्टी। लोगों से घरों में रहने की अपील। बादलों की जोरदार मेहरबानी से गाजियाबाद तरबतर। खुशनुमा मौसम के बीच कई जगह पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक। गाजियाबाद में बारिश से सड़कों पर जमा हुआ पानी। लोगों की आवाजाही में हुई परेशानी। रियासी में बढ़े चुनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चुनाब उफान पर। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चुनाब नदी में बढ़ते प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्पिलवे गेट खोले गए। अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर निगरानी बढ़ाई। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाए चेतावनी भरे पोस्टर। नागरिकों को सतर्क रहने और हादसों से बचने की पहल। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोर्ड। कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच सामने आई अनोखी तस्वीर। नदी की तेज धारा में भारी तादाद में बहते हुए दिखे गैस सिलेंडर। भारी बारिश के कारण HPCL पाताल गंगा के बॉटलिंग प्लांट से बहे करीब 3000 सिलेंडर। जिला प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर को खरीदने घरों को ना ले जाने की अपील की। रायगढ़ प्रशासन ने नदी में बहते हुए सिलेंडर से सुरक्षा को लेकर जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश से तेज धारा में बही सड़क। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी। कई सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही पर पड़ा असर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, पहाड़ों पर बदला नजारा। शांत वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर। प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी भरे बोर्ड लगाए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हुआ जलभराव, सड़कों और इमारतों के परिसर में पानी जमा हुआ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अमरावती में लगातार बारिश के बीच पूर्णा परियोजना के दो गेट खोले गए, नदी किनारे गांवों को अलर्ट किया गया। बगहा में दिखा नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 85,000 क्यूसिक पानी। नदी किनारे बढ़ी सतर्कता, बराज और नदी के जलस्तर पर लगातार रखी जा रही है नजर, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के टाटरी इलाके में बादल फटने की घटना हुई, प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकान और दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। गुजरात में हो रही है मूसलाधार बारिश से सूरत में बाढ़ जैसे हालात बने, पांडेसरा क्षेत्र में कृष्णा नगर और गढ़ा नगर में फंसे 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, कमर तक भरे पानी के बीच रिहायशी इलाकों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मॉनसून की बारिश के बीच केदारनाथ धाम में दिव्य प्राकृतिक नजारा दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हिमालय की वादियों में बादलों और कोहरे से घिरे हुए केदारधाम में रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1,500 श्रद्धालु, अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट, तीर्थयात्रियों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश। बद्रीनाथ में बारिश में दिखी भारी श्रद्धालुओं की भारी आस्था, बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 11 लाख रुद्राक्ष की मालाओं और डमरू से होगा केदारनाथ धाम मंदिर का भव्य श्रृंगार, वडोदरा का संस्थान कर रहा है विशेष तैयारी। महादेव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां हुई तेज, भक्तों को सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार। पूरे सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी और स्पर्श दर्शन की सुविधा रहेगी बंद, इंटरनेट के जरिए मिलता रहेगा बाबा का लाइव दर्शन। सावन के दौरान काशी आने वाले भक्तों की हर सुविधा का ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, मेडिकल से लेकर साफ सफाई और पीने के पानी का भी व्यवस्था। इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास का समय, 80 लाख के करीब भक्तों के आने की उम्मीद। भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है हर संभव कदम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, यह एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है।

0: अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो, बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, जगह जगह पर जल जमाव के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हरियाणा और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार में अगले तीन घंटे होगी जबरदस्त बारिश, तो वहीं अलर्ट पर राहत और बचाव दल। चंडीगढ़ में मॉनसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से मिली राहत, सुखना लेक पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून की मेहरबानी की, जिसका असर दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम इलाकों में साफ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों से ज्यादा वक्त से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं झमाझम तो कहीं तेज बारिश, तो कहीं रुक रुक के तो कहीं धीमी धीमी बारिश बरस रही है। लेकिन बीते रात भर में लगातार बारिश हुई है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में धरती भीग गई है और गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली है। तपती हुई धरती को तरावट मिली है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मानसून की ये मेहरबानी किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मुंबई सहित तमाम इलाकों में बरसात लगातार जारी है, जिसके कारण मुंबई और दूसरे इलाकों में पानी की किल्लत दूर हो सकती है। बता दें, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी बारिश का अलर्ट है। जबकि पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित बहुत से इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मौसम के जानकारों ने अगले हफ्ते भर बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण मौसम ठंडा बना रहेगा। हालांकि पहाड़ों की ओर जाने वाले सैलानियों के लिए ये सावधानी बरतने का समय भी है, ताकि लैंडस्लाइड और सैलाब के खतरों से बचाव हो सके। वहीं मैदानी इलाकों में हो रही बारिश तो कुदरत की उस नेमत के समान है, जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों को था। हालांकि इस बार अल नीनो के कारण मानसून कमजोर रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों में बरस रहे बादल राहत देने वाले हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग इलाकों से किस तरह से बारिश पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। आपको बता दें, कल रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। गर्मी और उमस से राहत मिली है, लोगों को तरावट महसूस हो रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह से बदरा बरस रहे हैं, तो वहीं लोगों के लिए ये राहत की फुहारें हैं जो उन्हें तपती गर्मी से राहत दे रही हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता दिल्ली से मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें हैं, मौसम का क्या हाल है, लोगों को कितनी राहत मिली है?
1: देखिए, बारिश तो राहत की है, लेकिन राहत की बारिश कब आफत की बारिश बन जाती है उसमें वक्त नहीं लगता है। रात भर से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिसके बाद आज सुबह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम है। इस वक्त हम आईटीओ ब्रिज पर हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम के साथ साथ हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसका सपना दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। आईटीओ ब्रिज पर हम हैं और ये सामने जो आप रोड देख रही हैं, ये रोड अक्सर जरा सी बारिश में भर जाया करता था, भारी जलभराव यहाँ पर होता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि रात भर से बारिश हो रही है और यहाँ बिल्कुल भी आपको सड़क पर पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वाटर लॉगिंग नहीं है, जलभराव नहीं है। और जलभराव नहीं है तो यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी काफ़ी स्मूथ आपको दिखाई पड़ेगा। जो बाईं तरफ की रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर अक्सर हल्की सी बारिश के बाद भी ये बिल्कुल लबालब भर जाती थी, बाइक वालों का निकलना बिल्कुल आफत बन जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि ये मेहनत है दिल्ली सरकार की, या जो भी आप कहें, इस बार यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। और दिल्ली सरकार खुद भी अपनी तरफ से तस्वीरें जारी कर रही है उन पॉइंट्स की, उन इलाकों की, जो इलाके लगातार बारिश के पहले नज़र में रहते थे कि यहाँ पर जलभराव होता है, इस पर कैसे काम किया जाए। और अब उन्हीं इलाकों में जो जलभराव नहीं हुआ है उसकी तस्वीरें दिल्ली सरकार लगातार शेयर कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये एक बड़ी उपलब्धि आप मानिए बारिश के वक्त, क्योंकि ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका नोएडा को और दिल्ली के पूर्वी इलाके को कनेक्ट करता है लुटियन से, यानी कि उस इलाके से जहाँ पर तमाम मंत्रालय हैं, ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं। तो ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण होता था, लेकिन इस इलाके में जलभराव ना होने से इस बार आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं कि सड़क देखिए बिल्कुल आपको एक तरफ जो सड़क है वो खाली दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ रेड लाइट है अभी, इसलिए गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो ये जब जलभराव नहीं होता है तो ट्रैफिक भी कितने स्मूथ तरीके से चल सकता है बारिश में भी, वो भी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली वालों के लिए ये बहुत पॉजिटिव तस्वीर, और ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। लेकिन बारिश की हम बात करें तो कल रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर के लिए कि आज दिन भर।
0: जी बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जरा मुंबई से तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बारिश की?
2: देखिए जो सबसे बड़ी अपडेट इस समय मुंबई से देखी जा रही है वो ये है कि रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से हटा दिया गया है। आज येलो अलर्ट पर मुंबई चल रही है। कल शाम से ही बारिश जो है पूरी तरह से रुक गई है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर लगातार 9 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और लगभग कमर तक पानी भर चुका था, वो आज पूरी तरह से पानी हट गया है और सड़क पूरी तरह से सूखी हो गई है। हर कोई समय पर अपनी मंजिलों की तरफ पहुंच रहा है। फिर यहां चाहे मुंबई के लोकल की बात हो या फिर सड़कों की बात हो या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा किए गए उन सारे चीजों की बात हो, कामों की बात हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली नजर आ रही है। गुड न्यूज है एक बहुत बड़ी कि कहीं ना कहीं एक राहत जो है बारिश से मुंबई करों को मिली है। आप थोड़ा तस्वीरों में देखें किस तरीके से बच्चे जो हैं वो स्कूल ड्रेस में स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस का यहाँ पर वेट भी हो रहा है और अब ये सब पढ़ेंगे क्योंकि 8-9 दिन से जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, न केवल सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बल्कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया था। आज से वो सारी चीज़ें शुरू कर दी गई हैं और हर कोई जो है अपने काम पर अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहा है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई करो के मोबाइल पर एक संदेश जरूर जारी किया गया है, भेजा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कल से लेकर लगातार 3-4 दिनों तक वापस से मूसलाधार बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि खुद का और अपने परिवार का आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, राहत देने वाली खबर है। मुंबई कर जिस तरह से परेशानियां झेल रहे थे, अब आखिरकार बारिश यहां पर रुक चुकी है और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। गुड न्यूज आपने तो दे दी। मनीष जी, जिस तरह से यहां पर लगातार बारिश हो रही है, आगे के दिनों के लिए अभी क्या कुछ अलर्ट या फिर मौसम को लेकर क्या कुछ अनुमान IMD की ओर से जताया गया है?
1: देखिए अभी आज और 10 तारीख यानी कल के लिए जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट, और कहा यह जा रहा है कि इस बीच लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश लगातार होती रहेगी, चाहे वो रुक रुक कर हो, तेज हो, धीमी हो, मतलब बारिश से अभी फिलहाल कोई बारिश पर ब्रेक लगने वाला नहीं है। 10 तारीख के लिए ये कहा गया है कि आप तब तक ऐसे ही आपको ऐसा सफ़र करना पड़ेगा, हालांकि उसके बाद जो बारिश की रफ्तार है वो थोड़ी कम होगी, धीमे होगी। और जिस तरह से मानसून के बारे में पहले ही कहा गया कि मानसून इस बार बहुत अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि बारिश आने वाले दिनों में कम हो, लेकिन फिलहाल आज के लिए और कल यानी 10 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली NCR वालों को भी।
0: जी मनीष, इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से बारिश हो रही है आने वाले कुछ दिनों तक, जैसा आपने बताया बारिश जारी रहेगी, इसकी वजह से एक अच्छा एस्पेक्ट ये भी है कि अब जो हवा है वो साफ हो चुकी है और दिल्ली वाले जो इस परेशानी से लगातार जूझते रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है।
1: बिल्कुल, आप दिल्ली के लिए इससे बहुत बड़ी खबर मानी, क्योंकि अमूमन आपको दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना साफ दिखाई नहीं पड़ता है। अभी भी अगर मैं आपको आसमान दिखाऊं तो काले बादलों को छोड़कर आपको जो पूरी स्काई लाइन है वो साफ दिखाई पड़ेगी। अमूमन ये स्काई लाइन अब साफ नहीं दिखाई पड़ती है। 100 मीटर 200 मीटर के बाद जो बिल्डिंग है वो भी आपको कई बार ऐसे हालात बनते कि दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमूमन जब अक्टूबर से जनवरी के बीच का जो महीना होता है, जब सर्दियाँ होती हैं, जब दशहरा होता है, दिवाली होती है, उस बीच जब पोल्यूशन अपनी पीक पर होता है, तब भी हम उम्मीद ये लगाते हैं कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे इस पोल्यूशन से राहत मिल जाए। मतलब बारिश सबसे बड़ा कारक होता है जो आपको पोल्यूशन से मुक्ति दिला सकता है। दिल्ली NCR में जो लगातार AQI है वो 250-300 के ऊपर ही रहता है, लेकिन अभी की मैं बात करूँ इस वक्त ही, तो आप देखिए कि दिल्ली का जो AQI है वो महज 48 पर आ गया है, ग्रीन हो गया है, कंडीशन गुड दिखाई पड़ रही है। ऐसे हालात बहुत कम होते हैं दिल्ली में, ऐसी हवा, ऐसी साफ स्काई लाइन बहुत कम देखने को मिलती है। तो ना सिर्फ आप गर्मी से राहत मिल रही है बल्कि साफ हवा भी इस वक्त लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं।
0: तो देखिए दिल्ली से तो हमें मनीष ने गुड न्यूज दे दी है। दिल्ली में AQI कम हो चुका है, ग्रीन पर आ चुका है, 48 हो चुका है। मुंबई के क्या हाल हैं जरा बताइए धर्मेंद्र।
2: देखिए मुंबई से जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो ये भी बाहर निकल कर आ रही है कि जो 7 झीलें मुंबई और महाराष्ट्र में पानी सप्लाई करती हैं वो लबालब भर चुकी हैं। इंद्र देवता इस कदर प्रसन्न हो गए कि जैसे भीषण गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इंद्र देवता 13 दिन बाद देरी से आए हैं, बारिश 13 दिन बाद देरी से मुंबई में आई है, लेकिन जैसे ही आई मूसलाधार बारिश आई और कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। मैं आपको बताऊं कि यहां का पास का एक पवई झील है जो मुंबई के सभी कारखानों में पानी सप्लाई करता है, वो जरूरत से ज्यादा भर चुका है। इसके अलावा वैतरना, सतना, इस तरह से 7 झीलें हैं जो मुंबई को पानी पीने के लिए सप्लाई करती हैं, वो भी सारी भर चुकी हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये एक गुड न्यूज मिली है जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि मुंबई एक साल तक अब आराम से पानी पी सकेगी। लेकिन जो साफ तस्वीरें हैं वो ये है कि जिस तरीके से लगातार पानी भर जा रहा था, जल भराव कई जगहों पर देखा जा रहा था, यातायात में तकलीफें आ रही थी, लाइफलाइन लोकल में तकलीफें आ रही थी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, वो सभी अब खुल चुके हैं। और फिर से एक बार तस्वीरों में देखें, पूरी तरह से सड़कें जो हैं सूख गई हैं। एक अपडेट और है कि वाकई में रियलिटी तो ये भी है कि आज सुबह से ही थोड़ी बहुत गर्मी भी महसूस हो रही है। आप खुद देख सकते हैं कि इस समय मेरे भी माथे पे पसीना है और मेरी तरह सभी के हैं। और आप देखें यहाँ पर कुछ लोग हैं खड़े हुए हैं जो अपने मंजिल पे अपने ऑफिस और काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। किसी के भी हाथ में आपने देखा होगा छतरी नहीं दिख रही है और हर कोई जो है तैयारी से निकला हुआ है और उन्हें पूरी तरह से ये चीज पता है कि आज बारिश नहीं होगी। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से ये कहा है, अलर्ट दिया है कि आज रात से फिर से एक बार मूसलाधार बारिश लगातार 3 दिनों तक होनी है, चेतावनी दी गई है, उसके तहत मुंबई कर जो है उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के तैयारियां कर रखी है। खास बात यह भी है कि यहाँ के जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, यहाँ की सरकारी भी जो ऑफिसेज हैं, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज को ये कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप अपने घर से ही काम कर सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कर सकते हैं। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ ये मुंबई का उपनगर मुंबई है और असलफा मेट्रो स्टेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुंबई कई विभागों में बंटी हुई है जिसमें टाउन मुंबई आती है और उपनगर मुंबई आती है और यहाँ पर तो जल भराव के तुरंत बाद ही बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से इतनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि जल भराव होने के तुरंत ही 1 घंटे बाद पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये भी है कि थाने जिले, पासका और पालघर में इस कदर बारिश हुई है कि कमर से ज्यादा पानी हो गई थी। लगातार 2-3 दिन तक उनकी बिजली भी कट गई थी और आप समझ सकती हैं कि अगर बिजली नहीं मिलती है तो किस तरह की परेशानी आएगी। घर में तो लाइट होगी नहीं, काम भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कल रात से ही बारिश नहीं आ रही है और जितनी भी कंपनियां उन्होंने अपने तरीके से काम किया, अब बिजली की सप्लाई पालघर और थाने जिले में हो गई है, जिनमें विरार, नाला सोपारा, वसई, भाईंदर, मीरा रोड जैसे इलाकों के नाम शामिल हैं। और आज कहीं ना कहीं हर कोई बड़ी ही खुशी से अपने मंजिलों की तरफ निकला है, अपने काम की तरफ निकला है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि जो छूटे काम है लोगों के वो आज सभी अपने कर लेंगे। जी,
0: तो जिस तरह से आपने कहा कि माथे पर पसीना है लेकिन राहत की सांस यहाँ पर मुंबई कर जरूर ले पा रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से हमें गुड न्यूज मिल चुकी है। फिर चाहे दिल्ली हो जहां पर वाटर लॉगिंग कम हो चुकी है, आबोहवा साफ हो चुकी है, AQI कम हो चुका है, और वही दूसरी ओर मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर वाटर लॉगिंग नजर नहीं आ रही है और बारिश अभी रुक चुकी है। तो कुछ ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें NCR में मौसम की अब फुहारों ने सुहाना मौसम बना दिया है। कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज बौछारें हैं और रात भर बारिश के बाद अभी भी बदरा बरस रहे हैं, जिसके कारण पूरी दिल्ली और NCR के इलाके बारिश के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश के कारण आवाजाही में कुछ दिक्कत जरूर है, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल भी आज बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो।

तो दिल्ली में बारिश झमाझम हो रही है। आपको बता दें दिल्ली में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई इलाकों में रात भर से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और उमस से राहत मिली है। अभी तक दिल्ली में सामान्य से अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ये भी सलाह दी जा रही है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी जरूर देख लें और उसके बाद ही घरों से बाहर निकलें।

तो देखिए तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फिर चाहे दिल्ली से हमारे संवाददाता हूँ या फिर मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र और मनीष, आप दोनों का तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: But Raah Sachai Ki, Raat 9 Baje.
3: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
4: Aur durbhagya kehta hai
3: ki bhagya kahin dur nahi.
2: Avishwas mein vishwas basta hai.
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है.
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में दही है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
3: भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
2: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जराफ का जुगाड़ मोड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए। कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: दिल्ली NCR में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, जगह जगह जल जमाव के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार में अगले 3 घंटे होगी जबरदस्त बारिश, अलर्ट पर राहत और बचाव तक।

0: चंडीगढ़ में मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से मिली राहत। सुखना लेक पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मैन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहू।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: राजधानी में मानसून की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के तुगलकाबाद में सुबह से हल्की बारिश जारी, बारिश के बाद दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने के लिए मिला। बादलों की चादर, ठंडी हवाओं ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में पूरी रात बरसे बदरा, आज सुबह भी बूंदाबांदी से मौसम बना हुआ है खुशनुमा। मानसून की बारिश से दिल्लीवासियों के खिले चेहरे, ठंडक भरे मौसम के साथ राजधानी में अब सुहाने मौसम का एहसास।
2: मानसून की बारिश के बीच केदारनाथ धाम में दिव्य प्राकृतिक नजारा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हिमालय की वादियों में बादलों और कोहरे से घिरे केदारनाथ धाम में रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1,500 श्रद्धालु। अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट, तीर्थयात्रियों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश। बद्रीनाथ में बारिश में भारी दिखी श्रद्धालुओं की आस्था, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वहीं 11 लाख रुद्राक्ष की मालाओं और डमरू से होगा केदारनाथ धाम मंदिर का भव्य श्रृंगार। वडोदरा का संस्थान कर रहा है विशेष तैयारी।
0: महादेव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज। भक्तों को सुलभ दर्शन करवाने के लिए इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार। उत्तराखंड में जोशीमठ एनटीपीसी की तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता मिली, हेड रेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया गया। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फेज 2 और फेज 3 से बनाई जा रही सुरंगें आपस में जुड़ी, निर्माण कार्य में तेजी आने से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। सम्राट कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगाई, पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा भुसोला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। इस परियोजना पर लगभग 348 करोड़ की आएगी लागत। एम्स पटना के विस्तार से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं का होगा विस्तार।
2: डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया पिनाका का सफल परीक्षण, 7 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से किया गया है इस रॉकेट का परीक्षण। रॉकेट ने योजना के अनुसार अपने सभी इनफ्लाइट करतब दिखाए, साथ ही अनुमानित ट्रेजेक्टरी का सटीक पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर एकदम सटीक प्रहार किया। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग का ऐलान किया, इस लिस्ट में ईशान किशन अभी नंबर 1 पर काबिज। ईशान के अलावा टॉप 1 में दो भारतीय खिलाड़ी और हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर और तिलक वर्मा छठे नंबर पर।
0: सौरव गांगुली की बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक जारी। गांगुली के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया ये पोस्टर, लॉर्ड्स सेलिब्रेशन लुक की पहली झलक देखी गई। रहो मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर आउट हो गया है, 17 जुलाई को रिलीज होगी। रोमांस मिस्ट्री सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई ये फिल्म। प्रज्वल देवराज और राज बी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग अयोध्या में शुरू, अनुपम खेर ने शेयर की पोस्ट, लिखा है श्री राम मंदिर जाकर रामलला से लिया आशीर्वाद। अभी खत्म नहीं हुई कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने किया अपडेट, कांतारा 2 पर काम जारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: बच्चे सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: दिल्ली एनसीआर में जमकर हो रही है बारिश, गर्मी से मिली राहत, हवा भी हुई साफ, एक्यूआई 43 तक पहुंचा, 12 जुलाई तक बरसते रहेंगे बादल।
0: इस साल हाईटेक तरीके से होगी कांवड़ियों की सुरक्षा, एआई से की जाएगी रूट की निगरानी, पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू की।
2: मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, कई समझौतों पर लगी मुहर, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता।
0: 18 जुलाई को दिल्ली में भारत मंडपम में रिलीज होगा फिल्म रामायण का ट्रेलर, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट रहेगी मौजूद।
2: और वहीं आज भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच, ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मुकाबला, सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया।
0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं फिल्मी सफर के साथ, और सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर 18 जुलाई को भारत मंडपम में रिलीज किया जाएगा,
2: जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर समेत रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ ही फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट भी शामिल होगी। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड बजट में बन रही रामायण रिलीज के बाद कमाई के कई रिकॉर्ड बना सकती है, और शुरुआत रामायण पार्ट वन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स से हो चुकी है, जिसे कि रिकॉर्ड 350 करोड़ रुपए में करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने खरीदा है।
3: जुलाई इस तारीख को नोट कर लीजिए। क्योंकि इस तारीख को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अब तक टीजर में राम का दमदार अंदाज दिखा है, रावण की हल्की सी झलक दिखी है, और अब ट्रेलर में रामायण पार्ट वन के विस्तार में झलक दिखेगी। लॉन्च के लिए रामायण के मेकर्स ने भव्य इवेंट प्लान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण पार्ट वन का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर शामिल होंगे। हालांकि रावण का किरदार निभा रहे यश और हनुमान बने सनी देओल के शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मेकर्स इस फिल्म की मदद से इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और इसलिए भी भारत में ट्रेलर रिलीज के 4 दिन पहले इसे अमेरिका में लॉन्च करने की प्लानिंग है। मुमकिन है 14 जुलाई को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक भव्य इवेंट में रामायण पार्ट वन का फुल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। रामायण पार्ट वन के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही मेकर्स इसका फुल स्केल प्रमोशन कैंपेन शुरू कर देंगे, यानी फिल्म की रिलीज से करीब 3.5 महीने पहले, क्योंकि फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में जहां ट्रेलर को फिल्म के रिलीज से हफ्ते 2 हफ्ते पहले लॉन्च करने का ट्रेंड चल पड़ा है, वहां रामायण के मेकर्स बॉलीवुड के पुराने फॉर्मूले पर चलते हुए ट्रेलर को 3.5 महीने पहले रिलीज करने जा रहे हैं। नमित मल्होत्रा एंड टीम चाहती है कि बड़े स्केल पर बनाई जा रही फिल्म के ट्रेलर को थोड़ा पहले रिलीज किया जाए, ताकि ये फिल्म देश विदेश में चर्चा में बनी रहे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रामायण पार्ट वन के पोस्ट प्रोडक्शन पर इन दिनों काम चल रहा है, जबकि रामायण पार्ट टू की शूटिंग की जा रही है। खबर ये भी है कि रामायण पार्ट वन के इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिकॉर्ड प्राइम पर बिके हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने ये राइट्स 350 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी रकम है। अब तक ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म किंग के नाम था। पेन मरुधर ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट 250 करोड़ रुपए में खरीदे थे। हालांकि दोनों फिल्मों के बजट में भी भारी अंतर है। दो पार्ट में बन रही रामायण पार्ट वन का बजट जहां 2000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और दोनों पार्ट का बजट 4000 करोड़ से भी ज्यादा है, वही किंग का बजट 350 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। महाकाव्य की तरह ही रामायण का कैनवस काफी विशाल है। रामायण में हाई ऑक्टेन विजुअल्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जो बड़े पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों, तकनीकों और इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है रामायण के मेकर्स का पूरा जोर इस पौराणिक गाथा को भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराना है और इसके लिए ना तो तकनीक आड़े आई है और ना बजट। उम्मीद है कि रामायण पौराणिक कथाओं को लेकर भारतीय सिनेमा के नजरिए को फिर से प्रभाषित करेगी। फिलहाल तो इंतजार इसके ट्रेलर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब बात करते हैं हुमा कुरैशी की, जिनकी फिल्म बेबी डू डाई डू कश्मीर में बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जिसे देखते हुए हुमा कुरैशी फिल्म के स्टार कास्ट के साथ कल श्रीनगर पहुंची और दर्शकों से मिल रहे प्यार के लिए उन्हें थैंक यू किया। फिल्म को क्रिटिक्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। बावजूद इसके अल्फा के साथ रिलीज हुई बेबी डू डाई डू को बॉक्स ऑफिस पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है।
4: बेबी डू डाई डू को मिल रहे शानदार रिस्पांस के बीच इसकी लीड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी श्रीनगर पहुंची, साथ ही भाई और फिल्म के को प्रोड्यूसर साकिब सलीम, डायरेक्टर और पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। कश्मीर के आईनॉक्स श्रीनगर मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए हुमा कुरैशी ने थिएटर जाकर दर्शकों को सरप्राइज दिया और फिल्म को प्यार देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वैसे भी हुमा कुरैशी अक्सर कश्मीर जाती रहती है, क्योंकि धरती की जन्नत कहलाने वाला कश्मीर उनका ननिहाल भी है। बचपन के काफी दिन उन्होंने श्रीनगर में गुजारे हैं, इसलिए श्रीनगर से उनका खास लगाव है।
5: Say thank you to Kashmir because our film is playing over here and we're getting so much love. तो हम खुद आके आपको thank you बोलना चाहते थे, शुक्रिया बोलना चाहते थे। And this is our ननिहाल, you know my mama's from here. So whenever we come here, Saqib and I both we get so much love and we had to bring our entire cast, our director, our team, our castmates, ताकि वो भी देखे कि कश्मीर से उनको कितना प्यार मिल रहा है, आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं। So thank you so much.
4: जहाँ तक हुमा कुरैशी की फिल्म का सवाल है, तो 6 दिन पहले उनकी फिल्म आलिया भट्ट की अल्फा के साथ रिलीज हुई थी। जाहिर है बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला तगड़ा था। सिनेमाघरों में अल्फा और अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी की वजह से इसे बेहद कम शोज मिले हैं, जिसका खामियाजा फिल्म के कलेक्शन के रूप में सामने आ रहा है। ट्रेन ट्रैकर सैकन्यूज के मुताबिक बेबी डू डाई डू ने 6 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए के करीब है। इस लिहाज से लागत निकालने के लिए ही फिल्म को अभी 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। जाहिर है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बावजूद सीरीज शो की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। समीक्षकों ने फिल्म के डार्क सस्पेंस से भरे प्लॉट और हुमा कुरैशी की बिना बोले दमदार एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। क्रिटिक्स ने इसे औसतन 3 से 4 स्टार की रेटिंग दी है। समीक्षकों का मानना है कि हुमा कुरैशी ने बेबी कर मर कर के रूप में अपने करियर की सबसे बेहतरीन और दमदार परफॉर्मेंस दी है। गूंगी और बहरी होने के बावजूद उनके भाव बहुत असरदार रहे हैं, लेकिन असल सवाल है फिल्म की कमर्शियल सक्सेस का, तो इसकी राह थोड़ी कठिन नजर आती है, क्योंकि कल से इसे अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म धमाल 4 से भी मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: तो वही महेश बाबू का फिल्म वाराणसी से भगवान राम वाला कथित फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस तस्वीर ने फैंस के बीच अब नई बहस, अलग अलग थ्योरीज और कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या है इस वायरल तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
6: सिर्फ एक तस्वीर और पूरा इंटरनेट हिल गया। जी हाँ, महेश बाबू की एक कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैसे राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म वाराणसी में भगवान श्री राम के लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। फैंस लगातार इस तस्वीर पर अपनी राय दे रहे हैं और तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वायरल तस्वीर में महेश बाबू पीले रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भगवान राम के वनवास वाले लुक से प्रेरित हैं। तस्वीर में उनके आसपास फिल्म की टीम भी दिखाई दे रही है, जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शूटिंग के दौरान की फोटो हो सकती है। हालांकि फिल्म की टीम या महेश बाबू की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद महेश बाबू के लुक की तुलना रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक से भी की जा रही है। रणबीर कपूर निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों सितारों के लुक को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं कुछ लोग इस तस्वीर को असली मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ फिल्म का प्रचार करने का तरीका हो सकता है। कई लोग इसे पीआर स्टंट भी बता रहे हैं। इधर फिल्म वाराणसी को लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल एक कार्यक्रम में एसएस राजामौली ने महेश बाबू के भगवान राम वाले लुक को लेकर एक दिलचस्प बात भी बताई थी। जब महेश बाबू पहली बार भगवान राम के गेटअप में फोटो शूट के लिए आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। महेश में श्री कृष्ण जैसी आकर्षक छवि है, लेकिन उनके चेहरे पर भगवान राम जैसी शांति भी है। मुझे उनका लुक इतना पसंद आया कि मैंने उस तस्वीर को कुछ समय के लिए अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी बना लिया था। बाद में उसे हटा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वे लंबे वक्त बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे। फैंस का मानना है कि वे कुंभकर्ण से जुड़ा कोई दमदार किरदार निभा सकते हैं। फिलहाल वाराणसी साल 2027 में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म के आने में भी वक्त है और उससे पहले ही सिर्फ वायरल तस्वीर ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन भी नहीं कर पाते, जहां हर रोज इस फिल्म की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए, फिल्मी सफर के बाद अब आपको आस्था के सफर पर लेकर चलते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना कर ली है और माना जा रहा है कि पिछले 4 दशकों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है।
2: यात्रा के लिए उत्साह ऐसा है कि अगले कई दिनों तक के लिए रजिस्ट्रेशन फुल है और प्रशासन लोगों से इंतजार करने की अपील कर रहा है।

0: ये आस्था का सैलाब है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भीड़ है पर हर कोई अपने आप से छूटा हुआ है। मन में बस एक उमंग, बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचना है। बस एक चाह कि महादेव के दर्शन से जीवन धन्य करना है। बस एक गूंज है बम बम भोले की, बस एक उद्घोष है हर हर महादेव। बालटाल हो या पहलगाम रूट, दोनों ही मार्ग पर शिव भक्तों की रौनक है। कोई घोड़े या खच्चर पर सवार है तो कोई पालकी पर, तो कोई मस्त मगन पैदल चलते हुए दर्शन के लिए दौड़ा चला जा रहा है। बेस कैंपों पर तो जैसे उत्सव का माहौल है। बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
1: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कबूतर के पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
2: ये यात्रा कैसी रही, इतनी लंबी यात्रा?
1: बहुत अच्छी रही यात्रा, सब तो यात्रा को हम चलते हैं यात्रा की।
3: जी मेरा नाम गगनराज दावत है, मैं इंदौर शहर से हूँ। हम लोग आए थे दर्शन करने, साथी लोग, हम एक ग्रुप के हैं। हम बाबा के यहाँ दर्शन करने गए थे, बहुत ही बढ़िया सुकून मिला हमको बाबा के दर्शन करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा सबको ही दर्शन दे रहे।
0: हालांकि अमरनाथ गुफा में बर्फ का बना प्राकृतिक शिवलिंग 90% पिघल चुका है, यानी बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन शिव भक्तों की आस्था तो बाबा से जुड़ी है। इसलिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का जोश जस का तस है।
4: यात्रियों में दिन प्रतिदिन बाबा अमरनाथ के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। 10,000 लोग हैं जत्था में और बहुत उत्साह है भगवान के प्रति और सब लोग चाहते हैं भगवान के दर्शन मिले हम लोगों को। बाबा के जब शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे तो हम लोगों को यह मन में है कि हम बाबा की गुफा तक ही पहुँचे, बाबा के स्थान तक पहुँचे और वहाँ बाबा को प्रणाम करके आए। सब
5: सुना है कि बाबा भोले शंकर की जो स्वरूप है वो लुप्त होता जा रहा है, पर भक्तों की आस्था है, भक्तों का एक विश्वास है, हमें वहाँ दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और हम अपनी आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहाँ बाबा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे और जा रहे हैं।
6: मायूस होने की जरूरत नहीं है, देखो महादेव तो कन कन में है। एक ये उन्होंने अपना स्वरूप उठाया था वहाँ पे, ठीक है, जो अमर कथा सुनाई थी गुफा में, जगह मगर वहाँ पर शिवलिंग स्तम नहीं है, लुप्त हो चुका है, बाबा जी अंतर ध्यान हो चुका है। उस जगह महत्ता तो है जहाँ माता पार्वती जी ने भोले बाबा से अमर कथा सुनी, अमर कबूतर है वहाँ पर। जो मैं मानता हूँ, जो हमारा मानना है, शिवलिंग की महत्ता तो है ही है, उस जगह की महत्ता बहुत ज्यादा है जहाँ पर भोले बाबा ने अपना आसन दिया।
0: यूं तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है चाइल्ड केयर सुविधा। असल में 13 साल से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा कारणों से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे में कई श्रद्धालुओं के सामने बच्चों की देखभाल को लेकर परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पहली बार बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में विशेष चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल में छोड़कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं।
7: ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों के केयर के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था होनी?
8: चाइल्ड केयर जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग, महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास है तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे तो 2-3 बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को, अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का जोश कैसा है, इसे इस बात से समझिए कि अगले कई दिनों तक के सभी पंजीकरण स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वे फिलहाल यात्रा पर ना आएं और नए स्लॉट उपलब्ध होने का इंतजार करें। बालटाल से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इस बीच रथ यात्रा उत्सव के तहत काकतपुर के देवली मठ में भगवान के लिए अनसर फल भर रस्म निभाई गई है। इसके तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्द ही ठीक होने की कामना के साथ भक्तों ने उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद भेजा है।
10: और देखिए, अगले हफ्ते 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकलेगी। इसे लेकर भक्तों के अलावा रथ निर्माण से जुड़े कलाकार भी काफी भावुक हैं।

0: ऊंचा शिखर।
1: ये आस्था का वो रंग है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, सारे तर्क धरे रह जाते हैं, प्रेम भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एक सार होकर सुकून के एक झोंके की तरह वातावरण में घुल मिल जाती है। ये तस्वीरें पूरी रथ यात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की है, जिसके तहत काकतपुर के देउलीमठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए जिस तरह से बैलों और बैलगाड़ी की साज सज्जा की गई है, सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही हैं, जिस तरह भाव विभोर महिलाएं बार बार धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार, उनके आराध्य देव नहीं बल्कि मीठे रिश्तों की डोर से भी बंधे हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में केवल फल नहीं, उनका अगाध प्रेम, अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं, ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देउली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और

0: काकतपुर देवली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटूडिसला यानी जन्म स्थान माना जाता है। ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल फूल तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है। तीनों रथ सज धज कर तैयार है, बस उन्हें अंतिम टच दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। अब बस इंतजार 16 जुलाई की उस तारीख का है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीनों की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ और अन्य देवी देवता मौसीबाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे सजाया और संवारा जा रहा है। यहां भी पुरी की तर्ज पर ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सत्यजीत कुमार ने।
2: इस मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ, यहाँ पे भी जगन्नाथ भगवान, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो विग्रह है उसको हर साल उस मंदिर की स्थापना के बाद से यात्रा के तौर पे निकाली जाती है। भव्य मेला का आयोजन होता है और 500 मीटर की दूरी पे गुडियच्चा यानी मौसीबाड़ी है, भगवान के मौसी की का घर है, जहां वो 9 दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस अपने मंदिर में चले आते हैं जहां भक्तों को वो दर्शन देते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी तैयारियाँ जोरों पर है। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगा, उसके पहले कई कस्टमरी जो ट्रेडिशंस हैं उसको निभाया जाएगा, रिचुअल्स को निभाया जाएगा। उसके बाद भक्तजन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। पूरी के तर्ज पे ही यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, साथ ही साथ ये मंदिर जो है पूरी के तर्ज पे ही बनाया गया है, उसी का रेप्लिका माना जाता है। आस पास के राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं, जब जैसे उड़ीसा जो है वो, उसके अलावा बंगाल जो एडजॉइनिंग जो जिले हैं जो झारखंड से सटते हैं, वहां से लोग दूर दूर से आते हैं। मेले की तैयारियां जोरों पे है और भक्तों को भी अब मेले के आयोजन की का इंतजार है और 16 तारीख को भव्य पूजा और रथ को खींचकर मौसीबाड़ी तक पहुंचाने के लिए उनके नयन जो है वो बिल्कुल इंतजार में है और यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ेगा उस वक्त। और सिक्योरिटी को लेकर इलैबोरेट अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं कि कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वॉच टावर्स बनाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं, ड्रोन उड़ाए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट उस दिन ना हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।
1: वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद देखिए बिहार के एक जेल में मुक्ति वाली क्रांति।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
5: You hear it once and remember everything.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली NCR में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, तेज बारिश के बाद हवा में सुधार, आज दिल्ली का AQI 43। पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद। उत्तराखंड और हरिद्वार में आज और कल बारिश का रेड अलर्ट, IMD ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। चंडीगढ़ में मॉनसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से मिली राहत, सुखना लेक पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग। इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में AI का देगा मदद, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकरीबन 2500 CCTV कैमरों से होगी निगरानी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर PM मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत, PM ने कहा दोनों देशों के वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, आतंक के खिलाफ दोनों देश साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: जेल का नाम सुनते ही सजा और सलाखों की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर की एक जेल कैदियों को नई पहचान और नया हुनर भी दे रही है। यहां कैदियों के हाथों से तैयार किए गए मुक्ति ब्रांड के मसाले, सत्तू और दूसरे उत्पाद अब जेल की चार दीवारी से निकलकर बाजार तक पहुंच चुके हैं और लोगों की पसंद बन रहे हैं।
3: कहने को ये जेल है, लेकिन यहाँ मुक्ति की अनोखी बयार बह रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल इन दिनों अपने खास मुक्ति ब्रांड से पहचाना जा रहा है। बंदियों के हाथों तैयार किए गए इन उत्पादों ने न केवल अलग पहचान बनाई है, बल्कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट की डिमांड जेल से बाहर भी तेजी से बढ़ी है।
4: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद अब सेल से लेकर के मॉल तक पहुंचने लगी है और उसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी हो रही है, क्योंकि इसकी शुद्धता और गुणवत्ता दोनों बेहतर है। हमारे साथ जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या उत्पाद तैयार हो रहा है और उसका क्या रिस्पांस है।
5: ये मुख्यतः जो निर्माणशाला इकाई है, ये तो पूर्व से ही चला आ रहा है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में, परंतु इसका रिवाइवल जो हुआ है, विस्तारीकरण पुनः 2023 में इसका मुक्ति ब्रांड के नाम से हुआ है। तो वर्तमान में मेनली सभी तरह के मसाले, विभिन्न सामग्री बन रही हैं, जैसे मसाले हैं जो कि अभी हम लोग, और सरसों तेल जो कि मॉल में भी हम लोग यहाँ खादी मॉल में भी सप्लाई कर रहे हैं।
3: जेल के भीतर मुक्ति नाम की आर्थिक क्रांति ने कारागार के मायने बदल दिए हैं। यहाँ जेल के कैदी पूरी शुद्धता के साथ हल्दी, मिर्च, धनिया जैसे बुनियादी मसाले तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सत्तू, सरसों का तेल, साबुन और हाई क्वालिटी के लकड़ी के फर्नीचर भी जेल में तैयार किए जा रहे हैं।
5: रिस्पांस उसका शहर में भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसका इन्वेंट्री चेक करते हैं और यहाँ से इन्वेंट्री भिजवाते हैं, और अपने कैंपस में भी एक मुक्ति का आउटलेट है जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं खुद, और स्टाफ लोग भी परचेस करते हैं, परिजन आते हैं वो लोग करते हैं, कोर्ट के लोग भी आते हैं वो लोग भी करते हैं, तब तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है।
3: जाहिर है जेल के भीतर बन रहे इन उत्पादों का खुद में एक ब्रांड बन जाना एक शानदार कहानी के साथ शानदार पहल है। जेल में कैदियों की सोच को कैसे बदला जाए और रिहाई के बाद उन्हें कैसे आत्मनिर्भरता की राह पर लाया जाए, मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल उसकी एक मिसाल बनकर सामने आया है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे स्कूल में लेकर चलेंगे जो रंगों से सजा है। यहाँ पढ़ाई के साथ मधुबनी पेंटिंग सिखाई जा रही है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्कूल के शमशान घाट में ये प्रोग्राम चल रहा है, वही शमशान जिसे जिंदगी की आखिरी मंजिल माना जाता है, लेकिन यहाँ नई जिंदगी के सपने गढ़े जा रहे हैं।
6: चित्रकारी करते ये नन्हे हाथ सिर्फ रंग नहीं भर रहे बल्कि अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। कोई लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा उकेर रहा है तो कोई पक्षियों और प्रकृति को अपनी कल्पना के रंगों से सजा रहा है। इन रंगों में छिपी है आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। सबसे खास बात ये कि हुनर किसी आर्ट स्कूल में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के एक शमशान घाट में चल रहे अपन पाठशाला में निखर रहा है।
4: मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम शमशान घाट में चलने वाली अपन पाठशाला के बच्चों के बीच हम हैं और आज इसलिए हमारी मौजूदगी है कि तमाम बच्चे मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें सम्मान करने वाले लोग खरीदारी करते हैं तो इन बच्चों को कुछ आमदनी भी हो जाती है। क्या बनाई हो तुम?
7: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग तो बनाने आ गया?
7: आ गए।
4: तो एक चीज तो पढ़ाई के अलग भी एक चीज सीखने को मिला।
7: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा एक यही चीज भी सीखने को मिला है।
6: इस स्कूल में 28 बच्चे रोजमर्रा की पढ़ाई के साथ मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बच्चे राधा कृष्ण मछलियाँ मोर पक्षियों से जुड़े खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। इन पेंटिंग्स की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। लोग न सिर्फ बच्चों के बनाए चित्र खरीदते हैं बल्कि उन्हें सम्मानित भी करते हैं।
8: मधुबनी और मिथिला पेंटिंग इसलिए क्योंकि इन लोगों में पढ़ाई के साथ साथ इनकी सर्वांगीण विकास हो और इसका डिमांड भी आएगा। जैसे हमने एक दिन लगाया तो लोगों ने कहा कि जे सुमित जी ये जितने भी बनाएंगे आप हमें दे दीजिएगा, जितने आप कॉस्ट कहेंगे। हम कहे कि नहीं, इसके मालिक बच्चे हैं, जितना वह कॉस्ट कहेंगे आपको उतना देना पड़ेगा। वो कहे कि नहीं, हम बढ़ा कर देंगे। एक का 150-200 रुपया आया है ऐसा उनका, और 28 बच्चे इसमें सीख रहे हैं और यह सीख लेंगे तो इन्हीं का एक बैंक बना देंगे।
6: यहाँ ट्रेनिंग ले रहे बच्चे अभी पेपर पर पेंटिंग करना सीख रहे हैं, कल यही बच्चे बड़े कैनवस पर पेंटिंग करेंगे। इस स्कूल ने उन्हें सिर्फ एक कला नहीं सिखाई बल्कि अपनी संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी दिया है।
4: फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है आज, तो एक अलग चीज तुम सब बना रही हो।
9: बहुत खुशी हो रहा है।
4: बहुत खुश हो रहा है। क्या बनाई हो?
9: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग में क्या थीम है?
9: ये इसमें होता है जो इसमें कलर,
4: बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व का ये थीम है। आप देख सकते हैं सूर्य देव को अर्घ देती छठवर्ती का ये मधुबनी पेंटिंग है।
6: ये पहल बता रही है कि सही शिक्षा और सही हुनर मिल जाए तो हर मुश्किल जगह भी उम्मीदों की नई पाठशाला बन सकती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: लंच टाइम में आ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। कहीं रिमझिम बारिश है तो कहीं तेज बौछारें हैं। रात भर बारिश के बाद अब भी बदरा बरस रहे हैं, जिसके कारण पूरी दिल्ली और एनसीआर के इलाके बारिश के रंग में रंग गए हैं।
2: हालांकि बारिश के कारण आवाजाही में कुछ दिक्कत जरूर है, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतनी पड़ रही है। तेज बारिश के कारण नोएडा गाजियाबाद में स्कूल भी आज बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। वहीं गर्मी और उमस से राहत है तो लोग मौसम के इस हाल से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप में तप रही धरती को भी इस बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हरियाली में नई जान आ गई है, जिसकी साफ तस्वीर देखने को मिल रही है।
1: तो दिल्ली में बारिश के कारण क्या हाल हो गया है और मौसम विभाग का क्या अलर्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष।
3: रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने दिल्ली समेत एनसीआर, और सबसे ज्यादा जो असर होगा वो दिल्ली और हरियाणा में होगा। हालांकि मैं इस समय जो सेंट्रल दिल्ली में हूँ गोल मार्केट के आसपास, तो अभी जो स्पेल है ये मॉडरेट रेन है और ये मान के चलिए कि ये 100 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज की जा सकती है। हालांकि यही 100 मिलीमीटर की बारिश अगर एक दो घंटे में हो जाए तो चारों तरफ जल प्रवाह दिखेगा, सड़कें जो है सैलाब में बदल जाएंगी, लेकिन मॉडरेट रेन है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर जो दिखाई देगा वो गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गुरुग्राम के ज्यादा, खासकर पूर्वी और दक्षिण गुरुग्राम में ज्यादा दिखाई देगा, जिसके चलते हमने वो तस्वीरें देखी थी कि सैलाब बनी है। लेकिन आज चूंकि गाजियाबाद में छुट्टियां की गई और पूरा इलाका अगर आप देखें नई दिल्ली में, आमतौर पर हम देखते थे कि मॉनसून में एक सवाल उठता था कि मॉनसून आया, बारिश कहां चली गई। संभवतः अगले 24 से 36 घंटे वो समय होगा जब कोई इलाका नहीं बचेगा, जबकि दिल्ली एनसीआर का पूरा जो कवर है, ये 40 किलोमीटर की परिधि दिल्ली से, वहां लगातार बारिश होगी। और लगातार बारिश का मतलब हर उस इलाके में स्पेल होगा, कहीं लाइट रेन होगी, मॉडरेट, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भारी से भारी वर्षा हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि बहुत ज्यादा जो आसमान में बादलों का डेरा है वो बहुत घना है और कुछ क्लस्टर पे इतने ज्यादा है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में इसीलिए छुट्टियां और मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सड़कों पर अगर जल जमा हुआ तो एक तो ट्रैफिक की समस्या होगी और दूसरा मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए गाजियाबाद में एहतियात के कदम उठाए गए हैं, नोएडा में भी एहतियात के कदम उठाए गए हैं, गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर के लिए मुश्किलें ज्यादा हो सकती है, खासकर हरियाणा में। और ये जो बारिश का असर है ये चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत इन इलाकों को भी अपनी चपेट में लेगा, वहां भारी बरसात। तो रेड अलर्ट अगले 36 घंटे दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए।
2: वही बात अगर चंडीगढ़ की करें तो बारिश की फुहारें वहां भी पड़ी है, लेकिन मॉनसून के रंग में आने का अभी इंतजार है। हमारी संवाददाता बता रही है वहां के मौसम का हाल, देखिए।
4: गर्मी से बड़ी राहत मिली है पिछले 48 घंटे में। हम इस वक्त हैं सुखना लेक, जो कि आइकॉनिक स्ट्रक्चर है चंडीगढ़ का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन उसी बीच में अगर आप यहाँ पे मौसम की बात करें तो मौसम काफी सुहावना हो चुका है। 33 डिग्री के पास बताया जा रहा है और एक दो डिग्री और बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक जरूर दिया है, लेकिन ये कुछ स्पेल्स हैं जो कि दिन में आते हैं, यानी गरज के साथ जो छींटे हैं वो लगातार पड़ते रहते हैं, लेकिन वैसी बारिश नहीं हो रही जहां पे फुल फोर्स मॉनसून का आता है, तो उसका आगाज अभी भी उसका इंतजार किया जा रहा है। और उसी बीच में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो वॉकर्स हैं, कई लोग हैं जो कि अब लुत्फ उठाने के लिए वॉक कर रहे हैं सुखना लेक पर अपने आप में पारा जरूर लुढ़का है, राहत मिली है गर्मी से, लेकिन उसी के साथ जो ह्यूमिडिटी लेवल है, यानी जितनी उमस है वो लगातार बढ़ी है। और इसी बीच में चंडीगढ़ वाले इंतजार में है कि मॉनसून जल्द से जल्द आएगा। पंजाब में अभी भी ज्यादातर जगहों पर बारिश पहुंची नहीं है। हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से जल भराव हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, रेवाड़ी के कई इलाकों में हुआ है, तो अभी फुल फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 11 और 12 तारीख तक इस तरह का तापमान भी रहेगा और इसी तरह ही की बरसात का बुछार भी रहेगा। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़।
1: मॉनसून की मेहरबानी तो हुई है, लेकिन इस दौरान हो रही बारिश में आपके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मॉनसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों से आपको अपना बचाव कैसे करना है।
5: प्रिवेंशन, मैं कहूंगा कि प्रिवेंशन ही तरीका है। हमें पता है कि ये सारी बीमारियां हैं पानी के थ्रू ही फैलती है, चाहे वो टाइफाइड हो, अगर साफ सुथरा खाना या पानी आप नहीं पी रहे हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है। जो जितने तरह के डायरिया होते हैं, अगर आप अपने हाथ का हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ पानी नहीं पीते, साफ खाना नहीं खाते हैं, मक्खियां आपके घर में ज्यादा हैं, खुले आप खाना आप खुले माहौल में रखते हैं जिसपे मक्खियां बैठी, ऐसे सिचुएशन में ये बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो चाहे हेपेटाइटिस ए हो, ई हो, टाइफॉइड हो, कॉलरा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जो डायरिया होते हैं वो हो, ये सब कुछ जो है आपके हाइजीन से लिंक्ड है। जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब मच्छरों को अगर आप पनपने से रोक सकते हैं तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो हर सीजन में हमें पता है कि हम बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसमें मच्छर होंगे, हमारा पीने का पानी कॉन्टेमिनेट होगा, हमारा खाना कॉन्टेमिनेट हो सकता है, और इन्हीं चीजों के थ्रू ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं। तो अगर आप हाइजीन का ध्यान रखें, आपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर न पनपने दें, मक्खियों को आप अपने घर में ना आने दें, खाने को ढक के रखें, साफ सुथरा पानी पिए, तो अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन जो अपने घर में रख सकते हैं वो एक प्रिवेंशन का तरीका, अगर आप ये जो जिसकी भी मैंने बात की कि साफ सुथरा रखें घर को, पानी इकट्ठा ना होने दे, मच्छरों को ना पनप दे, साफ पानी पिए, तो ये अपने आप सुरक्षित रहेंगे, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बीमार पड़ गए ध्यान रखने के बावजूद, तो पहले 72 घंटे तक आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, पैरासिटामोल जो है बुखार के लिए, अपने हाइड्रेशन ठीक रखें, आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, कोई भी वार्निंग साइन हो जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है, पेशेंट का बीपी नीचे जा रहा है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ कोई लोग हो, कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो, कोई छोटा बच्चा हो, ऐसे लोगों में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर 72 घंटे से ज़्यादा अगर बीमारी परसिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से मिले, जो भी रेलिवेंट टेस्ट है डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे एडवाइस करेगा और उसके हिसाब से ट्रीट करेगा। मैं कहूँगा कि 24 घंटे के बुखार में आप सीधा एंटीबायोटिक हम शुरू करने की जो टेंडेंसी है वो अवॉइड करें। यूजुअली ये बीमारियां जो होती हैं मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होंगी, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे आपका मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, इन सब में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बाकी डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है, जिसमें सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है।
2: चलिए इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: दिल्ली NCR में लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा रेड अलर्ट। तेज बारिश के बाद हवा में सुधार, आज दिल्ली का AQI 43। पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि। अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद। उत्तराखंड और हरिद्वार में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। IMD ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की अपील की, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। चंडीगढ़ में मॉनसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से मिली राहत, सुखना लेक पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग। इस साल कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में AI करेगा मदद, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकरीबन 2500 CCTV से होगी निगरानी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कहा दोनों देशों के वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, आतंक के खिलाफ दोनों देश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: राजधानी में मॉनसून की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के तुगलकाबाद में सुबह से हल्की बारिश जारी, बारिश के बाद दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। बादलों की चादर और ठंडी हवाओं ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी, दिल्ली में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में पूरी रात बरसे बदरा, आज सुबह भी बूंदाबांदी से मौसम बना हुआ है खुशनुमा। मॉनसून की बारिश से दिल्ली वासियों के चेहरे खिले, ठंडक भरे मौसम के साथ राजधानी में अब सुहाने दिनों का एहसास। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जलभराव मुक्त इलाकों की तस्वीरें, मिंटो ब्रिज, रोहतक रोड अंडरपास, ITO, NH24, विनोद नगर समेत कई जगहों की तस्वीरें। दिल्ली NCR पर मौसम मेहरबान, मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, नोएडा गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। नोएडा सेक्टर 62 लेबर चौक पर जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, राहत एवं बचाव दलों को किया सतर्क। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत। बारिश की फुहारों से गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, स्कूल बंद, जलभराव की चुनौती के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। गाजियाबाद में तेज बारिश के चलते कक्षा 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी, लोगों से घरों में रहने की अपील। बादलों की जोरदार मेहरबानी से गाजियाबाद तरबतर, खुशनुमा मौसम के बीच कई जगह पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक। गाजियाबाद में बारिश से सड़कों पर जमा पानी, लोगों की आवाजाही में हुई दिक्कत। रिहायशी में बड़े चनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चनाब उफान पर, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट से स्लिप पे गेट खोले गए, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर निगरानी बढ़ाई। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाया चेतावनी वाले पोस्टर, नागरिकों को सतर्क रहने और हादसों से बचाने की पहल। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोर्ड, कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की अपील।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच सामने आई अनोखी तस्वीर, नदी की तेज धारा में भारी तादाद में बहते दिखे गैस सिलेंडर। भारी बारिश के कारण HPCL पाताल गंगा के बॉटलिंग प्लांट से बहे करीब 3000 सिलेंडर, जिला प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर को घरों में ना ले जाने की अपील की। रायगढ़ प्रशासन ने नदी में बहते हुए सिलेंडर से सुरक्षा को लेकर जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश से तेज धारा में बही सड़क, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में दो दिन से लगातार बारिश का दौर, कई सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही पर पड़ा असर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, पहाड़ों पर बदला नजारा, शांत वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर, प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से जलभराव, सड़कों और इमारतों के परिसर में पानी जमा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अमरावती में लगातार बारिश के बीच पूर्णा परियोजना के दो गेट खोले गए, नदी किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया। अमरनाथ यात्रा पर आज सातवां दिन, बालटाल में अमरनाथ यात्रा से बड़ी रौनक, स्थानीय दुकानदारों की कमाई में इजाफा। यात्रियों की बढ़ती संख्या से चाय, खाने पीने और जरूरत के सामान बेचने वाले विक्रेताओं को मिला बड़ा सहारा, बालटाल के छोटे कारोबारियों के आए अच्छे दिन। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पाद बेचने वालों को रोजगार के लिए नए अवसर, बालटाल में यात्रा सीजन बना रोजी रोटी का बड़ा जरिया। अमरनाथ यात्रा ने बदली बालटाल बाजार की तस्वीर, स्थानीय युवाओं और व्यापारियों के खिले चेहरे। यात्रियों की सेवा से स्थानीय परिवारों को मिल रहा है आर्थिक बल, बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई का अहम मौका। मॉनसून की बारिश के बीच केदारनाथ धाम में दिव्य प्राकृतिक नजारा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु। हिमालय की वादियों में बादलों और कोहरे से घिरे केदारनाथ में रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1500 श्रद्धालु, अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट, तीर्थयात्रियों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश। बद्रीनाथ में बारिश में भारी दिखी श्रद्धालुओं की आस्था, बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 11 लाख रुद्राक्ष की माला और डमरू से होगा केदारनाथ धाम मंदिर का भव्य श्रृंगार, वडोदरा का संस्थान कर रहा है विशेष तैयारी। महादेव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, भक्तों को सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार। पूरे सावन के माह बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए VIP और स्पर्श दर्शन की सुविधा रहेगी बंद, इंटरनेट के जरिए मिलता रहेगा बाबा का लाइव दर्शन। सावन के दौरान काशी आने वाले भक्तों की हर सुविधा का ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, मेडिकल से लेकर साफ सफाई और पीने के पानी की भी की जा रही है व्यवस्था। इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास का समय, 80 लाख के करीब भक्तों के आने की उम्मीद। भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा एजेंसी सतर्क, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है हर संभव कदम। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर, रथों की सजावट का काम जारी। पुरी में 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा, लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु। ओडिशा में सदियों पुरानी परंपरा के अद्भुत रंग, भगवान जगन्नाथ के ठीक होने की कामना के साथ देउली मठ से फल और भेंट लेकर अनसर फलभार जुलूस निकला। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की मान्यता, एकांतवास के दौरान भगवान के लिए काकतपुर के श्रद्धालु देते हैं फल फूल तुलसी के पत्तों की भेंट। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां, पुरी के कलाकार कर रहे हैं रथों की सजावट का काम। उत्तराखंड में जोशीमठ NTPC की तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता, हेडरेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया गया। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फेज 2 और फेज 3 से बनाई जा रही है सुरंगें आपस में जुड़ी, निर्माण कार्य में तेजी आने से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होने की उम्मीद।
मॉनसून के चलते वैष्णो देवी में मूसलाधार बारिश, बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद किया गया। सम्राट कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई। पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा भूसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। इस परियोजना पर लगभग 348 करोड़ की आएगी लागत। एम्स पटना के विस्तार से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं का होगा विस्तार। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया पिनाका का सफल परीक्षण। 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से किया गया इस रॉकेट का परीक्षण। रॉकेट ने योजना के अनुसार अपने सभी इन फ्लाइट कर्तव्य दिखाए, साथ ही अनुमानित ट्रेजेक्ट्री का सटीक पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर एकदम सटीक प्रहार किया। स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि ये पिनाका रॉकेट, जिसे रक्षा डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्था ने स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना और इंडस्ट्री को दी बधाई। सफल परीक्षण से जुड़ी सभी टीमों की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का किया मेगा स्वागत। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पीएम ने तबला वादन का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ फोरम में लिया हिस्सा। मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को बताया भरोसेमंद साझेदार। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील संभव।

0: बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर, मोरक्को और फ्रांस के फैंस ने आतिशबाजी और गानों से शहर को रंग दिया। मोरक्को फैंस ने लगाए नारे, बॉस्टन कॉमन में 1000 से ज्यादा समर्थक झंडों और फ्लेयर्स के साथ जश्न मनाते दिखे। फ्रांस के फैंस ने जीत का किया दावा, फ्रांस समर्थकों ने ढोल की धुन पर टीम का बढ़ाया हौसला। मोरक्को की टीम ने 2022 के बाद टीम ने पहली अपनी रफ्तार, अनुशासन और दमदार खेल से बड़े देशों को चुनौती दी। अब सिर्फ अंडरडॉग नहीं है मोरक्को की टीम। क्वार्टर फाइनल से पहले दोनों टीमों की तैयारी तेज, दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम की जीत को लेकर आश्वस्त। वेनेजुएला में भूकंप के बाद जानवरों की मदद, 530 से ज्यादा पालतू जानवरों को बचाया गया। रेस्क्यू शेल्टर बना बेजुबानों का सहारा, पालतू जानवरों को नई जिंदगी देने की जारी है कोशिश। कई जानवरों का चल रहा है इलाज, बचाए गए कई जानवर डिहाइड्रेशन और अनीमिया से पीड़ित। रात में चलता है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे में फंसे जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात के समय चलाती है अभियान। शेल्टर का मकसद इन बेघर पालतू जानवरों को सुरक्षित घर और नया परिवार दिलाना, डॉग्स और कैट्स के लिए नई फैमिली की तलाश जारी। रोलिंग स्टोन्स ने नए एल्बम फॉरेन टंग्स की लॉन्चिंग शानदार ड्रोन शो के साथ की, ड्रोन शो से जगमगाया लंदन का आसमान। ड्रोन ने बनाया बैंड का आइकॉनिक लोगो, ड्रोन डिस्प्ले में रोलिंग स्टोन्स का मशहूर लिप्स एंड टंग लोगो आसमान में उभरा। थेम्स नदी के ऊपर सैकड़ों ड्रोन ने अलग अलग आकृतियां बनाकर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, ड्रोन का दिखा जलवा। बैंड ने पारंपरिक आतिशबाजी की जगह ड्रोन शो से नए एल्बम का किया प्रचार, प्रमोशन में दिखा ड्रोन टेक्नोलॉजी का दम। फैंस के लिए बना यादगार नजारा, ड्रोन शो ने लॉन्च इवेंट को बना दिया खास। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायकों पर भी दिखा असर, मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने वाले क्रॉसेंस का क्रेज बढ़ा। मामन बेकरी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न मनाने के लिए बनाई ये पेस्ट्री, अलग अलग देशों के झंडे अपनी ओर खींच रहे हैं फैंस का ध्यान। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे देशों की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए तैयार किया गया है कलेक्शन, हर फ्लेवर को देश के मुताबिक चुना गया। पेरिस के हाउते काउच कलेक्शन में पहुंचे फैशन बोल की हस्तियां, भीषण गर्मी के बीच गार्डन में किया गया आयोजन। पेरिस में तीन फैशन शो का आज आखिरी दिन, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में होता है शुमार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
5: भारत की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
4: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए। कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाई तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाई तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा रेड अलर्ट, तेज बारिश के बाद हवा में सुधार, आज दिल्ली का AQI 43। पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद। उत्तराखंड और हरिद्वार में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, IMD ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। चंडीगढ़ में मॉनसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली, सुखना लेक पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग। लगातार बारिश के वक्त चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, यात्रा कंट्रोल रूम में लगातार आपदा बैठकों का दौर। मॉनसून में भी बनी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में रौनक, प्रतिदिन पहुंच रहे हैं 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
12: बारिश के बाद जब आसमान में सजता है ना एक रेनबो, तो हर रंग अपनी एक अलग कहानी कहता है, और बिल्कुल ऐसी है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया, जो है इमोशंस के रंगों से भरपूर, कहीं प्यार वाला लाल, तो कहीं उम्मीदों वाला पीला, कहीं है खुशियों वाला हरा या फिर कहीं है सपनों वाला नीला। तो चलिए आज बात करेंगे हम इन्हीं एंटरटेनमेंट के रंगों की। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। बात करेंगे आज आपकी कहानी के हर अपडेट की और हर उस ट्विस्ट की जो लेकर आ रहा है कहानी में एक नया मोड़। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
13: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए विश्वास और अवंतिका आरंभी के पैरों में गिरकर मांगेंगे माफी। ईशा और सूरज के बीच शुरू होगी नोकझोंक, क्या सामने आ जाएगा सच? शादी के बंधन में बंधेंगे शिवाय और जगधात्री, होगा शिवाय का मेकओवर, बनेंगे दूल्हे राजा। वसुधा और देव बनेंगे एक्शन जैक्सन, पिटाई कर सिखाएंगे गुंडों को सबक। तन्वी की मम्मी और बहन का दिखेगा डांस स्टेशन, तन्वी को लगेगा जोर का झटका। सीरियल सैराब में ईशान करेगा सच का खुलासा, घरवाल

0: आईपीएस ऑफिसर बन पुलिस स्टेशन पहुंची ईशा। नकाब में सूरज, ईशा सूरज और राज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा आईपीएस ऑफिसर बन गई है, तो वहीं सूरज दादा भाई बन गया है जो लोगों की मदद तो करता है लेकिन अपने स्टाइल में। उन्हें सिखाता है सबक क्योंकि होती है दादा भाई की अदालत। लेकिन ये राज ईशा को पता नहीं है, उसे तो अब भी लगता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर ही है। इसीलिए तो जब मौका आया पुलिस स्टेशन जाने का तो ईशा चाहती है कि सूरज भी उसके साथ चले। तो भाई ईशा तो वर्दी में तैयार है और पहुंच गई है पुलिस स्टेशन और उसके पीछे पीछे है सूरज जो चश्मा लगाकर मुंह पर कपड़ा ओढ़कर ईशा के पीछे पीछे जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पुलिस वालों को पता चले क्योंकि कुछ पुलिस वाले हैं जो दादा भाई को जानते हैं और अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन में सूरज को पहचान लिया तो ईशा को सब सच पता चल जाएगा, इसीलिए वो अपनी पहचान छुपा रहा है। ऐसे में ईशा सूरज से नकाब हटाने को भी कहती है लेकिन सूरज मना कर देता है और बना देता है बहाना।
1: सूरज रुको, तुम तो दिल के झूठे बदमाश थोड़ी ना, जो ये कपड़ा ढका है मुंह का निकालो इसे।
2: नहीं नहीं नहीं ईशा जी, इसे रहने दीजिए वरना अब तो करना ओके, और यहाँ भी आपके ऑफिस वाले ने सदस्य ने बना दे जो बुला बुलाओ जो देवी के पीछे।
3: सूरज शार्प माइंडेड तो है ही है क्योंकि वो आईएएस रह चुका है और साथ ही साथ पहले भी गुंडा था, अब आईएएस ऑफिसर भी बन गया और उसके बाद तो बाहुबली गुंडा बन गया, तो ऑफ कोर्स उसके पास ऐसा सब है, साम दाम दंड भेद कैसे यूज़ करना है, क्या तौर तरीके हैं। लेकिन ईशा जी भी कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर है, वो भी चालाक है। तो जब से दादा भाई का नाम ईशा जी ने सुना है तब से उनका यही कहना है कि ये दादा भाई इंदौर शहर में जो भी है इसका खात्मा तो मैं करके रहूँगी। ईशा जी को खुद नहीं पता कि दादा भाई सूरज ही है एंड सूरज यही चाह रहे कि ईशा जी अपने आईपीएस बनने की जो खुशी है कम से कम एक दो दिन तक जी ले और स्पेशली कुछ टाइम, एक साल के बाद ईशा जी आई है तो कुछ टाइम मैं स्पेंड कर लूँ ईशा जी के साथ खुशियों वाली। एंड वो चीज़ें पॉसिबल होने से पहले कमिश्नर ऑफिस से कॉल आ जाता है कि आईपीएस ईशा आपको आना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स अभी अभी यू नो अपॉइंट किए गए हैं सभी का इंट्रोडक्शन है एक दूसरे के साथ, तो इट्स गेट टुगेदर वी कैन से। तो ईशा जी रेडी हो जाती है और सूरज बोलता है कि आप जाइए, सेलिब्रेशन आपके आने के बाद होगा। एंड ईशा जी वहाँ पे बोलती कि सूरज कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम भी एक आईएएस ऑफिसर हो, मेरा भी रुतबा बनेगा कि मैं आईएएस की बीवी हूँ, तुम चलो तुम्हें सब देखेंगे। तो सूरज मना करते रहता है लेकिन फाइनली वो मना लेती है और सूरज आता है, लेकिन सूरज डरते हुए आता है बिकॉज अगर किसी ने पकड़ लिया कि ये दादा भाई है तो ईशा जी के सामने सच्चाई आ जाएगी और ईशा जी कहीं ना कहीं यू नो सूरज से तुरंत ही नफरत करना शुरू कर देंगी कि आखिर ये सब हुआ क्यों कैसे, क्योंकि वो बहुत ही फुर्सत में सारी चीज़ें ईशा जी को बताना चाहता है ऐसे होश पोश में नहीं।
0: इन सब के बीच ईशा को उसके ट्रेनिंग के साथी भी मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों से सूरज को मिलवा दी सूरज वहाँ से 9:00-11:00 हो जाते हैं।
4: तुम दोनों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए
1: तब भी हारे थे, अब भी हारने के लिए तैयार हो।
0: फिलहाल तो इस राज पर पर्दा पड़ा है कि सूरज अब आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि दादा भाई बन चुका है, लेकिन जब ये सच ईशा को पता चलेगा तो इनके रिश्ते में क्या दरार आ जाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

0: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब प्यार की कोई उम्र नहीं होती, जब दिल मिल जाते हैं तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। निकल पड़ते हैं दो प्यार करने वाले एक नए सफर पर, और जहां होता है विश्वास वहां जिंदगी भर रहता है एक दूसरे का साथ। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको इस इंटरेस्टिंग शो के सेट पर, जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार।
0: खुशी से झूमी तन्वी की माँ और बहन,

0: टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में आज व्योम पहुंच गया है तन्वी के मायके मिलने काकू और परी से। असल में व्योम के हाथों काकू और परी की कमजोर नब्ज लग गई है, ऐसे में वो उन्हें ब्लैकमेल करने पहुंच गया है। इतना ही नहीं वो तो प्रस्ताव लेकर पहुंचा है परी से ब्याह रचाने का। इतना ही नहीं वो तो काकू और परी को अपने जाल में फंसाने के लिए परी के लिए सोने का गुलाब लाया है, जिसे देखकर परी बहुत खुश है और वो गुलाब ले भी लेती है और ये देखकर काकू रिश्ता पक्का कर देती है। इतना ही नहीं वो तो खुशी के मारे फूल के बजाय कटे हुए पेपर्स उड़ाने लगती है।
1: परी तुम सिर्फ मेरी दुल्हन नहीं बनोगे, तुम बनोगे मेरी वो चाल जो मुझे तन्वी तक ले जाएगी और उसी चाल से युग और तन्वी के रिश्ते की हर बंधन को मैं हमेशा के लिए तोड़ दूंगा।
2: ये परी ने और काकू ने मिलके एक चोरी कर ली थी, बहुत बड़ी गहनों वाली, गहनों की चोरी करके वो छुपा रही थी जब, तो मैंने देख लिया है। तो अब मैंने देख लिया है तो मैंने उन्हें फिर कुछ स्कीम लगा के उन्हें बचाने की कोशिश की है। तुम्हें वही एहसान जता रहा था कि एहसान किया है मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए मुझे अपनी बेटी दे दो। तो बड़ी फनी एक बात है कि क्योंकि काकू जो है, जो परी की मम्मी है, वो थोड़ी सी लालची औरत हैं तो उन्हें पटाना थोड़ा आसान ही होता है। तो मैं एक गोल्ड का रोज लेके आया हूँ, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। तो उन्हें वो देकर थोड़ी मीठी मीठी बातें कर मैंने उन्हें पटा लिया। तो अग्री तो कर गई हैं कि हाँ ठीक है मैं परी से शादी कर सकता हूँ। तो बट ये खबर अभी हमने ऊपर बड़े साहब को नहीं दी है, बड़े उस परिवार को बताया नहीं है, तो देखते हैं उन्हें बताने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है।
0: अब व्योम ने तो अपना खेल खेल लिया, ऐसे में अमीर घर में अपनी बेटी की शादी रचाने के लिए काकू बेहद खुश है और तो और काकू और परी दोनों ही जमकर नाच रहे हैं, वो भी खुशी के मारे। कि इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है तन्वी भी, ऐसे में तन्वी को देखकर काकू और परी से रहा नहीं जाता और वो तन्वी को भी खींच लेती है नाचने के लिए।

0: राहुल सेट
1: मेरी गलत है तुझे तू नाच तू नाच
0: देखो तो हसीना को आना भी करीना को ढूंढो का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा
2: सरप्राइजेस तो रोज ही मिलते हैं मुझे, मतलब तन्वी को मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है उसके लाइफ में। तो अभी मायके आई है, लेकिन यहाँ पर आके भी कुछ ना कुछ उसके ज़िंदगी में और उसके जो परिवार में है कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, फिर वो ससुराल हो या मायका हो। उसके ऑफिस में भी कुछ ना कुछ होता है। अभी वो मायके आई है तो यहाँ से वो ऑफिस जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कुछ तो होगा, एक सरप्राइज तन्वी को वहाँ भी एक मिलेगा, ऐसा सब कुछ चल रहा है।
3: अब परी तो एक भी मौका नहीं छोड़ती तन्वी को ताने कसने का। फिलहाल तो तन्वी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। ऐसे में परी ने अपने होने वाले पति की तस्वीर दिखानी चाहिए। इससे पहले कि तन्वी वो तस्वीर देखती, अचानक तन्वी को आवाज आ जाती है, जिसके चलते वो बिना तस्वीर देखे वहाँ से निकल जाती है। और फिर वापस कमरे से बाहर आती है तो उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ती है जिसपे परी के होने वाले पति की तस्वीर है। ऐसे में वो लिफाफा उठाती है तस्वीर देखने के लिए, तो वहीं परी और काकू ये देखना चाहते हैं कि आखिर तन्वी का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जैसे ही तन्वी वो तस्वीर देखती है, बस फिर क्या, वो तस्वीर देखकर तन्वी खुश हो जाती है और तो और अपनी बहन से प्यार जताते हुए उसकी नजर भी उतारती है, जिसे देखकर परी हैरान है।
4: सबसे पहले पप्पा को प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर बाबा के चरणों में तेरे जीवन साथी की तस्वीर रखूंगी। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा शगुन होगा। आती हूँ।
1: आई ऐसा कैसे हो सकता है? व्यूम की फोटो देखी, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
5: हाँ देखना, फोटो देख के तो इसके होश उड़ते चाहिए थे।
2: जी, परी की अभी शादी तय हो चुकी है और वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। अमीर घर में उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो बहुत खुश है। अभी दूल्हा कौन है ये तो अभी तन्वी को भी पता चला नहीं है। उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। इंटरेस्टिंग एपिसोड है, मैं बस इतना कहूँगी कि आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा।
3: भाई तन्वी की ये खुशी देखकर परी और काकू दोनों ही हैरान हैं। अब उन्हें क्या पता कि परी ने जो तस्वीर देखी है वो व्योम की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसे में इस बात से अनजान परी और काकू ये सोचकर डर रही हैं कि कहीं तन्वी कुछ और तो प्लानिंग नहीं कर रही। अब देखना होगा क्या परी और काकू सच का पता लगा पाएंगी और क्या उन्हें ये पता चल पाएगा कि तन्वी ने असली दूल्हे की तस्वीर देखी ही नहीं है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: अब देखिए, रेनबो तो तभी पूरा लगता है ना जब उसका हर रंग अच्छे से दिखे। उसी तरह हमारी कहानियां भी तभी कंप्लीट होती हैं जब हो उनमें हर इमोशन और उसके साथ साथ भरपूर एंटरटेनमेंट, ट्विस्ट्स, सेलिब्रेशंस एंड सरप्राइजेस। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू अर्पिता की एयरलाइन। यहां तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। सो गेट सेट,

0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में देखिए कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं गुरु और रूहानी। लेकिन इनके सुकून के पलों को तोड़ने के लिए पहुंच जाती है दादी और मामी, जो देखिए कैसे आते ही गुरु पर भड़क गई है।
1: उम्र रातों की नींद और दिन का चैन आराम करके तुम दोनों सो रहे हो,
0: और इन पर लगा रही है इल्जाम। असल में गुरु और रूहानी को सजा मिली है, लेकिन इस सजा में भी वो एक दूसरे के साथ है, तो ये सजा कैसे हुई? इसीलिए मामी को हो रही है तकलीफ, और वो दादी को ले आई है भड़काकर गुरु और रूहानी के खिलाफ। और देखिए कैसे दादी भड़क रही है और गुरु को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन गुरु तो दादी के साथ जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने रूहानी का भी हाथ पकड़ लिया है कि जाएंगे तो दोनों साथ।
1: उम्र रातों की नींद और दिन का चैन आराम करके तुम दोनों सो रहे हो?
2: और नहीं थका, एकदम 100% सही बात कह रही है जीजी। अरे जीजा जी, सजा दिए हैं इन लोग को, ये लोग ये सजा में मजा खोज रही है। इस पवित्र घर में छी छी छी खुलेआम ऐसा काम हो रहा है जीजी की अम्मा। छी,
1: चलो हमारे साथ।
3: हम नहीं जाएंगे दादी, आपके पोते हैं पर आप तो अच्छे से जानती हैं, जोर जबरदस्ती से हम चौधरी का खून और खोल जाता है, इतनी आसानी से आपके काबू में नहीं आएंगे। इतनी आसानी से किसी के काबू में आते होते ना तो पापा अपना पूरा साम्राज्य हमें संभालने के लिए नहीं देते। कहाँ जाना चल लेंगे, पर अपनी मर्जी से।
1: चलो हमारे साथ चलो।
4: जासूसी करने का भी माहौल जो नया बना है वो ये कि गुरु और रूहानी दोनों अब साथ में हैं, और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि साथ में रहते हुए भी उनको कैसे साथ ना रहने दिया जाए। तो क्योंकि गौतम बाबू अब उनकी बहन के साथ तो न्याय नहीं हो पाया, उसकी शादी संदीप से हो गई, तो गौतम जी ने मुझे काम पर लगाया है कि ये तुम्हारा काम है कि तुम दोनों को अलग रखो, और उन दोनों के बीच में किस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, इस सब की रिपोर्टिंग मुझे चाहिए। तो बस जैसा आदेश हुआ है वैसा काम कर रही हूँ, वीडियोस फोटोज बना के भेज रही हूँ उनको।

0: वहीं दूसरी तरफ रूहानी देखिए कैसे इस चूल्हे पर खाना बना रही है और कर रही है सारे काम। ऐसे में रूहानी का वीडियो निकाल रही है मामी। असल में मामी को ये काम दिया है गौतम ने, जिसने कहा है कि रूहानी और गुरु को अलग अलग रखे, इसीलिए मामी चाल पर चाल चले जा रही है। लेकिन रूहानी के साथ गुरु है ना, वो सब कुछ संभाल ही लेगा।
1: बता दे बेटा, बता दे इन सबको, ताकि इन सबके मन को शांति मिल जाए, नहीं तो ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा।
2: मैं अभी तो आप लोगों को ये कारण नहीं बता सकती, लेकिन जल्दी आप सबको पता चल ही जाएगा।
3: मॉम, आपका ना दिमाग खराब हो गया है। इस एज में अपने से 11 साल छोटे लड़के के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं आप।
2: क्या कहा तूने, फिर से कहना एक बार।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में घर लौट आई है नयनिका। ऐसे में नयनिका पर सभी घर वाले, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी लगा रही है इल्जाम कि वो मुंबई मौज करने गई थी।
4: किसी के साइन की जरूरत थी तो मैंने साइन किया। जब रजिस्टर हुई उस हालत में मैं अपने होटल ही जाने देना चाहता, इसीलिए इनके मना करने के बावजूद भी मैं इन्हें अपने घर ले गया। वाह, मेरे के एयर टिकट बिल्कुल आता है। तुमसे बहुत जरूरी बात क्या, तुम्हारे ऑन्कोलॉजिस्ट पापा ये बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
0: ऐसे में तभी वहाँ पहुँचता है ईशान, जो सबको ये सच बताता है कि नयनिका को कैंसर है। और ये बात सुनकर देखिए कैसे टिन्नी और बाकी घर वाले हो गए हैं काफी इमोशनल।

0: इंसान की कहानी भी एक रेनबो की तरह होती है, जिसमें खुशी, गम, हौसले और उम्मीद के रंग होते हैं। और कुछ ऐसी है यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट्स की कहानी जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको तुम हो ना के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस एपिसोड में। मिलते हैं इस शो के हैंडसम होस्ट राजीव खंडेलवाल से भी। गेट सेट
1: बचपन से आजाद ख्यालों वाली हमारी जो अगली सुपरस्टार हैं, इनकी जिंदगी में ठहराव तब आया जब इनकी जिंदगी में आजाद नाम का शख्स आया। कहाँ है आपके पास है? जी नमस्ते, कहाँ मुलाकात हुई आपकी?
2: सर कॉलेज फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड देन फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए एंड उसके बाद।
1: सोशल मीडिया आजकल लोगों को बहुत मिलवा रहा है और बहुत से लोगों को तोड़वा भी रहा है। शादी के बाद नए चैलेंजेस आते हैं, तो कोई चैलेंजेस थे आपके?
3: चैलेंजेस शादी के पहले भी थे, शादी के बाद भी थे। एक दिन सडनली मतलब ये आती है और ये कहती है कि इनके हार्ट के वॉल्व डैमेज है। जब पहली बार हम गए थे हमें पता चला इसमें बाईपास सर्जरी होती है, तो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि स्टिचेस लगाना। हमने बहुत मैनेज किया, कैसे पता चला कि एक दूसरा वे भी है MICS ने, एक तरीके की कोई टेक्निक आई है, सर्जरी आई है जिसमें साइड से कट होता है। पर लेकिन दैट टाइम ऑफ सर्जरी शी वर लाइक बेड पे थी, सारे सब कुछ मतलब ऑक्सीजन वगैरह पे सब कुछ रहता है, मतलब वो सीन बहुत दर्दनाक था। किसी ने देखा नहीं, मैं इंडिविजुअल था, मैं गया तो मैं देख के रोने लगा था। शी सेड कि अब तो एक काम करो, ठीक है मुझे ये है, तुम अपने शादी वादी का ख्याल छोड़ो। मैंने बोला सब छोड़ो, मुझे तुम पसंद हो, सबसे बेस्ट चीज़ है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता और शादी के बाद उसे कुछ हो जाता, उसकी क्या गारंटी? तो मेरा जहाँ मन लगता है, जिसके साथ मन लगता है, मैंने वही डिसीजन लिया।
1: क्या वो एक मोमेंट आपकी लाइफ में जहाँ से आपकी रिश्ता जो है वो इतना सॉलिड हो गया, इतना मजबूत हो गया?
2: आज की जनरेशन में देखती हूँ मैं कि गर्ल्स जो होती है वो लड़कों में लुक्स देखती है, फिनेंशियल देखती है कि ठीक है कितना बैंक बैलेंस है। बट मेरा ये मानना है अगर आपके साथ कोई आपके फ्लोस में खड़ा है ना, तो उससे बेटर इंसान कोई नहीं है। फाइनेंशियल क्या है, आप फिर से कमा लोगे, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अगर आपके बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा है ना, तो वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा।
4: अगर हो तुम क्या?
0: अब देखिए रेनबो के हर रंग की ना अपनी एक पहचान होती है, उसी तरह हर कहानी का भी अपना एक रंग होता है। तो यहाँ तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए खुशियों की बौछार और उसके साथ साथ इमोशंस के ट्विस्ट्स, क्योंकि देखिए हर कहानी में आता है एक नया मोड़, जो लेकर आता है उसमें हमारे लिए मनोरंजन भरपूर। तो चलिए फिर पता कर आते हैं आज कौन सी कहानी में आ पहुंचा है, कौन सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
5: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में खतरे में पड़ गए हैं अपराजिता और रक्षित, क्योंकि ललित के सर पर खून सवार है। देखिए कैसे ललित ने दोनों पर गन तान रखी है।
6: प्लीज सर, नहीं
7: मारना इसे।

0: लेकिन इससे पहले कि ललित, अपराजिता और रक्षित में से किसी को नुकसान पहुंचाता, आ गए अपराजिता के मम्मी पापा।
1: अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ और नहीं ना?
2: बिल्कुल बदल से हो ना।
0: और देखिए कैसे आज अपराजिता की मम्मी ने ललित पर बंदूक तान दी है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई पता जो चल गई है। ऐसे में शुरू हो गया है बवाल।
2: दिली बहुत आंसू बहा लिए, अब बस अब ये सब आगे से नहीं होगा। अगर ये हाथ बेलन चला सकते हैं तो बंदूक भी चला सकते हैं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस ललित को गोली मार दूंगी।
3: ललित मम्मी जी?
2: मम्मी जी तो नाम भी मत देना, तो उसके लायक नहीं है, समझे? जमाई को भगवान माना जाता है ना? माना तो मैंने भगवान, सर पे बिठा के रखा था, पर क्या से क्या निकला था।
0: लेकिन ललित तो ललित ठहरा। देखिए कैसे उसने अपराजिता की मम्मी को अपना निशाना बना लिया।
1: ललित
0: में अपराजिता का गुस्सा फूटा ललित पर और अपराजिता का साथ देने आ गया रक्षित। दोनों ने मिलकर ललित को सबक सिखाया, लेकिन रक्षित की तबीयत हो गई है खराब।
2: आपके साथ ही टूटी को छोड़ो, पापा को छोड़ो।
0: इसी के साथ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, जहां अपराजिता की मम्मी और रक्षित एक हो जाएंगे। अपराजिता के दिल में रक्षित की जगह बनाने के लिए हो गए हैं ये दोनों टीम अप, यानी अब आएगा कहानी में मजा।
2: मैंने बहुत गलतियां की है रक्षित, लोगों के डर से, दुनिया के डर से अपनी ही बेटी के आंसू देख नहीं पाई, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद देख रही हूँ और उसकी वजह हो तुम। तो बताओ रक्षित, अपनी अपराजिता को जीतना है पार्टनर?
1: तो शुरू करें पार्टनर।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज देखने को मिली अनुपमा और प्रेम की टशनेबाजी, जहां पर अनुपमा आज प्रेम को प्यार से समझाने पहुंची है, लेकिन प्रेम तो उसके सर पर नफरत सवार है। ऐसे में अनुपमा और प्रेम के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी और अनुपमा ने भी कह दिया है कि वो कंपटीशन में जाकर ही रहेगी।
4: तुझे चोरी चकारी झूठ बेईमानी फ्रॉड धोखेबाजी जो करना है कर, पीठ में छुरा खोपना है खोप, रास्ते पे बारूद बिछाने हैं बिछा। ये अनुपमा जोशी फिर भी कंपटीशन में पहुंचेगी और तुझे ये पता है कि सिर्फ जिंदगी में ही नहीं कुकिंग में भी मैं तेरी माँ और माँ चुप चुप के साजिश से बेईमानी से नहीं जीतती, माँ तो सीना ठोक के चुनौती देती है, आंखों में आंखें डाल के घमंड तोड़ती है और टंके की चोट पे कहती है कि बेटा माँ का सच, माँ का साहस और माँ का स्वाभिमान बच्चों के किसी भी षड्यंत्र पर भारी पड़ सकता है।
0: अब इनकी टशनबाजी का असर राही पर कैसे होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
4: तेरी माँ है, जा, अपने घर जा, जा।
2: वो आपका अपना घर नहीं है ना मम्मी, औरत का कोई अपना घर नहीं होता।
4: अपनी मेहनत से, अपने हुनर से हर औरत को अपना घर बनाना चाहिए, जहाँ से कोई उसे बेदखल ना कर पाए।
2: ये कंपटीशन मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है सर, क्योंकि इसी की जीत से मेरा अपना घर बनेगा। मुझे मेरा घर चाहिए, अनुपमा जोशी का घर।
3: शाकिनी डाकिनी,
0: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में फिर एक बार शुरू हो गई है तीन बहुओं के बीच बहसबाजी, जहां पर मोगरा, नर्मदा और रची को दिखा रही है टशन।
2: किसी काम की नहीं हो तुम, छोड़ो, तुम्हारा पति तो एक नंबर का निकम्मा और निठल्ला है। अगर पापा जी ने उसे अपने साथ मिल में नहीं लगाया होता ना, तो आज वो बेरोजगार और जंतर मंतर में नौकरी के लिए धरने दे रहा होता। ए मोगरा, ए नर्मदा, हमारी बराबरी मत कर। घर में चिल्लाने का हक उसे है जो इस घर में कुछ कमा के ले आए। हमारा पति 50,000 कमाता है, वो भी महीने का। तुम्हारा पति क्या कमाता है? हेंगा, नीलपट्टा, सन्नाटा, और तू मजदूर की मिसेज। 8-10,000 कमाते नहीं हो इस घर में और हजारों के, लाखों के मजे लूटते हो। हमें पता है कि तुम नौकरी के लिए क्यों वापस नहीं गई, क्योंकि इस घर में तुम्हारे पति की इज्जत तो वैसे ही नहीं है। और अगर तुम पैसे कमाने लगी तो पूरी दुनिया हंसेगी उस नकारे पर।
0: तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, जहां विद्या तो घर के बाहर कदम रखेगी कमाने के लिए, यानी अब परिवार में शुरू होगा नया बवाल।
5: हम क्यों पीछे हटे?
6: अच्छा, तो हम भी देखते हैं आप इस नौकरी में कब तक टिक पाएंगे।
7: माँ और बाबा को फिर से एक करने के लिए
2: हमें एक साथ आना होगा।
8: हर सितारे की जिंदगी भी खूबसूरत होती है, रेनबो के रंगों की तरह सजी हुई। तो चलिए फिर मिलते हैं आज आपके फेवरेट सितारे से और जानते हैं इनकी जिंदगी के खूबसूरत रंग की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने इनसे आज खास मुलाकात, जहां तो हुई हैं ढेर सारी बातें। कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात।

0: लगी थी।
1: शुरू हुई मॉनसून की मस्ती।
0: कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: चला मौसम का जादू।
0: दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है।
1: सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है पूजा सिंह, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। भाई पूजा को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं जैसे साथिया और कई और। फिलहाल वो नजर आने वाली है उनकी नई फिल्म जो कि ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है गुडल, जिसमें वो एक अहम भूमिका में नजर आने वाली है।
2: जानकी फूल की खुशबू बता देती है कि फूल कौन सा है। हर फूल गुड़हल का फूल नहीं होता।
1: और आज है उनका छुट्टी वाला दिन। भाई मुंबई की बारिश का मौसम है और बारिश के इस मौसम में चाय पकौड़े ना हो और ढेर सारी मस्ती ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंचा है पूजा के घर पर, जहां वो गर्मा गर्म चाय और यमी यमी पकौड़े अपने हाथों से बनाएंगी।

0: बारिश में भीगेंगी।
1: थोड़ी शरारती मैं, तू भी थोड़ा शाय शाय, तेरे लिए बाकी
0: डांस करेंगी।
1: ऐसा कैसा प्यार कर लिया, सावरिया।
0: अपनी ननन संग मस्ती करेंगी और साथ ही शेयर करेंगी सास बहू और बेटिया संग ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं इस मॉनसून डे आउट की शुरुआत, सीधा चलकर पूजा के घर पर।
2: बारिश का मौसम हो और अपनों का साथ हो, और बस यही बात है जिसके लिए आज हम आ गए हैं पूजा के घर पर। और पूजा, क्या स्पेशल होने वाला है, जरा मौसम का नजारा जरा सबको।
3: जी जी, सबसे पहले तो आप लोग वो नजारा देख लीजिए, इतना प्यारा नजारा है। ओहो, हाय हाय हाय हाय, देख के ही एकदम मजा आ रहा है, एकदम सुकून मिल रही है आंखों को।
2: तो मतलब क्या क्या सबसे पहला गाना कौन सा बज गया देखते से दिमाग में?
3: बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो, बहुत बरस गया है मेघा, अब थोड़ा थमो थमो थमो थमो, बाहर जा नहीं पा रहे हैं।
2: इसलिए हम घर में एंजॉय करेंगे,
3: इसलिए हम घर में एंजॉय कर रहे हो। सबसे पहली बात कि सास बहू बेटियां जो है, हमेशा 16 साल से बोलती आई हूँ, दिल के करीब घर हमारा, और बारिश का मौसम हो या कोई भी ऐसा वेदर हो, सास बहू बेटियां के साथ इंटरव्यू ना हो या उनके साथ स्टोरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
2: तो, मतलब बारिश का तो मौसम और मौका है ही, साथ ही गुड़हल का मौका भी है, तो हम गुड़हल के बारे में भी बात करेंगे, स्नेहा के बारे में भी बात करेंगे।
3: यस यस यस, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मेरी पहली मूवी OTT में रिलीज हो गई है जिसका नाम है गुड़हल। हंगामा में टाटा स्काई, एयरटेल, वॉचो, एंड सून इट विल गेट रिलीज ऑन अदर एप्स एज वेल। मतलब सास बहू बेटियां आई हैं यार मेरे पास, हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे, बट आज का जो ओकेशन है गुड़हल के नाम पर भी है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस सास बहू बेटियों के जरिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही प्यारी मूवी है, देखिए उसको, खूब सारा प्यार दीजिए। और जो मेरा जो किरदार है स्नेहा का, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा भी आएगा, कभी प्यार भी आएगा, लेकिन मजा जरूर आएगा, और एंडिंग तो इतनी कमाल की है ना, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जरूर देखिए। देखिए सारे सस्पेंस तो रिवील नहीं कर सकते।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की, क्योंकि आज मास्टर शेफ बन पूजा बनाने वाली है ये स्पेशल वाली डिश, जो कि बारिश में खाने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि पूजा ज्यादा कुकिंग नहीं करती, लेकिन आज उनका साथ देंगी उनकी ननंद इस रेसिपी को बनाने में, और साथ ही देखेंगे ननंद भाभी का ये प्यारा सा रिश्ता।
3: देखिए आज मैं अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आलू प्याज के पकौड़े बनाने वाली हूँ, मौसम है, और अदरक इलायची की चाय, और उसके साथ हमारी ये जो बातचीत है वो जारी रहेगी। आ गई आ गई ननद जी को, स्पेशली घमंडपुर से बुलाया गया है। देखिए पति देव तो चले गए शूट पे, पति देव को जब भी काम आएगा ना, शायद वो देखिए ऐसे ऐसे मेरे पति ना वही काम करते हैं, मुझे सर आंखों पर बैठा के रखते हैं, लेकिन आज वो नहीं है, तो देखिए ननद को भेज दिया है भाई,
4: आंखों पे बैठा रखा अपनी भाभी को आज, लेकिन किचन में बिठाएंगे, काम करवाएंगे आज, दीदी के थ्रू जो है पूरा बदला लिया जाएगा।
3: यस
4: ननंद कैसी होती है, कलेशी ननंद?
3: कल नहीं नहीं नहीं, पता है मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब जितने भी टीवी में खुद सीरियल इतने किए हैं, चाहे वो सास हो, पति हो, ननद हो,
2: एमिली की कितनी याद आ
3: एमिली, मतलब एकदम मुझे, मैं अपने आप को इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ कि ये मेरी सबसे छोटी ननद है, मुझसे भी उम्र में काफी ज्यादा छोटी है, और भाई क्या ननद, मतलब मेरी सारी ननदें इतनी प्यारी है, मेरे मुझे पलकों में बैठा के रखती है, मेरी सासू जी इतनी प्यारी है, मेरे ससुर जी जो थे बहुत प्यारे थे, और मतलब पति तो ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, ज्यादा ना वरना सर पर चढ़ जाएंगे शर्मा जी एकदम। आइए आपको रात को पकौड़े खिलाएंगे हम,
2: बचेंगे अगर तो
3: बचेंगे। हाँ देखिए मैं टेस्टी तो बनाती हूँ वैसे, क्या बोलिए।
2: अभी हम ट्रेलर मतलब स्टार्ट हो जाता है, चलिए कर लेते।
0: तो आज बनने वाले हैं प्याज और आलू के पकौड़े, लेकिन पूजा ये पहली बार बनाएगी, इसीलिए वो आज थोड़ी नर्वस भी है, तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कैसी है इसकी रेसिपी, वो भी पूजा स्टाइल में।
5: अब सुनिए, मैंने बोल तो दिया है कि मैं बहुत अच्छे पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन पता है एक बात कहूँ, मैंने कभी भी पकौड़े नहीं बनाए। ये पहली बार होगा जब मैं सास बहू बेटियों के साथ मैं आज आप सबके सामने मैं लाइव पकौड़े बनाने वाली हूँ। देखते हैं, उम्मीद करूंगी कि अच्छा बने। तो देखिए, मैंने कुछ कुछ चीजें मैंने तैयार करके रखा है। तो सबसे पहले पकौड़े के लिए क्या जरूरी है, बेसन। तो बेसन यहाँ हम रखेंगे और कुछ कुछ मैंने थोड़े से मैंने चॉप करके रखे हुए थे थोड़े इंतजार में, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू चॉप मोर, और क्योंकि आज मैं सिर्फ प्याज के नहीं आलू के भी पकौड़े बनाऊंगी, कुछ मिक्स करके बनाऊंगी, कुछ अलग है। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया है कि कैसे कैसे करना है, सो हमेशा मम्मी हेल्प करती है मुझे, सो हम वो भी करेंगे। और जो थोड़े से पहले मैंने चीट किया है ये थोड़ा सा, क्योंकि यार मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले से हम कुछ काम करके रखेंगे। सो अभी सबका इतने में तो होगा नहीं, तो हम लोग थोड़े बहुत और हम लोग वी विल डू द चॉपिंग। देखो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, उतना नहीं बनाती हूँ, बट मुझे आता है। अब उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को अच्छा सा बना के खिलाऊंगी। ये क्या कहते हैं उसको ना, मम्मी की आदत है पानी में उसको रख देती है, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और देखे जो मेरी माँ और मेरी ननद एक मिनट में छिल देंगी, वो देखिए उसमें मैं लगा रही हूँ 10 घंटे। लेकिन सीखने का ऐसी तरीका होता है, हम ऐसी आगे बढ़ेंगे, कदम कदम बढ़ा।

0: नहीं इतना मैं कर लूंगी, मेरी भाभी की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकती मैं। अब काटो प्याज काटो।
1: मैम आपने आपने क्या बताया था, प्याज के बाद हमें आलू। देखिए मैं सीख रही हूँ ना, ये देखिए हमारी चॉपिंग मुन हमारे हो गए हैं। और इसके बाद आता है

0: आता है आलू का लोहा। कितना अच्छा लग रहा है ना, और जब आपकी भाभी काम कर रही हो, ननन से खड़ी होकर देख रही हो भाभी, क्योंकि ये हमें रोज रोज देखने के लिए नहीं मिलता है। भाभी शूट में रहती है तो हम रोज नहीं देख पाते, बट
1: नहीं भाभी आज काम कर रही है। सच्चाई तो बोल दो, भाभी घर पे भी रहती है तो खाना मुझसे ही बनवाती है।
2: आज मैं कर रही हूँ आलू, आलू छिल रही हूँ मैं
1: भाई। मैंने एक चीज समझ लिया है, वो मूवी में ना सही भी बोला गया था, कांदा और आलू के बगैर ना जिंदगी ही सड़ालू है। सही में जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। आपके घर पे कुछ हो ना हो, लेकिन एक कांदा और आलू होना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, कोई सब्जी की जरूरत नहीं है, बस ये बना लो। देखो इसे पकौड़े बनते, इसे सब्जियां बनती है भाई, सुकून है भाई, सुकून है। और बारिश के मौसम में तो मजा ही है। इसका भाजा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। हालांकि मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है, और आप अभी सोच भी रहोगे कि मेरा जो पकड़ने का स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है, बिकॉज़ आई एम लर्निंग। लेकिन देखिए मैटर क्या करता है कि हम सही तरीके से उसको बनाए। अगर मेरी माँ ये क्लिप देखेगी ना, वो बेचारी बेहोश ना हो जाए कि बेटा ऐसे ऐसे छिलते हैं क्या, ऐसे ऐसे छिला जाता है।

0: भाई ये कभी कस करते करते तो मेरी जिंदगी यही निकल जाएगी। शिवानी
1: बेटा
0: आजा जरा सा कद्दूकस कर दे बेटा। देखो देख देख तेरी भाभी ने चौप चौप मुंह मुंह कर दिया, ये भी कर दिया।
1: भाभी आपने इतना काम कर दिया, ओह माय गॉड।
0: ले ले ले ले ज्यादा
1: भाभी होगी, अब मैं कर लूंगी भाभी।
0: किचन उतना ज्यादा मैंने किया नहीं, ऐसा नहीं है। खाना मैं जब भी बनाती हूँ अपने ससुराल जाती हूँ तो टेस्टी बनाती हूँ, आज तक तारीफ ही बटोर रहे हैं। सो कम बनाती हूँ लेकिन कभी भी बनाती हूँ अच्छा बनता है। सो ज्यादा बाहर के काम की आदत है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं किचन में भी ध्यान देती हूँ, क्लेनलीनेस में ज्यादा ध्यान देती हूँ। बट खाना बनाने में जो एक किसी किसी के हाथों में हुनर होता है लेकिन पटपट पटपट बना लेता है, मेरे साथ मैं थोड़ा स्लो बनाती हूँ लेकिन अच्छा बनाती हूँ।
2: तो पकौड़े बनाते बनाते पूजा ने हमसे शेयर की अपनी नई फिल्म गुड़हल की कुछ खास बातें और कैसे मिला उन्हें ये किरदार।
0: बहुत सारी मेहनत है गुड़हल के पीछे और एक मूवी जब बनती है, मूवी बन जाती है लेकिन उसको रिलीज करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो थिएटरिकल रिलीज हो या OTT रिलीज हो। सो आज के टाइम पे मुझे याद है हमने ये मूवी 2-1.5 साल पहले कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद से हमारा स्ट्रगल ही चल रहा था मूवी को रिलीज करने के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सो फाइनली इट हैज़ गॉट रिलीज्ड ऑन OTT ऑन 3rd of July, हंगामा, एयरटेल, टाटा स्काई, वॉचो। और मैं अपनी ऑडियंस से, सास बहू बेटियों के दर्शकों से मैं तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप गुड़हल देखिए, बिकॉज बहुत ही ट्रू इवेंट्स है, रियल मतलब जो रियलिटी होती है ना जिंदगी की, जो लोग अक्सर फेस करते हैं उसके ऊपर ये मूवी बनाई है। बहुत सारा रिसर्च किया था हमारे डायरेक्टर ने, बिकॉज ही इज़ द राइटर, ही इज़ द प्रोड्यूसर, ही उनकी ही स्टोरी है युवराज सर की, युवराज पराशर, एंड व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत लेट में मेरी कास्टिंग हुई थी और इस मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है स्नेहा।
2: तो भाई अब बारी बेसन खोलने की, जिसका मिक्सचर तैयार होगा जिसके बाद पकौड़े तले जाएंगे।
0: अब आखिरी जो बारी है वो है हाय हाय मिर्चे, मिर्चे भाई इतनी इतनी मिर्ची डालूंगी ना मजा आ जाएगा एकदम मजा। जी सो मुझे तीखा मुझे पर्सनली पसंद है, तो इसलिए देखिए मैं सब ज़्यादा तीखा नहीं खाते लेकिन मैं थोड़ा खाती हूँ, गोलगप्पे भी खाने हैं तो मैं हमेशा कभी उसमें मीठी पानी नहीं डलवाती हूँ, मुझे ऐसा है कि तीखा दो, तीखा परम सुख प्राप्ति होती है उससे। सो मैं इसमें भी थोड़ा सा तीखा ये करूँगी। अब देखिए प्याज हो गया है मून मून चॉप चॉप, आलू हो गई है, आलू की एकदम चॉपिंग वॉपिंग हो गई है, मिर्ची हो गई है, अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। अब हम

0: फूल से भी मैच कर रहा है. सो या यस, मिर्ची डालेंगे. मिर्ची, मिर्ची के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन इसमें, ताकि किसी को एसिडिटी ना हो. थोड़ी सी अजवाइन, ये अजवाइन मुझे बड़ा पसंद है. कुछ भी करो, अजवाइन डालो. अब इसको हमें फेंटना है. जैसा जैसा मुझे बोला गया है वैसा वैसा अपन ने कर दिया है. और आप जैसा देख सकते हैं, देयर इज नो लम्स इन दिस. लेकिन इसको हम ऐसे से क्यों नहीं करते हैं? ओ सॉरी, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये उड़ रहा है और ये मट्ठा नहीं है. ये बेसन के पकौड़ी बना रहे हैं, मट्ठे की मट्ठा नहीं बना रहे हैं. देखिए, अब हम इसके बाद डालेंगे आलू. ठीक है, और जैसा कि मुझे कहा गया है कि आलू में ये जो पानी है ना, इसको निचोड़ के डालना है. अगर मुझे बताया नहीं गया होता तो मैं बारिश आ गई है. आहा, अब तो बारिश में एक्चुअली मैं, पता है, देख के बड़ा टेस्टी लग रहा है यार. मुझे भी बड़ा टेस्टी लग रहा है कि आज मैं तो कुछ तो कमाल करूंगी.
1: धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई.
0: अब जी चढ़ गई है कढ़ाई, और साथ ही साथ जरा ऑन कर दिया जाए.
1: सिका मजा चक तो लूं मैं जरा.
0: देखिए, बाकी कुछ करूं ना करूं, ये मैं कर देती हूँ. अब क्योंकि कढ़ाई चढ़ गई है तो हमें चाहिए थोड़ा पकौड़े बनाने हैं.
1: धीरे प्यार की जो आग जल गई.
0: मैं बड़ी खुश हूँ आज, क्योंकि आज मेरे हाथों से बन रहे हैं पकौड़े. और I'm very excited. I think I am the only one who is excited to eat all this pakoras.

सब लोग बहुत टेंशन में हैं कि ये क्या बन के आएगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि ये बहुत अच्छा बन के आएगा। ये हो गया अच्छे से हमारा बैटर मिक्स पकौड़ों के लिए। भाई लिटरली फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यार, और कभी सोचा नहीं था कि मुझे पकौड़े बनाते वक्त इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी कि मैंने बनाया, इतनी खुशी। वाह, रात तक बचा के रखूंगी मैं शर्मा जी आपके लिए, ताकि आप आए और टेस्ट करें मेरे प्याज के पकौड़े। हालांकि तब तक ठंडे हो जाएंगे, बट माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। क्या लगता है ये गर्म हो गया होगा ना?

ना अब गलती काबू है मितवा, पकोड़े मेरे बन गए, कितना सुकून मिला है मुझे क्या बता।

0: छठ पूजा की जो पहली जो हमने ये बनाई थी ठेकुआ, ठेकुआ भी मैंने पहली बार सास बहु बेटियों के साथ बनाया था। मुझे याद नहीं आ रहा है 2016 में भी हमने कुछ एक डिश बनाई थी, तब भी सास बहु बेटियों के साथ ही बनाई थी। और आज मैंने जो पकौड़े बनाए हैं वो भी सास बहु बेटियों के साथ। मतलब सास बहु बेटियों के साथ इतना अनोखा रिश्ता है, 16 साल का ये रिश्ता है, और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, बस यही हमेशा दुआ करती हूँ। पकौड़े बने उसके साथ चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब मैंने पकौड़ों की जिम्मेदारी दे दी है मेरी ननद को, और अब मैं बनाऊंगी चाय।
1: तो भाई अब जब पकौड़े बन रहे हैं तो गर्मा गर्म चाय ना बने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो पूजा बना रही है अदरक और इलायची वाली ये स्पेशल चाय, जिनके साथ पकौड़ों का स्वाद और भी ज्यादा निखर कर आता है।
0: तो मुझे अदरक की भी चाय अच्छी लगती है, लेकिन आजकल कुछ समय से मैं इलायची की चाय बना रही हूँ और ठंडा लगता है। बट अभी जो मौसम के हिसाब से अदरक की चाय अच्छी लगती है। बट ठीक है, मैं सबको आज पिलाऊंगी इलायची वाली चाय।

0: नहीं, ये बोला था कि भाभी तो मिल गई।
1: हाँ, अरे मैं आज आप सबके सामने एक चीज बोलती हूँ, क्यों, बिकॉज ये बहुत लोगों को पता नहीं है। बाय द वे, मुझे करण से जो मेरी शादी हुई है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ करण, इट्स बिकॉज ऑफ शिवानी। क्योंकि शिवानी ने जब मुझे पहली बार देखा था, हम कभी भी नहीं मिले, ना मैं करण से कभी मिली, ना शिवानी से कभी मिली, लेकिन पहली बार जब देखा था तो शिवानी ने अचानक से कैसे बोल दिया मुझे भाभी मिल गई। और मैं भी बड़े शॉक थी, मैं भी करण से फर्स्ट टाइम मिली, शिवानी से फर्स्ट टाइम मिली, तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। लेकिन इसके मन में पता नहीं कैसा इंट्यूशन आया था कि यही भाभी बनेगी। और सही बता रही हूँ, करण ने मुझे पसंद किया हो ना किया हो, या मैंने करण को पसंद किया हो ना किया हो, बट शिवानी ने मुझे अपनी भाभी मान लिया था। और जो मैं इस घर की बहू बनी हूँ वो शिवानी के वजह से ही बनी हूँ। इसलिए पहला रिश्ता जो है ना मेरा, वो ना शिवानी के साथ है, शिवानी के साथ है। पति बाद में आते हैं, शिवानी पहले आती है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ज्यादा है,
0: हमारी वाइब मैच होती है, वाइब मैच होती है।
2: तो भाई, ननद भाभी ने मिलकर पकौड़े और चाय की ये डिश तो तैयार कर ली है। अब बारी बारिश का मजा लेते हुए इसे खाने की, और साथ ही ढेर सारी बातें करने की।
1: इतना काम करवाया, मैं तो एक हफ्ता तक नहीं उठूंगी, एक हफ्ता तक किचन में मैं कदम नहीं रखूंगी। देखो भाई, मैंने बहुत काम कर लिया है, मेरी ननद शिवानी बहुत काम कर लिया, पकौड़े बना दिए, चाय रख दिया, सब कर लिया। अब मैं चली, टाटा बाय बाय, अब मैं इंटर नहीं होने वाली हूँ। और हाँ,
3: पकौड़े रखे
1: बड़े। और देखिए,
0: पकौड़े तो बहुत अच्छे बने, खाओ जरा।
1: अभी जब सबको खिलाएंगे ना, पहले मैं खुद ही खा लेती हूँ, मैंने बनाए। चलिए चलिए चलिए, हो गया, शिवानी सब लेकर आना। भाई, क्या पकौड़े बने हैं?

0: तो कितना मजा आ रहा है मुंबई मॉनसून
1: भाई? दिल खुश हो गया आज, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक तो पहली बात, अपने हाथों से जो चाय और मैंने पकोड़े बनाए उसका स्वाद इतना अच्छा आ गया, पहली बात तो वो अचीवमेंट वाली बात हो गई मेरे लिए, वो दिल खुश हो गया।
0: अचीवमेंट तो आपकी गुड़हल भी कर रही है।
1: yes!
0: और जो स्नेहा का जो किरदार है वो कैसा है और कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ काम करना?
1: जी पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि गुड़हल मेरे पास आई कैसे। मैं सुबह सुबह योगा कर रही थी, मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, मैम हम मूवी बना रहे हैं, और आप सबको पता है कि मुंबई में हर दिन कोई ना कोई मूवी बनाता ही रहता है। तो मैंने वो कॉल को इग्नोर कर दिया और मैंने बोला हाँ ठीक है, आप प्लीज़ मुझे सिनॉप्सिस और स्क्रीन प्ले भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। दो घंटे बीत गए और मैंने देखा नहीं, मुझे अचानक से याद आया, अरे मुझे किसी ने मूवी के लिए स्क्रीन प्ले किसी ने भेजा, मैं पढ़ तो लेती हूँ कम से कम। मैंने वो पढ़ा और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सामने से कॉल किया एंड ऑन द सेम डे मैं गई उस मूवी के राइटर और डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर युवराज पराशर जी से मिलने के लिए, हु इज़ अ फैमिली टू मी नाउ, और अभी तो उनसे इतना ज़्यादा खास बॉन्डिंग हो गया है। और जब वो मुझे मिले, वो स्नेहा को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, काफ़ी सारी लड़कियों में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स गए हैं इस ऑडिशन देने के लिए, बट उनको स्नेहा नहीं मिल रही थी। उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो, क्योंकि स्नेहा नेगेटिव नहीं है मूवी में और वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके उसकी जो आउटकम्स होते हैं लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद वो थोड़ी नेगेटिव है, बट वो है नहीं। तो एक मासूमियत वाला चेहरा चाहिए था, एक अच्छी कलाकार चाहिए थी, तो बाय गॉड ग्रेस सर को वो मुझमें नज़र आया, और उसी के उसी दिन सर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे फाइनल किया स्नेहा के रोल के लिए। मतलब मुझे इस तरह से मुझे स्नेहा का रोल मिला और इस तरह से मैं गुड़हल का हिस्सा बनी। और जैसे कि स्नेहा किरदार के बारे में बताऊँगी, बहुत ही प्यारा किरदार है, आज के टाइम पे आज की लड़कियों का किरदार है वो, कि आज के टाइम पे अगर मेरी कहीं पे शादी होती है तो एक लड़की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर एक अपने ससुराल जाती है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है उसकी अपने पति से, अपने सास ससुर से।

जब जब चाय पकौड़े खा लिए हैं तो बारिश भी आ चुकी है। ऐसे में बारिश में ना भीगे और बारिश वाला डांस ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो पूजा निकल पड़ी है मॉनसून का मजा लेने के लिए और बारिश में भीगने के लिए।

तो भाई हम तो यही कहेंगे, आप भी मॉनसून का मजा उठाइए, इस सीजन को दिल खोल कर कीजिए एंजॉय, और उम्मीद है कि यूं ही पूजा अलग अलग किरदारों में अपने दर्शकों को मनोरंजन करती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: हर जिंदगी एक रेनबो की तरह होती है, जहाँ हर रंग ना एक अलग एहसास लेकर आता है। तो कौन सा रंग बिख रहा है आज हमारी वसुधा की जिंदगी में? क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज़, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट, लेकर आएगा कहानी में ड्रामा? पर जो भी हो, देखिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वसुधा और देवांश के पास।
1: वसुधा और देव का एक्शन जैक्सन। एक तरफ गुंडों की पिटाई करती वसुधा, तो वहीं दबंगई दिखाता देव। मोहल्ले में शुरू हुआ नया बवाल। सीरियल वसुधा में आज वसुधा पहुंची है भेष बदल कर केसर को बचाने और उसका सच जानने के लिए। लेकिन यहां पर यूनियन के लोग मौजूद हैं और साथ ही है कुछ बॉडीगार्ड्स भी, जिन्होंने वसुधा को घेर लिया है। लेकिन फिर भी वसुधा बना रही है बहाने और बता रही है केसर की रिश्तेदार।

वसुधा का ये नाटक ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि जब घूंघट उठता है तो पता चल जाता है कि ये वसुधा है। ऐसे में यूनियन की ये लीडर अपने गुंडों को भेजती है वसुधा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन आज तो

कार्ड से वसुधा अकेले ही लड़ रही होती है कि उसकी मदद करने और रक्षक बनकर पहुंच जाते हैं देव, जो देखिए कैसे इन सभी को सिखा रहे हैं सबक और जमकर कर रहे हैं इनकी धुनाई।

बॉडीगार्ड्स को तो देव ने सबक सिखा दिया, लेकिन फिर सभी यूनियन की औरतों ने देव को घेर लिया और इस घेरे में अब देव है। भाई देव औरतों पे भला कैसे हाथ उठा सकता है, तो यहाँ पर भी इन औरतों को सबक सिखाने के लिए उसने वसुधा को चुना। देखिए कैसे वसुधा के जरिए वो इन सभी को सबक सिखा रहा है। ऐसे में दोनों मियां बीवी साथ साथ मिलकर इन सब का सामना कर रहे हैं। भाई देखिए कैसे वसुधा का हाथ पकड़कर देव सबकी धुनाई तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यूनियन की इस लीडर को थप्पड़ पर थप्पड़ भी जड़ रहा है, वो भी वसुधा के हाथों।

0: केसर को जब मैं बचाने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे यूनियन के सारे लोग बैठे हैं और बॉडीगार्ड्स भी हैं, तो वसुधा थोड़ी डर जाती है. तो क्योंकि वसुधा को सब पहचानते हैं, वो यूनियन वाले लोग एंड ऑल, तो वो अपना लुक चेंज करके जाती है और बंजारन बन के काइंड ऑफ. और पर फिर भी भरना तो फूट जाता है, पता लग जाता है कि वसुधा उसको बचा के निकल रही है. और जैसे जैसे मैं जाती हूँ तो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहुत मुश्किलों से हम बचाते हैं केसर को. देव आ जाता है, जब देव आके वसुधा को और केसर को रेस्क्यू करता है, और उसके बाद हम खुशी खुशी केसर को घर लेकर जाते हैं.
1: तो भाई देव और वसुधा की ये जुगलबंदी काम आई और सभी लोग 9-2-11 हो गए और केसर भी बच गई. लेकिन केसर कहीं ना कहीं वसुधा को इशारा दे रही है आने वाले खतरे का, क्योंकि वसुधा मुश्किल में जो पड़ने वाली है.
0: एक्चुअली ये बात ऐसी है कि मतलब जो हमने देखा तो वसुधा को तो एक इनर फीलिंग थी कि हो सकता है वो मजबूर हो इसलिए वो बार बार फ़ोन देखती हो. लेकिन बाद हमें बाद में पता चलता है कि केसर जो भी कर रही थी वो अपनी बेटी के लिए कर रही थी. और वो तब पता चलता है जब केसर छोड़ के चली जाती है हमारा फैक्ट्री. और उसके बाद उससे उस यूनियन वाले कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि केसर ने फाइल की है आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कि आप उनके साथ वायलेंस कर रही हैं एंड ऑल. तो हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, वो केसर नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अच्छी थी, लेडी थी और बहुत अच्छे से रहती थी. मे बी कोई बात तो है. तो वसुधा जब उनसे जाके बात करती है तो ये पता चलता है कि वो सच में मजबूर है अपनी बेटी को लेके, और ऐसा ऐसा उनके जीवन में चल रहा है. तो फाइनली ये पता चलता है. तो मतलब ऑब्वियसली सब बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने केसर को क्यों डांटा, क्यों उसे निकाल दिया.
1: भाई वसुधा तो हर मुश्किल का कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेगी, क्योंकि अब देव उसके साथ जो है. अब देखना होगा कि इसके बाद वसुधा पर कौन सी नई मुसीबत आती है. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: मत और हौसले के रंग जब एक साथ मिलकर आते हैं ना, तब बनती है जगदात्री की ये कहानी. तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में. आज

0: भाई दुल्हन का साज श्रृंगार तो बहुत देख लिया, लेकिन आज सास बहू और बेटियां पहुंच गई हैं सीरियल जगधात्री के सेट पर, जहां आप सभी के प्यारे मेहमान हैदर यानी कि शिवाय जगधात्री के लिए दूल्हे बन रहे हैं, कर रहे हैं साज श्रृंगार। कौन कहता है कि मेकअप सिर्फ लड़कियां ही करती हैं? भाई आज तो मेहमान ना सिर्फ स्किन केयर रूटीन बताएंगे, बल्कि दूल्हा बनने के लिए मेकअप भी करेंगे और तो और सजेंगे सवरेंगे भी। तो चलिए करते हैं मुलाकात मेहमान हैदर से, जिन्होंने कर ली है तैयारी अपने दूल्हे के गेटअप में आने की।
1: मुझे लगता है सबसे जो डिफिकल्ट काम है ना मेरे लिए, वो है साफा बनवाना, वो जो पगड़ी होती है ना वो बनवाना, और उसका जो कपड़ा यार बहुत चुभता है। एक तो दोनों ये कान ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से वो पकड़ लेता है, पीछे से जकड़ लेता है, तो समझ में नहीं आता। अब कोई पूछ रहा है ना कुछ, या हंसी मजाक हो रही है, हम बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे टर्न करता हूँ, क्या क्या तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग है। रेस्ट जो कपड़े हैं उसमें थोड़ी सी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि शेरवानी है, माला है, वरमाला पड़ी हुई है, और वो चुन्नी है डाली हुई, और पता नहीं क्यों बट मुझे मोजड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है यार, मुझे वो काटती हैं थोड़ी सी। तुम आधे दिन अपने खुद के स्लीपर्स वगैरह पहन के रहता हूँ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ये सब। नॉर्मल कपड़े जो नॉर्मल शर्ट ट्राउज़र डेनिम्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह डाल के हम कर लेते हैं, वो शूट ईजी होता है, बट ये तो करना है, जॉब है। डेफिनेटली यार लड़कियों को टाइम लगेगा ना, अब साड़ी है, लहंगा है, वो क्या बोलते हैं ड्रेपिंग, हाँ वो सब करने में टाइम जाता है। इतनी सारी ज्वेलरी उन्होंने हैवी ज्वेलरी कैरी करनी होती है उनको, तो वो सब पहनाना, फिर मुझे नहीं पता ब्लेड्स वगैरह यहाँ जो बनाते हैं, हाँ वो सब हो गया है, हाँ एक्सटेंशंस वगैरह हो गया, आई लैशेज हो गया, कॉन्टोरिंग, ये सब चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो टाइम तो लगेगा ना जब आप इतनी सारी चीज़ें करवाओगे तो, बट हमें भी टाइम लग जाता है यार, मेरी भी बियर्ड है, इधर से शेप देनी है, इधर से मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी मैच करनी है, पगड़ी बनाने में अच्छा टाइम चला जाता है, पगड़ी में फिर अलग से पैच लगेगा, फिर यहाँ उसका जो भी है वो लगेगा, फिर उधर से ये निकालेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ मैक्स टू मैक्स कितना ही जाएगा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट।
0: मेकअप शुरू करने से पहले मेहमान अपने स्किन को प्रेप करना कभी नहीं भूलते, और तो और न सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाते हैं बल्कि सनस्क्रीन लगाकर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, न सिर्फ यूवी रेस से बल्कि मेकअप के हार्मफुल केमिकल से भी।
1: मैं कुछ खास ऐसा करता नहीं हूँ, तो ये लोग मुझे फोर्स करने लगे थे कि मॉइस्चराइजर आपको लगाना चाहिए, प्राइमर नहीं लगाते हो आप, सनस्क्रीन लगा लो,

0: से सनस्क्रीन लगाकर मेहमान कुछ पल के लिए इंतजार करते हैं ताकि सनस्क्रीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर शुरू होता है मेहमान का मेकअप। यूँ तो लोगों को लगता होगा कि लड़कों को मेकअप की क्या ही जरूरत, भाई कैमरे के सामने आना है, स्किन को एकदम क्लियर दिखाना है तो मेकअप करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेकअप से छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स छिप जाते हैं। ऐसे में शुरू हुआ है मेकअप अंडर आईज से, जहां पर ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाया जा रहा है। करेक्टर लगाने के बाद लगाया गया है फाउंडेशन, या यूँ कह लो स्किन को इवन टोन करने के लिए बेस। बेस को अच्छे से मर्ज करने के बाद चेहरे की स्किन लगती है नीट एंड क्लीन। ऐसे में आज मेहमान का चेहरा भी चमक गया है।
1: कुछ खास नहीं है, एक मॉइस्चराइजर है, एक सनस्क्रीन है, थोड़ा सा बेस है मतलब फाउंडेशन है सिंपल, और लास्ट में कुछ पाउडर वाउडर मार के उसको फिनिश कर देते हैं। वैसे हेयर बस हम बना ही रहे हैं, आज तो पगड़ी पहननी है, हाँ बट बना लेते हैं।
0: अब जितना चेहरे के मेकअप पर ध्यान दिया जाता है उससे कई ज्यादा ध्यान बालों पर भी दिया जाता है, क्योंकि बालों को सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसे में फहमान के हेयर ड्रेसर ने बालों में झटपट स्प्रे लगाकर बालों को सेट कर दिया, जिससे फहमान लग रहे हैं कूल डूड। वैसे फहमान अपने बालों का बखूबी ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बालों से बेहद प्यार जो है।

हम वाटर स्प्रे यूज़ करते हैं, सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, और कभी कभी कौन सा हाँ हीट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो हीट प्रोटेक्टर हम यूज़ करते हैं, और डिफ्यूज़र है एक बाल को नेचुरल कर्ल देने के लिए, और हेयर स्प्रे। जैसे नेचर मुझे बहुत पसंद है, तो ये दुनिया के बेस्ट लैंडस्केप हैं, ठीक है, वहाँ के पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं, एक सीनरी टाइप के बोल दो आप, तो ये चल जाता है। कुछ कामिंग म्यूज़िक कभी कभी चालू रहता है, कभी कभी अगर हाई होना होता है तो कुछ वैसा हिप हॉप टाइप का, कभी कभी लैला मजनू के गाने बज रहे होते हैं अलग अलग जैसा मूड।

सिर पर साफा बन गया है, उसे डेकोरेट किया जा रहा है, साफे को भी ज्वेलरी लगाई जा रही है और फिर बांधी गई फहमान यानी कि शिवाय के सिर पर मुंडावली।

0: लीजिए, दूल्हे सजकर तैयार हैं, अब बारी है सिर पर तिलक लगाने की। ऐसे में उन्होंने माथे पर तिलक सजाया और तैयार हो गए हैं शादी के मंडप में जाने के लिए और जगधात्री से ब्याह रचाने के लिए।
1: तो आपका दूल्हा पूरा सज एकदम सज सवर गया है, देख लीजिए आप मुझे एक बार ऊपर से लेके नीचे तक। इस पूरे आउटफिट के बारे में मैं यही कहूँगा कि मुझे क्या लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए और उनको अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बस पगड़ी मुझे थोड़ी सी तकलीफ पहुँचा रही है, बाकी सब ठीक है, लेकिन शान है ये शादी की। सब लोग खुश हैं, जगधात्री बहुत खुश हैं, थोड़ी सी इमोशनल है, मैं इमोशनल हूँ, मिक्स्ड इमोशंस हैं क्योंकि प्यार तो उन्हें है नहीं, लेकिन शादी मैं कर रहा हूँ उनके लिए, उनका साथ निभाने के लिए, अपने मिशन के लिए। कायदे में जो मिशन सिर्फ उनके लिए ज़िंदगी में एक मिशन ही है जिस पे वो फोकस करना चाहती हूँ, मेरे लिए हमेशा मिशन भी रहा है और जगधात्री भी रही है। तो अब देखना ये है कि शादी क्या मोड़ लेती है और ये शादी का आगे चल के होता क्या है, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ रिश्ते ज़्यादा लंबे वक्त तक टिकते नहीं हैं।
0: फहमान हैदर शिवाय के किरदार में ढलकर या यूं कह लो जगधात्री के दूल्हे राजा बनकर पहुंच गए हैं सेट पर अपना सीन फिल्माने के लिए। वैसे आज जगधात्री और शिवाय की शादी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध भी चुके हैं और अब दोनों साथ में रहने की कस्में भी खा रहे हैं। इतना ही नहीं, शादी के बाद दोनों पहुंच गए हैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे में जगधात्री इमोशनल हो रही है और जगधात्री की आजी उनके भी आंसू बह रहे हैं और उनके आंसू हैं खुशी के, क्योंकि उनकी बेटी को उसकी खुशियां जो मिल रही हैं।

आज ही ने न सिर्फ जगधात्री और शिवाय को आशीर्वाद दिया बल्कि दोनों पर अपना प्यार जमकर बरसाया और साथ ही खिंचवाई उनके साथ फोटोज भी। और तो और शिवाय ने भी आज ही से वादा किया है कि वो जगधात्री की खुशियों का ख्याल रखेगा। आज ही से आशीर्वाद लेने के बाद जगधात्री और शिवाय दोनों पहुंच गए शरद के पास क्योंकि वो भी उनसे बड़े हैं। ऐसे में दोनों ने मिलकर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और फिर पहुंच गए माया के पास। माया से भी दोनों ने आशीर्वाद लिया है। माया ने खुशी खुशी दोनों को अपना भी लिया है। इतना ही नहीं, आज तो माया ने जगधात्री को अपने सोने के कंगन भी पहना दिए और एक मजबूत रिश्ता कायम कर लिया।

0: देखना होगा जिस मकसद के लिए जगधात्री ने शादी की है क्या वो मकसद जगधात्री का पूरा हो पाएगा, और क्या शिवाय जो जगधात्री से प्यार करता है क्या वो ये जान पाएगा कि जगधात्री भी उससे उतना ही प्यार करती है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: चलिए देखते हैं अब डॉक्टर आरंभी की इस कहानी में क्या होने वाला है आज। अब जिस तरह आज रेनबो के आसपास हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, जो है पॉजिटिविटी का प्रतीक, हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर आरंभी की जिंदगी भी हो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरपूर। अब देखिए उनके जिंदगी में आ गए हैं ध्रुव, लेकिन यही बात तो नहीं सहन हो रही है डॉक्टर विश्वास और डॉक्टर अवंतिका को, जो लेकर आ रहे हैं इनकी जिंदगी में अनलिमिटेड ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट।

0: विश्वास और अवंतिका का माफीनामा। नशे की वजह से घर में मचा हंगामा।
1: रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
0: सिचुएशंस को संभालती आरंभी।
2: पखंडी।

0: चला बुखार।
1: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभ में राज और नायरा की मेहंदी की रस्म में आ गया है ट्विस्ट, वो भी नशीला। असल में ये चाल अवंतिका ने चली थी, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि नशा उसे और डॉक्टर विश्वास को हो गया। ऐसे में दोनों ने भरी सभा में जमकर हंगामा मचाया। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर आरंभ ही पहुँच गई और उसने इस सिचुएशन को संभालते हुए सभी मेहमानों से माफ़ी मांगी। बेचारी आरंभी हर तरफ से परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश में लगी है। इतना ही नहीं, उसने तो नायरा के मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। लेकिन डॉक्टर विश्वास वो तो अभी नशे में टुन है और हंगामा पर हंगामा मचा रहे हैं।
2: देखो ड्रामा तो होता ही रहता है, उन लोगों की चाल उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है, वो लोग नागे डांस कर रहे हैं, उनका जहर एक्चुअली उन्हें ही मिल गया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट इट इज़ अ वेरी फन लविंग यू नो सीन टू वॉच। एंड अवंतिका दी और विश्वास सर दोनों ही बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं,
3: अच्छा परफॉर्म किया है। हम संभालने की पूरी तरह से कोशिश करें बिकॉज टंडन परिवार की इज्जत दांव पे लगी है, बट अवंतिका और विश्वास दोनों ही संभले नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं पूरी तरह से। सो एट द एंड ऑफ द सीन हम उनको लेके बाहर कर जाते हैं ताकि और तमाशा ना हो।
1: भाई आज तो आरंभी को सभी घरवालों के सामने न सिर्फ विश्वास को गुस्सा दिखाने का मौका मिला है बल्कि उसने तो अवंतिका पर भी अपनी नाराजगी जताई। ऐसे में डॉक्टर विश्वास और अवंतिका दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इस गलती की माफ़ी जरा देखिए कैसे वो सभी घरवालों के सामने पैरों पर गिर कर मांग रहे हैं।
4: अगर आज और नायरा जाके आज सब कुछ संभालते थी ना तो तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा स्कैंडल हो जाता आज। सिर्फ मम्मी जी के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ।
5: भाई अभी कर दिया माफ, अभी खड़े हो गए।
6: एक सेकेंड सॉरी दे रही है, सबको माफ कर रही है, तो आई वांट टू सॉरी मेरी तरफ से भी सॉरी। एक सेकेंड सॉरी
4: बच्ची का एहसास हो गया और सच में सभी लोग
7: बंद कर दो और तब तक बाहर मत आने देना जब तक इतना नशा पूरी तरह से उतर कर जाए।
8: देखिए व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड सॉरी बोलना बहुत इजी होता है। जब आप होश में होते हैं तो आपको सॉरी बोलने थोड़ा लगता है कि ईगो आ गए बीच में सॉरी। मेरे ख्याल से ये सीन भी इतना प्यारा है कि जहाँ पे विश्वास भी सॉरी बोल रहा है, इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शैम्पेन एंड दैट साइको एक्टिव मेडिसिन एंड एवरीथिंग, हेलुसिनेट कर रहे हैं हम सारा, तो सॉरी बोलना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग नशे की हालत में बहुत अपने लव्ड वंस को बहुत सॉरी बोलते हैं, बट दिल से बोलते या नहीं बोलते ये हमें नहीं पता। आई थिंक आरंभ इज ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि हम दोनों ने उसे सॉरी बोल दिया है। ये आई ऐसे कि मैं आरंभी और डीसी को यू नो ये दवाई मिलाकर खीर खिला रही थी, पर ये उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया, तो ये ऐसे ही भाभी, ये सब कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको शो देखना पड़ेगा। हमने बहुत क्रेजी क्रेजी थिंग्स किए हैं, मैंने और विश्वास ने नागिन डांस किया है, फिर हम यहाँ पे सॉरी भी बोल रहे हैं, सो आई थिंक पीपल विल गेट एंटरटेन्ड बाय वॉचिंग दिस, सो स्टे ट्यून्ड।

0: विश्वास और अवंतिका ने सभी घर वालों के सामने अतरंगी तरीके से आरंभी से माफी तो मांगी और आरंभी ने माफ भी कर दिया, लेकिन नशे में जो तमाशा किया है वो जब होश में आएंगे तब पता चलेगा, तो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: एंटरटेनमेंट की दुनिया भी रेनबो की तरह हमें रोजाना अलग अलग रंग दिखाती है। कभी कभी कोई न्यूज हमारे चेहरे पर ले आती है मुस्कुराहट, लेकिन कभी कभी कोई न्यूज कर देती है हमें शॉक या फिर सरप्राइज्ड। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स। दिखाएंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: लॉकअप के विजिटिंग आवर्स शुरू हो चुके हैं।
3: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं रियलिटी शो लॉकअप की, जहां पर खास मेहमान बनकर आने वाले हैं गौरव खन्ना।
4: एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।
3: और आते ही वो करेंगे फेस ऑफ आकांक्षा चमोला से। भाई इन दोनों के डिवोर्स की बातें चल रही हैं, ऐसे में ये दोनों जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देख लीजिए इसकी एक एडवांस झलक।

0: वेलकम टू दरगा कैपिटल केप टाउन।
1: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 जल्द ही आने वाला है, ऐसे में इसका प्रीमियर 1 अगस्त को होगा।
0: यहाँ जान की बाजी तो हमेशा लगती है, लेकिन इस बार बोली लगेगी डर की। यह डर का नया दौर। Go for the kill.
1: एक्टर राजेश शर्मा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। असल में वो कर रहे थे शूटिंग प्रभास की आने वाली अगली फिल्म के लिए, और सेट पर उन्हें इंसेक्ट बाइट हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

0: Fuck off.
1: My pleasure.
2: राघव जुएल जल्द नजर आने वाले हैं उनकी आने वाली नई फिल्म भाई तेरा स्टार है में। देख लीजिए इसका ट्रेलर।
3: आज रात 12:30 बजे तक मेरी बंदी लाए, गर्लफ्रेंड लाए, बहन लाए, मेरे 10,000 पाउंड चाहिए।
4: मेरी गर्लफ्रेंड अपने भाई को बोला कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला मेरी बहन प्रेग्नेंट है। इन शॉर्ट भाई के इमोशन पे खेल के अब ऑप्शन के लिए पैसे जुगाड़ रहे हैं।
5: Can I have the 500 you owe me?
6: I owe you a lot, sweetie. I didn't think you'd want it in cash.
7: एक मिस्टेक हो गया सर।
8: वो क्या है ना, अजय और जेडी ने खो गया
9: सर। ऐसा फालतू प्लान है तेरा? मैं पागल एक्टर हूँ, मैं डैनियल डेल्यूज बन जाऊंगा, मेथड एक्टिंग कर लूंगा। सिचुएशन हैंडल कैसे करूँ यार? मैंने उसे अपने गोद में पाला यार। मैंने गोद में पाला अपनी बहन को यार।
6: बड़ी बहन है ना वो।
9: कंगन गिरवी रख दे, जेवर दे दे, टैक्सी के लिए दे, टैक्सी के लिए दे यार। चल, ऑलराइट, आई एम फाइन, आई एम सॉरी।
2: अब एक रेनबो देखकर हम क्या सीखते हैं? यही कि इतने सारे अलग अलग रंग मिलकर एक तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और ऐसी ही है हमारी जिंदगी भी, जो अलग अलग इमोशन से और भी खूबसूरत बन जाती है। बस अब लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप जो जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहु और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मौसम विभाग ने की पुष्टि, अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद। दिल्ली NCR में लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा रेड अलर्ट। तेज बारिश के बाद हवा में सुधार, आज दिल्ली का AQI 48। उत्तराखंड और हरिद्वार में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। सूरत में 14 घंटों में हुई 15 से 18 इंच बारिश। IMD की अपील, सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही है मेले की तैयारियां। इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यात्रा कंट्रोल रूम में लगातार आपदा बैठकों का दौर जारी। मॉनसून में भी बनी है हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में रौनक, प्रतिदिन पहुंच रहे हैं 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में शोकेस किए गए स्विस ह्यूमनॉइड रोबोट, दुनिया के सभी बड़े नेता और मशहूर हस्तियों के चेहरे बनाने में है सक्षम।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: राजधानी में मॉनसून के झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली के तुगलकाबाद में सुबह से हल्की बारिश जारी, बारिश के बाद दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। बादलों की चादर और ठंडी हवाओं ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी, दिल्ली में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में पूरी रात बरसे बदरा, आज सुबह भी बूंदाबांदी से मौसम बना हुआ है खुशनुमा। मानसून की बारिश से दिल्ली वासियों के चेहरे खिले, ठंडक भरे मौसम के साथ राजधानी में सुहावने दिनों का एहसास। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जलभराव मुक्त इलाकों की तस्वीरें। मिंटो ब्रिज, रोहतक रोड, अंडरपास, आईटीओ, NH24, विनोद नगर समेत कई जगहों की तस्वीरें। दिल्ली NCR पर मानसून मेहरबान, मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। नोएडा सेक्टर 62 लेबर चौक पर जलभराव और सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, राहत और बचाव दलों को सतर्क किया। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली बड़ी राहत। बारिश के फुहारों से गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, स्कूल बंद, जलभराव की चुनौती के बीच लोगों ने राहत की सांस ली। गाजियाबाद में तेज बारिश के चलते कक्षा 12 तक के बच्चों की छुट्टी, लोगों से घरों में रहने की अपील। बादलों की जोरदार मेहरबानी से गाजियाबाद तरबतर, खुशनुमा मौसम के बीच कई जगह पानी भरने से रफ्तार पर लगी ब्रेक। गाजियाबाद में बारिश से सड़कों पर जमा पानी, लोगों की आवाजाही में हुई दिक्कत। रियासी में बढ़े चुनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चुनाब उफान पर, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चुनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्पिलवे गेट खोले गए, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर निगरानी बढ़ाई। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाई चेतावनी पोस्टर, नागरिकों को सतर्क रहने और हादसों से बचाने की पहल। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोर्ड, कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच सामने आई अनोखी तस्वीर, नदी की तेज धारा में भारी तादाद में बहते हुए दिखे गैस सिलेंडर। भारी बारिश के कारण HPCL पाताल गंगा के बॉटलिंग प्लांट में बहे करीब 3000 सिलेंडर। जिला प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर को घरों में ना ले जाने की अपील की। रायगढ़ प्रशासन ने नदी में बहते हुए सिलेंडर से सुरक्षा को लेकर जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश से तेज धारा में बही सड़क, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी, कई सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, पहाड़ों पर बदला नजारा, शांत वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर, प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हुआ जलभराव, सड़कों और इमारतों के परिसर में पानी जमा हुआ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अमरावती में लगातार बारिश के बीच पूर्णा परियोजना के 2 गेट खोले गए, नदी किनारे गांवों को अलर्ट किया गया। अमरनाथ यात्रा का आज 7वां दिन, बालटाल में अमरनाथ यात्रा से बढ़ी रौनक, स्थानीय दुकानदारों की कमाई में इजाफा। यात्रियों की बढ़ती संख्या से चाय, खाने पीने और जरूरत के सामान बेचने वाले विक्रेताओं को मिला बड़ा सहारा, बालटाल के छोटे कारोबारियों के आए अच्छे दिन। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पाद बेचने वालों को रोजगार के मिले नए अवसर। बालटाल में यात्रा सीजन बना रोजी रोटी का बड़ा जरिया। अमरनाथ यात्रा ने बदली बालटाल बाजार की तस्वीर, स्थानीय युवाओं और व्यापारियों के खिले चेहरे। यात्रियों की सेवा में स्थानीय परिवारों को मिल रहा आर्थिक बल, बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई का अहम मौका। चमोली में मॉनसून की दस्तक, बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी। हेमकुंड साहिब में उमड़ रही है श्रद्धा, रोज पहुंच रहे हैं 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड, बारिश और कम ऑक्सीजन भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई। उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन श्रद्धालु लगातार भगवान बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन। बारिश और भूस्खलन के खतरे के बीच यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में लगातार की जा रही है निगरानी। चार धाम यात्रा पर प्रशासन की पैनी नजर। वडोदरा में 11 लाख रुद्राक्ष से केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाने की तैयारी जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस काम में जुटे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
10: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
9: to live sports action.
11: To the near side corner, to wraparound, he scores!
9: And your favorite music.
12: You and I stargazing.
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
13: बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों।

0: कनेक्शन में।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: मेलबर्न में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, तो वहीं 30,000 भारतीयों के बीच पीएम का संबोधन, पीएम मोदी के लगे नारे। पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने और जलाशयों के जलस्तर में सुधार की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा रेड अलर्ट, तेज बारिश के बाद हवा में सुधार, आज दिल्ली का एक्यू आई 48। उत्तराखंड और हरिद्वार में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, सूरत में चंद घंटों में हुई 15 से 18 इंच बारिश, आईएमडी की अपील, सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही हैं मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में शोकेस किए गए स्विस ह्यूमनॉइड रोबोट, दुनिया के सभी बड़े नेता और मशहूर हस्तियों के चेहरे बनाने में है सक्षम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि योगिनी एकादशी की कथा स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आने वाली है योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी इसीलिए खास है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन के उपवास और पूजा पाठ से आपके जीवन में खुशहाली का प्रवेश हो सकता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि के ध्यान भजन और कीर्तन से सबका कल्याण होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं योगिनी एकादशी की महिमा और पूजन की विधि विधान।

0: कल्याणकारी है। योगिनी एकादशी की तिथि। जानिए श्री लक्ष्मी नारायण से वरदान पाने की विधि। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बनाएगा धन योग।
1: जय जय नारायण।
0: जीवन में बनेंगे समृद्धि और खुशहाली के

0: सच्चे मन से कीजिए ईश्वर की उपासना।
1: श्रीमन नारायण नारायण
0: योगिनी एकादशी के महाप्रयोग पूर्ण करेंगे आपकी हर कामना। कहते हैं योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उन सभी दोष पापों से छुटकारा पाया जा सकता है जो आपसे जाने अनजाने हो गए हों। आज हम आपको योगिनी एकादशी का महत्व बताने जा रहे हैं, साथ ही जानेंगे इस तिथि से जुड़े महाप्रयोग। लेकिन पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी की महिमा।
2: आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी या शयनी एकादशी कहते हैं। इसका इतना महत्व कहा गया है कि व्यक्ति को सारी एकादशियां मोक्ष देती है, परंतु यह तन के शारीरिक रोगों को शांत भी करती है। इस एकादशी का तो अत्यंत पुण्यफल भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात युधिष्ठिर को बताया कि जो एकादशी व्रत का योगिनी एकादशी का करता है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में, वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त कर लेता है।
0: आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि भगवान शिव के ध्यान भजन और कीर्तन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी पर नष्ट हो जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि इस तिथि पर चंद्रमा के बुरे प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। जानकार बताते हैं कि योगिनी एकादशी के बाद ही देव शयनी एकादशी की तिथि आती है। देवों के शयन के साथ ही शुभ मंगल कार्यों पर विराम भी लग जाता है, क्योंकि देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस दौरान भगवान देवाधिदेव महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। निर्जला एकादशी और देव शयनी एकादशी के बीच की तिथि पर ही योगिनी एकादशी आती है, जिससे जुड़ी पौराणिक कथा भी हम आपको आगे बताएंगे। भारत की प्राचीन परंपरा में व्रत, उपवास, ध्यान और साधना का महत्व रहा है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। योगिनी एकादशी व्रत के भी कुछ विशेष नियम हैं, तो देखिए क्या है योगिनी एकादशी व्रत का विधान।
2: योगिनी एकादशी में व्रत करने के लिए सबसे सुंदर स्नान आदि करके और भगवान के प्रतिमा को, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे किसी धातु की हो, वो सप्त धान्य का मंडप बनाकर आम और पीपल आदि के कलश में स्थापित करके पत्ते और उसपे भगवान की मूर्ति स्थापना करके पूजन करें। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो नारायण, ओम क्रिम कृष्णाय नमः, इनमें से किसी भी विविध मंत्रों में से एक मंत्र का जाप करें। द्वादशी में इसका पारायण करें तो इसका इतना पुण्य फल बताया गया है कि आपके इस जीवन में शरीर में होने वाले किसी भी असाध्य रोग को, चर्म रोग को ये शांत करता है। उसके पश्चात आपके मन की इच्छाएं पूर्ण करके आपको मोक्ष देता है।
0: स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, फिर पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाती का दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखें। सुबह और शाम 2 वेला पूजन किया जाता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयासों से तमाम रोग और बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इस दिन मानसिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी सफल होते हैं और साथ ही एक महा उपाय से नौकरी और रोजगार की बाधा भी दूर की जा सकती है। तो क्या है वो दिव्य और कल्याणकारी उपाय, बताएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच पड़ने वाली ये एकादशी इसीलिए अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो जाएंगे और भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। देवशयनी एकादशी से पहले आने वाली इस एकादशी पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके न सिर्फ जीवन की कई बाधाएं दूर की जा सकती हैं बल्कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का वरदान भी पाया जा सकता है।

0: यदि आपसे जाने अनजाने हो गया है कोई पाप, अगर आपके जीवन में हो कोई रोग या कोई संताप,
1: तेरी महिमा प्रभु है प्यारी,
0: तो योगिनी एकादशी पर इन विधियों से मुक्त हो जाएंगे आप। माना जाता है कि हरि और हर की कृपा से कट जाते हैं जन्म जन्मांतर के बंधन। इस दिव्य और परम कल्याणकारी दिन की महिमा का बखान पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है।
2: योगिनी एकादशी में भगवान के पूजा के अतिरिक्त मन नहीं भटकाना चाहिए, क्योंकि इसकी कथा में वर्णन यही आता है कि जब एक बार भगवान के परम भक्त होने के बाद भी एक भक्त ने अवज्ञा कर दी थी भगवान की पूजा में से, अपनी पत्नी की सुंदरता पे मोहित होकर, तो वो रोगग्रस्त हो गया था। तो सबसे बड़ा, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं, इधर उधर की बातों में ना।
0: प्राचीन काल की बात है, हेमाली नाम का एक माली था जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा कुबेर का श्राप मिला जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। तब एक ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मुनि के आदेश का पालन करते हुए हेमाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूरी तरीके से रोग मुक्त हो गया और उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तब से ही इस व्रत की इतनी महिमा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप स्थिति पर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी स्थिति पर किए गए भजन और कीर्तन से आपकी मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। साथ ही स्थिति पर गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। कहते हैं योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से तमाम रोग और बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इस दिन मानसिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी सफल होते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए।
2: किसी व्यक्ति को अगर मानसिक अशांति अनुभव होती है, सबसे पहले चंदन का तिलक अवश्य करें स्नान के पश्चात, और भगवान शिव का पूजन करें। उन्हें भी श्वेत चंदन लगाएं। श्वेत चंदन लगाने के पश्चात उनको विशेष तौर पे आंखे के फूल की माला चढ़ाएं। उस व्यक्ति के मन में अशांति समाप्त होकर मन एकाग्रचित और शांत होने लगता है।
0: एकादशी का उपवास रखें, पूरे दिन और रात केवल जलीय आहार ग्रहण करें, जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें, कम से कम बोलें और गुस्सा ना करें। एक और महा उपाय योगिनी एकादशी की तिथि पर फलकारी माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप नौकरी ना मिलने के कारण परेशान हैं, अगर नौकरी पाने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है, तो इस योगिनी एकादशी पर एक उपाय आपकी समस्या का समाधान भी कर सकता है। गौर से देखिए।
2: किसी व्यक्ति को अगर रोजी रोटी में दिक्कत आती है, उस व्यक्ति को विशेष तौर पे भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और इस योगिनी एकादशी का उपवास करके लक्ष्मी नारायण स्वरूप भगवान का पूजन करना चाहिए। तो श्री की प्राप्ति होने से भगवान नारायण को तो अर्पण करें ही करें, लक्ष्मी जी को भी श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या मंत्र से इत्र अर्पण करें और उनके चरणों में विशेष लाल चंदन लगाएं। उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर बहुत सुंदर रोजगार की व्यवस्था बन जाती है।
0: लाल रंग का एक आसन लें, इसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं, आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर श्रीहरि का पूजन करने के बाद आप किसी गरीब व्यक्ति को अन्न धन का दान दें।
2: किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो तो इसका उपवास करने के पश्चात ब्राह्मणों को उबटन सुगंधित द्रव्य और वस्त्र धारण करने के बाद उसके पश्चात उन्हें भोजन करा के इसका पूरा पुण्य लाभ ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर दाम्पत्य जीवन में कठिनाई चल रही हो, दाम्पत्य जीवन में बिछोह चल रहा हो, तो इस एकादशी के उपवास के पश्चात लक्ष्मी नारायण स्वरूप का आराध्य का ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं और उनको वस्त्रादि और सुगंधित इत्र आदि का भेंट करें, तो उनके दाम्पत्य जीवन की भी शुभता प्राप्त हो जाती है।
0: ज्योतिष जानकार बताते हैं कि इस उपाय से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। हमने आपको बताया कि किस तरह से योगिनी एकादशी के दिन भगवान का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करके बड़े से बड़े पाप का नाश किया जा सकता है। इस दिन एक खास प्रयोग से आप पाप और अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं, तो वो खास प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही बताएंगे योगिनी एकादशी की तिथि पर दीपक से जुड़े महाप्रयोग जो आपके जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल सकते हैं।
3: तो हम आपको योगिनी एकादशी के महिमा और पूजन विधि बता रहे थे, तो चलिए अब आपको बताते हैं इस तिथि से जुड़ा एक अचूक महा उपाय जो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति दिला सकता है।

0: योगिनी एकादशी पर होगी आपकी प्रार्थना स्वीकार। भजन कीर्तन से होगा आपका उद्धार। गीता के पाठ की करें विधि विधान से भक्ति। दीपक से जुड़े महाप्रयोग दिलाएंगे कष्टों से मुक्ति। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के व्रत में है भगवान विष्णु की शक्ति। यूं तो ईश्वर की उपासना हर दिन कल्याणकारी मानी गई है, लेकिन योगिनी एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण की साधना से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं।
1: किसी व्यक्ति को पापों के प्रायश्चित करने के लिए ही तो योगिनी एकादशी आई है। आषाढ़ मास की इस एकादशी को जो व्यक्ति उपवास रख के करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के कारण ही, पूर्व जन्मों में किए गए पापों के असाध्य कारणों से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है या शरीर के अंदर दुख उत्पन्न होता है, मानसिक पीड़ा होती है, वो भी सब शांत हो जाती है।
0: ज्योतिषी के जानकार की माने तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करके बड़े से बड़ा पाप नाश किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। एकादशी का उपवास रखें, सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करें। इस एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। भगवत गीता की 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाएं और निर्धनों को अनाज, कपड़े या पैसों का दान करें।
1: इस योगिनी एकादशी में नियम पूर्वक व्रत करें। नियम पूर्वक व्रत करने वाला व्यक्ति मन की इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इसमें भगवान नारायण को सुगंधित द्रव्यों का दान अवश्य करें, जैसे इत्र भगवान के मंदिर में चढ़ाएं या घर में ब्राह्मण को बुला के भोजन कराने के पश्चात उन्हें इत्र और वस्त्र आदि का दान करें तो आपको लक्ष्मी श्री की प्राप्ति होती है, रोग मुक्ति होती है और साथ में आपके मन की इच्छा पूर्ण होने के पश्चात आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
0: दान की महिमा पर तो हर युग हर व्रत में सर्वोपरि मानी गई है। चलिए अब आपको दीपक से जुड़े कुछ महाप्रयोग बताते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। ये उपाय धन और सुख की वृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस तिथि पर मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य रखें। मान्यता है कि इस प्रकाश से नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है, घर में शुभता, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताई ये महाप्रयोग करके देखिए। हो सकता है कि इससे न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए बल्कि आपके जीवन में आने वाले संकट भी कट जाएं। तो आप भी श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए और इस एकादशी पर तमाम दोष पापों से मुक्त हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio. Now on TuneIn. Search audio on TuneIn to start exploring.
5: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इसी बीच रथ यात्रा उत्सव के तहत काकतपुर के देवली मठ के भगवान के लिए अंसर फल भार रस्म निभाई गई, और इसके तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्दी ठीक होने की कामना के साथ ही भक्तों ने उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद अर्पित किए। अगले हफ्ते 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, और इसे लेकर भक्तों के अलावा रथ निर्माण से जुड़े कलाकार भी भावुक हैं।

0: ऊंचा शिखर।
1: ये आस्था का वो रंग है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, सारे तर्क धरे रह जाते हैं, प्रेम भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एक सार होकर सुकून के एक झोंके की तरह वातावरण में घुल मिल जाती है। ये तस्वीरें पूरी रथयात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की है, जिसके तहत काकतपुर के देउली मठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए जिस तरह से बैलों और बैलगाड़ी के साथ सज्जा की गई है, सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही हैं, जिस तरह भाव विभोर महिलाएं बार बार धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार, उनके आराध्य देव नहीं बल्कि मीठे रिश्तों की डोर से भी बंधे हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में केवल फल नहीं, उनका अगाध प्रेम, अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं, ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देउली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और उनके भाई बहन के लिए भेजा गया। काकतपुर देउली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटूडिसला यानी जन्मस्थान माना जाता है, ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल फूल तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है, तीनों रथ सज धज कर तैयार है, बस उन्हें अंतिम टच दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है, अब बस इंतजार 16 जुलाई की उस तारीख का है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीनों की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
3: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए, ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है, मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती है कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University transforming your passion into profession।
2: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। पूरे देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी, हवा की गुणवत्ता में सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खराब मौसम के बावजूद श्री हेमकुंड साहब में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही है मेले की तैयारियां। इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में शोकेस किए गए स्विस ह्यूमनॉइड रोबोट्स, दुनिया के सभी बड़े नेता और मशहूर हस्तियों के चेहरे बनाने में है सक्षम।

0: शादी के शुभ मुहूर्त का है ये आखिरी वीकेंड, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अफसोस रंधावा। तो पिछले करीब एक महीने से शादियों के बंपर मुहूर्त देखने को मिले थे, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगने वाला है। शादी मुहूर्त के 3 दिन ही बाकी बचे हैं, लेकिन मुहूर्त सिर्फ एक बाकी है। तो 4 महीने अब क्यों नहीं होगी शादी? इस महीने कब है शादी का आखिरी मुहूर्त? जानिए कब तक नहीं होगी शादियां, दोबारा कब शुरू होंगे मांगलिक कार्य और कब से होगी चतुर्मास की शुरुआत। जेएनटी पर जानिए तमाम खास सवालों के जवाब और साथ ही साथ क्या होती है देवशयनी एकादशी, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। तो शादी का आखिरी मुहूर्त आने वाला है और ये आखिरी इसलिए क्योंकि शादी और दूसरे शुभ कार्यों पर ब्रेक लगेगा। बताते चले कि शनिवार को शादी का आखिरी शुभ मुहूर्त है, इसके बाद बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में शादियां नहीं होंगी। फिर से शुरुआत होगी नवंबर में। नवंबर में मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त आएगा और नवंबर में देवउठनी एकादशी के बाद मुहूर्त होंगे। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी आएगी, हालांकि इससे पहले जुलाई में देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होगी। चतुर्मास से शुभ कार्य नहीं होते हैं, ये प्रतिबंध 4 महीने तक चलता है और ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक हैं और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। कहा ही जाता है कि श्रीहरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और श्रीहरि की अनुपस्थिति में मांगलिक कार्य वर्जित बताए जाते हैं। 11 जुलाई के बाद शादी के मुहूर्त नहीं है क्योंकि इस बार चतुर्मास 25 जुलाई से 20 नवंबर तक का है। श्री हरि का 4 माह का चतुर्मास होता है, लिहाजा देवउठनी एकादशी तक शुभ कार्य बंद रहेंगे, तब तक कोई भी शादी नहीं होगी।
1: चतुर्मास के समय 4 महीने तक सृष्टि का संचालन हमारे भोलेनाथ जी करते हैं, शिव जी करते हैं, इसलिए खूब शिव जी की आराधना करिए, खूब शिव जी में, खूब शंकर जी में जल चढ़ाइए, डेली अभिषेक करिए, शंकर जी को खूब बनाइए, उनकी पूजा करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, शिव तांडव का पाठ करिए, शिवार्चन करिए, खूब जितनी भी शिव जी की महिमा आप कर सकते हैं, शिव जी की महिमा, शिव पुराण की कथा सुनिए, शिव पुराण पढ़िए, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही है वहां से पुराण जाकर के सुनिए, क्योंकि 4 महीने शिव जी के हाथों में है, क्योंकि हमारे विष्णु जी तो क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं 4 महीने, और 4 महीने आप पत्तेदार सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है।
0: तो शुभ कार्यों का और शुभ मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले परिचय, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वान्यारा जी और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा, तीनों देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है और हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। कहा जा रहा है कि आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का।
2: जी हाँ, क्योंकि देखिए जितने भी विवाह, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदि होते हैं उन सब के जो ग्रह नक्षत्रों पे आधारित होते हैं, और इस समय जो है लास्ट जो मुहूर्त पड़ेगा वो 11 तारीख को पड़ेगा, विवाह का मुहूर्त, और उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, बहुत अच्छा टाइम। एक्चुअली वो 12 तारीख है, 11 और 12 की रात को है, क्योंकि हमारी जो गणना होती है हम सूर्योदय से पहले का समय पिछले दिन को लेकर चलते हैं, इसलिए 11 तारीख उसको माना जा रहा है, बट अदरवाइज देखा जाए तो रात्रि को 12:05 से लेकर के प्रातःकाल 5:25 जो अंग्रेजी 12 तारीख होती है उसके हिसाब से मुहूर्त बन रहा है। वेरी ब्यूटीफुल टाइम इनफैक्ट रोहिणी नक्षत्र पे है, गुरु भी उच्च के समय बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे एक संयोग यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। जिस समय विवाह आदि अगर कोई भी आप पुण्य कार्य करते हैं, स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत शुभ रहेगा। 25 जुलाई से जैसे ही देव शयनी एकादशी आ जाएगी, जो कि श्री हरि विष्णु जी चीर निद्रा, योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए, तो उस समय सारे मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए भी करे जाते हैं क्योंकि उनको पालन करता बोला जाता है, सृष्टि का पूरा संचार वही कर रहे हैं, वही सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, सो ही इज लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो समय फिर भोलेनाथ के हाथ सुपुर्द करके जाते हैं कि आप तब तक देखें, मैं जब तक बैलेंस होकर के वापस आऊं तो तब तक रहे, और ये नवंबर में कार्तिक मास की एकादशी होती है तब तक का ही रहता है, और कार्तिक मास की देव उठने एकादशी से फिर ये शुरू हो जाता है, उसके पश्चात फिर आगे।
0: बिल्कुल नंदिता जी,
2: जी जी, उसके बाद आपके आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि संयोग बन रहे हैं, फिर दोबारा तो मोह शुरू हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि 15 जुलाई से गुरु भी अस्त हो रहे हैं, जब गुरु अस्त हो जाते हैं ये पांच
0: दशा। नंदिता जी मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। ये सवाल वाना जी आपसे, क्योंकि आखिरी वीकेंड है और ऐसे में जो शुभ समय है, हालांकि नंदिता जी बताई रही थी कि शुभ समय अब केवल यही बचा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे देवशयनी एकादशी कब है, उससे पहले भी क्या कोई शुभ मुहूर्त बन रहा है?
3: जी थैंक यू सो मच नवजोत जी, जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इसमें जो एक मुहूर्त है वो एक 9 जुलाई का था, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो मुहूर्त है वो 11 जुलाई का, जिसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। वो 12:05 AM से लेकर सुबह के जो है 5:32 तक जो है ये पर्टिकुलर मुहूर्त रहेगा, उसके बाद कोई भी मुहूर्त जो है वो नहीं है। और इसके बाद सीधा जो है जब 25 जुलाई को देव शयनी एकादशी आ जाएगी, तो वहां पर जो है विष्णु भगवान जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, और जो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भगवान शिव को डेलीगेट कर जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर सावन का जो मंथ है वो हमारा शुरू हो जाता है, जो कंप्लीटली लॉर्ड शिवा को जो है डेडिकेटेड है, यानी कि भगवान शिव को वो पूरा मंथ जो है वो डेडिकेटेड रहता है। तो यहाँ पर जो है और कोई भी जो मेजर मुहूर्त है वो नहीं है। एक और भी दिखा रहा है वैसे 12 जुलाई को 6:13 से लेकर रात के 10:29 तक, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये मोस्ट ऑस्पिशियस मुहूर्त में जो है वो नहीं आता, बट 11 जुलाई का ये अंतिम मुहूर्त है, तो आप लोग इसी को ही फॉलो करो। और इसके बाद जैसे ही हमारा जो है भगवान शिव का टाइम आ जाएगा जब 25 जुलाई से, तो उसमें आप जितना भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं उतना ज्यादा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, उसमें आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप करें, शिव तांडव स्रोत को जो है सुन सकते हैं, और उसमें जो है आप जितना आप देखेंगे चारों तरफ नेचर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। इस टाइम पर आप जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे फ्लरिश करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी आप मांगना चाहते हो भगवान से, ईश्वर से, भगवान शिव से, तो इस टाइम पर आप अपनी विश मैनिफेस्टेशन में भी आप जो भी पेड़ लगा रहे हैं वहां पर आप एक संकल्प लेके लगाएं कि मैं इस पेड़ की सेवा करूंगा और मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं इस पेड़ को लगा रहा हूँ, तो आप देखेंगे बहुत ग्रो होती है आपकी लाइफ, क्योंकि नेचर हमेशा मल्टीप्लाई करती है। इसके अलावा जो है आप मेडिटेशन इस टाइम पर जितना ज्यादा कर सकते हैं, और बाहर का कम खाएं, क्योंकि इस टाइम पर एनवायरमेंट में इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो सब चीजें भी जो है आप अपने खाने में जो है अवॉइड करें। और अभी जो है 25 जुलाई तक आप जितनी भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आप विष्णु सहस्त्रनाम जो है कर सकते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद जो है वो आप जरूर लें, थर्सडे को जो है उनकी पीली मिठाई खिलाएं, केले के वृक्ष को जो है आप रेगुलर जल दें, गाय को जो है रोटी में गुड़ डाल के या रोटी में चने की दाल एक रात पहले भिगो के अगर आप वो भी करते हैं तो वो भी ये जो टाइम है आपके लिए काफी ज्यादा ऑस्पिशियस है, अगर आपको अपनी लाइफ में भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स
0: पंचांग के हिसाब से बता रहे, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 तारीख लास्ट है, लेकिन कुछ ऐसे पंचांग भी है जिसमें 12 तारीख को आखिरी तिथि बताया गया, जरा इसको भी क्लियर करते चले, कौन सा पंचांग हम लोग मानते हैं नॉर्मली?
1: देखिए
4: जो दृक् पंचांग है उसके आधार पे आपकी 11 तारीख है और 12 तारीख भी है, और 12 तारीख को पूर्णतः मुहूर्त है शादी का, ऐसा नहीं कि नहीं है, 12 तारीख के बाद फिर मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, 15 तारीख से आपकी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और फिर 25 तारीख को आपकी जो है देवशनि एकादशी है। तो ये चातुर्मास से जो प्रारंभ हो जाएगा, चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस चातुर्मास में तपस्या का विशेष जो है महत्व है। और इस भूमंडल में संसार में यदि देखा जाए तो कम से कम 66% लोग जो है भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु के आराधना के लिए ये चतुर्मास यानी 4 महीने बड़े अपने आप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन्हीं महीनों में जो है बड़े विशेष जो है तो आपकी तिथियां आती हैं, बड़े विशेष पर्व आते हैं, जिन पर्वों में विशेष तरह जो है जाप आराधना दान आदि जो है किया जाता है, और उससे आपका जीवन संवर्धन होता है, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर और सबसे बड़ी ताकत उसकी क्या है, उसका स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य को दाता कौन है, आपको दीर्घायु और निरोग स्वस्थ का आशीष किससे प्राप्त होता है, वह प्राप्त आपको भगवान शिव से होता है। तो भगवान शिव की आराधना विशिष्ट करें। इसी के बीच आपकी ये गुप्त नवरात्रा अभी जो है देवशयनी एकादशी से पहले जो पड़ रही 15 तारीख से, इसमें भी आप अपनी विशिष्ट आराधना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शादी विवाह मुंडन यज्ञोपवीत आदि का मुहूर्त बेशक नहीं रहेगा, इसके अलावा अन्य चीजें आपकी जो है पूरी खुली हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई आप जो है कार्य नहीं कर सकते हो, आप विधिवत कर सकते हो। गुप्त नवरात्रों में तो विशेष आप अपने लिए जो है शक्ति, ऊर्जा, धन संपदा, निरोग, स्वस्थ आदि आदि चीजों की आप जो है कामना कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इस एक महीने में जो देवगुरु बृहस्पत अस्त हो रहे हैं, इसमें जो उच्च के गुरु जिनके कर्क में गुरु रहे होंगे या जिनकी दशा महादशा में स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, उनका थोड़ा मंदा हो जाएगा और प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के फील्ड का कार्य भी थोड़ा मंदा हो जाएगा। तो ये होना है सिर्फ आपका 12 अगस्त तक, 12 अगस्त के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति आपके उदित हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जो समय है, इस समय का आप पूर्णतः लाभ लीजिए। मांगलिक कार्य के अलावा आपके अन्य सभी कार्य होंगे, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ आदि हर चीजें होंगी और उससे आप विशेष लाभ जो है प्राप्त कीजिए।
0: बिल्कुल, तो कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से कार्य करने वर्जित है, इस पर आगे डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब नितिशा जी, आपके पास आते हुए ग्रह दशा कैसी इस समय में रहने वाली है?
5: थैंक यू नवजोत जी और जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, विवाह तो 11 तारीख से बंद हो रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त अभी भी हमारे पास बहुत है, जिसमें विवाह मुंडन यज्ञोपवीत तो नहीं होंगे, लेकिन 18 को ही, 15 को गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं, 18 को गुरु पुष्य योग बन रहा है जो बहुत ही विरले योग है, 24 को गंगा दशहरा है, 25 को निर्जला एकादशी है, 29 को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं शादी यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार को छोड़कर। और इसी के साथ हमारे गुप्त नवरात्रे भी 15 जुलाई को शुरू हो रहे हैं और 25 जुलाई को हमारा चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास और कार्तिक मास को मिलाकर के बनता है, यानी ये वो समय होता है जब श्री हरि विष्णु तो शेष शयन निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन वो अपना कार्यभार शिव जी के हाथ, पितरों के हाथ, माँ दुर्गा जी को और गणेश जी को सौंप के जाते हैं। यानी ये वो समय है जब हम अपने भोले भंडारी को, माँ की शक्ति को पहचानते हैं, गणेश जी जो विघ्न हरता है, जो भी साल भर में हमारे जीवन में विघ्न आ रहे होते हैं उनको प्रसन्न कर, और सबसे बड़ी बात अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को प्रसन्न कर हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और जोड़ी जाती है, क्योंकि कई उसमें जैसे विक्रम संवत, शाक संवत की बात होती है, तो दिवाली से एक संवत्सर भी शुरू होता है जहां से देव उठैनी एकादशी होती है, तो वहां से गुरु महाराज जागृत होते हैं और हमारे जीवन में जो सभी शुभ कार्य है, चाहे वो बिजनेस में बढ़ोतरी है या विवाह है या मुंडन है या यज्ञोपवीत, वो सभी शुरू हो जाते हैं। इस समय आप शिव जी की, गणेश जी की, पितरों की आराधना कर, शक्ति की आराधना कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए इस चार चतुर्मास को और भी ज्यादा स्पेशल माना जाता है। और इस समय जितने नक्षत्र हमें मिलेंगे, क्योंकि अभी शनि महाराज भी वक्री होंगे, रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे और गुरु का अश्लेषा में जानना अक्टूबर के आसपास, ये सभी समय हमारे लिए बहुत स्पेशल है नवजोत जी, जो जिस समय हम अपनी पूजा कर, प्रार्थना कर, प्रभु से, परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत अहम है। यानी अभी अगर नंदा जी आपके पास मैं लौटूं इसी सवाल को लेकर, क्योंकि देखिए हमारा टाइटल भी आज के शो का यही है कि आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का, तो ऐसे में ये जो समय बचा है, ऐसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो कर लेने चाहिए?
3: जी, बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र है ना, सूर्य मघा नक्षत्र में है और केतु भी वहां पे बैठा है। मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं पितृ हमारे। इस समय एंसेस्ट्रल कर्ज, जो कि हमारे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं या पितृ दोष होते हैं, कुछ भी चीजों से अगर आपको निवृत्ति पानी है, किसी तरह से आपको वो एक्सपिएट करना है अपना कार्मिक डील्स, तो इस समय आप दान करिए, पुण्य करिए, आप ध्यान करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टाइम है, जिस समय जब तक सूर्य यहाँ पे डिग्रीज में रहेगा, और सूर्य अभी ट्रांजिट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में, आगे बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से वो उतना नहीं है, लेकिन बुध इस समय मघा नक्षत्र में फिर भी रहेंगे। तो कम्युनिकेशन विद योर एंसेस्टर्स, एंसेस्ट्रल कर्स हटाएं, ये बहुत ही उत्तम समय है।
6: ग्यारह तारीख जैसे कि रोहिणी नक्षत्र बोले, रोहिणी तो वैसे भी रोहिणी में कोई भी कार्य करिए तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आते हैं उस कार्यों के, तो अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि देवशयनी एकादशी के बाद आप कुछ कर नहीं सकते, देवशयनी एकादशी के बाद यहाँ पे जो चतुर्मास होता है जिसमें विष्णु जी चीर अपनी योग निद्रा में जाते हैं, उस समय में अध्यात्म के लिए बहुत पावरफुल टाइम होता है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड हैं या किसी भी तरह की मॉडलिटीज में है, भगवान का नाम जप आप करते हैं केवल, तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा बोला जाता है इस समय प्रजनन शक्ति धरती माँ की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा चलिए फिरिए मत। तो साधु संत जो होते हैं ना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपना मूवमेंट, या तो वो गंगा के किनारे अपने रहते हैं जैसे कल्पवास रखते हैं आपके जनवरी के मंथ में, उसी तरह से वो भी यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनके चलने फिरने से कहीं कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज ऐसी हो वो ना मर जाए। सब्जियों का जो सावन के मास में एक प्रोहिबिटेड रहता है कि नहीं खाना चाहिए उसको, वो भी इसलिए रहता है कि उस समय जर्म्स बैक्टीरिया कीड़े बहुत ज्यादा पत्तियों में लगते हैं, तो उस टू अवॉइड दैट एनी काइंड ऑफ हाइंड्रेंस एंड हाइजीन इसलिए बोला जाता है। भादो में दही का वर्जित है, अब भादो में दही मीन्स उस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इवन दही में भी हो जाता है, तो उसको बोला जाता है आप अवॉइड करिए। लेकिन ये जो 4 महीने हैं स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, तप के लिहाज से, आपकी तपस्या किसी भी प्रकार की, इवन एजुकेशन के लिहाज से बहुत उत्तम समय होता है, एकाग्रचित होकर शांत होकर के ईश्वर के साथ अपना कनेक्ट करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मल्टीफेरियस रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस समय तो भोलेनाथ अभी शक्ति आवाहन हो रहा है 15 जुलाई से, और शक्ति का जैसे ही आवाहन होगा और गुप्त नवरात्रियां चलेंगी उसके पश्चात तो सीधे सीधे द्वार खुल जाएंगे भोलेनाथ भंडारी के, और उसके बाद उनके सामने तो आप जो भी कृपा आप चाहते हैं वो मिलता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो कृष्ण भगवान आ जाएंगे, और कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाती हैं बहुत सारे, मतलब वो तो 16 कलाओं से वैसे ही भी युक्त है। तो आपको जिस तरह की भी अपनी ट्रांजिशंस अपने लाइफ में चाहिए आप उनकी भक्ति करिए। जो वेस्टर्न कंट्री इंडिया है या सदर्न इंडिया है वहां पे विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, और उस समय गणपति तो विघ्नहर्ता बोले जाते हैं, तो विघ्नु का नाश होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कार्तिक मास आता है तुलसी विवाह के साथ, वैसे ही विवाह के योग शुरू हो जाते हैं। तो दिसंबर नवंबर एंड दिसंबर बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ जाएगा, लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम पे भी आप अपनी आंतरिक यात्रा, अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करिए, आप कोई मंत्र सिद्ध करिए, कोई माला सिद्ध करिए, बहुत बहुत उत्तम समय रहता है मैनिफेस्टेशन के लिए, बहुत पावरफुल टाइम।
0: बिल्कुल मैं लौटती हूँ नंता जी, अब वाना जी आपके पास आऊंगी, हालांकि इसको लेकर थोड़ी एक ब्रीफ नंता जी ने दिया ही है, लेकिन हमारी लाइफ में अगर हम चतुर्मास की इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या होती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट इसको कहा जाता है जबकि हम शुभ कार्य उस दौरान नहीं करते?
3: थैंक यू सो मच नवजोत जी। चतुर्मास जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो जुलाई मंथ होता है, अब जुलाई मंथ का नंबर भी देखिए, नंबर 7 होता है, ये हमारे एंसेस्टर्स का मंथ होता है। अभी जैसे हमारा 7/7 पोर्टल भी गया था 7 जुलाई को, ये टाइम जो होता है अपने पितरों से कनेक्ट करने का होता है, अपने पूर्वजों से जो है हमें क्षमा मांगने का होता है। और अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अगर आपका कोई काम भी अटक रहा होता है तो वहां पर भी आप अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की इंटरवेंशन जो है इस टाइम पर मांगते हैं। ये मंथ होता है अपनी इनर चाइल्ड को जो है रीच करने का, ये मंथ होता है कार्मिक क्लिंजिंग का, क्योंकि जो भी हमारे एंसेस्ट्रल कर्माज हैं 14 जनरेशन से हमारा डीएनए ट्रैवल कर रहा होता है, तो इस टाइम पर जितना आप अपने पितरों से कनेक्ट करते हैं और जितना स्पेशली जुलाई मंथ की मैं बात कर रही हूं, जितना आप उनके आगे जो है आप दिया जला सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका जो उन्हें खाना पसंद है आप उसको जो है खा भी सकते हैं, और आगे भी जो है श्राद्ध आ जाएगा। चतुर्मास बहुत ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि ये साधनाओं का टाइम होता है, ये मंत्रों की सिद्धि का टाइम होता है, और ये सोल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का जो है ये इस टाइम पर टाइम होता है, भगवान शिव का टाइम होता है, अपनी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की क्लिंजिंग का टाइम होता है। इस टाइम पर जो है आपको करना क्या है, इस टाइम पर जितना भगवान शिव की आराधना करते हैं, और ओवरऑल भी साइंटिफिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, इस टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, मानसून बहुत ज्यादा होता है, तो धूप नहीं निकलती है, जब धूप नहीं निकलती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, और जब भी सूर्यदेव नहीं होते हैं तो हमें थोड़ी सी अंदर से डलनेस आती है, थोड़ी सी अंदर से उदासी आती है, हमारा मन उदास हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस ऑल्सो, तो यहाँ पर जो है जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते तो हम लोगों के मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए इसीलिए इस टाइम पर इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन आप करते रहिए, आप थोड़ा सा जल लेके उसमें 108 बार ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र जाप करके आप जो है वाटर चार्जिंग मेथड से उस जल को आप पी सकते हैं, या आप जो भी आपकी लाइफ की विश है वो भी आप उस पानी में डाल के पी सकते हैं। अगर मैं आपके फूड रिस्ट्रिक्शंस की बात करती हूँ इस टाइम पर, जैसे कुछ चीजें नंदिता जी ने ऑलरेडी कवर कर दी है, यहाँ पर जो है आपको दही नहीं खानी है, लस्सी नहीं है, बैंगन की सब्जी, बिकॉज उसमें जो होता है कई बार बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी है। इस मौसम में जो है आपको कॉपर के यानी कि तांबे के बर्तनों का प्रयोग जो होता है वो भी वर्जित होता है। इस टाइम पे हरी सब्जियां इसलिए मना होती हैं क्योंकि उसको जो है जब आप साफ करते हो तो कई बार छोटे छोटे कीड़े उसके अंदर निकल के आते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए यानी कि हमारी स्टमक के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आपको ग्रीन वेजेस नहीं खानी, आपको नंगे पाँव जो है नहीं घूमना है क्योंकि इस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी और अर्थिंग का भी कई बार करंट्स और शॉक्स का भी डर होता है। तो इसीलिए आप अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा आप सावधान होके जो है आपको निकलना होता है, और इस टाइम पर आपका मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन और इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का भी इस टाइम पर टाइम होता है। और जितना हो सकता है आप इस टाइम पर पेड़ पौधे लगाइए, ये आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ और आपकी मनी को भी मल्टीप्लाई करेगा।
0: बिल्कुल, सावन के महीने में कहा यही जाता है, इस पर आगे डिटेल्स आपसे जानेंगे। लेकिन अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक तो दो सवाल आपसे किए हैं कि कौन से कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने और कौन से कार्य हम फिर भी कर सकते हैं मुहूर्त के हिसाब से।
4: जी जी, देखिए तस्मात शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्रों में जो है किसका प्रमाण मिलता है, तस्मात शास्त्र प्रमाणेना पंचायतन देवता का प्रमाण मिलता है पूजा के लिए। नंबर वन भगवान गजानन गणेश, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और सूर्यादि नवग्रह। तो इन चार महीनों में जो आपने नवजोत जी पूछा, नहीं हो सकता है आपके शादी विवाह उपनयन मुंडन गृह प्रवेश आदि आदि चीज़ें जो आपके मांगलिक कार्यों में आते हैं वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कार्य हैं वो आपके सभी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा है, तस्मा शास्त्र प्रमाणेना, मान लीजिए भगवान विष्णु की पूजा थोड़ी सी कम हो सकती है, यानी उनका पूजन कम नहीं, उनके संबंधित जैसे भागवत आदि का पाठ होता है या किसी प्रकार का भगवान विष्णु से संबंधित कोई मांगलिक कार्य होता है वह कुछ कम हो सकता है, बाकी पंचायतन देवता की पूजा बड़ी अनिवार्य होती है। इसी समय के बीच में देखिए गजानन गणेश का जो है आपका उत्सव आता है, इसी समय के बीच में भगवान त्रिपुरारी शंकर त्रिनेत्रधारी जी का पावन पवित्र महीना जो है श्रावण आता है, इसी बीच में जो है भगवती दुर्गा की आराधना का समय आता है नवरात्रों का, और इसी बीच में जो है भगवती माँ लक्ष्मी का कार्तिक महीना होता है, और कार्तिक महीना जब आता है तो भगवान विष्णु का विशेष होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अपने चार महीने हैं ये तपस्या के लिए विशेष हैं, और देखिए इस पृथ्वी में ताकतवर कौन है, वही ताकतवर है जो तपस्वी है। कहते हैं कि तप के ही बलबूते पे भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, तप के ही बलबूते पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, और तप के ही बलबूते पे भगवान शिव संहार कर रहे हैं। तो तपस्या के लिए परम पवित्र और परम पावन समय यह है। इस समय पे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से पीड़ित है, वह धन संपदा से पीड़ित है, हारी बीमारी से पीड़ित है, उसका दाम्पत्य जीवन कलह क्लेशमय चल रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई बरकत नहीं हो रही है, तो इस टाइम पे वह आराधना करे, जिस चीज़ से पीड़ित हो उससे संबंधित करे। शरीर से पीड़ित है भगवान शिव की आराधना करे, बरकत नहीं हो रही है, धन धान्य में वृद्धि नहीं हो रही है, भगवान गजानन गणेश से संबंधित करे। किसी प्रकार की शक्ति या दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति है भगवती दुर्गा की करे। तो कहने का तात्पर्य यह पावन पवित्र समय है कि आप बहुत अच्छे से आराधना करके अपने जीवन को सफल और अपने जीवन को सुखद निरोग धन धान्य से परिपूर्ण बना सकते हैं। तो यह सर्वोत्तम समय है। इस समय पे जो नहीं हो सकता है वो आपका नहीं हो सकता है न्यू पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शादी विवाह, उपनयन, मुंडन, संस्कार, मांगलिक कार्य आपके नहीं हो सकते, बाकी ये धार्मिक कार्य हो सकते हैं, और इन धार्मिक कार्यों का लिए ही ये चतुर्मास कहा गया है। इसलिए जो बारंबार अभी सभी लोग जो बता रहे हैं, नंदिता पांडे आदि वान्या जी बता रही, तो यही बता रही कि कम खाना और अधिक से अधिक आप तपस्या में लीन हो, तो इस टाइम का जो आपको लाभ मिलेगा वह पूरे वर्ष भर के लिए आपको एक तरह से बूस्ट करेगा, एक तरह से आपको संवर्धन करेगा।
0: बिल्कुल, चलिए हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी मौजूद हैं, आपके पास आऊंगी क्योंकि ग्रह गोचर इस समय कैसा रहेगा और खास तौर पर अगर गुरु अस्त हो रहे हैं तो कहां किसे किस तरीके का ख्याल रखना है, क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी और कौन से शुभ कार्य हैं जिस पर जो आप विचार कर सकते हैं किए जा सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे अपने खास मेहमानों से। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: वीकेंड इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आखिरी वीकेंड है, कौन से शुभ कार्य हैं जो आपको करने हैं, आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त कब आएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कहा जाता है कि गुरु उच्च के होने चाहिए। डॉक्टर नितिशा, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि गुरु इस बीच अस भी हो रहे हैं, तो कैसी ग्रह दशा रहने वाली है? क्योंकि अगर फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो अगर किसी शुभ मुहूर्त या तिथि या चतुर्मास को नहीं भी मानते, वो भी चाहेंगे कि किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, क्या उसमें भी कोई अच्छी तिथियां निकलती नजर आती हैं?
1: थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अगर अच्छी तिथियों की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सी तिथियां मिल रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इस समय को समझे, देखिए गुरु का अस्त होना और 27 जुलाई को शनि महाराज का रेट्रोग्रेड हो जाना, यानी कुंभ राशि का फल दे देना, और रेवती नक्षत्र में ऐसा हो रहा है, तो अगर नक्षत्रों को हम देखते हैं तो ये वो समय है जब आपके कार्मिक पैटर्न दोबारा से वैसे ही होने वाले, यानी पिछले 2.5 सालों में जो शनि जब 1.5 साल से जो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, उससे पहले 2.5 साल जब वो कुंभ राशि का फल दे रहे थे, वो पूरा समय अब हमारे लिए एक्टिवेट हो चुका है। यानी जो भी हमने गलत काम किए हैं उसके गलत रिजल्ट अब हमें मिलेंगे, और जिन्होंने शुभ कार्य किए हैं उसके शुभ रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये शनि महाराज इतना कार्मिक पैटर्न अपना रिलीज करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो बहुत शुभ मुहूर्त है, जिस समय हम अपने बहुत से कार्य जो हमारे अटक रहे होते हैं, लेकिन यज्ञों पर भी, जिसे हमें सनातन धर्म में सबसे विशेष हमारा मुहूर्त कहा गया, विशेष त्योहार कहा गया है, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, ये सब वर्जित हो जाएंगे, जिसमें हमें जो भोजन है, जो गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, यात्राएं हमें इस चतुर्मास में नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो बड़े संस्कार होते हैं वो इन 4 महीनों में बंद करवा दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ 18 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र भी पड़ेगा, जो बहुत ही विरले

0: एक तरह का मुहूर्त है जिस समय हम अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। और ऐसे ही सावन माह में जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो पूर्णमासी पड़ने के कारण उस दिन भी हमें वो मुहूर्त मिल जाते हैं जिस दिन हम अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। फिर आती है जन्माष्टमी, दारुण रात्रि। दारुण रात्रि अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ मानी जाती है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए और साथ ही साथ साधना के लिए। कहा जाता है कि ये चार रात्रियां दारुण रात्रि जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ है। आप जो भी साधना करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, वो आपके सर्वश्रेष्ठ रूप से सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ साथ नव दुर्गा और गणेश का बीच में आना, जो हमारे जो गणेश महोत्सव हम मनाते हैं उसमें भी हम लोग शुभ त्योहार मना सकते हैं। इसमें एक आता है पितृ पितृ पक्ष में जब आता है महालक्ष्मी का व्रत। महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन भी हम अपने शुभ कार्यों को मना सकते हैं। जो कार्यों में हमें ब्लॉकेज आ रही है उस दिन करने से या लक्ष्मी का पूजन करने से, व्यापार वृद्धि के लिए कोई काम करने से, कोई पूजन करने से हम उस दिन को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और नवदुर्गा के आते ही हम जो 10 के 10 दिन है हम उनको शुभ मानते हैं। लेकिन हाँ, देव उठायनी एकादशी जो 20 नवंबर को मनाई जाएगी उससे लेके 11 दिसंबर तक हमें वो विशेष मुहूर्त मिल जाएंगे जिसमें हम यज्ञोपवीत, शादियां और मुंडन सभी संस्कारों को कर सकते हैं, जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं।
1: बिल्कुल
0: इसमें नवजोत जी, मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे श्री हरि विष्णु भक्ति से प्रसन्न होके, राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होके 4 माह पाताल में बिताते हैं, वैसे ही मनुष्यों की भक्ति से प्रसन्न होके हमें शक्ति, शिव, गणेश और अपने पितरों का आशीर्वाद इसी 4 माह में विशेष रूप से मिल सकता है। तो ये वो 4 माह है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पालन आरा नहीं है, लेकिन अब वो अपना कार्यभार इन देवताओं के पास, परमात्मा के पास छोड़ा है। तो हम इन 4 महीनों में अपनी शक्ति, ऊर्जा, अपने पाचन शक्ति को, क्योंकि हमारा जो सनातन
1: बिल्कुल
0: धर्म है
1: लतिशा जी,
0: वो बहुत ज्यादा गहरी सोच रखता था कि ये 4 माह अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साधना का ध्यान रखें, उपासना का ध्यान रखें और इसमें ट्रैवल और विवाह अगर हटा दिए जाए तो ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दान
1: बिल्कुल
0: करें, पूजा करें, जप करें, आपके लिए बहुत शुक्रिया।
1: नंदिता जी, अब आपके पास आती हूँ क्योंकि इस बीच ये सवाल हालांकि मैं नितिशा जी से पूछना चाह रही थी लेकिन आप इसका जवाब दे दीजिए। गुरु भी अस्त हो रहे हैं, कैसी ग्रह दशा इस बीच रहने वाली है, किन के लिए बहुत फेवरेबल होगा और किन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, संक्षेप में बताते चलिए भी।
2: देखिए, गुरु जब अस्त होते हैं ना तो मेजरली क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आलस्य आ जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। इट इज प्लैनेट ऑफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, डिवाइन विजडम, अबंडेंस। किसी भी चीज की अच्छी चीजें जो होती हैं वो सब देव गुरु बृहस्पति से अटैच्ड है। जब वो अस्त हो जाते हैं तो इन सारी चीजों में एक धीमी गति आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि खत्म हो जाती हैं चीजें, लेकिन धीमी गति आती है। अब जैसे मेष राशि वाले हैं तो उनको घर परिवार में थोड़ा सा परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी या लोग थोड़ा समझेंगे नहीं है, माता की सेहत की तरफ देखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों को अपनी पर्सनल हेल्थ की तरफ, अपनी कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देना है। जेमिनाइज को अपनी आर्थिक मामलों की तरफ खास ध्यान देना है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ढिलाई बरतेंगे। और कर्क राशि वालों को मेंटल स्ट्रेन्स रहेंगे, इस समय रेस्टलेसनेस की फीलिंग रहेगी, कोई ठीक से सुझाव उस तरह की चीजें नहीं आएंगी। वहीं सिंह राशि वालों को एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा अवॉइड करें चीजों को, स्ट्रेंजर से मिलना या अननेसेसरी यात्राएं, अननेसेसरी खर्चे ना करें। कन्या राशि वालों को होगा तो वहां पे आप शेयर मार्केट्स वगैरह में अगर इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि बुध ग्रह से प्रभावित है, बुध इस समय रेट्रोगेट भी हैं, अस्त भी हैं और गुरु भी अस्त हो जाएंगे, तो इस समय शेयर मार्केट की तरफ खास तौर पे सभी को, नॉट ओनली कन्या राशि, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत अपहीवल्स होंगे, एकदम से उतार चढ़ाव की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। वहीं तुला राशि वालों को बोले तो कार्य क्षेत्र की तरफ खास तौर पे आपको ध्यान देना है, बॉसेस के साथ बना के रखने की, जो बॉसेस अभी तक फेवरेबल थे वहां थोड़ा सा यहाँ पे एक अनबन की स्थितियां बन सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, इस समय बहुत ब्यूटिफुल टाइम, जैसे कल है एकादशी है, योगिनी एकादशी पड़ेगी और योगिनी एकादशी के दिन ही आप देखिए 11-11 पोर्टल खुल रहा है। 11-11 यानी कि डायरेक्ट मास्टर नंबर होता है 11, डायरेक्ट कनेक्ट विथ श्री हरि विष्णु। कल ध्यान अर्चना अगर आप करते हैं और देवगुरु बृहस्पति को भी नारायण कंट्रोल करते हैं तो वहां पे आपकी बैलेंसिंग बहुत सारी हो जाएगी। धनु राशि वालों को इस समय तो बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, राधा, कि क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे तो उनके जो अष्टम स्थान पे गुरु की इस समय प्रवृत्ति चल रही थी वो कम हो जाएगी और थोड़ा रिलैक्स महसूस करना शुरू करेंगे। वहीं मकर राशि वाले हैं तो वैवाहिक जीवन में या अगर बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो वहां पे आपको खासतौर पर फोकस देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी एक जोन में जा रही थी और अच्छी चीजें हो रही थी वो थोड़ा मध्यम गति से आगे बढ़ेंगी। कुंभ राशि वालों को हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, कर्जे अगर आदि हैं एकदम से पॉपअप करने शुरू हो जाएंगे और रोजमर्रा सर्वेंट्स वगैरह के साथ भी कुछ कुछ एक टसल रहता है। मीन राशि वालों को अपने अध्यात्म में, अपनी एजुकेशन की तरफ, अपने इंटरव्यूज आदि हैं स्पेशल फोकस, क्योंकि ये जो लगभग 28 दिन का समय है गुरु के अस्त होने का, इस समय में जो भी आपकी प्रोविजन से जो करना है उस समय आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आप करें या ओम क्लैं कृष्णाय नमः का पाठ करें, सभी की राशि वालों के लिए है। इससे आपकी जो गुरु के अस्त होने की जो स्थिति है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, गुरु दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो फिर वापस आपके लिए अच्छी चीजें लेके आएंगे, अच्छे चेंजेस लेके आएंगे। घबराना नहीं है, कल का पोर्टल बहुत अच्छा सुंदर पोर्टल है, गुरु पूर्णिमा के बाद आएगी वो तो और भी सुंदर है, टू कनेक्ट विद द डिवाइन गुरु। आदि गुरु से कनेक्ट करिए क्योंकि आदि गुरु उस समय पे आपका कंट्रोल करना शुरू करेंगे, महादेवी को आदि गुरु बोला जाता है इस समय और वो तो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। सावन का महीना भी आ जाएगा तो हर सोमवार को आप शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाएं या बेलपत्री डाल करके स्नान करें, उससे भी नेगेटिविटी हटती है। एक चुटकी हल्दी डालें जल में और फिर उससे आप स्नान करेंगे तो गुरु के अस्त का प्रभाव काफी हद तक खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल, एक बार वान्या जी अब आपके पास आऊंगी क्योंकि हम कह रहे हैं कि शादी के मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है। शादी के मुहूर्त के साथ साथ अगर हम बात करें कि शुभ कार्यों के मुहूर्त का भी आखिरी वीकेंड है, कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमें तुरंत से कर लेना चाहिए?
3: देखिए अभी जो है फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही मुहूर्त जो है वो बचा हुआ है, ये 11 जुलाई का है। तो अगर आपको लगता है कि कोई गृह प्रवेश पेंडिंग है आप लोगों का या कोई मुंडन पेंडिंग है, अब मैरिज तो इतनी जल्दी आप ऑल ऑफ अ सडन जो है नहीं प्लान कर सकते, एंड डेफिनेटली जिन लोगों के मैरिजेस प्री प्लान्ड हैं तो वो कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी में जैसे कोई फॉरन जाना है आपको, किसी वीजा या डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे अगर आपको कोई मैरिज करनी है तो वो आप एक सिंपल मैरिज है या कोई कोर्ट मैरिज की इस तरह के सिचुएशंस हैं तो वो जो है वो आप 11 जुलाई को जो है कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आगे भी जब 15 जुलाई आएगी तो वहां पर भी जब गुप्त नवरात्रि शुरू होगी जो मेनली मंत्रों की सिद्धि का साधनाओं का जो होता है टाइम होता है साधकों के लिए, ये नवरात्रि जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। देवी की ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में जब इनकलकेट करना चाहते हैं, जो लोग भी 10 महाविद्याओं को जो है आप अपनी लाइफ में जो है साधना चाहते हैं वो समय भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड धीरे धीरे फॉलोड बाय बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हरियाली तीज आ गई, फिर आपकी जो है गुरु पूर्णिमा आ गई, फिर आपकी नाग पंचमी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ आ जाएंगी। पर अभी जो खास मुहूर्त है आपको कोई शिफ्टिंग करनी है ऑल ऑफ ए सडन तो आप शिफ्ट जो है वो आप कर लीजिए, उसके बाद आपका कोई एडमिशन है वो आप कर लीजिए, आपका कोई वीजा जो है वो अप्रूवल के लिए है, आपका कोई वीजा प्रोसेस चल रहा है वो आप जो है आप कर सकते हैं, या फिर आपको जो है कोई गृह प्रवेश करना है वो कर लीजिए, कोई अगर आपको न्यू बिजनेस का भी जो अगर आपको कुछ करना है तो वो भी आप जो है 11 तक जो है आप इसको फिनिश कर लीजिए, या इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि हमें कोई चीज परचेज करनी होती है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज, तो वो चीज जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। हालांकि मेन जो रिस्ट्रिक्शंस आती है वो शादी विवाह और मुंडन पर ही आती हैं जो 4 महीने का टाइम होता है, लेकिन स्टिल इफ यू आर अ फर्म बिलीवर तो आप जो है इस टाइम पर कर सकते हैं। और ये जो टाइम है इसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऑर्गन्स और बॉडी और सोल की क्लींजिंग का टाइम है, जितना आप कम खाएंगे जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलेगा और आपके ऑर्गन्स की हीलिंग होगी, और आप अपनी सेल्फ हीलिंग भी कीजिए। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चलने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर जो है जितना हो सकता है, मैं कहती हूँ अभी 2 मंथ्स आप लोगों ने कोई भी प्लांट्स नहीं जो है हम लोगों ने नहीं लगाए थे, क्योंकि उस टाइम पर प्लांट्स खुद को ही सरवाइव करना प्लांट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। बट इस टाइम पर आप जो भी बीज बोएंगे वो जिस इंटेंशन से बोएंगे वैसा ही जो है कहते हैं ना जो जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, तो इस टाइम पर जो है आप बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से ज्यादा प्रकृति को बचाएं और माँ वसुंधरा का आशीर्वाद जो है इस टाइम पर लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं इस टाइम पर।
1: बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी वीकेंड है शुभ मुहूर्त का, इसके बाद अब देवशयनी एकादशी, 4 महीने योग निद्रा में रहेंगे श्री हरि विष्णु, कब फिर उसके बाद शुभ मुहूर्तों की शुरुआत होने वाली है?
4: जी देखिए देव उठान जैसे देव शयनी एकादशी 25 तारीख को है जुलाई में, उसी प्रकार देव उठान एकादशी आपकी आएगी नवंबर में। तो 20 नवंबर को देव उठान एकादशी है, 22 नवंबर से आपके जो है शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इन चार महीनों के अंतराल में आपको क्या करना है ये मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, आपके घर में जो है बरकत नहीं हो रही है, आपका व्यवसाय व्यापार नहीं चल रहा है, घर में आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर में बहुत ज़्यादा जो है गरीबी हालात से गुजर रहे हैं, तो भगवान गजानन गणेश का आप यह मंत्र जो है कंटिन्यू जपिए। क्या? ओम नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते यस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्न विनाशिनी शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः। अब यह बड़ा मंत्र नहीं हो पा रहा है तो ओम गंग गणपतये नमः इसका भी जाप करेंगे तो इससे आपको सफलता मिलेगी, या गणपत्य अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। सेकंड में हारी बीमारी से, यहाँ तक कि वेंटिलेटर पोजीशन पे यदि आप गुजर रहे हैं, बड़े से बड़ा भीषण कोई आपके शरीर में बीमारी पली हुई है, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या भगवान शिव के आप शिव महिमन का या शिव तांडव का या आप जो है भगवान शिव के शिवाष्टक का या लिंगाष्टक का या पंचाक्षर स्तोत्र का किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, विशेष लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र में आपको बोल के बताता हूँ। ओं ह्रों ओं जूं शाह ओं भूर्भुवा स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं भूर्भुवा स्वरों जूं शाह ह्रों ओं। इस मंत्र का जाप करेंगे निश्चित रूप से आपके जो शरीर में बीमारी है वह जड़ से खत्म होगी। और भगवान शिव क्या हैं? कल्याण के दाता हैं। आगे आप चलिए, आपको यदि शीघ्र और अतिशय लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, व्यवसाय आपका बहुत अत्यधिक बढ़े, तो आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या श्री सूक्त का जाप करें या ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आगे आपकी नवरात्रे हैं, आप इस बीच भगवती के मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या अब बचे भगवान सूर्य तो सूर्य के लिए नित्य आप भगवान सूर्य को जल दें। पंचायतन देवता की आराधना यदि आप करते हो तो जीवन की हर प्रकार की आपकी परेशानी, हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की बाधा आपकी नष्ट होगी। ऐसी कोई इस पृथ्वी में चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सकल पदार्थ यही जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। यदि आप प्रयास करते हो तो इस संसार में सकल जगत में वह हर चीज प्राप्त हो जाएगी जिसकी आप जो है कामना करें,
1: इच्छा करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा, चलिए आखिरी सवाल अब आपसे चलते चलते, शादी के शुभ मुहूर्त का ये आखिरी वीकेंड है लेकिन इसके बाद शुभ तिथियां हमें कब मिलेंगी, कौन कौन सी हैं?
0: जी बिल्कुल, तो जैसे कि 20 नवंबर से श्री हरि विष्णु जाग जाएंगे और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले 21 नवंबर बहुत शुभ मुहूर्त है, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर। उसके बाद दिसंबर में 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, 11 दिसंबर तक फिर से वो मुहूर्त हमें मिलेंगे जो बहुत शुभ रहने वाले हैं इन दो महीने में। लेकिन इसमें नवजोत जी, इन चार महीनों में क्या नहीं करना और क्या करना है एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, आर्थिक निवेश करने से बचे, रिश्तों में संवाद बनाए रखें, अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करें, कानूनी मामले से दूर रहें और जितना हो सके पीली चने की दाल का अगर हम लोग दान करते हैं हर बृहस्पतिवार तो इस समय चार माह में बहुत शुभ माना जाता है।
1: नहीं लेकिन कहने को तो इस बीच सावन महीना भी आ रहा है, दान केवल विष्णु जी का होगा क्या?
0: नहीं नहीं, सावन में तो देखिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम भांग अकोड़ा
1: भगवान शिव नाराज ना हो जाए ना
0: सब चढ़ाते हैं, हाँ जी गणेश जी को भी प्रसन्न करते हैं, लेकिन ये चार माह अगर अपनी सुख शांति के लिए सभी लोग धार्मिक पुस्तकें और चने की दाल का अगर दान करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा, हमारे एंसेस्टर की कृपा हम पर बनी रहती है। तो जैसे जैसे त्योहार आए वैसे वैसे दान करें, वैसे वैसे जाप करें, वो बहुत जरूरी है, लेकिन चार माह जितना जाप करते हैं जितना दान करते हैं उतना शुभ रहता है, उसका 10x फल हमें प्राप्त होता है।
1: चलिए शुभ मुहूर्त का है ये आखिरी वीकेंड, जो कोई भी शुभ कार्य बचा है जल्दी से इसको निपटा लीजिए। हमारे तमाम खास मेहमानों से हमने आपको टिप्स भी दिलवाए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और इसके बाद शुभ मुहूर्त कब शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी।
2: जेल का नाम सुनते ही सजा और सलाखों की तस्वीरें सामने आ जाती, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर की एक जेल कैदियों को नई पहचान और नया हुनर भी दे रही है। यहाँ कैदियों के हाथों से तैयार किए गए मुक्ति ब्रांड के मसाले, सत्तू और दूसरे उत्पाद अब जेल की चार दीवारी से निकलकर बाजार तक पहुंच रहे हैं और लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं।
3: कहने को ये जेल है, लेकिन यहाँ मुक्ति की अनोखी बयार बह रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल इन दिनों अपने खास मुक्ति ब्रांड से पहचाना जा रहा है। बंदियों के हाथों तैयार किए गए इन उत्पादों ने न केवल अलग पहचान बनाई है, बल्कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट की डिमांड जेल से बाहर भी तेजी से बढ़ी है।
4: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद अब सेल से लेकर के मॉल तक पहुंचने लगी है और उसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी हो रही है, क्योंकि इसकी शुद्धता और गुणवत्ता दोनों बेहतर। हमारे साथ जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या उत्पाद तैयार हो रहा है और उसका क्या रिस्पांस है।
5: ये मुक्ता जो निर्माणशाला इकाई है, ये तो पूर्व से ही चला आ रहा है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में, परंतु इसका रिवाइवल जो हुआ है विस्तारीकरण पुनः 2023 में इसका मुक्ति ब्रांड के नाम से हुआ है। वर्तमान में मेनली सभी तरह के मसाले, विभिन्न सामग्री बन रही हैं, जैसे मसाले हैं जो कि अभी हम लोग, और सरसों तेल जो कि मॉल में भी हम लोग यहाँ खादी मॉल में भी सप्लाई कर रहे हैं।
3: जेल के भीतर मुक्ति नाम की आर्थिक क्रांति ने कारागार के मायने बदल दिए हैं। यहाँ जेल के कैदी पूरी शुद्धता के साथ हल्दी, मिर्च, धनिया जैसे बुनियादी मसाले तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सत्तू, सरसों का तेल, साबुन और हाई क्वालिटी के लकड़ी के फर्नीचर भी जेल में तैयार किए जा रहे हैं।
5: रिस्पांस उसका शहर में भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसका इन्वेंट्री चेक करते हैं और यहाँ से इन्वेंट्री भिजवाते हैं, और अपने कैंपस में भी एक मुक्ति का आउटलेट है जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं खुद, और स्टाफ लोग भी परचेस करते हैं, परिजन आते हैं वो लोग करते हैं, कोर्ट के लोग भी आते हैं वो लोग भी करते हैं, तब तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है।
3: जाहिर है जेल के भीतर बन रहे इन उत्पादों का खुद में एक ब्रांड बन जाना एक शानदार कहानी के साथ शानदार पहल है। जेल में कैदियों की सोच को कैसे बदला जाए और रिहाई के बाद उन्हें कैसे आत्मनिर्भरता की राह पर लाया जाए, मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल उसकी एक मिसाल बनकर सामने आया है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे।
2: और आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको दिखा देते तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
6: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए, ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती है कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जो कमान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है, बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
7: जय भारत माता की, जय हिंदू धर्म की, जय गो माता की, जय।
6: अब इन तस्वीरों को देखिए, इन जराब का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए, कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा, बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: देवघर एक बार फिर से आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ का साक्षी बनने जा रहा है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम पूरी तरह से सजने सवरने में लगा है। मंदिर परिसर से लेकर पूरे देवघर शहर तक तैयारियां अंतिम चरण में है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर समेत परिसर के सभी 22 मंदिरों का रंग रोगन किया गया ताकि लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य और दिव्य तरीके से किया जा सके।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: योगिनी एकादशी पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूँ नवजोत रंधावा। देखिए कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक बिल्कुल जारी है। आपको अपडेट बस इसी बात से मिल जाएगा कि हम सब लोग आज कितनी देर में ऑफिस पहुंचे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि दिल्ली NCR का हाल क्या है। आप बताइए कितनी देर लगी ऑफिस पहुंचने में?
12: बस थोड़ी देर में एक स्टोरी डालने वाली हूं, आपको पता चल जाएगा। इतनी बारिश वाकई हमारे इलाके में ना वाटर लॉगिंग होती नहीं है, लेकिन आज वाटर लॉगिंग भी थी और बहुत दिक्कत हुई नोएडा में, बहुत दिक्कत हुई।
2: नॉर्मली आप कितनी देर में पहुंचे?
12: नॉर्मली 20 मिनट,
2: और आज
12: आज और ज्यादा, मतलब आप ले लीजिए 20 मिनट और जोड़ लीजिए।
13: तो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, मैं 10:15-10:20 के आसपास कैब बुक करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो मिल जाती है 5 मिनट के अंदर, 11 बजे तक मैं पहुंच जाती हूँ। तो आज मैं 10:15 से लेकर 11:15 तक कैब ही बुक कर रही थी। तो 11:15 तो मैंने फील कर लिया कि शायद मैं शो नहीं कर पाऊंगी, 11:11 बजे मेरी कैब हुई और मैं पहुंची हूँ 11:40 पे।
2: तो दिल्ली और NCR की सड़कों का हाल क्या है ये आपको दिखाएंगे। वैसे ये कैब वाला इशू आज सिर्फ शगुफ्ता के साथ नहीं आया, ऐसे बहुत से लोगों के साथ आज इशू आया है। जाहिर सी बात है कि जब बारिश ऐसी होती है तो फिर कैब वाले भी बहुत जल्दी बुकिंग नहीं लेते, उसका सीधा सा कारण है वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है दिल्ली NCR में। लेकिन बावजूद इसके इस मौसम का मजा किस तरीके से लोग ले रहे हैं ये सब आपको आगे बताएंगे।
12: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए मॉनसून की बात तो करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जिसका इंतजार था आखिरकार वो आ गया है, मॉनसून, बारिश का सीजन, लेकिन उसके साथ क्या क्या चुनौती लेकर आया है उसकी बात भी करेंगे। साथ ही चाय पर चर्चा के दौरान अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ समेत चारों धामों पर कैसी चल रही है तीर्थ यात्रा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही सावन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं दिखाएंगे आपको।
13: मौसम की बात कर ली, दोनों में से किसी ने चाय की बात नहीं की, लॉन्ग वाली चाय आई है आज चाय पर चर्चा में, इट्स सो गुड, यू शुड ट्राई इट।
12: शगुफ्ता, आपने आते साथ जैसे तारीफ की है, मैंने आप ही से ये डलवाई है, एंड इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी चाय।
13: नवजोत के कप अभी नहीं है हाथ में, आप जरा हेडलाइंस पढ़ाइए हमसे, फिर हम ये कप भी पकड़ेंगे। लेकिन फिल्मों की दुनिया में लेकर चलते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह की रामायण का ट्रेलर 18 जुलाई को भारत मंडपम में रिलीज होगा, और बेबी डू डाई डू की रिलीज के बाद एक्ट्रेस हुमा कुरैशी क्यों पहुंची कश्मीर। साथ ही महेश बाबू का फिल्म वाराणसी से फर्स्ट लुक क्यों हो रहा है वायरल, सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखते हैं पहले हेडलाइंस।
14: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
12: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से दी राहत, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बात, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही है मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50,00,000 से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर RPF जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान बना देवदूत।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जो शुरुआत में ही माहौल बना दिया गया था यहाँ पर मॉनसून का, बारिश का, वाटर लॉगिंग का, खबरें उसी से हम शुरू करेंगे। देखिए मॉनसून के बादल कल से जो रह रह कर बरस रहे हैं, उसके बाद तो गर्मी और उमस का मानो नामो निशान मिट गया है। क्यों बताइए,
1: पता है दिल्ली वालों अच्छा को मौसम, हाँ अच्छा मौसम के साथ साथ AQI इतना अच्छा हो गया है कि दिल्ली वालों को ना आदत नहीं इतने अच्छे AQI की, और कहा जा रहा है कि 60 के आसपास AQI
0: एग्जैक्टली है। और कल शायद या आज शायद बता रहा है 49 AQI, जो कि वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें सांस इतनी अच्छी लेने की आदत नहीं है,
1: कहीं खुशी कहीं गम वाली बारिश आई है हमारे लिए, कहीं बहुत वाटर लॉगिंग है,
2: बहुत अच्छा लगता है,
1: और कहीं AQI बहुत अच्छा है।
2: आपको फील होता है कि ये AQI में आप कितनी आराम से, ये फील पता कहाँ आता है, पहाड़ों में जाकर आता है,
0: पहाड़ों पे
2: ऐसे लग रहा है उत्तराखंड हम पहुंच गए हैं, वैसा एहसास आपको दिल्ली NCR में हो जाए तो और क्या चाहिए आपको।
0: बिल्कुल, तो अच्छी और स्वच्छ हवा हमें मिल रही है साफ, साथ ही गर्मी और उमस से राहत मिली है। बहुत ही चिपचिपी गर्मी हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, इस बीच उमस बढ़ गई थी
1: कल मॉर्निंग तक।
2: ह्यूमिडिटी मतलब ऐसी गर्मी है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, बाहर तो आप थोड़ी देर भी खड़े हो पाए तो
1: अभी मुझे अभी पता ये भी चला है कि कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है।
0: एग्जैक्टली, और जहाँ तक शगुफ्ता भी बता रही थी बारिश की वजह से रात 2 बजे तक आप जग गई।
1: ये रील बना रही होगी 2 बजे
2: तक, 2 बजे तक रील नहीं बना रही थी, काम कर रही थी,
1: रील बनाना भी काम
2: बिल्कुल होते और
0: वो भी, और सुबह से तो 2 बजे का अपडेट इन्होंने हमें दे दिया कि रात 2 बजे तक बारिश हो रही थी, और मुझे जो जहां तक मालूम है मैं सुबह जब उठी तो सुबह 6 बजे से मैं बारिश देख रही हूँ, लगातार जमकर बारिश हो रही है। तो मौसम कुल मिलाकर बहुत ही खुशगवार खुशनुमा हो गया है, गाजियाबाद नोएडा गुरुग्राम हर जगह जब आज हम बारिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है।
2: जैसे हम तीनों के चेहरे खिले हुए हैं वैसे सबके चेहरे खिल गए हैं क्योंकि मौसम ऐसा है। तो NCR दिल्ली NCR के लोगों के लिए जाहिर सी बात है गुड न्यूज है, एक तो गर्मी से आपको छुटकारा मिला है, दूसरी तरफ राजधानी में जिन जगहों पर बारिश के बाद बेशुमार पानी भर जाता था वहां आवाजाही आज के दिन सामान्य नजर आई है, मतलब उनके लिए जाहिर सी बात है एक गुड न्यूज है। तीसरी खास बात यह है कि बारिश के कारण प्रदूषण जिसकी हम बात कर रहे हैं कि AQI कई जगह पर कम हो गया है।

0: दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। कहीं रिमझिम बरसात हो रही है तो कहीं तेज बौछारें पड़ रही है। रात भर हुई बारिश के बाद भी आसमान में बादलों का डेरा है। तमाम इलाके बारिश के रंग बिरंग गए हैं। हरियाली में नई जान आ गई है। मॉनसून की इस मेहरबानी के कारण पिछले दिनों तेज धूप में तप रही धरती को तरावट मिली है और धुली हुई धरती की साफ सुथरी तस्वीर जगह जगह देखने को मिल रही है। इसकी वजह ये है कि दिल्ली में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कल तक तेज वर्षा हो सकती है।
1: एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकती है। कल थोड़ा कमी रहेगी और लेकिन कल के लिए भी हमारा येलो अलर्ट है और परसों के बाद फिर रेन और कम हो जाएगी। उसके लिए हमारा ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। उसके बाद जनरली क्लोडी स्काई रहने का ही अनुमान है।
0: आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। इसके कारण तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली। हालांकि फिलहाल बारिश के दौर को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें। साथ ही अगर आप सफर की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले मौसम विभाग की ताज़ा एडवाइजरी जरूर देख लें।
2: सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि बहुत ज्यादा जो आसमान में बादलों का डेरा है वो बहुत घना है और कुछ क्लस्टर पे इतने ज्यादा है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में इसीलिए छुट्टी और मौसम विभाग ने भी ये सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सड़कों पर अगर जल जमा हुआ तो एक तो ट्रैफिक की समस्या होगी और दूसरा मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए गाजियाबाद में एहतियात के कदम उठाए गए हैं, नोएडा में भी एहतियात के कदम उठाए गए हैं।
0: सुबह से तेज बारिश के कारण नोएडा गाजियाबाद में स्कूल भी बंद कर दिए गए ताकि बच्चों को आवागमन में दिक्कत ना हो। वहीं दिल्ली में इस बार मॉनसून की झड़ी के बीच खास बात यह है कि अक्सर आईटीओ सहित जिन सड़कों पर बारिश के बाद पानी भर रहा है वहां नजारा बदला दिखा।
3: पहले जरा सी बारिश में ये रास्ता भर जाता था, यहाँ पर पानी बहुत होता था। इस बार है
4: नहीं? इस बार नहीं है।
3: क्या बदलाव लग रहा है आपको?
4: बदलाव हुआ है पहले से और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे।
3: पहले यहाँ पानी भरता था रोड पे?
5: पहले भरता था।
3: इस बार
5: अभी तो नहीं भरा।
3: अभी तो नहीं भरा है।
0: मिंटो ब्रिज, रोहतक रोड अंडर पास, जखीरा अंडर पास, मुंडका, धौला कुआ और परेड रोड जैसे इलाकों में इस बार बारिश में भी ट्रैफिक सामान्य दिखा।
3: ये दिल्ली का मिंटो ब्रिज इलाका है और जब भी बारिश होती थी इस पूरी जगह पर आप पानी ही पानी देखते थे और इतना पानी होता था कि कई बार वो किसी की जान पर भारी पड़ जाता था। लेकिन 6 साल बाद आप देखिए, ये पहली बार ऐसा है जब लगातार रात भर बारिश हुई है और उसके बाद भी मिंटो ब्रिज का ये पूरा इलाका सूखा हुआ पड़ा है, जहाँ पर आपको कहीं भी जल भराव नहीं दिखाई पड़ रहा है, वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई पड़ रही है।
0: दिल्ली जल बोर्ड के कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि कहीं भी सड़कों पर पानी भरने की स्थिति से निपटा जा सके।
6: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है। जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
7: हॉटस्पॉट जो थे,
6: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है।
0: वही गुड न्यूज ये भी है कि बारिश के बाद दिल्ली की हवा बहुत साफ हो गई है। बुधवार को राजधानी का 24 घंटे का AQI यानी औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया था, जबकि गुरुवार को राजधानी में AQI का स्तर 48 तक पहुंच गया। दरअसल दिल्ली में इस बार जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसके कारण 10 महीने में पहली बार हवा इतनी साफ दर्ज की गई है। हालांकि बारिश के कारण कुछ इलाकों में आवाजाही में कुछ दिक्कत जरूर हुई, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतनी पड़ रही है, लेकिन गर्मी छूमंतर हो गई है तो लोग सुकून भी महसूस कर रहे हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, सुशांत बेहरा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: दिल्ली एनसीआर
7: एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, एक्यूआई बहुत अच्छा हो गया और इसी को एंजॉय करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी सुबह सुबह इंडिया गेट पहुंचे, जहां हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा भी मौजूद थी। देखिए किस तरीके से बारिश में मस्ती करते नजर आ रहे हैं लोग।
8: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है, तस्वीरें एकदम ही अलग नजर आ रही है। जहां कुछ दिन पहले जो है मौसम ने लोगों को परेशान कर रखा था, गर्मी ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इंडिया गेट पर कि किस तरीके से लोग जो है बारिश होने के बावजूद आपको यहाँ कर्तव्य पथ पर जो है वो नजर आ जाएंगे। हर कोई जो है रेनकोट और अम्ब्रेला के साथ है, लेकिन इस मौसम को, मानसूनी बारिश को जो है एंजॉय जरूर करना चाहता है। फोटोशूट जो है इनका लगातार इस वक्त जो है ये लोग करवाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और बेहद ही मौसम इस वक्त खास हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आसमान भी देखेंगे तो किस तरीके से बादलों का जो डेरा है वो आपको लगातार नजर आ जाएगा और मौसम इसी तरीके से अगले 3-4 दिन तक जो है रहने की उम्मीद है। बच्चे आपका तो रेनकोट बहुत ही, आपका अम्ब्रेला बहुत अलग है, बहुत यूनिक अम्ब्रेला आपका।
9: थैंक यू।
8: कहाँ से आए हो आप?
9: हम हैदराबाद से आए हैं।
8: हैदराबाद से आप आए हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है इस वक्त आपको एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे और मौसम जो है वाकई में बहुत ज्यादा खास हो गया है। आप देखेंगे तो हर कोई जो है अलग अलग रंग बिरंगे आपको अम्ब्रेला यहाँ दिख जाएगी, रेनकोट दिख जाएंगे, लेकिन हर कोई आनंद ले रहा है। कहाँ से आया आपको रेनकोट या अम्ब्रेला की नीड नहीं है?
10: हम महाराष्ट्र से आए, मुंबई से।
8: अच्छा, मुंबई की तो बारिश जो है वो एकदम ही अलग है, तो दिल्ली में कैसी लग रही है बारिश?
10: दिल्ली में भी मुंबई जैसा ही बारिश हो रहा है अभी, बहुत बारिश हो रहा है। जैसा मुंबई में हो रहा था वैसा दिल्ली में भी हो रहा है।
8: हर कोई जो है इस आनंद, इस मौसम का जो है वो पूरी तरीके से लुत्फ उठाना चाहता है, आनंद लेना चाहता है और हर किसी को इंतजार भी था कि मानसूनी बारिश दिल्ली में कब दस्तक देगी। तो 12 जुलाई तक जो है इसी तरीके से हालांकि बारिश रहेगी, लेकिन उसके बाद भी बारिश का जो सिलसिला है, मानसूनी बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
11: चलिए, जहां अक्सर मैं जाती हूं वही लेकर जाती हूं आपको, चंडीगढ़ की सुकना लेक की तस्वीरें आई हैं। बारिश की बौछारों के बाद बेहद खूबसूरत और प्लेजेंट नजर आ रही है सुकना लेक, लोग यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए, हमारे सहयोगी कमलजीत संधू क्या जानकारी दे रही हैं वो आपको सुनाते हैं।
12: गर्मी से बड़ी राहत मिली है पिछले 48 घंटे में। हम इस वक्त हैं सुकना लेक, जो की आइकॉनिक स्ट्रक्चर है चंडीगढ़ का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन उसी बीच में अगर आप यहाँ पे मौसम की बात करें तो मौसम काफी सुहावना हो चुका है। 33 डिग्री के पास बताया जा रहा है और 1-2 डिग्री और बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक जरूर दिया है, लेकिन ये कुछ स्पेल्स हैं जो कि दिन में आते हैं, यानी गरज के साथ जो छींटे हैं वो लगातार पड़ते रहते हैं, लेकिन वैसी बारिश नहीं हो रही जहां पे फुल फोर्स मानसून का आता है। तो उसका आगाज अभी भी, उसका इंतजार किया जा रहा है और उसी बीच में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वॉकर्स हैं, कई लोग हैं जो कि अब लुत्फ उठाने के लिए वॉक कर रहे हैं सुकना लेक पर अपने आप में पारा जरूर लुढ़का है, राहत मिली है गर्मी से, लेकिन उसी के साथ जो ह्यूमिडिटी लेवल है, यानी जितनी उमस है वो लगातार बढ़ी है। और इसी बीच में चंडीगढ़ वाले इंतजार में है कि मॉनसून जल्द से जल्द आएगा। पंजाब में अभी भी ज्यादातर जगहों पर बारिश पहुंची नहीं है। हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से जल भराव हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, रिवाड़ी के कई इलाकों में हुआ है। तो अभी फुल फोर्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन 11 और 12 तारीख तक इस तरह का तापमान भी रहेगा और इसी तरह की बरसात का बुछार भी रहेगा। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।
13: हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात में मॉनसून खूब बरस रहा है, बस ये मानिए कि इन दो राज्यों के कई शहरों की जल परीक्षा हो रही है। इन हालात के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।
7: बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जो तमाम एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ है या फिर एसडीआरएफ है, लोगों को बचाने में जुटी हैं। वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है, कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति है, बावजूद इसके एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है।
14: आसमान से लगातार बरसता पानी, सड़कों पर उफनता दरिया, महाराष्ट्र और गुजरात में मॉनसून की बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। मगर इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव टीमें हर चुनौती से लड़ रही हैं। कहीं एनडीआरएफ की नावें उम्मीद बनकर पहुंच रही हैं, तो कहीं जेसीबी एम्बुलेंस का काम कर रही है।
15: लोगों को हमारे कैमरे के सामने लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो सूरत शहर के गोड़ादरा इलाके में खास करके ये जो खाड़ी का पानी है उससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है।
14: गुजरात के सूरत में कई इलाकों में जब सड़कें दरिया में बदल गयी तब एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की टीमें अपनी नाव लेकर गश्त पर निकली और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले लोग छत और बालकनीज पर खड़े राहत टीमों का इंतजार करते भी नजर आए।
16: तकरीबन हमने 176 के अबाउ हमने रेस्क्यू किया हुआ है। यहाँ से जो मार्केट के अंदर फंसे हुए थे वो एक्चुअली घर पे थे, पर वो मार्केट के अंदर उनका सामान सब रह गया था, उसको सेव करने के लिए वो वापस आए और पानी बढ़ने के कारण वो वहीं पे ट्रैप हो गए।
14: सूरत के एक इलाके में कई फीट पानी में डूबे इलाकों में जेसीबी ने ही राहत बचाव अभियान की कमान संभाली। जेसीबी से बाढ़ से घिरे लोगों तक मदद पहुंचाई गई। बालकनी और छतों से रस्सियां लटकाकर खाने के सामान और पीने का पानी पहुंचाया गया।
17: हम यहाँ पर पहुंचे सर, यहाँ पे काफ़ी जलभराव हो रखा था और हमें बताया गया था कि करीब 150 के करीब लोग यहाँ पे वर्कर जो है आगे फंसे हुए हैं। तो जब एट द एंड जब हमने ऑपरेशन क्लोज करा तो करीब सर 300 से ज्यादा लोगों को हमने यहाँ से इवैक्यूएट किया है, जिसमें बच्चे बूढ़े और महिलाएं भी शामिल।
14: इसी दौरान एक बुजुर्ग बीमार महिला को भी तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए जेसीबी ही काम आई। राहत बचाव टीम ने जेसीबी के अगले हिस्से में गद्दा बिछाया और बेहद सावधानी से महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए रवाना किया। उधर सूरत का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह पानी में डूब गया। दुकानदार घंटों की मेहनत से अपना सामान बचाने में जुटे रहे। हालांकि अब पानी कम हो चुका है और दुकानदार अपनी दुकानों की तरफ लौटे हैं।
18: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है।
14: मुंबई के पास पालघर में बाढ़ के बाद एक गर्भवती महिला को किसी तरह लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए मकान के दरवाजे को ही स्ट्रेचर बना दिया। इसी तरह के हालात महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे समेत कई और शहरों के भी हैं, मगर राहत बचाव टीम के साथ मिलकर इन शहर के लोग मुश्किल को मात दे रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और पालघर से मोहम्मद हुसैन खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: चलिए, एक तरफ जहां मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ दुश्वारियों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बारिश का ये मौसम कुदरत की चुनौतियां साथ में लेकर आता है, तो तेज बारिश से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। रायगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ऐसा ही हादसा हुआ। HPCL के LPG बॉटलिंग में अचानक से पानी भर गया, इससे LPG के करीब 3000 सिलेंडर बाढ़ में बह गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इसमें ये सिलेंडर पत्ते की तरह बहते नजर आए। पानी का बहाव इन सिलेंडरों को पाताल गंगा नदी में ले गया।
13: बिल्कुल, आपको बता दें, इस बीच LPG के इन सिलेंडर्स को लेकर प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि ये सिलेंडर भरे हैं या खाली, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसे में इन सिलेंडर को उठाना या इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को हिदायत दी गई है कि इन सिलेंडर से दूर रहे और किसी भी सूरत में इनके करीब ना जाए।
7: कुल मिलाकर दिल्ली NCR में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली खाने पीने में। हम तो खैर अदरक वाली चाय रोज पीते हैं।
11: यस, अदरक और लौंग वाली चाय।
7: देसी
11: नुस्खे मुझे लगता है आप ऑन एंड ऑफ करते रहिए ऐसे मौसम में, तो स्पेशली
13: बदलते मौसम में आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मेडिकेशन की बात करें तो आप किसी भी अस्पताल में अब अगर आप जाएंगे तो हर जगह आप एक होर्डिंग आप देखेंगे जहां पे अर्ली वैक्सीनेशन की बात कही गई है, खास करके बदलते मौसम के लिए। और कहा गया है कि उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही खुद और अपने बच्चे या घर में कोई बुजुर्ग है तो आप अर्ली वैक्सीनेशन ले ले तो आप इस तरह के फ्लू या फिर जो मौसम ट्रांजिशन है उससे बच सकते हैं।
7: बिल्कुल, चले क्या सलाह है डॉक्टर्स की वो भी आपको दिखाते हैं।
19: प्रिवेंशन, मैं कहूंगा कि प्रिवेंशन ही तरीका है। हमें पता है कि ये सारी बीमारियां हैं पानी के थ्रू ही फैलती है, चाहे वो टाइफाइड हो, अगर साफ सुथरा खाना या पानी आप नहीं पी रहे हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है। जो जितने तरह के डायरिया होते हैं, अगर आप अपने हाथ का हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ पानी नहीं पीते, साफ खाना नहीं खाते हैं, मक्खियां आपके घर में ज्यादा हैं, खुले आप खाना खुले माहौल में रखते हैं जिसपे मक्खियां बैठी, ऐसे सिचुएशन में ये बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो चाहे हेपेटाइटिस ए हो, ई हो, टाइफॉइड हो, कॉलरा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जो डायरिया होते हैं वो हो, ये सब कुछ जो है आपके हाइजीन से लिंक्ड है। जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब मच्छरों को अगर आप पनपने से रोक सकते हैं तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो हर सीजन में हमें पता है कि हम बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसमें मच्छर होंगे, हमारा पीने का पानी कॉन्टेमिनेट होगा, हमारा खाना कॉन्टेमिनेट।
11: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए अमरनाथ यात्रा दे रही है रोजगार की सौगात।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
21: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच पीएम का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से दी राहत, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बातचीत, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50,00,000 से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान बना देवघर। देखिए इस मॉनसून सीजन में ना तीर्थ यात्रा भी लोग खूब कर रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा ही रहे हैं, बाबा बर्फानी की यात्रा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। आज भी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से करीब 10,000 श्रद्धालुओं का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है।
3: अब क्योंकि श्रद्धालुओं की ये संख्या लगातार बढ़ रही है तो सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को रोजी रोटी भी मिल रहा है, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के कई भागों से आए स्थानीय लोग पवित्र अमरनाथ यात्रा रूट पर अपना छोटा बड़ा कारोबार कर रहे हैं।

0: आस्था की इस यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह के लिए तीर्थयात्री दूर दूर से यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। यात्रा का आज सातवां दिन है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से करीब 10,000 श्रद्धालुओं का एक और जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम की ओर बढ़ चले। अब तक 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या सीधे जुड़ी है यहाँ के लोगों की रोजी रोटी से। जितने ज्यादा तीर्थयात्री आएंगे उतना ही बढ़ेगा स्थानीय लोगों का कारोबार। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, सोनमर्ग, जम्मू, राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले से आकर लोगों ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए हैं। होटल वाले, दुकान वालों से लेकर घोड़े खच्चर वाले, पिट्ठू पालकी वाले, हर कोई इन तीर्थयात्रियों को देखकर खुशी से गदगद है।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
2: बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है।
0: स्थानीय लोगों के लिए तीर्थयात्री उनकी कमाई का सबसे बड़ा साधन है। श्रद्धालुओं की तरह ही पूरे साल यहाँ के लोग अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इन 2-2.5 महीनों के दौरान होने वाली कमाई से उनके पूरे साल की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। एक अनुमान के तौर पर इस यात्रा सीजन के दौरान ये ऑपरेटर औसतन 50,000 से 60,000 तक की कमाई कर लेते हैं। तीर्थयात्री भी मानते हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के उनकी ये यात्रा मुमकिन नहीं।
3: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं। मैं 2014 से आ रहा हूँ। लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सक पाए। लोकल वालों को बड़ा सहयोग रहता है।
4: मैं तो यही अरदास करूंगा भोले शंकर के, ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है। अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो। आप लोग हो तो आपके साथ के साथ ही ये यात्रा हो रही है।
0: जाहिर है अमरनाथ यात्रा केवल आस्था का महापर्व नहीं, कश्मीर के पर्यटन कारोबार और रोजगार को रफ्तार देने वाला एक अहम जरिया है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ऐसे वाले उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है। मॉनसून सीजन में यहां भी श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों को भी सावधान रहने की अपील की गई है।
6: लेकिन देखिए, जो तीर्थयात्री बद्री केदार और यमुनोत्री गंगोत्री धाम आ रहे हैं, वो भी सिस्टम की दुरुस्त व्यवस्था के बीच में दर्शन कर पा रहे हैं। बारिश का सिलसिला केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ, दोनों ही जगहों पर रुक रुक कर जारी है।

उत्तराखंड के पहाड़ों पर झूम के बह रही मानसूनी बयार। यहाँ भी बादलों की क्या खूब है रफ्तार। ऐसे में अपार आस्था वाली चारधाम यात्रा भी यहाँ है बरकरार। भले ही मानसूनी बादल उत्तराखंड में देरी से पहुंचे, लेकिन जब आए तो सिर्फ गर्जे

0: बाद बारिश होने से मौसम यहाँ काफी सुहावना हो गया है। हालांकि इसी बारिश के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में इन दिनों कमी दर्ज की जा रही है। दरअसल एहतियातन श्रद्धालु भारी बारिश के इस मौसम में चारधाम यात्रा पर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में रोजाना 1000 से 1500 के बीच तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।
1: एक सप्ताह से धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1000 से 1500 के बीच सिमट गई है। हालांकि पैदल रास्ते एवं केदारनाथ हाईवे दुरुस्त है, यातायात बहाल है। केदारनाथ धाम की बात करें तो धाम में आए दिन बारिश हो रही है और धाम में पूरी तरह कोहरे ने अपना डेरा जमा दिया है।
0: बता दें कि अभी तक भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए 13,93,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ से होकर गुजर रही अलकनंदा नदी भी भारी बारिश के कारण उफान पर है। यही वजह है कि ये मॉनसून सीजन तीर्थयात्रियों को भगवान बद्री विशाल के दरबार तक पहुंचने में फिलहाल किसी बड़ी रुकावट से कम नहीं है। दरअसल यहाँ भी एहतियातन ही लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक मशीनरी यात्रा रूट पर मुस्तैद नजर आ रही है, इसीलिए कुछ श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के सुलभ दर्शन कर रहे हैं।
2: बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब में बारिश हो रही है। हालांकि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन प्रशासन की जो अपील है, कभी कभार जैसे ही मार्गों पे मार्ग बंद हो रहा है, हालांकि मशीन तैनात है, लेकिन मूसलाधार बारिश के दौरान यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील जो है प्रशासन बार बार कर रहा है। मानसून के साथ ही यात्रा लगातार जारी है।
0: उधर यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में भी श्रद्धालु रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच इन दोनों धामों पर पहुंच रहे हैं और ईश्वर का दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। फिलहाल तो लगातार आसमान से बरस रही ये बरखा बहार गर्मी से राहत देते हुए इन चारों धामों में थोड़ा सर्द लेकिन सुहावना माहौल यहाँ आने वाले लोगों को दे रही है। अभी जो यात्री एहतियातन तीर्थ यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, उनको इंतजार है मौसम के साफ होने का। लेकिन जो तीर्थयात्री इन दिनों चारधाम दर्शन पर आ रहे हैं, वो बेहतर सहूलियत वाला दर्शन कर अपनी यात्रा को यादगार बनाकर यहाँ से निकल रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच रथ यात्रा उत्सव के तहत काकतपुर के देवली मठ में भगवान के लिए अनसर फल भार रस्म निभाई गई।
4: आपको बता दें, इस पुरानी परंपरा के तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्दी ठीक होने की कामना के साथ ही भक्तों ने उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद भेजा। अगले हफ्ते यानी कि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकलेगी। इसे लेकर भक्तों के अलावा रथ निर्माण से जुड़े कलाकार भी काफी भावुक हैं।

0: ऊंचा शिखर।
1: ये आस्था का वो रंग है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, सारे तर्क धरे रह जाते हैं। प्रेम, भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एक सार होकर सुकून के एक झोंके की तरह वातावरण में घुल मिल जाती है। ये तस्वीरें पूरी रथ यात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की है, जिसके तहत काकतपुर के देउलीमठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए जिस तरह से बैलों और बैलगाड़ी की साज सज्जा की गई है, सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही है, जिस तरह भाव विभोर महिलाएं बार बार धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार, उनके आराध्य देव नहीं, बल्कि मीठे रिश्तों की डोर से भी बंधे हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में

0: केवल फल नहीं, उनका अगाध प्रेम, अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देवली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और उनके भाई बहन के लिए भेजा गया। काकतपुर देवली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटूडिसला यानी जन्मस्थान माना जाता है। ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल फूल तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है। तीनों रथ सज धज कर तैयार है, बस उन्हें अंतिम टच दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। अब बस इंतजार 16 जुलाई की उस तारीख का है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीनों की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कब रिलीज होने जा रहा है मेगा बजट फिल्म रामायण का ट्रेलर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती है। TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए अब फिल्मों का रुख कर लेते हैं और जिक्र रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर 18 जुलाई को भारत मंडपम में रिलीज किया जाएगा, जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर समेत रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्म की दूसरी स्टारकास्ट शामिल होगी।
3: और माना जा रहा है कि रिकॉर्ड बजट में बन रही रामायण रिलीज के बाद कमाई के कई रिकॉर्ड बना सकती है। शुरुआत रामायण पार्ट वन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट से हो चुकी है, जिससे रिकॉर्ड 350 करोड़ रुपए में करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने खरीदा है।
4: अठारह जुलाई इस तारीख को नोट कर लीजिए। इस तारीख को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अब तक टीजर में राम का दमदार अंदाज दिखा है, रावण की हल्की सी झलक दिखी है और अब ट्रेलर में रामायण पार्ट वन के विस्तार में झलक दिखेगी। लॉन्च के लिए रामायण के मेकर्स ने भव्य इवेंट प्लान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण पार्ट वन का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर शामिल होंगे। हालांकि रावण का किरदार निभा रहे यश और हनुमान बने सनी देओल के शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मेकर्स इस फिल्म की मदद से इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इसलिए भी भारत में ट्रेलर रिलीज के चार दिन पहले इसे अमेरिका में लॉन्च करने की प्लानिंग है। मुमकिन है 14 जुलाई को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक भव्य इवेंट में रामायण पार्ट वन का फुल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। रामायण पार्ट वन के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही मेकर्स इसका फुल स्केल प्रमोशन कैंपेन शुरू कर देंगे, यानी फिल्म की रिलीज से करीब 3.5 महीने पहले, क्योंकि फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में जहां ट्रेलर को फिल्म के रिलीज से हफ्ते दो हफ्ते पहले लॉन्च करने का ट्रेंड चल पड़ा है, वहां रामायण के मेकर्स बॉलीवुड के पुराने फॉर्मूले पर चलते हुए ट्रेलर को 3.5 महीने पहले रिलीज करने जा रहे हैं। नमित मल्होत्रा एंड टीम चाहती है कि बड़े स्केल पर बनाई जा रही फिल्म के ट्रेलर को थोड़ा पहले रिलीज किया जाए, ताकि ये फिल्म देश विदेश में चर्चा में बनी रहे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रामायण पार्ट वन के पोस्ट प्रोडक्शन पर इन दिनों काम चल रहा है, जबकि रामायण पार्ट टू की शूटिंग की जा रही है। खबर ये भी है कि रामायण पार्ट वन के इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिकॉर्ड प्राइम पर बिके हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने ये राइट्स 350 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी रकम है। अब तक ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म किंग के नाम था। पेन मरुधर ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट 250 करोड़ रुपए में खरीदे थे। हालांकि दोनों फिल्मों के बजट में भी भारी अंतर है। दो पार्ट में बन रही रामायण पार्ट वन का बजट जहां 2000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और दोनों पार्ट का बजट 4000 करोड़ से भी ज्यादा है, वही किंग का बजट 350 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। महाकाव्य की तरह ही रामायण का कैनवस काफी विशाल है। रामायण में हाई ऑक्टेन विजुअल्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जो बड़े पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों, तकनीकों और इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है रामायण के मेकर्स का पूरा जोर इस पौराणिक गाथा को भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराना है और इसके लिए ना तो तकनीक आड़े आई है और ना बजट। उम्मीद है कि रामायण पौराणिक कथाओं को लेकर भारतीय सिनेमा के नजरिए को फिर से प्रभाषित करेगी। फिलहाल तो इंतजार इसके ट्रेलर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की हालिया रिलीज फिल्म बेबी डू डाई डू भी काफी चर्चा में है। कश्मीर में बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है, जिसे देखते हुए हुमा कुरैशी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ कल श्रीनगर में पहुंची और दर्शकों से मिल रहे प्यार के लिए उन्हें थैंक यू भी कहा।
2: बिल्कुल, फिल्म को क्रिटिक्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। बावजूद इसके अल्फा के साथ रिलीज हुई बेबी डू डाई डू को बॉक्स ऑफिस पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है।

0: बेबी डू डाई डू को मिल रहे शानदार रिस्पांस के बीच इसकी लीड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी श्रीनगर पहुंची, साथ ही भाई और फिल्म के को प्रोड्यूसर साकिब सलीम, डायरेक्टर और पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। कश्मीर के आईनॉक्स श्रीनगर मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए हुमा कुरैशी ने थिएटर जाकर दर्शकों को सरप्राइज दिया और फिल्म को प्यार देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वैसे भी हुमा कुरैशी अक्सर कश्मीर जाती रहती है, क्योंकि धरती की जन्नत कहलाने वाला कश्मीर उनका ननिहाल भी है। बचपन के काफी दिन उन्होंने श्रीनगर में गुजारे हैं, इसलिए श्रीनगर से उनका खास लगाव है।
1: Say thank you to Kashmir because our film is playing over here and we're getting so much love. So हम खुद आके आपको thank you बोलना चाहते थे, शुक्रिया बोलना चाहते थे। And this is our ननिहाल, you know my mama's from here. So whenever we come here, Saqib and I both we get so much love and we had to bring our entire cast, our director, our team, our castmates, ताकि वो भी देखे कि कश्मीर से उनको कितना प्यार मिल रहा है, आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं। So thank you so much.
0: जहाँ तक हुमा कुरैशी की फिल्म का सवाल है, तो 6 दिन पहले उनकी फिल्म आलिया भट्ट की अल्फा के साथ रिलीज हुई थी। जाहिर है बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला तगड़ा था। सिनेमाघरों में अल्फा और अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी की वजह से इसे बेहद कम शोज मिले हैं, जिसका खामियाजा फिल्म के कलेक्शन के रूप में सामने आ रहा है। ट्रेन ट्रैकर सैकन्यूज के मुताबिक बेबी डू डाई डू ने 6 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए के करीब है। इस लिहाज से लागत निकालने के लिए ही फिल्म को अभी 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। जाहिर है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बावजूद सीरीज शो की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। समीक्षकों ने फिल्म के डार्क सस्पेंस से भरे प्लॉट और हुमा कुरैशी की बिना बोले दमदार एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। क्रिटिक्स ने इसे औसतन 3 से 4 स्टार की रेटिंग दी है। समीक्षकों का मानना है कि हुमा कुरैशी ने बेबी कर मर कर के रूप में अपने करियर की सबसे बेहतरीन और दमदार परफॉर्मेंस दी है। गूंगी और बहरी होने के बावजूद उनके भाव बहुत असरदार रहे हैं, लेकिन असल सवाल है फिल्म की कमर्शियल सक्सेस का, तो इसकी राह थोड़ी कठिन नजर आती है, क्योंकि कल से इसे अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म धमाल 4 से भी मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट कुरियर टुडे।
2: महेश बाबू का फिल्म वाराणसी से भगवान राम वाला कथित फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस तस्वीर ने फैंस के बीच एक नई बहस, अलग अलग थ्योरीज और कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
3: हालांकि आपको बता दें, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की है, बावजूद इसके ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है। तो क्या है इस वायरल तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं।
4: सिर्फ एक तस्वीर और पूरा इंटरनेट हिल गया। जी हाँ, महेश बाबू की एक कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैसे राजा मौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म वाराणसी में भगवान श्री राम के लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। फैंस लगातार इस तस्वीर पर अपनी राय दे रहे हैं और तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वायरल तस्वीर में महेश बाबू पीले रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भगवान राम के वनवास वाले लुक से प्रेरित हैं। तस्वीर में उनके आसपास फिल्म की टीम भी दिखाई दे रही है, जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शूटिंग के दौरान की फोटो हो सकती है। हालांकि फिल्म की टीम या महेश बाबू की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद महेश बाबू के लुक की तुलना रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक से भी की जा रही है। रणबीर कपूर निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों सितारों के लुक को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं कुछ लोग इस तस्वीर को असली मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ फिल्म का प्रचार करने का तरीका हो सकता है। कई लोग इसे पीआर स्टंट भी बता रहे हैं। इधर फिल्म वाराणसी को लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल एक कार्यक्रम में एसएस राजामौली ने महेश बाबू के भगवान राम वाले लुक को लेकर एक दिलचस्प बात भी बताई थी। जब महेश बाबू पहली बार भगवान राम के गेटअप में फोटो शूट के लिए आए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। महेश में श्री कृष्ण जैसी आकर्षक छवि है। लेकिन उनके चेहरे पर भगवान राम जैसी शांति भी है। मुझे उनका लुक इतना पसंद आया कि मैंने उस तस्वीर को कुछ समय के लिए अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी बना लिया था। बाद में उसे हटा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वे लंबे वक्त बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे। फैंस का मानना है कि वे कुंभकर्ण से जुड़ा कोई दमदार किरदार निभा सकते हैं। फिलहाल वाराणसी साल 2027 में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म के आने में भी वक्त है और उससे पहले ही सिर्फ वायरल तस्वीर ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन भी नहीं कर पाते, जहां हर रोज इस फिल्म की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे
2: के लिए रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
7: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
6: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
8: मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ना कीजिए एक ऐसा सफर जहां फिल्म सिर्फ पर्दे पर दिखाई नहीं देती बल्कि हर पल आपके आसपास आपको महसूस होती है, जहां बारिश की बूंदें चेहरे को छू जाती है, तेज हवाएं चलती हैं, जमीन हिलती महसूस होगी और हर नजारा आपको कहानी का हिस्सा बना देगा। ऐसे ही अनोखा अनुभव अब इंदौर के चिड़ियाघर में मिलने जा रहा है, क्योंकि देश का दूसरा अत्याधुनिक 14D थिएटर यहां पर तैयार किया गया, जो मनोरंजन के साथ साथ प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण का संदेश देगा।
2: थिएटर का प्रवेश द्वार विशाल गोरिल्ला के चेहरे की थीम पर बनाया गया है, जबकि एग्जिट गेट हाथी की आकृति में तैयार किया गया है। करीब 20 मिनट की फिल्म में डिजिटल जंगल सफारी और आधुनिक तकनीक के जरिए दर्शकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा। चलती सीटें, पानी की फुहार, हवा, कोहरा, कंपन और अन्य इफेक्ट्स इस सफर को बिल्कुल वास्तविक बना देंगे। इंदौर का ये 14D थिएटर शहर के पर्यटन आकर्षण में नई पहचान जोड़ने जा रहा है।
3: चलिए अब आखिर में दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता आपको दिखाते हैं जो बेहद खूबसूरत है, पॉजिटिविटी से भर देने वाला है। इंसान और बंदर की दोस्ती, उनका आपसी भरोसा और अपनापन, कुछ ऐसी ही गहरी दोस्ती निभा रहे हैं नरेंद्र सोलंकी, उनके दोस्त बंदरों की टोली। नरेंद्र सोलंकी मध्य प्रदेश में उज्जैन के महितपुर में रहते हैं। पेशे से वकील नरेंद्र पिछले 8 सालों से वानर सेवा का सराहनीय काम कर रहे हैं। वो रोज बंदरों को केले, चने और दूसरे खाने पीने की चीजें खिलाकर संतुष्टि महसूस करते हैं। 2018 से शुरू हुई उनकी ये सेवा बंदरों के प्रति लगाव को बखूबी दर्शाती है। आज महितपुर शहर के बाहरी क्षेत्र आदिनाथ कॉलोनी में उनके घर के बाहर करीब 35 बंदरों की टोली को नरेंद्र सोलंकी ईश्वर का रूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसी प्यारी और खूबसूरत तस्वीरें आपको कई दफा नजर भी आई होंगी, जहां इंसान बंदर के साथ स्नेह के साथ दया का व्यवहार दिखाता है, वहीं ये जानवर भी चंचल बुद्धिमान होने के साथ उस प्यार और देखभाल को बखूबी समझते हैं।

0: कहने कि मॉनसून में चाय सिर्फ चाय नहीं होती बल्कि चहकने का एक बहाना बन जाती है। तो कल फिर आइएगा शाम 5 बजे, चाय के साथ अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से दी राहत, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बात, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50,00,000 से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर RPF जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान बना देवदू।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ मिलाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं, लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहाँ जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इस बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहां पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ, पहले भरता था।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था?
3: हाँ सर, भरता था। अब नहीं, अब नहीं, अब सफाई सफाई होगी। ओके, अब जब नहीं था इतना इतना पानी, यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ तक इतना
1: उठने के ऊपर तक।
3: हाँ, अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते है।
1: इस बार नहीं भरा?
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबूजी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है,
1: निकल जाता है। ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो, बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मानसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी,
1: कैसे हालात होते थे?
6: ये बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खास तौर पे हम एक आधा डिलीवरी हुआ है, और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था, तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के बाशिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसको कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतज़ार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, एमसीडी पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है, और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फ़िलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था बारिश के बाद, उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली।
0: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे, माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था, हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंप सेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अभी ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहां से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहां से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाय चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सॉल्यूशन किया।
0: इन तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली वहाँ अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी।
3: ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: ये तमाम तैयारियां विस्तृत प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से ग्राउंड एप्लीकेशन की गवाही दे रही हैं। उम्मीद बस यही है कि मॉनसून की शुरुआत में दिख रही ये अच्छी तस्वीरें मॉनसून के खत्म होने तक भी यूं ही अच्छी बनी रहे। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजहें दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
5: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटो शूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
6: तेलंगाना
5: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
6: Want to enjoy rainy season.
5: Exactly. हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को?
6: सो मच।
5: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें है लोगों के चेहरे पे, देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी, लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सर के पास चलते हैं, आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी,
5: अच्छा लग रहा है सर?
7: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसी रहेगा, मुझे ऐसी रहेगा।
5: अच्छा, ऐसी अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो?
8: हाँ,
5: कैसा लग रहा है मौसम?
8: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
5: अच्छा, ये तो नहीं लग रहा है कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
8: नहीं,
5: बारिश आई है, मजे करने हैं।
8: मजे करने
5: हैं, मजे करने हैं। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
9: हाँ जी, बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा, कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
5: अच्छा, हाँ, बारिश होती तो थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते हैं, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
9: हाँ, वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
5: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
4: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मानसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
10: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब आपको जम्मू कश्मीर में जारी पवित्र अमरनाथ यात्रा के रंग दिखाते हैं। भले ही घाटे में मौसम की चुनौतियां हों, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंथा चौक ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। ये अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहां एलजी ने तीर्थयात्रियों से उनका हालचाल जाना, प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। वहीं श्रद्धालुओं की बात की जाए तो तस्वीरों में दिख रहा ये आस्था का सैलाब भक्ति की पराकाष्ठा है। भीड़ है, पर हर कोई अपने आप से छूटा हुआ है। मन में बस एक उमंग बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचने की, बस एक चाह कि महादेव के दर्शन से जीवन धन्य करना है। बस एक गूंज है बम बम भोले, बस एक उद्घोष है हर हर महादेव। बालटाल हो या पहलगाम रूट, दोनों ही मार्गों पर शिव भक्तों की रौनक है। बेस कैंपों पर तो जैसे उत्सव का माहौल है, बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अमरनाथ श्रद्धालुओं को निशाना क्यों बनाया? श्रद्धालुओं की बस पर ग्रेनेड से हमले का सच? उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की मौत कैसे हुई? 3,280 फीट की ऊंचाई पर हैरतअंगेज करतब। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना,

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: को छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: योगिनी एकादशी पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बातचीत, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही है मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50,00,000 से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान ने बना देवदूत।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के सबसे बड़े आयोजन को किया संबोधित। स्टेडियम के भीतर करीब 30,000 भारतीय मूल के लोग रहे मौजूद, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। स्टेडियम के भीतर ढोल नगाड़ों के बीच मोदी मोदी की गूंज, कई भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी गई। मेलबर्न के प्रतिष्ठित मार्वल स्टेडियम में हुआ शानदार आयोजन।

0: बनना मीट्स मोदी के नाम से इस मेगा शो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीईओ फोरम में उन्होंने हिस्सा लिया। मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा हुई। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, दुनिया में अनिश्चितता के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत पर दिया जोर। गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया भव्य गार्ड ऑफ ऑनर। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई सेना द्वारा हुआ सेरेमोनियल सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने उनके साथ सेल्फी भी क्लिक की। बोले, साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई बड़े समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, व्यापार क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कार्यक्रम। बॉर्डर जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई अमित शाह की मीटिंग। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा के साथ सीमावर्ती जिलों के विकास को लेकर मंथन। नया आर्मी चीफ धीरज सेठ ने पुंछ का दौरा किया। सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों को लेकर जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की। 710 करोड़ की 229 परियोजनाओं का शिलान्यास। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक। श्रीनगर में बंता चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान एलजी ने वॉलंटियर्स और देश दुनिया से आए यात्रियों से भी संवाद किया। अमरनाथ यात्रा का आज सातवां दिन। बालटाल में अमरनाथ यात्रा से बढ़ी रौनक। स्थानीय दुकानदारों की कमाई में इजाफा। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पादन बेचने वालों को रोजगार मिलने के नए अवसर। यात्रियों की सेवा से स्थानीय परिवारों को मिल रहा है आर्थिक बल। बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई में इजाफा। पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। उत्सव की तैयारियां, रथों की सजावट का काम लगभग पूरा। भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ पर की जा रही है बारीक नक्काशी। अलग अलग रंगों से सजाया जा रहा है दिव्य रथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर में हर साल पढ़ाई लोहार, चित्रकार और दर्जी समेत लगभग 200 कारीगर 58 दिनों तक मिलकर करते हैं काम। पुरी में 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां। पुरी के कलाकार कर रहे हैं रथों की सजावट का काम। चमोली में मानसून की दस्तक। बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हेमकुंड साहिब में उमड़ रही है श्रद्धा। रोज पहुंच रहे हैं 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु। उफान पर अलकनंदा नदी, लेकिन श्रद्धालु आधार भगवान बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन। बारिश, भूस्खलन के खतरे के बीच यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में लगातार की जा रही है निगरानी। चारधाम यात्रा पर प्रशासन की पैनी नजर। वडोदरा में 11,00,000 रुद्राक्ष से केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाने की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस काम में जुटे। लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार की खास पहल। हरियाली राजस्थान अभियान को दी जा रही है बढ़ावा। सरकारी नर्सरियों में बहुत रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महज 5 से 6 रुपए में पौधों की शुरुआती कीमत। नर्सरियों में करीब 50 से 60 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं, जिसमें गुलाब, मोगरा, चंपा, छायादार पेड़, सजावटी पौधों से लेकर औषधीय पौधे शामिल। उत्तराखंड में जोशीमठ एनटीपीसी की तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फेज टू और थ्री से बनाई जा रही है सुरंगें आसपास में जुड़ गई। निर्माण कार्य में तेजी आने से प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने की उम्मीद। रांची की बेटी का कमाल। रांची की लेखिका डॉक्टर मेघा रानी ने सिर्फ 2 घंटे में 120 हस्तलिखित पन्ने लिखकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। डॉक्टर मेघा रानी दुनिया की सबसे तेज हिंदी लिखने वाली बन गई है महिला। उनके रिकॉर्ड को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। विश्व रिकॉर्ड के दौरान लिखे गए 120 पन्नों में झारखंड के इतिहास, संस्कृति और विरासत की झलक। दुनिया तक पहुंची झारखंड की पहचान। अपन झारखंड नाम की किताब में रूप में प्रकाशित होगी विश्व रिकॉर्ड के दौरान लिखी गई पांडुलिपि। डॉक्टर मेघा रानी ने अपनी ये उपलब्धि हिंदी और झारखंड को समर्पित की है, बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत। राजस्थान की बूंदी में पहली बार राज्य स्तरीय कुश्ती का भव्य आयोजन किया गया। अंडर 23 महिला पुरुष पहलवानों ने दिखाया दमखम। दंगल में पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। 2 दिन तक चले मुकाबले में खिलाड़ियों ने दिखाया जोश, दर्शकों ने उठाया भरपूर आनंद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। देश प्रदेश से आए पहलवानों ने अखाड़े में लगाए दांव पेच। विजेताओं को मिले मेडल्स, ट्रॉफी। महिला पुरुष पहलवानों ने दिखाई प्रतिभा। अंडर 23 राज्य स्तरीय प्रतिभागियों में युवाओं ने दिखाया रण कौशल। आयोजन रहा यादगार। राजधानी में मानसून की झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बादलों की चादर और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी। दिल्ली एनसीआर पर अभी मानसून रहेगा मेहरबान। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तर प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, पहाड़ों पर बदल गया नजारा। शांत वाटरफॉल अचानक बाढ़ में तब्दील। रियासी में बढ़े चुनाब। नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चुनाब उफान पर। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चुनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्प्लेवे गेट खोल दिए गए। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाए चेतावनी वाले पोस्टर। नागरिकों सतर्क रहने और हादसों से बचने की सलाह दी। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए हैं वार्निंग बोर्ड्स। कल रिलीज होने जा रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4। इंद्र कुमार ने डायरेक्शन बनी है धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर चाई धमाल 4 एडवांस बुकिंग में 1.6 करोड़। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और शोम स्टार कोर्टरूम ड्रामा इक्का कल नेटफ्लिक्स पर होने जा रही है स्ट्रीम। थिएटर्स में रिलीज होने के ठीक 8 हफ्ते बाद कल फिल्म पति पत्नी और वो 2 का होगा डिजिटल प्रीमियर। के मैनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक निकलकर सामने आई। एक बदहाल स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी का नाम एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमता। साउथ एक्टर अखिल की फिल्म लेनिन भी कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मुआना भी कल होने जा रही है रिलीज। हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बार फिर से दस्तक देने जा रही है अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड बॉर्न। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल। फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 महीने बाद चेन्नई एक रिलीज डेट पर लगी मुहर। 24 जुलाई को थिएटर्स में देगी दस्तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया स्टार फिल्म विवान की रिलीज डेट हो गई थी। 25 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर हुआ आउट। 24 जुलाई को हिंदी तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है बंगाली भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म केव बोले बिप्लोबी। अब बड़े पर्दे पर आएगी मराठा नेवी के कभी नहीं हारने वाले एडमिरल की अनकही कहानी। के ड्रामा सिनेमा में भारत का नाम रोशन करेंगे अनुष्का सेन। म्यूजिकल फेस जेजू ओले में अभिनेता कांग हुंग सियोक के साथ आएंगी नजर। आज खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का 4th मुकाबला। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में होगा मैच। करो या मरो जैसा है टीम इंडिया के लिए मैच। पहला मैच रद्द होने के बाद से फिलहाल 2-0 से सीरीज में पिछड़ चुकी है टीम इंडिया। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचकर रचा इतिहास। आज रात खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल मैच। जायंट किलर्स मोरक्को से होगा मैच। फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बाप्पे के पास इस मैच में गोल करके मैसी को पछाड़ने का मौका। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर। मोरक्को और फ्रांस के फैंस ने आतिशबाजी की। मोरक्को फैंस ने लगाए नारे। बॉस्टन कॉमन में 1,000 से ज्यादा समर्थक झंडे और प्लेयर्स लेकर पहुंचे। फ्रांस फैंस ने जीत लिया सभी का दिल। फ्रांस समर्थकों ने ढोल की धुन पर टीम का बढ़ाया हौसला। मोरक्को की टीम ने 2022 के बाद टीम ने अपनी रफ्तार अनुशासन और दमदार खेल से सभी को प्रभावित किया। क्वार्टर फाइनल से पहले दोनों टीमों की तैयारियां तेज। दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम के लिए कर रहे हैं चीयर। वेनेजुएला में भूकंप के बाद जानवरों की मदद। 530 से ज्यादा पालतू जानवरों को बचाया गया। रेस्क्यू शटल बना बेजुबानों का सहारा। पालतू जानवरों को नई जिंदगी देने की कोशिश। कई जानवरों को चल रहा है इलाज। बचाए गए कई जानवर डिहाइड्रेशन और एनीमिया से पीड़ित। रात में चलता है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में फंसे जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो जाता है। शेल्टर का मकसद इन बेघर पालतू जानवरों को सुरक्षित घर देना, नया आशियाना दिलाना। रोलिंग स्टोन्स ने नए एल्बम फॉरेन टंग्स की लॉन्चिंग शानदार ड्रोन शो के साथ की। ड्रोन ने बनाया बैंड का आइकॉनिक लोगो। ड्रोन डिस्प्ले में रोलिंग स्टोन्स का मशहूर लिप्स एंड टंग लोगो आसमान में उभरा। टेम्स नदी के ऊपर सैकड़ों ड्रोन ने अलग अलग आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड ने पारंपरिक आतिशबाजी की जगह ड्रोन शो से नए एल्बम का किया प्रचार। फैंस के लिए बना यादगार नजारा। ड्रोन शो ने लॉन्च इवेंट को बना दिया खास। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायको पर भी दिख रहा है शानदार असर। मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने को मिल रहे हैं कॉट सेट्स। ममन बेकरी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न मनाने के लिए बनाई ये पेस्ट्री। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए देशों की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पेरिस में हाउते कौचर कलेक्शन में पहुंची फैशन वर्ल्ड की हस्तियां। पेरिस में 3 फैशन शो का आज आखिरी दिन। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में होता है शुमार। एनबीए चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स के खिलाड़ी जेंडलन की फाइनल में पहनी जर्सी $10 लाख यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए में बिकी। ब्रंसन ने फाइनल के पहले मैच में 30 अंक बनाए और टीम को जिताई जीत। शानदार प्रदर्शन के बाद जेलन को एनबीए फाइनल्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। एनबीए फाइनल की यादगार जर्सी खरीदने के लिए लोगों ने ऊंची ऊंची बोलियां भी लगाई। एनबीए फिनाले के पहले ही मैच में पहनी गई है जेलन की जर्सी अब खेल इतिहास की सबसे यादगार पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर।
1: पूरी ही नहीं बल्कि बता दें, रांची के जगन्नाथपुरम मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं, जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ और दूसरे देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे उसे सजाया संवारा जा रहा है। और यहाँ भी पुरी की तर्ज पर ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे सजाने के लिए पुरी से ही आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो रथ यात्रा की तैयारी कैसी हो रही है, हमारे सहयोगी सत्यजीत कुमार दिखा रहे हैं, देखिए।
2: इस मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ, यहाँ पे भी जगन्नाथ भगवान, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो विग्रह है उसको हर साल उस मंदिर की स्थापना के बाद से यात्रा के तौर पे निकाली जाती है। भव्य मेला का आयोजन होता है और 500 मीटर की दूरी पे गुडियच्चा यानी मौसी बाड़ी है, भगवान के मौसी की का घर है, जहां वो 9 दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस अपने मंदिर में चले आते हैं जहां भक्तों को वो दर्शन देते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जोरों पे है। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगा, उसके पहले कई कस्टमरी जो ट्रेडिशंस हैं उसको निभाया जाएगा, रिचुअल्स को निभाया जाएगा, उसके बाद भक्त जन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। पूरी के तर्ज पे ही यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, साथ ही साथ ये मंदिर जो है पूरी के तर्ज पे ही बनाया गया है, उसी का रेप्लिका माना जाता है। आस पास के राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं, जब जैसे उड़ीसा जो है वो, उसके अलावा बंगाल जो एडजॉइनिंग जो जिले हैं जो झारखंड से सटते हैं, वहां से लोग दूर दूर से आते हैं। मेले की तैयारियां जोरों पे है और भक्तों को भी अब मेले के आयोजन की का इंतजार है और 16 तारीख को भव्य पूजा और रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाने के लिए उनके नयन जो है वो बिल्कुल इंतजार में है और यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ेगा उस वक्त। और सिक्योरिटी को लेकर इलैबोरेट अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं कि कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वॉच टावर्स बनाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं, ड्रोन उड़ाए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट उस दिन ना हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।
1: और यह खबर झांसी से है, यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से एक यात्री की जान बच गई। मामला प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है, जहाँ पर रात करीब 11:20 में एक युवक चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, लेकिन तभी वो अपना बैलेंस खो देता है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसे युवक को देखते ही आरपीएफ कांस्टेबल प्रवीण कुमार दौड़ लगाते हैं और मुसीबत में फंसे मुसाफिर का हाथ खींचकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। आरपीएफ जवान की पूर्ति और मुस्तैदी, युवक की जान बच गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
4: I have no idea how this election is going to play out.
3: Or want to catch up on your team's live play-by-plays?
5: It's the Flyers!
3: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट से जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बात, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे श्रद्धालु, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से दी राहत, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही मेले की तैयारियां, इस साल मेले में 50 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर RPF जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान बना देवदूत। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच पीएम का संबोधन, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार।
4: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, बाबा बर्फानी के द्वार, आस्था अपार है, भक्तों का सैलाब है। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों के लिए यह आस्था खुशियों का पैगाम लेकर आई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रही आस्था की भीड़ सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका का बड़ा सहारा भी बन रही है। तो इसी से आज की हमारी पहली गुड न्यूज है, अमरनाथ यात्रा से खुले कमाई के द्वार। देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, करीब 1.5 लाख लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के द्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पवित्र यात्रा की वजह से स्थानीय दुकानदारों, घोड़ा संचालकों और छोटे कारोबारियों को लाभ हो रहा है।

0: अमरनाथ यात्रा जहां हर कदम पर आस्था है, जहां हर श्रद्धालु के चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह है, जहां कठिन चढ़ाई, ऊंचे पहाड़ और बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कमी नहीं है। हर दिन बाबा के इस पवित्र और पावन धाम में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ घाटी में आस्था का अनुपम नजारा है तो दूसरी ओर भक्तों की रौनक। लेकिन इनके दरमियान स्थानीय कारोबारियों के खिले हुए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पवित्र यात्रा की वजह से होटल वाले, दुकानदार, घोड़ा संचालक, पालकी सेवा और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े लोगों का कारोबार फिर रफ्तार पकड़ रहा है।
1: हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है। कुपवाड़ा से आते, बांडीपुरा से, गांधरबल से, सोनमर्ग हो गया, जम्मू से हो गया, रजौरी, पुंछ, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट से आते हैं लोग यहाँ पे यात्रा के मतलब यात्रियों को सुविधा देने के लिए।
2: तो आपका काम कैसा?
1: बस बहुत अच्छा चल रहा है सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
0: एक तरफ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं तो दूसरी तरफ यात्रा स्थानीय लोगों के जीवन में रोजगार, उम्मीद और समृद्धि की नई किरण लेकर आई है।
3: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं। मैं 2014 से आ रहा हूँ, लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सकते। अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग ये चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का, सोनमर्ग लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा भोलेनाथ का नाम लेके करें।
0: इस दौरान हर रोज बाबा के दर पर रौनक बढ़ रही है। यात्रा के सातवें दिन जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से करीब 10,000 श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ।
4: इस बार यात्रा का मेरा 10वां साल है और यात्रा जैसे हर साल होती है वैसे ही हर साल उत्साह भरी हुई है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं।
5: तो इस साल जो है काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, मौसम भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी व्यवस्था।
0: यात्रा के दौरान भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जगह जगह लंगर, चिकित्सा शिविर, विश्राम स्थल और सहायता केंद्र सेवाएं दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं और साथ ही यात्रा की निगरानी में जुटी हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सहज तरीके से दर्शन कर पाए।
6: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर, अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर, हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर। इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर, बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: जाहिर है अमरनाथ यात्रा केवल आस्था का महापर्व नहीं बल्कि कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला एक अहम माध्यम भी बन गई है, जिसे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंतजार 16 जुलाई का है जब आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ेगा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले तमाम परंपराओं को निभाने का दौर जारी है। हमारी अगली गुड न्यूज यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, महाप्रभु को अनासर फलाहार का भोग। आपको बता दें कि रथ यात्रा उत्सव के तहत काकतपुर के देउली मठ में भगवान के लिए अनासर फल भार रस्म निभाई गई। इस पुरानी परंपरा के तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्दी ठीक होने की कामना के साथ भक्तों ने उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद भेजा। अगले हफ्ते 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकलेगी। इसे लेकर भक्तों के अलावा रथ निर्माण से जुड़े कलाकार भी काफी भावुक हैं।

0: ऊर्जा शिखर।
1: ये आस्था का वो रंग है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, सारे तर्क धरे रह जाते हैं, प्रेम भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एक सार होकर सुकून के एक झोंके की तरह वातावरण में घुल मिल जाते हैं। ये तस्वीरें पूरी रथयात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की है, जिसके तहत काकतपुर के देउलीमठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए जिस तरह से बैलों और बैलगाड़ी की साज सज्जा की गई है, सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही हैं, जिस तरह भाव विभोर महिलाएं बार बार धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार उनके आराध्य देव नहीं बल्कि मीठे रिश्तों की डोर से भी बंधे हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में केवल फल नहीं उनका अगाध प्रेम अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं, ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देउली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और उनके भाई बहन के लिए भेजा गया। काकतपुर देउली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटूडिसला यानी जन्म स्थान माना जाता है, ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल फूल तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है, तीनों रथ सज धज कर तैयार है, बस उन्हें अंतिम टच दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है, अब बस इंतजार 16 जुलाई की उस तारीख का है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीनों की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और 30 जुलाई से आपको बता दें सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। काशी विश्वनाथ में भी सावन के पावन महीने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, शिवनाथ धाम में सावन की भव्य तैयारी। आपको बता दें कि सावन में केवल काशी ही शिव के रंग में नहीं रंगती बल्कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु शिवमय नजर आता है। सावन में शिव का ये लोक और भी अलौकिक नजर आता है, लेकिन इस बार सावन के लिए काशी की तैयारी कुछ खास है। इस बार सावन न केवल काशी वालों के लिए सौगात लेकर आ रहा है बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास होने जा रहा है।

0: काशी और सावन का संबंध अनादिकाल से है। माना जाता है कि सावन के महीने में स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ काशी में निवास करते हैं। इस साल सावन के महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है, यानी एक बार फिर काशी विश्वनाथ की नगरी में भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। अनुमान है कि लगभग 80 लाख श्रद्धालु इस बार काशी आएंगे। इतनी भारी भीड़ को संभालने और बाबा के दर्शन को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। मंदिर समिति और जिला प्रशासन के दरमियान बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा से लेकर भक्तों के सुगम दर्शन के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: हर बार जितने हमारे भीड़ भरे पर रहे हैं उस सभी पर जिगजैग की व्यवस्था है। भीड़ आधारित जो हमने एसओपी बनाया, हर एक घंटे के हेडकाउंट के अनुसार जिगजैग में कितने लोगों को डालना है, जिगजैग की कौन सी लाइन्स बंद कर देनी है जिससे व्यक्ति को कम चलना पड़े, सुविधा पूर्वक दर्शन हो।
0: वैसे तो काशी का होना खुद में सौभाग्य है, लेकिन इस बार सावन में स्थानीय काशी वाले इस स्थानीय रास्ते से सीधे दर्शन कर सकते हैं।
2: काशी वासियों के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती है, क्योंकि वे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में बगैर भीड़ का हिस्सा बने और बगैर रोक टोक के सीधे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दर्शन कर पा रहे हैं, प्रवेश कर पा रहे हैं। इसको लेके अलग से प्रवेश मार्ग काशी वासियों हेतु स्थानीय परिचय पत्र सहित जो मार्ग है ये शुरू कर दिया गया है, और द्वार संख्या 4 भी काशी द्वार काशी वासियों हेतु विशेष द्वार तैयार भी कर दिया गया है। अब मंदिर खुलने से 15 मिनट बाद से लेकर मंदिर बंद होने के 15 मिनट पहले, यानी सुबह 4:15 बजे से लेकर रात्रि 10:45 बजे तक जो स्थानीय काशीवासी हैं, श्रद्धालु हैं, अपना कोई भी स्थानीय पहचान पत्र दिखाकर या सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाकर वे एंट्री कर सकते हैं, सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा सकते हैं।
0: मंदिर परिसर में भारी भीड़ की वजह से काशी के लोगों को भी अब तक बाकी श्रद्धालुओं की तरह लंबी लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने पड़ते थे, लेकिन इस नए रास्ते ने मानो काशी के लोगों की मनोकामना पूरी कर दी है। केवल काशी वालों को ही सौगात नहीं मिली है, बल्कि काशी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सावन में दर्शन सुगम बनाने की तैयारी है। अनुमान है कि सावन में काशी विश्वनाथ धाम में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए इस बार 7 एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। पूरे सावन वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा जारी रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। कतारों में लगे श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एयर कूलर लगाए जाएंगे। जगह जगह ठंडे पेयजल और ओआरएस की व्यवस्था होगी। धाम परिसर में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। जो श्रद्धालु काशी नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए मंदिर की वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और प्रसारण माध्यमों पर बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
2: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार का स्पर्श दर्शन, वीआईपी दर्शन या विशेष आग्रह दर्शन पूरी तरह से सावन के दौरान रुका रहेगा, और ये रोक, ये प्रतिबंध पूरे सावन पर्यंत तक चलती रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
3: और बाबा केदार के भक्तों की अटूट आस्था और अनोखी भक्ति की कई कहानियां आपने हालांकि सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको शिव भक्ति का एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रूप दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। उत्तराखंड के पावन केदारनाथ धाम और दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में एक ऐतिहासिक महाश्रृंगार की तैयारी चल रही है। हमारी अगली यानी आज की जो चौथी गुड न्यूज है वो है 11 लाख रुद्राक्ष 2.5 लाख डमरुओं से सजेंगे पंच केदार। जी हाँ, दरअसल पंच केदार और तुंगनाथ धाम को पूरे 11 लाख रुद्राक्षों और 2,51,000 डमरुओं से सजाने की तैयारी की जा रही है। इस भव्य आयोजन के लिए तमाम दिव्य सामग्रियां पड़ोसी देश नेपाल से विशेष रूप से मंगवाई गई हैं। गुजरात के बड़ौदा में 150 शिव भक्तों की एक टीम इस महाअभियान में जुटी है, जिसमें 80 जाबाज बाइकर्स भी शामिल हैं। इस महाश्रृंगार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आयोजन संपन्न होने के बाद इन सभी 11 लाख रुद्राक्षों को वापस बड़ौदा ले जाया जाएगा, जहां शिवरात्रि की भव्य शोभा यात्रा के दौरान इन्हें भक्तों के बीच महाप्रसाद के रूप में बांटा जाएगा।
4: पूरा संकल्प जो है 12 ज्योतिर्लिंग पंच केदार जो हम डमरू और रुद्राक्ष से सजाने वाले हैं, इसमें फिर हर साल हम केदारनाथ को श्रृंगार करने ही वाले, तो इस साल जो डमरू और रुद्राक्ष लेके हम जा रहे हैं 11 लाख रुद्राक्ष और 251,000 डमरू 251,000 रुद्राक्ष तुंगनाथ के लिए और 25,000 डमरू जो लेके बड़ौदा से 80 बाइकर और बाकी सब ट्रेन में पूरे 150 लोग की टीम है। जो हमारा संकल्प है कि 12 ज्योतिर्लिंग सजाने का, इस तरह से इस बार फिर से केदारनाथ और दूसरा केदार यानी तुंगनाथ जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवालय है।
3: उत्तराखंड के चमोली जिले से देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जोशीमठ स्थित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इसी से जुड़ी है आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज, और वो है 520 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी। जी हाँ, इस सफलता के साथ ही 12 किलोमीटर से भी लंबी हेड रेस टनल का लगभग 10 किलोमीटर हिस्सा पूरा हो गया है, यानी कि तकरीबन 80% काम पूरा हो गया है।
5: ये उत्साह, ये उमंग और ये जश्न उस ऐतिहासिक पल का है जिसका वर्षों से इंतजार था। एक ऐसा सपना जिसे इंजीनियर्स और मजदूरों ने अपनी कड़ी मेहनत से आखिरकार साकार कर दिखाया है। उत्तराखंड के चमोली में 520 मेगावाट तपोवन परियोजना ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली है। परियोजना की हेडरेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। मतलब ये कि इस टनल में मौजूद फेज 2 और फेज 3 में बनाई जा रही सुरंगों का सटीक मिलान हो गया है।
6: सितंबर या अक्टूबर के पहले अचीव नहीं कर सकते, ये हम सबका आकलन था, लेकिन जिस संसद टीम ने प्रत्येक सदस्य ने चाहे SCC हो चाहे NTPC हो चाहे जो सदस्य यहाँ पर नहीं भी है अभी, लोगों ने जिस ढंग से काम किया है और जितने परफेक्शन के साथ में काम किया है और जो जिस ढंग से टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है, सब आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
5: इस सफलता के साथ 12.1 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल का लगभग 9.7 किलोमीटर हिस्सा पूरा हो गया है, यानी कुल निर्माण कार्य का करीब 80% पूरा हो गया है। और गुड न्यूज ये है कि ये उपलब्धि परियोजना के तय समय में आगे बढ़ने का संकेत भी मानी जा रही है।
7: करीब 80% खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह परियोजना केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने पर 520 मेगावाट स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को मिलेगी।
5: परियोजना के इस हिस्से को सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में इस तरह की सुरंग का निर्माण बेहद खतरनाक होता है, और जब ये मुश्किल आसान हो जाए तो खुशी चेहरों पर साफ दिखाई देती है। NTPC की ये योजना 520 मेगावाट यानी 92 करोड़ वाट तक बिजली पैदा करने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसके लिए साल 2006 से ही 12.1 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी शुरुआत जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन से होती है, जहां इसका बेराज है, जबकि इस टनल का अंत जोशीमठ से लगभग 5 किलोमीटर दूर सेलांग इलाके में होता है, जहां NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर प्लांट का बिजली घर मौजूद है। हेडरेस टनल के सफल ब्रेक थ्रू के बाद अब इस टनल में लाइनिंग का कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही परियोजना का निर्माण और तेज रफ्तार पकड़ेगा, और 520 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना जल्द पूरी होगी। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: महाराष्ट्र के पालघर से एक ऐसी दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। चारों तरफ उफनता पानी, डूबे हुए रास्ते और बाढ़ के हालात के बीच एक गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन पानी भरा होने की वजह से एम्बुलेंस उस महिला तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद लोगों ने मदद की। और इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है, और वो है बाढ़ के बीच महिला के लिए दरवाजे को बनाया स्ट्रेचर। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां चारों ओर पानी ही पानी था, वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी बचा ली। एम्बुलेंस का पहुंचना यहाँ नामुमकिन था और हर पल माँ और बच्चे की जिंदगी पर खतरा बढ़ रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों ने एक घर का दरवाजा निकालकर उसे स्ट्रेचर बनाया और महिला को उस पर लटाकर पानी के बीच बेहद मुश्किल हालात में सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। समय रहते अस्पताल पहुंचने के कारण महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। फिलहाल माँ और नवजात दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
8: पानी बारिश में, जबकि पता नहीं चल रहा था रास्ते पे खाड़ी का पानी किधर है और रास्ता किधर है, ऐसे सिचुएशन में भी सब लोग पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हिम्मत दिखा के एम्बुलेंस लेके वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ का रेस्क्यू, लोकल रेस्क्यू टीम और बाकी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से सिर तक पानी आने की सिचुएशन होने के बावजूद भी दरवाजे का स्ट्रेचर बनाते हुए उन्होंने एम्बुलेंस तक पेशेंट पहुँचाई। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास नॉर्मल डिलीवरी किया गया। अभी बेबी और मदर दोनों सेफ है।
3: इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघड़ में पर्यटकों खासकर के बच्चों के लिए एक बेहद अनोखा और रोमांचक थिएटर खुला है। इस खास थिएटर में लोगों को ऐसा अनोखा अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंदौर जू में देश का दूसरा हाईटेक 14D थिएटर खुल चुका है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है इंदौर चिड़ियाघर में देश का पहला 14D थिएटर। इस अनोखे 14D थिएटर में करीब 20 मिनट की खास फिल्म के जरिए वन्यजीवों का जीवन और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। 14D तकनीक के कारण हर नजारा केवल दिखाई नहीं देगा बल्कि महसूस होगा। चलती सीटें, पानी की फुहार, तेज हवा, बिजली की चमक जैसे कुल 14 विशेष प्रभाव दर्शकों को रोमांच से भर देंगे। यहाँ ड्रैगन और गॉडजिला जैसे नजारे भी बिल्कुल वास्तविक लगेंगे। इसके साथ ही यहाँ डिजिटल जंगल सफारी भी तैयार की गई है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बात की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर उत्साह। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी, हवा की गुणवत्ता में सुधार, आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम भाग कर रेड अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे ने सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं, हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: चलते हुए बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्सयूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का ये वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। सिम इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही है, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षाकर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षाकर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर

0: पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम बेंगलुरु में ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के नीचे केरल राज्य परिवहन की बस में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के बाद बस धू-धू कर जलने लगी। जब ये घटना हुई उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिर्फ 2 यात्री थे। वे चारों समय रहते बस से बाहर आ गए और सुरक्षित बच गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। धुआं उठते ही बस में सवार यात्री और स्टाफ बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो कि सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसल कर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पापाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उपनिरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Right field, and it will...
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: मानसून में अब डूबेगी नहीं दिल्ली। तेज बारिश में कितनी बदल गई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा में आस्था का अर्थशास्त्र। सावन में काशी में कोई वीआईपी नहीं। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चल।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
0: चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही है और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है जिससे वो भीगती नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सहारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती है और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती है। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थाम कर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के ग्वांगशी इलाके में है जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है, जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही है जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन तालाब बन चुका था, वहीं दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर यह रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

0: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम ना दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: योगिनी एकादशी पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
6: After multiple assassination attempts, they can't even get...
7: They're reliable.
8: Always when I need them.
5: To live sports action.
9: One-hit jam by LeBron on the break.
10: That's another three, Steph Curry.
5: And your favorite music.
11: Well, the dawn begins to crack.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
0: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मॉनसून में अब डूबेगी नहीं दिल्ली, तेज बारिश में बदलने वाली दिल्ली को देखिए। जहां हर तीर्थ यात्री लक्ष्मी का वाहक, अमरनाथ यात्रा में आस्था का अर्थशास्त्र आपको समझाएंगे। साथ ही सावन में काशी में कोई वीआईपी दर्शन नहीं, 30 जुलाई से श्रावण मास में काशी विश्वनाथ में दर्शन का पूरा प्लान आगे दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
0: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांसिट शिविर का दौरा किया, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बात की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ को दिया गया विराम, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे भक्त। खराब मौसम के बावजूद श्री हेमकुंड साहब में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी, हवा की गुणवत्ता में सुधार। आसमान में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला, तेजी से चल रही है मेले की तैयारियां। इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों के बीच बोले पीएम, आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। अच्छी और सच्ची खबरों में बात, सबसे पहले दिल्ली और एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की कर लेते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है, इससे भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसका असर आम जनजीवन पर भी दिखा। जगह जगह पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी, लोगों को जाम से जूझना पड़ा। लेकिन इस बारिश के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर भी आई है, और खबर यह है कि इस साल मानसून सीजन की पहली जोरदार बारिश के दौरान दिल्ली करीब 45 हॉटस्पॉट्स में कई पर जल जमाव नहीं हुआ, कहीं भी जल जमाव जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। कई अंडरपास भी इसमें शामिल हैं, जहां पर अक्सर हम देखते हैं हर साल जल जमाव जैसी स्थिति होती है, जल भराव वहां पर हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति वहां पर नहीं आई है। तो आखिर दिल्ली में यह बदलाव कैसे आया, और क्या गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर भी दिल्ली की राह पर चलकर जल भराव की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: मॉनसून आने के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में पहली बार झमाझम बारिश हुई और ऐसी बारिश हुई कि बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी। वैसे तो ये समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए नई नहीं है, लेकिन इस बार देश के राजधानी दिल्ली के करीब 40 हॉटस्पॉट्स पर इतनी बारिश होने के बावजूद जलभराव नहीं हुआ, ये दावा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है।
1: ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है। इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: दिल्ली सरकार के इस दावे की हकीकत को जानने के लिए जब गुड न्यूज टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो हकीकत वैसे ही नजर आई जैसी सरकार के कंट्रोल रूम में दिखाई गई। गुड न्यूज टुडे की टीम मिंटो रोड पर बने अंडरपास और आईटीओ पर पहुंची, जहां जल जमाव का नामो निशान नजर नहीं आया और ट्रैफिक जाम भी दिखाई नहीं दिया। मॉनसून में मिंटो रोड की ये नई तस्वीर दिल्ली वालों के लिए चौंकाने वाली लेकिन सुखद है।
2: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज़ होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहाँ हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफी आराम से राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबूजी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
3: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
2: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा है?
3: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग की बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है।
0: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जिन बड़े हॉटस्पॉट्स की पहले से पहचान की गई थी, वहां जलभराव को रोकने के लिए पहले से पूरे इंतजाम किए गए, जिसके चलते इस बार बड़े पैमाने पर जलभराव नहीं हुआ है। मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है और हर फोन कॉल पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, जिसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है।
4: जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। और उसकी ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
5: हॉटस्पॉट जो थे,
4: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं।
0: लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नोएडा जैसे बड़े शहरों में दिल्ली से उलट तस्वीरें देखने को मिली हैं। हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जैम में रेंगती गाड़ियां नजर आईं। सड़कों पर इस जलभराव के पीछे बड़ी वजह बिना प्लानिंग के विकास, खराब ड्रेनेज सिस्टम, नालों पर अतिक्रमण, मॉनसून से पहले नालों की सफाई ना होना, सड़कों का कंक्रीट से निर्माण जिससे पानी को जमीन में रिसने की जगह नहीं मिलती और सीधे सड़कों पर जमा हो जाता है। टाउन प्लानर हरीश त्रिपाठी का मानना है कि नोएडा के मुकाबले गुरुग्राम में ये समस्या ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां निर्माण के हिसाब से ड्रेनेज और बारिश के पानी के निकासी की प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लिया गया।
5: सपोज नोएडा है, ये एक मास्टर प्लान के तहत तो उस तरीके से बसा हुआ शहर है, और गुड़गांव के साथ ये फर्क है कि ये ओवरऑल पीपीपी मॉडल्स में अलग अलग अलग डेवलपर्स के द्वारा अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से किया गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे यूनिफाइड एक एक जिस तरह की हायरार्की वाली ड्रेन्स होती हैं और जिस तरीके से बड़ी ड्रेन फिर छोटी ड्रेन फिर उससे बड़ी ऐसे करके जो एक सिस्टम पूरा का पूरा जो प्लान्ड सिटीज का होता है वो नहीं है। जो लार्जर सिचुएशन रही है कि अरावली हिल्स के नीचे ये बसा है, और अरावली हिल्स के नीचे बसा है तो जो इसका एक नेचुरल सिस्टम था वो क्या हुआ कि जैसे जैसे बिल्डर्स और डेवलपर्स अपना आते गए तो सब अपने हिसाब से उसको रोकते गए, तो वो रुके और जो जितनी जोहड़ या नेचुरल जो वाटर बॉडी पॉन्ड्स जिसको बोलते हैं वो सारे ख़त्म हो गए, तो वो भी एक रीज़न रहा है कि ये पूरा का पूरा इलाका जरा भी बारिश होने पे जो है फ्लडेड हो जाता है।
0: गुरुग्राम को अगर जलभराव की समस्या से निजात पाना है तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना होगा, नालों की नियमित डिसिल्टिंग करनी होगी, पंपिंग स्टेशन बढ़ाने होंगे, नालों के पास से अतिक्रमण हटाना होगा, प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे तालाब और पोखरों को पुनर्जीवित करना होगा, और तो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को घरों, पार्कों, सड़कों और बिल्डिंग्स में जरूरी करना होगा। पूर्व टाउन प्लानर उमेश सहगल का मानना है कि इस मामले में आईआईटी जैसे संस्थानों से मदद भी काफी कारगर साबित होगी।
6: एक ही सलूशन है, वो टेक्नोलॉजिकल सलूशन है। टेक्नोलॉजी इसके लिए प्रॉपर चाहिए कि जितना सड़क का पानी है, ज्यादातर जो पानी सड़क से आ रहा है उसको हम ग्राउंड में ले जाए। अब किस तरीके ग्राउंड में ले जाए, कितनी उसकी सफाई की जाए और ग्राउंड में जाए, ये मैटर स्टडी का मैटर है। इसमें टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी यूजफुल रहेगी, सिर्फ जो ग्राउंड वाटर दिल्ली जल बोर्ड ने डेवलप किए हुए हैं घरों के लिए सिर्फ उससे काम चलेगा या उससे नहीं चलेगा, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इतनी IITs हैं दिल्ली में, नीरी है नागपुर में, दुनिया भर की लेबोरेटरीज हैं, हम क्यों नहीं स्टडी करते इस इशू को? इशू को स्टडी करना चाहिए है कि किस तरीके से इस पानी को जमुना में ना जाने दिया जाए, इसको ग्राउंड के अंदर ले जाए। और दिल्ली और गुड़गांव दोनों जगह पे ग्राउंड वाटर बहुत लो है, काफ़ी पानी अभी उसमें जा सकता है और इससे फ़ायदा भी। और तीसरी एक और एडवांटेज दोनों जगह में है, पथरीली है, नीचे की ज़मीन जो है पथरीली है, इसका मतलब है जो नेचुरल फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। नेचर भी तो फिल्टर कर रहा है ना पानी को, ये थोड़ी है कि सारा पानी जा रहा है, सिर्फ जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं वो नहीं जाएंगी, वो नहीं फिल्टर हो पाती, बाकी तो सारी फिल्टर हो जाएंगी।
0: कुल मिलाकर मॉनसून के सीजन में जलभराव की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बेहतर प्लानिंग और फिर उस पर अमल बहुत जरूरी है, ताकि दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है, जिसका आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, और इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका काम इन दिनों फुल रफ्तार से चल रहा है, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो रही है।

0: अमरनाथ यात्रा इन दिनों पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी हों, सभी इस अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
1: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
2: जी,
1: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग?
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
1: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
2: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एक महीने पहले ही गांवों से घोड़े वाले और पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट से लेकर पानी की व्यवस्था और टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें काम कर रहे हजारों कामगारों के लिए ये यात्रा कमाई के एक अच्छे अवसर से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
3: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
1: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
3: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतजार करते रहते हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है, और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनमें से कई तीर्थयात्री राज्य के दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जाते हैं, जिसका असर भी कारोबार पर दिखता है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं कि स्थानीय लोग की मदद और सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
4: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं, मैं 2014 से आ रहा हूँ, लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सक पाए। लोकल वालों को बड़ा सहयोग रहता है हमको।
1: तो साथ साथ में कितना यहाँ आपके आने से, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अभी दुकानें चलती हैं, चाय की दुकान,
4: अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का सोनमर्ग लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा तो भोलेनाथ का नाम लेके करें, अच्छे से सबकी बर्फानी बाबा सबके ऊपर रक्षा करें।
5: यात्रा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतना सारा रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप हमारे कश्मीरी भाई हो, यहाँ पे पालकी वाले, घोड़े वाले, दुकानदार, उनका भी रोजगार है और उनको भी इतनी खुशी होती है कि जितना कि हमें है, कि जैसे कि जुलाई का महीना आएगा हम वहाँ पे मेले पे जाएंगे, है ना, कि हमारा रोजगार चलेगा, बस ऐसे ही बोले शंकर की सबसे सभी का प्यार है।
1: क्योंकि प्रशासन अपना काम करती है, फौज अपना काम करती है, आप लोगों की सुविधा की, लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ के लोग आपकी सुविधा करते हैं, वो रोजगार भी कमाते हैं, ये माहौल दुनिया में किसी जगह भाईचारे वाला माहौल?
5: मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं तो यही अरदास करूंगा बोले शंकर के, ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है, अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ धाम की। धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में सावन के महीने में धार्मिक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम दिखने वाला है। माँ गंगा की पावन धारा के पास विराजमान बाबा विश्वनाथ धाम में श्रावण मास की विशेष तैयारियां चल रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में लाखों शिव भक्त देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ धाम का भी रुख करते हैं। अगर सोमवार को छोड़ दें तो भी इस दौरान कम से कम 6 से 7 लाख शिव भक्त जल चढ़ाने आते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन ने भी कमर कस ली है ताकि सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके।

0: आस्था, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष हर तरफ गूंजने वाला है। भोलेनाथ को प्रिय और समर्पित सबसे पवित्र महीना श्रावण मास शुरू होने वाला है। उपवास के साथ कांवड़ यात्रा निकालने वाले नीलकंठ के भक्त पवित्र शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की कृपा की कामना करेंगे। इस साल 30 जुलाई से सावन के पवित्र महीने का आरंभ होगा। समापन की तिथि 28 अगस्त को है। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ धाम का भी रुख करते हैं। सावन के हर सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का अलग श्रृंगार और स्वरूप देखने को मिलता है। गर्भगृह में फूलों से दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्भुत श्रृंगार का दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य हासिल होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि पहले की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से अब कांवड़िए गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं। सकरी गलियों से गुजरने के बजाय अब चार प्रमुख द्वारों और बड़े परिसर की वजह से दर्शन करने में आसान हो गया है। फिर भी सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था कम ही साबित होती है, लिहाजा प्रशासन ने इस बार भी पहले से कमर कस ली है ताकि सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके। इसी को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस के तहत आने वाले सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठक का दौर शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले 7 प्रवेश द्वार के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो।
1: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी।
0: मंदिर प्रशासन की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की खास वजह है, सावन के महीने में गर्मी और उमस रहती है। घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों को डिहाइड्रेशन से बचाने और उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी। इससे शिव भक्तों को व्रत उपवास के नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी।
1: मंदिर प्रशासन की तरफ से यह निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन खास तौर से जो श्रद्धालु व्रत रहते हुए दर्शन करते हैं उनसे ऐसा न करने की अपील मंदिर प्रशासन ने की है, क्योंकि काफ़ी वक्त सावन के माह में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लग जाता है।
0: नियमित अंतराल पर संपूर्ण धाम क्षेत्र में पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा गर्मी या भीड़ भाड़ की वजह से किसी की तबीयत ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए काशी विश्वनाथ परिसर में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी, साथ में ORS की भी व्यवस्था होगी।
2: जो अपील हम हर बार जारी करते हैं कि श्रावण मास में कई बार लोग सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए घर से चलने का प्रयास करते हैं, तो आपसे बहुत अनुरोध है, बहुत श्रद्धा के साथ अनुरोध है, महादेव का स्मरण करके घर से खाली पेट ना निकलें, फलाहार का कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण कर लें। खाली पेट रहने से कई बार व्यक्ति फेंट हो जाता है, यहाँ बेहोश होने की समस्याएं होती हैं, स्ट्रेचर पर उनको ले जाना पड़ता है, तो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। भगवान शिव आनंद के देवता हैं, आप आनंद में रहें, आनंद पूर्वक यहाँ पर आएं। धाम की तरफ से यहाँ पर ग्लूकोज की, ORS की, पानी की, पेयजल की, सूक्ष्म जलपान की सारी व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की सारी व्यवस्था की जाएगी।
0: इस बार पूरे सावन के महीने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के गर्भगृह से स्पर्श दर्शन की अनुमति सुबह 4 से 5 बजे और शाम 4 से 5 बजे के बीच होती है। हालांकि सावन में भारी भीड़ के कारण वीआईपी दर्शन के अलावा स्पर्श दर्शन जैसी विशेष सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं। सभी भक्तों को सामान्य कतार से ही दर्शन करने होंगे।
2: साथ ही जो पूर्व के वर्षों की स्थिति रही है वही स्थिति इस बार भी है। हम लोगों ने सभी प्रकार के जो विशेष अनुरोध आते हैं, प्रोटोकॉल दर्शन के अनुरोध होते हैं, वो सभी निरस्त रहेंगे। सभी विशेष जनों से अनुरोध है, काशीवासियों से भी अनुरोध है, बाहर के मान्यवर लोगों से भी अनुरोध है, ऐसा कोई अनुरोध ना भेजें। उसका के भीतर स्पर्श दर्शन को लेकर लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, तो स्पर्श दर्शन उसमें पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे, किसी का भी नहीं होगा। अगर किसी समय भीड़ कम होती है, उस समय अगर कोई स्थिति बन पाती है, तो निश्चित रूप से मंदिर न्यास भक्तों का, श्रद्धालुओं का उस समय मन रखने का प्रयास करेगा, लेकिन भीड़ के समय किसी का भी इस प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा पाएगा।
0: सावन के दौरान काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग से प्रवेश द्वार की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से काशीवासियों से अपील की गई है कि वो कांवड़िए और श्रद्धालुओं का स्वागत करें। काशी भोलेनाथ की प्रिय नगरी मानी जाती है। विवाह के बाद भगवान शिव देवी पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। काशी में भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। यही वजह है कि इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि देवभूमि मानी जाने वाली काशी गंगा किनारे भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। प्रलय आने पर भी जिसका विनाश नहीं हो सकता। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधवा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
6: Jack, you're killing me.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझ

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसको मनाने के, इसका पालन करने के लाभ क्या हैं और किस प्रकार योगिनी एकादशी पर हर पापों का नाश किया जा सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:44 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु

सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। क्या है इसका महत्व? देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप के नाश के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं, तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और योगिनी एकादशी पर ईमानदारी से साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। पीपल के वृक्ष को काटने पर भी पाप जीवन में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा भी पाप आपसे हो गया है तो योगिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। यानी जीवन में कितने भी तरह के पाप हों, जीवन में कितने भी तरह के दोष हों, अगर आप योगिनी एकादशी पर उपवास रखें और साधना करें तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप योगिनी एकादशी का पालन करना चाहते हैं या योगिनी एकादशी पर
अगर उपवास रखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके अगर उपवास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या केवल फल ग्रहण करिएगा। जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा और कम से कम बोलिएगा, क्रोध मत करिएगा।
देखिए ऐसा नहीं है कि आप एकादशी पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको लंबी आयु चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा एकादशी पर करके प्रार्थना कर सकते हैं। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर एकादशी पर सुबह और शाम दोनों समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर पीपल का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। योगिनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भगवद गीता का पाठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप नष्ट होंगे, पापों का प्रायश्चित होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की योगिनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। एकादशी के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। हर एकादशी पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अच्छा होगा।
ऐसा करने से मन पवित्र होगा और पापों का नाश होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
8: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ के बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में दही है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
9: भारत की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा। सजावट से जुड़े 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बात, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज। अब हर महीने की 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सीएम सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देशभर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज। रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत। आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा उत्तराखंड के धामों को लेकर गुजरात के वडोदरा में होने वाली रुद्राक्ष सज्जा की तैयारी की भी है। देखिए, बारिश के जारी दौर के बीच चार धाम की यात्रा जारी है। हालांकि मौसम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। केदारनाथ धाम यात्रा के साथ ही पूरे रुद्रप्रयाग जनपद की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसम खराब होने पर केदारनाथ धाम की यात्रा को रोककर यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहराया जा रहा है और मौसम के साफ होने की प्रतीक्षा की जाती है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं वो सुगमता से दर्शन कर पा रहे हैं। इन सब के बीच गुजरात के वडोदरा में केदारनाथ मंदिर और तुंगनाथ को 11 लाख रुद्राक्ष और 2,51,000 डमरू से सजाने की तैयारी चल रही है। सजावट के काम में 150 लोगों की टीम शामिल होगी, जिसमें 80 बाइकर्स भी होंगे। बाद में केदारनाथ और तुंगनाथ से रुद्राक्षों को फिर बड़ौदा लाया जाएगा और शिवरात्रि जुलूस के दौरान प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के दो युवक निर्मल उइके और उनके दोस्त तुलेंद्र मरावी इन दिनों आस्था की अपनी यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। दोनों 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बालाघाट से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान निर्मल दंडवत प्रणाम करते हुए रास्ता तय कर रहे हैं, जबकि तुलेंद्र साइकिल पर सामान लेकर पैदल चलते हुए सामानों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों 143 दिन में करीब 600 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए झांसी पहुंचे। वर्ष 2024 में निर्मल ने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर केदारनाथ दंडवत यात्रा करना तय किया। उसके बाद इस संकल्प को पूरा करने के लिए करीब 1.5 वर्ष तक तैयारी की और फिर 2026 में महाशिवरात्रि के दिन अपने साथी तुलेंद्र के साथ यात्रा पर निकल पड़े। करीब 1450 किलोमीटर लंबी इस कठिन यात्रा में निर्मल महिलाओं की सुरक्षा, गौ रक्षा, पर्यावरण बचाने, वृद्धा आश्रमों की सहायता और विश्व शांति का संदेश भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यानी इस यात्रा का उद्देश्य केदारनाथ धाम तक पहुंचने के साथ ही समाज को जागरूक करना भी है। अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों मार्गों पर चल रहे सेवा कार्य के बीच हर दिन श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी का दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के सातवें दिन जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लगभग 10,000 यात्री बालटाल और पहलगाम रूट के लिए रवाना हुए। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर सभी तरह की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन आसानी से कर सके। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश तो देखते ही बनता है, इससे यात्रा मार्ग पर दुकान लगाने वालों के चेहरे भी खिले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उनके सामानों की अच्छी खासी बिक्री हो रही है। पालकी वाले, घोड़े वाले से लेकर कई तरह के काम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दो दिनों से हो रही बारिश के बाद लोग न सिर्फ गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी बहुत सुधार हुआ है और लोग अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब पूरे देश को कवर कर चुका है। दिल्ली NCR में शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में कुछ कम बारिश हो सकती है, लिहाजा मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज के बदले येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से देश भर के नदी नाले पानी से लबालब होते जा रहे हैं, लिहाजा जगह जगह सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर एहतियात भी बरती जा रही है। जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वाराणसी में बचाव कर्मी नदी में डूबते युवक के पास पहुंचे और फिर उसे सुरक्षित बचाकर घाट पर ले आए। भेलूपुर इलाके में दांडी घाट के पास इस युवक को सुरक्षित बचाया गया। बिहार के नालंदा निवासी ऋतुराज ने खुद को बचाने के लिए जवानों की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया किया। और अब बात करते हैं वाराणसी में सावन की तैयारियों की। वैसे तो 30 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सावन में काशी आने वाला हर श्रद्धालु शिवमय नजर आता है और सावन में शिव का ये लोक और भी अलौकिक नजर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से एंट्री के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है।

0: महीने में नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं।
1: हम तो गदगद हैं साहब, हम तो बाबा विश्वनाथ पर केस करने वाले थे कि आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दर्शन आज से शुरू हो गया।
0: लेकिन इस बार सावन में काशी वासियों को विशेष द्वार से एंट्री मिलेगी।
1: जो हम लोग का एक फक्कड़पन है वो थोड़ा सा ये होगा, नहीं तो हम लोग जब रात के 9 बजे भी चले आए दर्शन कर लिए, सुबह में आगे दर्शन है।
0: अब काशीवासी सुबह से लेकर रात तक बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे।
2: हम लोग काशी के होकर दर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, तो हमारे लिए तो एक यहाँ रहने का एक फायदा ही है हमारे लिए। बिल्कुल,
0: जो सावन भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, उस सावन के स्वागत के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सच धज कर तैयार हो रही है। वाराणसी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आम दिनों में भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये संख्या सावन के महीने में और भी बढ़ जाती है। फिलहाल इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी तारीख को लेकर संशय है। कुछ लोग इसकी शुरुआत 29 जुलाई से भी मान रहे हैं।
3: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और ख़ास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन ख़ास तौर से जो श्रद्धालु व्रत रहते हुए दर्शन करते हैं उनसे ऐसा न करने की अपील मंदिर प्रशासन ने की है, क्योंकि काफ़ी वक्त सावन के माह में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लग जाता है। इसके अलावा इस बार श्रद्धालुओं के काफ़ी भीड़ की उमड़ने की उम्मीद है। पिछली बार जहां 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, तो वहीं इस बार 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि इस बार किसी भी प्रकार का स्पर्श दर्शन, VIP दर्शन या विशेष आग्रह दर्शन पूरी तरह से सावन के दौरान रुका रहेगा और ये रोक, ये प्रतिबंध पूरे सावन पर्यंत तक चलती रहेगी।
0: काशी केवल एक धाम भर नहीं है, ये शिवत्व का संपूर्ण संस्कार है। सावन में केवल काशी ही शिव के रंग में नहीं रंगती, बल्कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु शिवमय नजर आता है।
1: दिव्य हो गया, पर तो हम लोग तो बचपन से यहाँ जो है निर्दम तो जाके बाबा के अर्घ के पास बैठ करके करते थे। ये भीड़ के चलते
4: बच गए बाबा मुकदमे से,
1: मुकदमे से बच गए। हम तो जरूर करते मुकदमा उनपे, लेकिन खैर बाबा का आशीर्वाद और बड़ा मन प्रसन्न है, जा रहे हैं दर्शन करने।
0: सावन में हर हर महादेव की गूंज काशी में साधना बन जाती है और शिव का ये लोक और भी अलौकिक नजर आता है।
5: श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। वर्ष 2024 के बाद से जो SOPs हम लोगों ने फाइनल की हैं, वर्ष 2022 और 23 जो धाम के लोकार्पण के बाद के 2 वर्ष थे, उनकी भीड़ की संख्या को देखते हुए वही SOP हमारी बहुत परफेक्टली चली है। पूरे जो हमारा कुंभ का पर्व प्रवाह था, इसके पहले श्रावण मास रहा, महाशिवरात्रि रही, उसमें भी उसका प्रयोग किया गया और बिना किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट के, बिना किसी अवांछित घटना के सारे पर्व संपन्न हुए हैं। वही SOP इस बार भी लागू रहेगी। प्रवेश के मार्ग निर्धारित हैं, जो आप जानते हैं कि कुल हमारे 7 मार्ग रहेंगे अलग अलग, जिनसे प्रवेश दिया जाएगा, और जो निकास के मार्ग हैं वह भी निर्धारित हैं। यह भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी हमारे जूता चप्पल के लॉकर नगर निगम द्वारा बनाए जाएं, वह उन स्थानों पर बनाए जाएं जो प्रवेश और निकास का जो कॉमन पॉइंट हो, कि जो व्यक्ति प्रवेश करता है उसका निकास जिस स्थल पर हो रहा है अपना जूता चप्पल उसको वहां मिल जाए, जिससे जूता चप्पल खोने की समस्या न उत्पन्न होने पाए।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है। बाबा के धाम तक सीधे पहुंचने वाला यही वो मार्ग द्वार है 4B, जो विशेष रूप से काशी में रहने वालों के लिए बनाया गया है।
3: काशीवासियों के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती है, क्योंकि वे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में बगैर भीड़ का हिस्सा बने और बगैर रोक टोक के सीधे VIP ट्रीटमेंट के साथ दर्शन कर पा रहे हैं, प्रवेश कर पा रहे हैं। इसको लेके अलग से प्रवेश मार्ग काशीवासियों हेतु स्थानीय परिचय पत्र सहित जो मार्ग है ये शुरू कर दिया गया है, और द्वार संख्या 4B काशी द्वार काशीवासियों हेतु विशेष द्वार तैयार भी कर दिया गया है। अब मंदिर खुलने से 15 मिनट बाद से लेकर मंदिर बंद होने के 15 मिनट पहले यानी सुबह 4:15 बजे से लेकर रात्रि 10:45 बजे तक जो स्थानीय काशीवासी हैं, श्रद्धालु हैं, अपना कोई भी स्थानीय पहचान पत्र दिखाकर या सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाकर वे एंट्री कर सकते हैं, सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा सकते हैं। इसके पहले ये सुविधा सिर्फ सुबह 4 से 5 और शाम 4 से 5 थी, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं वे आसानी से इस सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि अपने वाराणसी दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से ये निर्देश दिया कि काशीवासियों के लिए पृथक व्यवस्था मंदिर में प्रवेश की हो, मार्ग की हो, दर्शन की हो, इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया और उसको अमली जामा पहनाते हुए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसको तत्काल लागू भी कर दिया, और इसका लाभ अब श्रद्धालु बेरोक टोक बिना भीड़ का हिस्सा बने पूरे VIP ट्रीटमेंट के साथ ले पा रहे हैं।
0: वैसे तो काशी का होना खुद में सौभाग्य है, लेकिन इस स्पेशल रास्ते से सीधे बाबा के दर्शन पाने का सौभाग्य पाकर काशी के लोग खुश हैं।
6: बहुत बढ़िया, हमको तो सुन के बहुत खुशी हुई, स्पेशल रास्ता मिल रहा है, हम लोग जाके दर्शन करेंगे।
3: तो आए थे किस अभी प्रयोजन से आए थे? क्या
6: हमारे बेटा का शादी हुआ, दर्शन करने आए हैं।
0: अनुमान है कि इस बार सावन में काशी विश्वनाथ धाम में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए इस बार 7 एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। पूरे सावन VIP दर्शन और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा जारी रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। कतारों में लगे श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एयर कूलर लगाए जाएंगे और जगह जगह ठंडे पेयजल और ORS की व्यवस्था होगी, और विश्वनाथ धाम परिसर में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। यानी सावन में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। प्रशासन की भी यही कोशिश है कि बाबा के इस दिव्य धाम में भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ व्यवस्था भी बनी रहे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: RPF कांस्टेबल कैसे बना यात्री के लिए देवदूत? आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ में मौजूद NTPC की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना ने हेड रेस टनल के सफल ब्रेक थ्रू के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रोजेक्ट के फेज 2 और फेज 3 से बनाई जा रही सुरंगों का सटीक मिलान होने से दोनों हिस्से सफलतापूर्वक आपस में जुड़ गए हैं। फेज 2 से 1748 मीटर और फेज 3 से 981 मीटर सुरंग की खुदाई के बाद ये ब्रेक थ्रू संभव हो सका है। इसे परियोजना के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जा रहा था। इस उपलब्धि के साथ 12.1 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल में अब तक 9.7 किलोमीटर खुदाई पूरी हो चुकी है, जो कुल सुरंग निर्माण का लगभग 80% है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा पुलिस लाइन में नए भवनों का लोकार्पण किया। इसके बाद शहर में अवंती बाई की प्रतिमा का लोकार्पण कर वो सीधे जनसभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने 710 करोड़ की 229 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया। यूपी के झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक यात्री का पैर अचानक फिसल गया और वो सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खतरनाक गैप में गिरने लगा। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल उसके लिए देवदूत बनकर सामने आया, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना एक पल गवाए फुर्ती से दौड़कर यात्री को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर खींच लिया। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जवान की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार मॉनसून में राज्य को ज्यादा हरा भरा बनाने और हरियालो राजस्थान अभियान को बढ़ावा देने के लिए बेहद रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध करवा रही है। सरकारी नर्सरी में पौधों की शुरुआती कीमत महज 5 से 6 रुपए है, जबकि अधिकांश पौधे 10 रुपए तक की कीमत में मिल रहे हैं। पौधे की प्रजाति के अनुसार कीमतें तय की गई हैं और यहां करीब 50 से 60 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं, जिनमें नीम, गुलाब, मोगरा, चंपा, छायादार पेड़, सजावटी पौधे, फूलों की प्रजातियां और औषधीय पौधे शामिल हैं। राजस्थान के बूंदी में पहली बार राज्य स्तरीय कुश्ती का भव्य आयोजन किया गया। अंडर 23 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 23 साल तक के महिला पुरुष पहलवानों ने अपना दम दिखाया और शानदार प्रदर्शन किया। 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 2 दिन तक चले मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश देख दर्शकों ने भी खेल का आनंद लिया। आयोजन में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जीतने वाले पहलवानों को मेडल और ट्रॉफी से नवाजा गया। और अब बात जगन्नाथ रथ यात्रा की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि रथ यात्रा शुरू होने से पहले तमाम परंपराओं को निभाने का दौर जारी है। रथ यात्रा उत्सव के तहत बुधवार को देउली मठ में भगवान के लिए अनसर फल भार रस्म निभाई गई। इस परंपरा के तहत जगन्नाथ मंदिर में बीमार भगवान के जल्दी ठीक होने की कामना के साथ भक्त उन्हें भेंट के तौर पर फल और प्रसाद भेजते हैं। अब 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकलेगी।

0: ये तस्वीरें पूरी रथ यात्रा उत्सव के अनसर फलभार रस्म की हैं, जिसके तहत काकलपुर के देवली मठ से बीमार भगवान जगन्नाथ के लिए फलों का उपहार भेजा जा रहा है, ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को फिर से दर्शन दें। अनसर फलभार रस्म को निभाने के लिए बैलों और बैलगाड़ी की साज सज्जा की गई है। सजी हुई फलों की टोकरियां बैलगाड़ी में रखी जा रही हैं। जिस तरह भगवान की भक्ति में नाचती गाती महिलाएं और धरती पर माथा टेक कर भगवान जगन्नाथ को याद कर रही हैं, उसे देख सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ सिर्फ उनके पालनहार, उनके आराध्य देव ही नहीं, बल्कि अटूट रिश्तों की डोर से भी बंधे हुए हैं। भक्तों की ओर से भगवान को दी गई इस भेंट में केवल फल नहीं, बल्कि उनका अगाध प्रेम, अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण भी है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा की रस्म के बाद अपने भाई बहन के साथ बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर सदियों पुरानी अनसर फलभार परंपरा निभाई गई, जिसमें काकतपुर के देवली मठ से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसाद और फलों का उपहार भगवान और उनके भाई बहन के लिए भेजा गया। काकतपुर देवली मठ को भगवान जगन्नाथ का एंटू डिस्ला यानी जन्म स्थान माना जाता है। ऐसे में काकतपुर और आसपास के गांव के भक्तों ने अपने घर पर उगाए तरह तरह के फल, फूल, तुलसी के पत्ते भगवान को भेंट किए, जिसे चार सजी धजी बैलगाड़ियों में लादकर जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रवाना किया गया। आस्था का ये वो रंग है जहाँ शब्द मिट जाते हैं, तर्क मौन हो जाता है, प्रेम भक्ति और समर्पण से सराबोर भावनाएं एकाकार होकर सुकून के एक झोंकी की तरह वातावरण में घुल जाती हैं। पूरी रथ यात्रा उत्सव में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है। तीनों रथ सज धज कर तैयार हैं, उन्हें अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। रथ निर्माण से जुड़े सेवादार और कलाकार भावुक हैं कि वो शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके बनाए रथों पर सवार होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। कारीगरों में रथों को सजाने का उल्लास नजर आया। रथ का सारा काम तो खत्म हो चुका है और जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है वो भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी रथ को सजाने का काम चल रहा है।
1: जो बारिश सब में काम किया है, तो भगवान जी का अभी वक्त क्या है वो आएंगे जब करेंगे तो हमारा कार्य हमारे जीवन में उस टाइम थोड़ा दुख लगता है कि भगवान जी आए फिर हमारे अपने मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दुख लगता है फिर अगले साल के लिए वो करते हैं, फिर अगले साल आएंगे तो जिंदा होंगे तो रथ बनाएंगे।
0: देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस यात्रा के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं, लेकिन इस भव्य उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण केवल भगवान के दर्शन नहीं, बल्कि वो तीन विशाल रथ भी हैं, जो हर साल नए सिरे से तैयार किए जाते हैं। हैरानी की बात ये कि इन विशाल रथों के निर्माण में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी रथ निर्माण की ये परंपरा लगभग बीते 900 सालों से चली आ रही है। हर साल रथों का निर्माण नए सिरे से होता है और पुराने रथों का उपयोग दोबारा नहीं किया जाता। रथ निर्माण के कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ दिन से होती है। इन रथों के निर्माण का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने वाले महाराणा समुदाय के कारीगर पूरी श्रद्धा और पारंपरिक नियमों के अनुसार करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय शिल्पकला, वैज्ञानिक सोच और धार्मिक आस्था का अनोखा उदाहरण है। आधुनिक मशीन और तकनीक के दौर में भी ये परंपरा उसी विधि से निभाई जा रही है जैसी सदियों पहले अपनाई जाती थी। हर साल जब ये विशाल रथ पुरी की सड़कों पर आगे बढ़ते हैं, तो वो केवल भगवान को यात्रा नहीं कराते, बल्कि सदियों पुरानी भारतीय कारीगरी और परंपरा की महान कहानी भी दुनिया के सामने पेश करते हैं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। इसी कड़ी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा मॉक ड्रिल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले जैसी स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। इस हाई लेवल ड्रिल में ATS की स्पेशल टेक्निकल यूनिट, SOG, ओडिशा पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और ODRF की टीमें शामिल हुईं। अभ्यास के दौरान मंदिर के पास एक इमारत में आतंकियों के घुसने और श्रद्धालुओं को बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति भी तैयार की गई। इसके अलावा रथ यात्रा के मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स, ड्रोन निगरानी और CCTV तैनात किए गए हैं। अब बस इंतजार 16 जुलाई का है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की 2 महीने की कठिन साधना से तैयार इन भव्य रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
3: ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड के बीच कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 238 अंकों की बढ़त के साथ 76,441 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ 23,962 पर बंद हुआ। गुरुवार को लगातार चौथे दिन गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 350 रुपए गिरकर 1,48,100 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 9 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,800 रुपए गिरकर 2,32,000 रुपए पर पहुंच गई। 9 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 95.41 के स्तर पर बंद हुआ।
2: फिल्म द इंडिया स्टोरी के रिलीज होने से पहले मेकर्स ने इसका नया पोस्टर किया रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
3: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर द इंडिया स्टोरी के रिलीज होने से पहले इस फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें काजल हाथ जोड़े और श्रेयस माथे पर शिकन लिए हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ खड़ी भीड़ उनसे चेताने के अंदाज में कुछ कहती दिख रही है। फिल्म द इंडिया स्टोरी एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट और पेस्टिसाइड के जहर जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है। ये फिल्म 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म भाई तेरा स्टार है के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें मजेदार, अतरंगी और मनोरंजन की झलक देखने को मिलती है। राघव जुयाल इस फिल्म में अजय सिंह की मुख्य भूमिका में है। स्टार कास्ट में संजय कपूर, चंदन रॉय सान्याल, निहारिका एन, निकी अनेजा वालिया, विकल्प मेहता, नासिर अल अजय, विनीत बीप कुमार, देव बी अग्रवाल, बरखा सिंह, विवान भटेना, टीना देसाई और पार्वती उमान कुट्टन भी शामिल हैं। फिल्म भाई तेरा स्टार है 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बंगाली भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म केयू बोले विप्लवी, केयू बोले डाकत आजादी के दिन वाले वीकेंड पर यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह के जीवन पर आधारित है, जो मशहूर चटगांव विद्रोह का हिस्सा थे। फिल्म में अभिनेता जीत ने अनंत सिंह की मुख्य भूमिका निभाई है।
2: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बात, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने की 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सीएम सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देशभर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत। चलिए न्यूज पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
5: बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा ली गई तब भी एक बच्चा गिरा तक नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण और सहयोग और कर्तव्य की सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची किसी बात पर पिता से रूठ गई है और शायद जब तक मनाया नहीं जाएगा वो मानेगी नहीं, और पिता जैसे ही मनाने का एक स्टेप लेते हैं बिटिया का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें सबको लुभा रही है और लगभग सभी यूजर्स इस बच्ची को देख यही कह रहे हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं, हर औरत की यही कहानी होती है, रूठती है और मनाने पर तुरंत मान जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी है। बुजुर्ग दादी अमरनाथ यात्रा पर निकली है और उनकी इस दुर्गम रास्ते की चढ़ाई की तस्वीरें चर्चा में है। लोग उनकी आस्था देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां कठिन से कठिन मार्ग भी आसान लगता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति दिखावे, रीलों और तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि समर्पण, विश्वास और साधना से पहचानी जाती है, जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हौसला बढ़ाती हैं, खुद ही देखिए। बच्चों संग वो शख्स भी दौड़ में शामिल हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसकी दौड़ की तस्वीर, उसके जुनून, उसकी हिम्मत

0: टैक्सी ड्राइवर भी मराठी बोलते हुए आपको नजर आएंगे जो गैर मराठी हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा क्लास लगाकर मराठी सिखाई जा रही है। 15 अगस्त से राज्य में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए मराठी बोलना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसके पीछे अच्छी परिवहन व्यवस्था और सवारियों की सुविधा की बात कही है। मुंबई में ये गैर मराठी व्यवसायिक गाड़ी चलाने वालों के लिए मराठी सिखाने की क्लास है। यहाँ ऑटो और टैक्सी चलाने वाले गैर मराठी भाषी ड्राइवरों को मराठी बोलना सिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र का परिवहन विभाग पिछले कुछ महीने से इसके लिए पूरे राज्य में प्रशिक्षण अभियान चला रहा है। व्यवसायिक गाड़ी चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए हजारों अनुभवी शिक्षकों की टीम तैयार की गई है। आरटीओ और ट्रेनिंग सेंटर्स में ड्राइवर्स की सुविधा के हिसाब से क्लास चलाई जा रही है।
1: महाराष्ट्र सरकार 15 अगस्त से उन ऑटो ड्राइवरों पर एक्शन लेगी जो उत्तर भारतीय हैं जिन्हें मराठी बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन खास बात यह है कि मुंबई के अंधेरी स्थित आरटीओ ऑफिस में ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखने का जो काम है वो लगातार शुरू है। क्या नाम है आपका?
2: माझे नाम मनोज कुमार साव।
1: मराठी मध्ये बोलते है तुम्ही?
2: मराठी मध्ये बोलतो ना।
1: येते तुम्हाला?
2: येते।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताए कितने दिन से आ रहे हैं और कितने दिन में आपने मराठी सीख ली है?
2: मी इथे आला आणि 25 दिवसला मी आला।
1: मराठी आ गई आपको?
3: थोडा बहुत आया।
1: क्या क्या सीखा थोड़ा बताइए?
3: थोड़ा बहुत ही कूड़े आगे पीछे यही सब सीखा।
1: आरटीओ इतना बढ़िया काम कर रहा है, आप लोग को मराठी सिखा रहा है, कैसा लग रहा है?
4: अच्छा लग रहा है मराठी सीख के। क्या महाराष्ट्र में रहना तो मराठी सीखना पड़ेगा,
1: ये बात आप भी मानने लगे?
4: हाँ मैं मानने लगा भाई, महाराष्ट्र में मराठी आना, यो बात जरूरी नहीं है कि हिंदी बोलना, मराठी महाराष्ट्र में तो मराठी भी बोलना चाहिए।
1: तमाम लोग यहाँ पर इस समय खड़े हैं, आपको बताएं मुंबई का अंधेरी इलाका है और यहाँ पर मराठी सिखाने का काम चल रहा है। और जो मेरा अभी जो हमारे अपडेट है 18 से ज्यादा बैचेस यहाँ पर हो चुके हैं और 1800 से ज्यादा जो ऑटो ड्राइवर है उत्तर भारतीय वो मराठी सीख कर यहाँ से निकल चुके हैं।
0: निर्धारित पाठ्यक्रम के मुताबिक ड्राइवर्स को यात्रियों से संवाद, दिशा निर्देश, किराया, आपातकालीन स्थिति की ट्रेनिंग दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस सब के लिए मराठी में कैसे क्या बोलना है। इसके साथ ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों से व्यवहार जैसे विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं, लिहाजा उसके हिसाब से इन्हें मराठी का ज्ञान दिया जा रहा है।
5: हमारा एक ये अभ्यास क्रम है जो हमें, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये हमारा महाराष्ट्र माझा मराठी माझा संवाद भाषा का एक अभ्यासक्रम है जिसमें 15 सेंटेंसेस है जो मराठी में है। उसमें प्रवासी यात्रियों के क्वेश्चंस है, वैसे वाहन चालक, ये जो रिक्शा चालक है उनके भी क्वेश्चंस है और ये मराठी में है, उनके क्वेश्चन आंसर दिए है। हम लोग जैसे ही उनको ग्रुप में ऐड करते हैं तो ये पैम्पलेट उनको भेजते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्लास खत्म होते ही वो ये जो है हमारा पढ़ाई का दिया हुआ मटेरियल वो देख के घर में वो पढ़ाई करके नेक्स्ट क्लास को आ जाते हैं।
0: दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने व्यवसायिक यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस नियम के मुताबिक कमर्शियल वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स को यात्रियों से मराठी में संवाद करने में सक्षम होना आवश्यक होगा।
6: हम लोग जो भी रिक्शा चालकों को मराठी भाषा अगर नहीं आती है वो भी व्यवहारिक मराठी भाषा, ऐसे नहीं है कि उसको पूरी की पूरी मराठी आनी चाहिए, सिर्फ पैसेंजर से संवाद करने के वक्त उसे मराठी आनी चाहिए, ये भावना और ये भूमिका हमारी राज्य शासन की है। इस माध्यम से हमने पिछले 3 महीने से हिंदी भाषी हमारे सभी भाइयों को मराठी सिखा रहे हैं। हमारे राज्य में 450 से ज़्यादा शिक्षक उनको मराठी भाषा का ध्यान दे रहे हैं, मगर 16 अगस्त तक सभी हमारे नेताओं ने, रिक्शा संगठन के विविध नेताओं ने हमारे मांग की थी कि हमें वक्त चाहिए, तो 100 दिन से ऊपर हमने वक्त भी उनको दे दिया। अभी परिस्थिति ऐसी है कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त तक उनको सीखना है मराठी, अभी भी हमारे क्लासेज जो है वो चली रहे।
0: महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस फैसले का मकसद यात्रियों की सुरक्षा, बेहतर संवाद और

0: सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। परिवहन मंत्री के मुताबिक इससे चालक और यात्री के बीच बेहतर संवाद से गलतफहमियां कम होंगी, आपात स्थिति में जल्द मदद मिल सकेगी और सार्वजनिक परिवहन पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा।
1: 15 अगस्त तक वो अगर मराठी सीख नहीं पाएंगे, वो भी व्यवहारिक मराठी है, तो 16 अगस्त से हमारी कार्रवाई होगी। अभी तक जो नियम था वो नियम के अनुसार सिर्फ पावती हम भरते थे, 500 रुपए का दंड उसमें था, मगर अभी ऐसा नहीं होगा। अगर मराठी व्यवहारिक मराठी अगर किसी को आता नहीं रहेगा तो हमें उसका लाइसेंस रद्द करने का भी इस माध्यम से RTO के अधिकारियों को अनुमति दी गई है, उसकी अमल बजावनी जो है वो 16 अगस्त से की जाएगी।
0: मुंबई के अंधेरे स्थित RTO में मराठी भाषा के हर दिन 6 से 8 बैच चलाए जाते हैं। एक बैच में 50 से ज्यादा ड्राइवर मराठी सीखने आते हैं। उन्हें मराठी सिखाने के लिए 6 टीचर हैं, जो उनको मराठी बोलकर सिखाते हैं। यहां अब तक 40 बैच पूरे कर लिए गए हैं। 5 जून से मराठी की क्लास शुरू हुई थी, जो 15 अगस्त तक चलेगी।
2: मराठी मंडल एक संस्था है, उनका हम सहाय लेते हैं, उनके टीचर्स यहाँ आते हैं और जो भी हमारे पास काम के संबंध में जो लोग आते हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर है, परमिट होल्डर है, वो आते हैं, उनको हम ये क्लास के लिए उत्तेजित करते हैं कि आप इधर बैठो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इधर सिखा रहे हैं। अभी 15 अगस्त का तो डेडलाइन अभी निर्देशित किया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने, तब तक जितने भी लोग रहेंगे उनको मराठी सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं।
0: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहाँ तक मुंबई की बात है तो यहाँ 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर, जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और अब गैर मराठी, खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर्स, नए नियम को लेकर मराठी सीख रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी को लेकर आए सरकारी फरमान की। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने राज्य में बाइक टैक्सी चलाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 1 अगस्त से आधिकारिक तौर पर बाइक टैक्सी सर्विस शुरू होगी। बाइक टैक्सी ऑपरेटर के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स के कल्याण के लिए प्रति वाहन प्रतिदिन 5 रुपए फीस लेगी। इसके अलावा बाइक टैक्सी से जुड़े हर किराए पर अतिरिक्त 2% लेवी भी लगेगा, जो कि ड्राइवर्स के कल्याण के लिए एक वेलफेयर फंड में जमा होगा, जिस पर सरकार का कंट्रोल होगा। बाइक टैक्सी ऑपरेटर के लिए डोमिसाइल की शर्त को लेकर प्रताप सरनाईक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई गैर अधिकृत ऑपरेटर बाजार में आ गए थे, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सर्विस चलाने की इजाजत उसी को मिलेगी जो राज्य का निवासी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो राज्य में कमर्शियल 2-व्हीलर चलाने के लिए जरूरी बैच पाने के हकदार हैं। जाहिर है, बाइक टैक्सी की सुविधा शुरू होने से न सिर्फ बाइक टैक्सी चलाने वाले को फायदा होगा, बल्कि उन यात्रियों को भी लाभ मिलेगा जो कि कैब टैक्सी की तुलना में कम किराया देकर सफर कर सकते हैं। इस फैसले को लेकर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
3: एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार का कोई डिसीजन है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि डोमिसाइल तो जरूरी है ही, यहाँ लोग रह रहे हैं, जिन्हें रहना है और अपना रोजगार, अपना रिक्शा चलाना है, ऑटो चलाना है, डेफिनेटली डोमिसाइल तो रखना भी चाहिए, बनाना भी चाहिए। और इसमें कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनाने में कोई दिक्कत है, डोमिसाइल बनाएं और अच्छे से अपना बिजनेस करें, चलाएं, अच्छी बात है, ये तो अच्छा है।
4: हो गया?
3: हाँ, मेरा तो लाइसेंस है ऑलरेडी।
4: हो गया, अब आपके बच्चों के लिए ये तकलीफ हो सकती है जिनको बनाना है?
3: नहीं, तकलीफ क्या है, अगर बनाना है और चीजें सही हैं तो बन सकता है ना, बनाना चाहेंगे तो बनेगा, तकलीफ वाली क्या बात है इसमें।
4: वैसे भी डोमिसाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, दूसरे भी सर्टिफिकेट।
3: डेफिनेटली डोमिसाइल तो कंपलसरी सर्टिफिकेट है ना, जो हमें चाहिए चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहिए। कल को हम घर खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो डोमिसाइल तो उसमें भी लगता है। या गवर्नमेंट की कोई हमें सर्विस चाहिए, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है सर्विस भी यहीं की लेंगे हम, और अगर सर्विस हम महाराष्ट्र की ले रहे हैं तो डोमिसाइल भी महाराष्ट्र का बनाना चाहिए, मराठी भी सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं है।
5: मेरा भी यही मानना है कि अगर हम मुंबई में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, हमारी एक पहचान होती है, हमें डोमिसाइल बनाना ही चाहिए, वही हमारी पहचान होती है। जैसे हम नाम अपना रखते हैं तो हमारी एक पहचान बनाते हैं, हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ की भाषा भी सीखनी चाहिए, यहाँ का रहन सहन भी सीखना चाहिए, और यहाँ का स्थायी पता मूल निवास होना बहुत जरूरी होता है।
4: है लाइसेंस है आपका?
5: बिल्कुल है।
4: अब आपके आगे जो आपके बच्चे होंगे या आपके जो नीचे हैं जिनके अभी नहीं बने
5: जी,
4: उसके लिए डोमिसाइल बनाना शुरू करेंगे?
5: बिल्कुल शुरू करेंगे, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुंवर बेचैन साहब की एक रचना है कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की बात माने, वहाँ की तौर तरीके सीखें, और सीखना जीवन की बहुत अच्छी बात है, और हमेशा सीखते रहिए, यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है। मैं आपका अपना अपना मधुर दत्त।
6: बिल्कुल, ये सरकार का कहीं ना कहीं सही निर्णय है सर, क्योंकि आप महाराष्ट्र में अगर आप रह रहे हो तो, और कानूनी रूप से अगर सब चीज़ सही रहेगा, आप बिंदास आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो ये अच्छा निर्णय है सर काफ़ी। सर डोमिसाइल अगर आप किसी आप अलग प्रदेश में रह रहे हो सर, तो जाहिर सी बात है डोमिसाइल रहेगा तो आपकी वहाँ से जमीनी रूप से आप जुड़े रहेंगे, कानूनी रूप से आप सही तरीके से, एज अ लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस रहेगा अपने पास कि हम यहाँ पे हैं, तो बहुत ज़रूरी है सर डोमिसाइल। तो
7: मैं सरकार के इस निर्णय का एक्चुअली समर्थन करता हूँ, तो क्योंकि कुछ तो होगा ही बैकग्राउंड में जो सोच समझ के सरकार ने निर्णय लिया होगा। एंड बेसिकली अगर आप महाराष्ट्र में काम करें तो यस, टूटी फूटी सही, बट आपको थोड़ी बहुत तो मराठी आनी ही चाहिए, वैसे आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको मराठी में कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट या तो मैं इस निर्णय का समर्थन करता हूँ।
8: अब सही बात क्या बताऊँ आपको, जो उनका नियम कानून है उसको करना पड़ेगा, जो बोले हैं उस कर रहा, जो बोले हैं वो कर रहा हूँ, अभी यही जमा करने आया था नाम लिखाने मराठी सीखने के लिए।
0: बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर, मोरक्को और फ्रांस के फैंस का जश्न, आज रात के मैच पर सबकी नजर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: बोस्टन में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून चरम पर है, यहां मोरक्को और फ्रांस के फैंस ने रंग बिरंगी आतिशबाजी, रोशनी और गानों से शहर को रंग दिया और लगाए नारे। बोस्टन कॉमन में तो ज्यादा से ज्यादा खेल समर्थक झंडों और प्लेयर्स के साथ जश्न मनाते नजर आए। एक तरफ फ्रांस समर्थकों ने ढोल की धुन पर टीम का हौसला बढ़ाया, मोरक्को की टीम ने 2022 के बाद अपनी रफ्तार, अनुशासन और दमदार खेल से बड़े देशों को चुनौती दी है। अब मोरक्को सिर्फ अंडरडॉग टीम नहीं रही, बल्कि क्वार्टर फाइनल से पहले दोनों टीमों की तैयारी तेज हो गई है। दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम की जीत को लेकर आश्वस्त है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायकों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने वाले क्रोसेंट्स का क्रेज बढ़ गया है। ये नई पेस्ट्री ममन बेकरी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न मनाने के लिए बनाई है, जिसमें बने अलग अलग देशों के झंडे फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग ले रहे देशों की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए ये कलेक्शन तैयार किया गया है और हर प्लेयर को देश के मुताबिक चुना गया है। NBA चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स के खिलाड़ी जेलन ब्रैनसन की फाइनल में पहनी जर्सी $10,00,000 यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए में बिकी है। 53 साल बाद NBA चैंपियन बनने का सपना पूरा करके ब्रैनसन ने फाइनल के पहले मैच में 30 अंक पाए और टीम को जीत दिलाई। फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया है। शानदार प्रदर्शन के बाद जेलन ब्रैनसन को NBA फाइनल्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। सूद 22 की नीलामी में $10,24,000 में बिकी उनकी जर्सी खूब चर्चा में रही। NBA फाइनल की यादगार जर्सी खरीदने के लिए लोगों ने ऊंची ऊंची बोलियां लगाई थी। रोलिंग स्टोन्स के नए एल्बम फॉरेन टंग्स की शानदार ड्रोन शो के साथ लॉन्चिंग हुई। लंदन का आसमान ड्रोन शो से जगमगा गया। यहाँ ड्रोन ने बैंड का आइकॉनिक लोगो बनाया। ड्रोन डिस्प्ले में रोलिंग स्टोन्स का मशहूर लिप्स एंड टंग लोगो आसमान में उभरता नजर आया। टेम्स नदी के ऊपर सैकड़ों ड्रोन ने अलग अलग आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड ने पारंपरिक आतिशबाजी की जगह ड्रोन शो से नए एल्बम का ये प्रचार किया। वेनेजुएला में भूकंप के बाद जानवरों की मदद की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 530 से ज्यादा पालतू जानवरों को बचाया गया और उनके लिए बनाया गया रेस्क्यू शेल्टर इन बेजुबानों का सहारा बना हुआ है। पालतू जानवरों को नई जिंदगी देने की कोशिश यहां अब भी जारी है। कई जानवरों का अभी भी इलाज चल रहा है। रेस्क्यू किए गए कई जानवर डिहाइड्रेशन और एनीमिया से पीड़ित हैं। मलबे में फंसे जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात के समय कैंपेन चला रही है। शेल्टर का मकसद इन बेघर पालतू जानवरों को सुरक्षित घर और नया परिवार दिलाना है। डॉग्स और कैट्स के लिए अब नई फैमिली की तलाश भी हो रही है।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ.
11: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: आज खेला जाएगा T20 सीरीज का चौथा मैच, 2-0 से आगे है इंग्लैंड, भारत के सामने करो या मरो की स्थिति। इसी के साथ खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में भारतीय टीम सीरीज बचाने के लिए आज उतरेगी। दोनों टीमों के बीच रात 10 बजे ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर मुकाबला खेला जाना है। 5 मैचों की सीरीज में अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें मेजबान टीम 2-0 से आगे है। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को अगर सीरीज बराबरी पर समाप्त करनी है तो मैच में जीत हासिल करनी होगी। ब्रिस्टल का मैदान भारत के लिए लकी रहा है और T20 में यहां पर टीम इंडिया अजेय रही है। ये मैदान छोटा भी है और बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं। ऐसे में भारत के पास वापसी करने का सुनहरा मौका है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इसकी घोषणा 11 जुलाई को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस में होगी। गांगुली हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर होंगे। 54वें जन्मदिन पर गांगुली को ये बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। इसी दिन उनकी बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए गांगुली ने इसे अपने लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट बताया। अर्णव पापलकर ने विंबलडन में लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर 36 साल पुराना सूखा खत्म किया है। वो 1990 में लियांडर पेस के बाद इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले 18 साल के अर्णव जूनियर रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने जापान के रियो ताबाता को केवल 52 मिनट में सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। आज मध्य रात्रि 1:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। जायंट किलर्स मोरक्को से किलियन एम्बापे की फ्रांस का मुकाबला होगा। इस मैच पर सबकी नजर है। फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बापे के पास इस मैच में गोल कर मेसी को पछाड़ने का मौका है। फिलहाल टूर्नामेंट में एम्बापे के नाम 7 गोल है, वही मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं? कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं? क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बातचीत, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने की 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधाएं। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसके लिए पुरी में तीनों रथ अब बनकर तैयार हो चुके हैं। आज आपको इन भव्य रथों की पहली हम झलक दिखाने जा रहे हैं और इन रथों के साथ उनमें इस्तेमाल होने वाली रस्सियों का धार्मिक महत्व भी समझाएंगे। इसके बाद बात होगी भगवान जगन्नाथ की भेजी गई फलों की भेंट की भी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों बुखार होने की वजह से भगवान जगन्नाथ विश्राम कर रहे हैं और उनका उपचार हो रहा है, इसलिए उन्हें हल्का भोजन और जड़ी बूटी अर्पित की जा रही है। भगवान की बीमार होने की परंपरा क्या है और रथ यात्रा से इसका क्या रिश्ता है, आज आपको विस्तार से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आखिर में अहमदाबाद और रांची में रथ यात्रा की तैयारियां भी तमाम दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में रथ यात्रा की तैयारियों के साथ। आस्था, परंपरा और भव्यता का सबसे बड़ा उत्सव अब दस्तक देने वाला है। तीनों दिव्य रथ पूरी भव्यता के साथ सजाए जा रहे हैं, रथ तैयार हैं और कारीगर रंग रोगन करके इसे अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। रथों की अनोखी बनावट, सदियों पुरानी परंपराएं, रस्सियों का धार्मिक महत्व और मंदिर से जुड़ी मान्यताएं इस महापर्व को और खास बनाती हैं। अब बस इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब महाप्रभु अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण पर निकलेंगे। रिपोर्ट देखिए।

0: यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, असंख्य लोगों की आस्था को जोड़ने का माध्यम है। भव्य रथ, विशाल पहिए, जिनकी चाल में भक्ति की शक्ति है, रथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। हफ्ते भर बाद ही भगवान भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के संग रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। पुरी में इन दिनों भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक महाराणा सेवक पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रथ निर्माण में मजबूती के साथ साथ कलात्मक सुंदरता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
1: अभी तो हमारा रथ का जो काम है वो थोड़ा तो शीर्ष पर लास्ट स्टेज पर, अभी हमारे रथ को जो सजाने का काम चल रहा है। अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा और जो कन्या सखियों का पटा, और ये जो रथ के पार्श्वदेव देव है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेव, माँ के देवी है नौ देवी और जगन्नाथ जी के नौ देवता है। तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं। और इसके बाद हमारा काम मेनली काम है रथ के ऊपर जो है जो कलश बोलते हैं हम इसको हमारे भाषा में, जहाँ के ऊपर की रथ का जो ध्वजा वो उड़ेगा, तो उसका काम बाकी है, उसको हम रथ के ऊपर उठाएंगे। फिर रथ का काम तो अभी प्राय तो शेष पर्याय पे, और जो रथ का सिंहासन का कार्य है वो अभी खत्म हो चुका है, तो वैसे बाकी का काम अभी धीरे धीरे चलेगा।
0: इंद्रधनुषी रंगों से सजे विशाल रथों की भव्यता देखते ही बनती है, और पहियों पर भी आकर्षक चित्रकारी है। रथ की लकड़ी पर महीन नकाशी की गई है, साथ ही पक्षियों और मछलियों की सुंदर आकृतियों को भी उकेरा गया है।
2: वो लोग रथ का पहिया वगैरह और जो होते गुज और रथ का जो दंडा ये सब वगैरह चित्र कर रहे हैं। अभी जो मेन आकर्षण है रथ का प्रभाव, वो भी प्रस्तुत होकर कर रहा है, प्रस्तुत अभी खत्म हो गया है, उस लगाना बाकी है। आज कलश ऊपर कलश लगाया जाएगा, चारों तरफ का जो पार्श्व देवा देवी है उन्हें भी लगाया जाएगा, शिखर डम्बरू वो भी लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद रथ का आखिरी काम होगा, जब रथ तीनों आज्ञा माल पाके नवयुवन दर्शन के दिन सिंह द्वार पे जाके पहुँचेंगे, उसी दिन हमारे जो जितने भी महाराणा से विश्व कुमार सेवायत लोग हैं, वो रथ का जो महापुरुष जी का आसन है, जो चका आसन जो बोलते हैं, वो वहाँ पे हम लगाएंगे और आखिरी और पहला और आखिरी हरि बोल देंगे। तो इस साल का काम खत्म होने के बाद ही वो काम खत्म होने के बाद ही हरि बोल देंगे, और उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखे, सुस्त रखे।
0: जो उपकार सेवकों की मेहनत से रथों पर बनाई और सजाई जा रही आकृतियां जीवंत नजर आती हैं। कलश के साथ पंखुड़ियों और दूसरे हिस्सों का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब रथों पर देवी देवताओं की आकृतियां, शिखर डमरू और दूसरे हिस्सों पर रंगों की परत चढ़ रही है।
2: ये रथ को अभी सारा काम तो खत्म हो चुका है, जो भी काम बचा हुआ है वो भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। अभी रथ को डेकोरेटिव काम चल रहा है, जो कलर मिस्त्री लोग हैं, चित्रकार लोग हैं, उनमें वो लोग रथ का पहिया वगैरह और जो होते हैं गुज और रथ का जो दंडा ये सब वगैरह चित्र कर रहे हैं। अभी जो मेन आकर्षण है रथ का प्रभाव, वो भी प्रस्तुत होकर कर रहा है, प्रस्तुत अभी खत्म हो गया है, उस लगाना बाकी है। सिर्फ आज कलश ऊपर कलश लगाया जाएगा, चारों तरफ का जो पार्श्व देवा देवी है उन्हें भी लगाया जाएगा, शिखर डम्बरू वो भी लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद रथ का आखिरी काम होगा, जब रथ तीनों आज्ञा माल पाके नवयुवन दर्शन के दिन सिंह द्वार पे जाके पहुँचेंगे, उसी दिन हमारे जो जितने भी महाराणा से विश्व कुमार सेवायत लोग हैं, वो रथ का जो महापुरुष जी का आसन है, जो चका आसन जो बोलते हैं, वो वहाँ पे हम लगाएंगे और आखिरी और पहला और आखिरी हरि बोल देंगे। तो इस साल का काम खत्म होने के बाद ही वो काम खत्म होने के बाद ही हरि बोल देंगे, और उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखे, सुस्त रखे।
0: तीनों रथों की अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं और अलग अलग इनका महत्व है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। ये करीब 13 मीटर ऊंचा और 16 पहियों वाला होता है। इस पर सफेद रंग के 4 घोड़े लगाए जाते हैं। रथ की रस्सी को शंखचूर कहा जाता है, तो वहीं भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है। ये 14 पहियों वाला होता है और ये हरे और लाल रंग की सजावट से तैयार होता है। इस रथ की रस्सी वासुकी नाम से जानी जाती है। बहन देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है और ये रथ 12 पहियों वाला होता है। तीनों रथ अपनी अलग पहचान और धार्मिक महत्व रखते हैं, और इसी तरह इनको खींचने वाली रस्सियों की भी अलग अलग पहचान और इनके नाम है। शंखचूड़, वासुकी और स्वर्णचूड़ा नाम की ये रस्सियां भक्त और भगवान के बीच जुड़ाव का प्रतीक मानी जाती हैं। भक्त जब इन रस्सियों को खींचते हैं तो इसे भगवान की सेवा और सौभाग्य का अवसर मानते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भव्य रथ पर सवार होंगे तो सिर्फ पुरी की गलियां ही नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के दिल भी जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेंगे। भगवान अपने भाई के साथ पुरी की गलियों में भ्रमण के लिए जब निकलेंगे तो पूरा माहौल भक्ति भाव से गूंज उठेगा। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के सभी हिस्सों से भक्त निकलने ही वाले हैं। भगवान के भव्य मंदिर परिसर में भी जल्दी ही आस्था का महासमंदर होगा। मंदिर के शिखर पर लहरा रहे ध्वज को भी 16 जुलाई की प्रतीक्षा है। आस्था का ये प्रतीक, ये ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। कहते हैं कि समुद्र की तेज आवाज से भगवान जगन्नाथ के विश्राम में बाधा आती है और इसीलिए हनुमान जी ने अपनी शक्ति से समुद्र की ध्वनि को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। मान्यता ये भी है कि मंदिर परिसर में समुद्री हवा नहीं होने की वजह से ही ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां हैं, पर धार्मिक परंपरा के अनुसार इस वक्त भगवान जगन्नाथ की सेहत ठीक नहीं है। मान्यता है कि देव स्नान पूर्णिमा पर शीतल जल से स्नान करने के बाद भगवान को बुखार हो जाता है और इसलिए मंदिर के कपाट भी बंद हैं, क्योंकि वो एकांतवास में विश्राम कर रहे हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। इस दौरान हल्के भोजन और फलों के रस अर्पित करने की परंपरा है, इसलिए देवली मठ से, जो उनका जन्मस्थान भी माना जाता है, खूबसूरत बैलगाड़ियों पर फलों की टोकरियां भेजी गई। रिपोर्ट देखिए।

0: ये संगीत जो सांसों की लय से जुड़ा है, झांझ मंजीरा ढोलक की धुन जो धड़कनों से गुथी है, भक्ति की इस अलौकिक धुन पर मन मस्त मगन है, जैसे पूरा माहौल गा गुनगुना रहा है। यही तो है सनातन का सौंदर्य, उसकी विशेषता। एक और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ पर शिव भक्तों का जत्था अपने आराध्य के दर्शन के लिए जयकारा लगाते हुए बढ़ा जा रहा है। दूसरी ओर पुरी में जग के पालनहार की यात्रा की तैयारी है, पर उससे पहले भगवान जगन्नाथ की सेवा का विधान है, और वो इसलिए क्योंकि देव स्नान पूर्णिमा के बाद से वो बीमार है। अनासर काल के दौरान एकांत में है और उनका उपचार हो रहा है, इसलिए आम दिनों की तरह भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा जो जन जीवन की आस्था और भावना से जुड़ी है, इस साल भी पूरे भक्ति भाव से निभाई जा रही है। ये तस्वीरें काकटपुर के देउली मठ की है, जहां से छोटी छोटी बैलगाड़ियों को फूलों से सजाया गया और उनमें मौसमी फलों की टोकरियां रखी गई। सेब, केला, पपीता, नारियल, आम, कटहल, यानी मौजूदा मौसम के तकरीबन सभी फल और अर्पित की जाने वाली तमाम दूसरी चीजें। बैल जब गाड़ियों को लेकर चले तो उनके घुंघरुओं से भी भक्ति का संगीत गूंज उठा। प्राची नदी के किनारे बने इस देउली मठ को भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है, और यहां से हर साल अनासर काल के दौरान फलों की टोकरियां पूरी भेजी जाती है। नाचते झूमते गाते भक्तों के साथ भेंट पूरी की ओर चली, जहां भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होने की वजह से फिलहाल एकांतवास में है, यानी मंदिर के कपाट बंद है और श्रद्धालुओं को उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे। सिर्फ सेवायत पुजारी ही उनकी सेवा और उपचार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 108 कलशों के शीतल जल से महास्नान के बाद भगवान को जवर हो जाता है, इसलिए उन्हें 15 दिनों तक विश्राम दिया जाता है। रथ यात्रा से पहले इस समय को अनासर काल कहा जाता है, जब भगवान को सादे सफेद सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और हल्का और सुपाच्य भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें दूध, फल, फूलों का रस शामिल होता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनासर पान को माना जाता है, जो दूध से बना मीठा पेय है। साथ ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधीय काढ़ा अर्पित करने की परंपरा है। भगवान को विशेष तौर पर दशमूल मोदक दिया जाता है, जो 10 जड़ों से बना एक आयुर्वेदिक उपचार है। असल में देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर महास्नान रथ यात्रा का पहला और महत्वपूर्ण आयोजन है, और इसी से जुड़ा है अनासर काल। जब भगवान ठंडे जल की वजह से बीमार होते हैं तो उन्हें स्वस्थ करने के लिए 5वें दिन उड़िया मठ से विशेष फुलेरी तेल आता है, और इससे भगवान की हल्की मालिश होती है। इसके बाद रक्त चंदन और कस्तूरी का शीतल लेप लगाया जाता है। जाहिर है भगवान को न सिर्फ श्रृंगार बल्कि सार्वजनिक अनुष्ठान से दूर रखा जाता है, ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। जब पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एकांतवास में होते हैं, तब श्रद्धालुओं को शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी के अलारनाथ मंदिर में उनके दर्शन मिलते हैं। अनासर काल के दौरान उपचार और आराम के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों स्वस्थ माने जाते हैं, और रथ यात्रा से एक दिन पहले वो नवयौवन दर्शन देते हैं। इसके बाद तीनों दिव्य रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, और इस तरह भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम सिर्फ पुरी में ही नहीं, देश के कई शहरों में ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पुरी के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा को सबसे भव्य माना जाता है, जिसमें हाथी, घोड़े और झांकियों के साथ हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। अहमदाबाद और इसी तरह रांची में यात्रा की क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट देखिए।
2: देश में पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलनी है और अहमदाबाद के इस जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा की बात करें तो ये 149वीं रथ यात्रा होगी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग रथ जिसपे कलर काम हर साल रथ यात्रा के पहले किया जाता है, जो कि कामकाज पूरा कर लिया गया है। जो पहला रथ ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का, ये रथ है, उसके बिल्कुल बाई तरफ सुभद्रा जी जो कि भगवान की बहन है, और उसके बिल्कुल बाई तरफ यानी कि तीसरा रथ बलदेव जी का रथ है। ये 3 रथ 16 जुलाई को जब रथ यात्रा मंदिर से निकलेगी लगभग 25 किलोमीटर यानी कि मंदिर से निकलकर सरसपुर जहां भगवान के मामा का घर कहा जाता है वहां पे ये रथ यात्रा पहुंचती है। ये तीनों रथ में भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी के साथ विराजमान होकर खुद नगर चर्या पर निकलते हैं। माना जाता है कि भगवान ये एकमात्र ऐसा दिन होता है जब भक्तों के पास खुद जाते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय देखने को मिलता है। अहमदाबाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में जो लोग दर्शनार्थी होते हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए सड़कों पर जनसैलाब भक्तों का उमड़ पड़ता है।
3: तैयारी भी हो रही है, प्रशासन के नुस्खे द्वारा मीटिंगें भी हो रही है और सभी का साथ और सहकार से इस यात्रा का माहौल अभी तक सब बना हुआ है, सब अच्छी रीत से सब कार्य हो रहा है।
2: ये 149वीं रथ यात्रा है। इन रथों की बात करें तो इनके पहिए रथ यात्रा के पहले बदले जाते हैं, मेंटेनेंस का पूरा कामकाज जो रथों का होता है वो पूरा कर लिया जाता है, और फिलहाल रथ की बात करें तो रथ तैयार है, इंतजार हो रहा है 16 जुलाई का जब भगवान अपने बहन और भाई के साथ इसी रथों में विराजमान होंगे और अहमदाबाद शहर की सड़कों पर खुद लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए पहुँचेंगे।
3: मंदिर के द्वारा भी जैसे कि यात्रा के लिए भगवान का रथ की तैयारियां हो गई है, भगवान का प्रसाद की तैयारियां हो रही है, और जैसे कि भंडारा का जो आयोजन होता है उसकी भी तैयारियां हो रही है। तो इस प्रकार से यात्रा को लेकर सभी लोग इस यात्रा आनंद उत्साह के साथ मनावे, इसलिए सभी लोग का साथ और सहकार से ये कार्य में सब जुड़े हुए हैं। पहिंद विधि की अपने यहाँ परंपरा रही है तो पहिंद विधि भी माननीय सीएम साहब करेंगे, माननीय गृह मंत्री श्री मंगला आरती में पधारते थे उनको भी इनविटेशन दिया गया है, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रसाद आता है उनकी भी व्यवस्था का और तारीख की सूची आ गया हुआ है।
4: रांची के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास 350 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना 1691 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे भी जगन्नाथ भगवान, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो विग्रह है उसको हर साल उस मंदिर की स्थापना के बाद से यात्रा के तौर पे निकाली जाती है। भव्य मेला का आयोजन होता है और 500 मीटर की दूरी पे गुडियच्चा यानी मौसी बाड़ी है, भगवान के मौसी की का घर है जहां वो 9 दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस अपने मंदिर में चले आते हैं जहां भक्तों को वो दर्शन देते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जोरों पे है। देखिए यहां पे बारीकी से काम हो रही है, यहां पे देखिए लोग पेंटिंग में लगे हुए हैं, यहां देखिए ये जो आकृति है उसको बनाया जा रहा है इस रथ के ऊपर, अच्छा से रंग रोगन करके इसको सजाया जाएगा। भव्य रथ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रथ है। पुरी के तर्ज पे ही यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, साथ ही साथ ये मंदिर जो है पुरी के तर्ज पे ही बनाया गया है, उसी का रेप्लिका माना जाता है। आस पास के राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं, जब जैसे उड़ीसा जो है वो, उसके अलावा बंगाल जो एडज्वाइनिंग जो जिले हैं जो झारखंड से सटते हैं, वहां से लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये कितने दिनों से लगे हैं काम में?
5: चार दिन से।
4: तो इसमें अभी वक्त लगेगा?
5: हाँ, वक्त लगेगा, बारिश की वजह से थोड़ा लेट में चालू हुआ,
4: थोड़ा बारीक काम भी है।
5: हाँ, बारीकी काम है ना।
4: हाँ, जाहिर तौर पे मेले की तैयारियां जोरों पे है और भक्तों को भी अब मेले के आयोजन की का इंतजार है। और 16 तारीख को भव्य पूजा और रथ को खींचकर मौसी बारी तक पहुंचाने के लिए उनके नयन जो है वो बिल्कुल इंतजार में है।
1: आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आपको ज्यादा खाने की आदत है, लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं, क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से की बातचीत। भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार न्यूज। अब हर महीने की 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान।

0: दाहोद दौरे पर नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई हाईवे के काम का जायजा लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात जवान ने बचाया। लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार की खास पहल, हरियालू राजस्थान। सरकारी नर्सरियों में बहुत रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध हैं, महज 5 से 6 रुपए में मिल रहे हैं पौधे। नर्सरी में करीब 50 से 60 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं, जिसमें गुलाब, मोगरा, चंपा, छायादार पेड़ भी शामिल है। रांची की बेटी ने कर दिया कमाल। रांची की लेखिका डॉक्टर मेघा रानी ने सिर्फ 2 घंटे में 120 हस्तलिखित पन्ने लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर मेघा रानी बन गई हैं दुनिया की सबसे तेज हिंदी लिखने वाली महिला। उनके रिकॉर्ड को बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। देवघर 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है श्रावणी मेला। 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों के बीच होगी तैनाती। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने में शुभारंभ से पहले तैयारियां तेज। डीएम ने कच्ची कावड़िया पथ का निरीक्षण किया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। करीब 1 वर्ष की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ। पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां। रथों की सजावट का काम लगभग पूरा। भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ पर बारीक नक्काशी की जा रही है। अलग अलग रंगों से सजाया जा रहा है रथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर में हर साल बढ़ई, लोहार, चित्रकार और दर्जी समेत लगभग 200 कारीगर 58 दिन तक करते हैं काम। पुरी में 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। लाखों की तादाद में शामिल होंगे श्रद्धालु। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां। पुरी के कलाकार कर रहे हैं रथों की सजावट का निर्माण। श्रीनगर में पंथा चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रियों से मुलाकात की। समीक्षा के दौरान एलजी ने वॉलंटियर्स और देश दुनिया से आए यात्रियों से भी संवाद किया। अमरनाथ यात्रा का आज 7वां दिन। बालटाल में अमरनाथ यात्रा से बढ़ी रौनक, स्थानीय दुकानदारों में खुशी की लहर। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पाद बेचने वालों के रोजगार को मिला नया अवसर। यात्रियों की सेवा से स्थानीय परिवारों को मिल रहा है आर्थिक बल। बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई में इजाफा। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को विराम दिया गया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित राज्य अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया। टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा। गुजरात में मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान पर मंथन हुआ। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का वीडियो कैमरे में कैद। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत और चमोली में छुट्टी घोषित। भारी बारिश के कारण ऋषिकेश, हरिद्वार, चिल्ला रूट पर बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ा। मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी बैंड के पास भारी मलबा आने से NH-707 बंद। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद, वाहनों की आवाजाही बाधित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही जबरदस्त बारिश के चलते डीएम का फैसला, गाजियाबाद समेत मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में कल स्कूल रहेंगे बंद। कल रिलीज होने जा रही अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, इंद्र कुमार ने डायरेक्शन में बनी है धमाल फ्रेंचाइजी की 4थी फिल्म। रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर शाही धमाल 4 एडवांस बुकिंग में 1.5 करोड़ कमाए। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तम शुम स्टारर कूटरूम ड्रामा इक्का कल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। थिएटर्स में रिलीज होने से ठीक 8 हफ्ते के बाद फिल्म पति पत्नी और वो 2 का होगा डिजिटल प्रीमियर। के मेनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक निकलकर सामने आई। साउथ एक्टर खेल की फिल्म लेनिन भी कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मोआना भी कल होने जा रही है रिलीज। मोआना के किरदार में कैथरीन नजर आएंगी। हॉरर फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए एक बार फिर से दस्तक देने जा रही है अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म ईविल डेड बर्न। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं राघव जुएल। 7 महीने बाद जननायकन की रिलीज डेट पर लग गई मोहर। 24 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है थलापति विजय की आखिरी फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म विवान की रिलीज डेट तय 25 सितंबर को रिलीज होने जा रही है फिल्म। काजल अग्रवाल और श्रेया स्थल पड़े स्टारर द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर हुआ रिलीज। 24 जुलाई को हिंदी तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बंगाली भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म केऊ बोले बिप्लोबा केऊ बोले डाकत। अब बड़े पर्दे पर आएगी मराठा नेवी के कभी नहीं हारने वाले एडमिरल की अनकही कहानी। के ड्रामा सिनेमा में भारत का नाम रोशन करेंगे अनुष्का सेन। म्यूजिकल फिल्म जेजू ओले में अभिनेता के साथ निभाएंगी किरदार। वेनेजुएला में भूकंप के बाद जानवरों की मदद का सिलसिला जारी 530 से ज्यादा पालतू जानवरों को बचाया गया। रेस्क्यू शेल्टर बना बेजुबानों का सहारा पालतू जानवरों को नई जिंदगी देने की कोशिश। कई जानवरों को चल रहा है इलाज बचाए कई जानवर रिहाइड्रेशन और एनीमिया से पीड़ित। रात में चलता है रेस्क्यू ऑपरेशन मलबे में फंसे जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात में पहुंचती है। शेल्टर का मकसद इन बेघर पालतू जानवरों को सुरक्षित और नया घर देना। रोलिंग स्टोन्स ने नए एल्बम फॉरेन टंग्स की लॉन्चिंग शानदार ड्रोन शो के साथ की। ड्रोन ने बनाया बैंड का आइकॉनिक लोगो। ड्रोन डिस्प्ले में रोलिंग स्टोन्स का मशहूर लिप्स एंड टंग लोगो आसमान में नजर आया। टेम्स नदी के ऊपर सैकड़ों ड्रोन अलग अलग आकृतियां बनाते हुए नजर आए। ड्रोन का अद्भुत नजारा। बैंड ने पारंपरिक आतिशबाजी की जगह ड्रोन शो से एल्बम का किया शुरुआत। फैंस के लिए बना यादगार नजारा। ड्रोन शो ने लॉन्च इवेंट को बना दिया खास। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैंस के साथ जायकों पर भी दिख रहा असर। मियामी में फुटबॉल की तरह दिखने वाले क्रोडसेंट्स नजर आए। ममन बेकरी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न मनाने के लिए बनाई है पेस्ट्रीज। फुटबॉल वर्ल्ड कप में साले रहे देशों की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए तैयार किया गया है कलेक्शन। हर फ्लेवर को देश के मुताबिक चुना गया। पेरिस में हाउते काउशर कलेक्शन की पहुंची फैशन वर्ल्ड की हस्तियां। पेरिस में 3 फैशन शो का आज आखिरी दिन। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में होता है शुमार। एनबीए चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स के खिलाड़ी जैलन की फाइनल में पहनी जर्सी $10,00,000 यानी $8.5 करोड़ रुपए में बिकी। ब्रंसन ने फाइनल के पहले मैच में 30 अंक बनाए और टीम को जीत दिलाई। शानदार प्रदर्शन के बाद जैलन ब्रंसन को एनबीए फाइनल्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। एनबीए फाइनल की यादगार जर्सी खरीदने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। एनबीए फाइनल के पहले ही मैच में पहनी गई जैलन की जर्सी अब खेल इतिहास की सबसे यादगार चीजों में शुमार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, मॉनसून के सीजन में भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर भारी बारिश को देखते हुए एहतियातन कई लोग यात्रा कुछ दिन के लिए टाल दी गई है, लेकिन जो तीर्थयात्री बद्री केदार और यमुनोत्री गंगोत्री धाम आ भी रहे हैं वो सिस्टम की दुरुस्त व्यवस्था के बीच दर्शन कर रहे हैं। वहीं पर बारिश का सिलसिला केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ, दोनों ही जगहों पर रुक रुक कर जारी है।

0: उत्तराखंड के पहाड़ों पर झूम के बह रही मानसूनी बयार। यहाँ भी बादलों की क्या खूब है रफ्तार। ऐसे में अपार आस्था वाली चारधाम यात्रा भी यहाँ है बरकरार। भले ही मानसूनी बादल उत्तराखंड में देरी से पहुंचे, लेकिन जब आए तो सिर्फ गर्जे नहीं बल्कि खूब बरस भी रहे हैं। बाबा केदार की घाटी हो या बद्री विशाल का दरबार, बारिश होने से मौसम यहाँ काफी सुहावना हो गया है। हालांकि इसी बारिश के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में इन दिनों कमी दर्ज की जा रही है। दरअसल एहतियातन श्रद्धालु भारी बारिश के इस मौसम में चारधाम यात्रा पर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में रोजाना 1000 से 1500 के बीच तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।
1: एक सप्ताह से धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1000 से 1500 के बीच सिमट गई है। हालांकि पैदल रास्ते एवं केदारनाथ हाईवे दुरुस्त हैं, यातायात बहाल है। केदारनाथ धाम की बात करें तो धाम में आए दिन बारिश हो रही है और धाम में पूरी तरह कोहरे ने अपना डेरा जमा दिया है।
0: बता दें कि अभी तक भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए 13,93,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ से होकर गुजर रही अलकनंदा नदी भी भारी बारिश के कारण उफान पर है। यही वजह है कि ये मानसून सीजन तीर्थयात्रियों को भगवान बद्री विशाल के दरबार तक पहुँचने में फिलहाल किसी बड़ी रुकावट से कम नहीं है। दरअसल यहाँ भी एहतियातन ही लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक मशीनरी यात्रा रूट पर मुस्तैद नजर आ रही है, इसीलिए कुछ श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के सुलभ दर्शन कर रहे हैं।
2: बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब में बारिश हो रही है। हालांकि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन प्रशासन की जो अपील है, कभी कभार जैसे ही मार्गों पे मार्ग बंद हो रहा है, हालांकि मशीन तैनात है, लेकिन मूसलाधार बारिश के दौरान यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील जो है प्रशासन बार बार कर रहा है। मानसून के साथ ही यात्रा लगातार जारी है।
0: उधर यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में भी श्रद्धालु रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच इन दोनों धामों पर पहुंच रहे हैं और ईश्वर का दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। फिलहाल तो लगातार आसमान से बरस रही ये बरखा बहार गर्मी से राहत देते हुए इन चारों धामों में थोड़ा सर्द लेकिन सुहावना माहौल यहाँ आने वाले लोगों को दे रही है। अभी जो यात्री एहतियातन तीर्थ यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, उनको इंतजार है मौसम के साफ होने का। लेकिन जो तीर्थयात्री इन दिनों चारधाम दर्शन पर आ रहे हैं, वो बेहतर सहूलियत वाला दर्शन कर अपनी यात्रा को यादगार बनाकर यहाँ से निकल रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं? कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं? क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
2: continue to face political pressure to reach a peace deal,
1: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
8: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। साहिल देव मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको भी ज्यादा खाने की आदत है तो ये किन कारणवश आपको होती है, और अगर ज्यादा खाने की आदत से आप परेशान हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपकी इस आदत पे सुधार पैदा कर सकते हैं, और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, सब विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र कौन सा है।
1: देखिए, जब भी आप भोजन करते हैं मन को शांत रखिए और खुश होकर आनंद से भोजन करिए। ऐसा करने से, भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर क्रोध में आकर तनाव में चिंता में भोजन करेंगे तो ये भोजन आपके शरीर पर विष की तरह, पॉइजन की तरह काम करेगा। इसलिए प्रसन्न होकर, खुश होकर भोजन करिए, अच्छा रहेगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:44 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं ज्यादा खाने की आदत के बारे में, तो पंडित जी से सबसे पहला सवाल जो बनता है वो यही है कि पंडित जी, ज्यादा खाने की आदत आती कैसे है या लगती कैसे है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे?
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खा करके अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को बिगाड़ते हैं। तो ज्यादा खाने की आदत कैसे आती है? देखिए, ज्यादा खाने का संबंध दो चीजों से होता है। एक आपके पाचन तंत्र से, आपके पेट से, और दूसरा संबंध होता है आपकी जीभ से, आपके जबान से। पाचन तंत्र का संबंध होता है मुख्यतः बृहस्पति से, और स्वाद के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं बुध और शुक्र। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या बुध शुक्र की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। ज्यादा खाने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग लालच में ज्यादा खाते हैं, कुछ की डाइट ज्यादा होती है, और कुछ लोग दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुंडली देख करके आप ये बात जान सकते हैं कि क्या आदमी संतुलित खाता है, ज्यादा खाता है या कम खाता है।
0: चलिए इसी विषय से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से आगे पूछेंगे, आपके प्रश्न भी शामिल करेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि बृहस्पति के कारण खाने की कैसी आदतें लगती हैं?
1: तो मुख्यतः या तो बृहस्पति की वजह से या शुक्र बुध की वजह से खाने की आदत आती है। बृहस्पति कैसे ज्यादा खाने की आदत देता है? बृहस्पति की वजह से अगर बृहस्पति कुंडली में प्रबल हो और थोड़ा सा निगेटिव पार्ट पर हो तो ज्यादा खाने की आदत आती है। और बृहस्पति वाले जो ज्यादा खाना खाते हैं ये खाने की मात्रा पर निर्भर करती है, ये क्वांटिटी में ज्यादा खाना खाते हैं, 10 रोटी 20 रोटी एक थाली चावल, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड पर ज्यादा जाते हैं। इनका पेट जल्दी भरता ही नहीं है और इनको हर समय भूख लगती रहती है। और जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करते हैं और वास्तव में ये लोग ज्यादा खाने की वजह से मोटे होते हैं। ये ज्यादा खाते हैं, मोटे होते हैं और कमजोर पाचन, डाइजेशन इनका कमजोर हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि भाई दो तरह के मोटापे वाले होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बेचारे कुछ नहीं खाते, कम से कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, और एक होते हैं जो खा खा कर मोटे होते हैं। वो खा खा कर मोटे होने वाले लोग दरअसल जुपिटेरियन होते हैं, दरअसल बृहस्पति प्रधान होते हैं।
0: चलिए और भी प्रश्न हैं जो पंडित जी से पूछने हैं। बारी आती है वापस राशिफल पर आने की, और कर्क सिंह और कन्या वालों के राशिफल में आज क्या है वो आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बारी आती है आपके सवाल और पंडित जी के जवाब की। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है जानते हैं
0: जी। आज का पहला प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है, और रेखा जी हमें मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1980, जन्म का समय शाम के 6:30, जन्म का स्थान है बदायूं। मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर से। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, और एक एक करके बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं ने मुझे पकड़ लिया है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए? रेखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर दिक्कतें आपके आंखों की और आपके हड्डियों की है। कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर का परामर्श मानिए, दवाइयां समय पर खाइए, सुधार अवश्य होगा। और कुंडली के हिसाब से नवंबर 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का रुख कर लेते हैं, और पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का पंडित जी तक आया है। पंडित जी, जी।
0: अगला प्रश्न श्रीमती विमला जी ने हमें लिखा है, अमृतसर से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म की तारीख है 7 मार्च 1985, जन्म का समय सुबह के 8:20, जन्म स्थान है अमृतसर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्या मेरे बेटे का विवाह होगा या वो अविवाहित रहेगा, और अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से विवाह तो इनका जरूर होगा, और इनके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह की संभावनाएं कुंडली में बनती हैं। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, थोड़ा हो सकता है कि लड़की इनसे उम्र में बड़ी हो, डिवोर्सी हो या पहले शादीशुदा रही हो, ऐसी किसी महिला से विवाह करें, ये संभावना इनके लिए बन रही है। वैवाहिक जीवन आपके बेटे का कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और अपने बेटे के नाम से शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए, काफी बेहतर होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल अब ये है कि शुक्र ग्रह के कारण, ये बताइए कि कैसी खाने की आदतें आती हैं और उसका हम सब पर प्रभाव कैसा पड़ता है?
0: देखिए, शुक्र और बुध भी ज्यादा खाने की आदत पैदा करते हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। शुक्र और बुध के कारण स्वाद और रस की आदत लग जाती है। टेस्ट, लालच, स्वादिष्ट भोजन, इसकी आदत लगती है और ये आदत अलग अलग खाने के स्वाद पर निर्भर करती है। यानी खाना कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है, उसके हिसाब से ये ज्यादा या कम खाते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वाद और लालच की वजह से ज्यादा खाता है या खाता चला जाता है। बृहस्पति वाले कैसा भी खा लेंगे, स्वाद 19-20 होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन शुक्र बुध वालों को खाना स्वादिष्ट चाहिए। ऐसे लोग स्वाद के बिना खाना नहीं खा सकते, लेकिन अगर खाना स्वादिष्ट है तो बहुत खाएंगे। और बहुत खाने के चक्कर में शुक्र बुध की वजह से मधुमेह की और आंखों की समस्या इनको हो जाती है। शुक्र बुध वाले अगर इनको मीठा अच्छा लग गया तो फिर ये खाते ही जाएंगे, मीठा रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही डायबिटीज हो। खाना स्वादिष्ट लग गया, पेट खराब है, फिर भी खाते जाएंगे, भले बाद में कष्ट उठाना पड़े। इनका जो फोकस है वो स्वाद है और बृहस्पति का जो फोकस है वो क्वांटिटी है।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल आज कैसा रहेगा वो आपको बता देते हैं।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न है पंडित जी, सवाल यह है कि अगर किसी शख्स को या किसी भी महिला को खाने की बहुत ज्यादा आदत है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो नियंत्रण आखिर किया कैसे जाए वो बताइए।
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अपने खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते। खाने की आदत को कैसे नियंत्रित करेंगे? थोड़े थोड़े अंतराल पर, दो दो तीन तीन घंटे पर थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। एक साथ ढेर सारा भोजन मत करिए। खाना खाने के बावजूद, पेट भरने के बावजूद अगर आपको भूख ज्यादा लगे तो दाहिने करवट करके लेटिएगा। बहुत सारे लोग रात में खाना खा के सो जाते हैं, फिर 2 बजे आंख खुल गई, फिर कुछ खाने लगेंगे। तो अगर भूख ज्यादा लगती है तो दाहिने करवट करके सोइएगा। भोजन करने के पहले दाहिने हाथ में जरा सा जल लें और उसको भगवान का नाम लेकर, खास तौर से भगवान विष्णु का नाम लेकर पी लें, लाभ होगा। भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। और अगर खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि ज्यादा खाने का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ, और अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप दर्शकों का अगला सवाल। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि कौन सा है पंडित जी अगला सवाल।
0: जी अगला प्रश्न विक्रमादित्य जी ने हमें लिखा है और विक्रमादित्य जी उत्तराखंड से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1979, 1979। जन्म का समय 6:15 शाम को टिहरी उत्तराखंड। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मेरा अपना व्यापार है लेकिन आजकल व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि व्यापार चेंज करके मैं रेजिडेंस के फील्ड में, प्रॉपर्टी के फील्ड में जाऊं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? विक्रमादित्य जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो व्यापार आप कर रहे हैं वो करते रहिए, वो व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। व्यापार बदलने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में जाना चाहें, रिजॉर्ट बनवा लें, होटल बनवा लें, मकान बनवा के उसको रेंट पे उठा दें, रेंटल इनकम की तरफ जाएं, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। और वैसे आपकी कुंडली का जो बेहतर समय है वो अप्रैल 2027 के बाद दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बुध के मंत्र का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की। दर्शकों का अंतिम सवाल ले लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कौन सी समस्या पंडित जी तक आई है।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न रचना जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं और रचना जी ने अपने हाथों की फोटो भेजी है। उसके हिसाब से अपने बारे में जानना चाहती हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कह दिया है, तो क्या मेरा ऑपरेशन होगा और भविष्य में स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा? उम्र अपनी 45 साल इन्होंने लिखी है। रचना जी, आपकी कुंडली कहती है कि आपके पहले भी ऑपरेशन हुए होंगे। आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि पहले कम से कम 1-2 ऑपरेशन आपके जरूर हुए होंगे और लगभग उम्र के 45-46 साल के आसपास भी, जो समय अभी चल रहा है, उसमें ऑपरेशन होगा। डॉक्टर की बात मानिए, सर्जरी कराइए, उससे आप मुश्किल से बाहर आ जाएंगी। और आने वाले समय में कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सिर्फ इतना करिए कि सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, ये सब आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: चलिए खाने की आदतों के बारे में तो पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। एक और प्रश्न है जो पंडित जी से पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना पसंद नहीं होता या कम खाते हैं या खाना ही नहीं चाहते, ये किस कारणवश होता है और ऐसा करना सही है या गलत है?
0: जी देखिए, खाना न खाने के लिए आपको दो स्थितियां समझनी है। पहला, बच्चे 12 साल या 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अक्सर उनके माता पिता शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता, हाँ फास्ट फूड कभी कभी खा लेता है या फास्ट फूड ही खाता है, लेकिन नॉर्मली भोजन करना, चावल दाल रोटी सब्जी अनाज खाना, दूध पीना, फल खाना उसको पसंद नहीं होता है। जब बात बच्चे के खाना न खाने की हो तो वहां पर जिम्मेदारी होती है चंद्रमा की, क्योंकि बच्चे का जीवन पूरी तरह से कंट्रोल होता है चंद्रमा से। तो अगर आपका बच्चा खाने पीने में बहुत नखरे दिखाता है, ना नुकर करता है, नहीं खाता, परेशान कर देता है, दो उपाय करिए, बच्चे के खाने की आदत में सुधार होगा। जब भी बच्चा घर में पानी पिए, आप कोशिश करिए कि वो चांदी के गिलास से पानी पिए, या अगर वो बोतल से पानी पीता है तो बोतल को साफ करके उसमें चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, पानी उसमें बदलते रहिए, भरते रहिए, और वो पानी पीता रहेगा, चंद्रमा अपग्रेड होगा। और चंद्रमा जब अपलिफ्ट होगा तो उसकी बुद्धि भी शांत होगी और खाने पीने की तरफ धीरे धीरे धीरे धीरे उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। ये तो 12 साल वाला हो गया। अब दूसरी उम्र जो लगभग आती है, जैसा देखा गया है, जो आती है 20 साल के बाद, और उस समय खाना ना खाने के कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को दुबला रखना चाहते हैं कि मैं ज्यादा ना खाऊं, कहीं मोटापा ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए। तो खाना चाहते हैं लेकिन मोटापे के डर से, बीमारी के डर से अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं और कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम उनको पकड़ लेती है जो अपने शरीर पर, अपने फीचर पर, अपने मोटापे पे जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की वजह से नहीं खाते हैं। वहां होता है बुध, क्योंकि बुध जो है वो आपके शरीर को शेप में लाने का प्रयास करता है। एक तीसरी कैटेगरी होती है कि जो खाना नहीं खाते क्योंकि खाना अच्छा ही नहीं लगता या टाइम नहीं मिलता, एक एक टाइम का खाना गोल कर जाते हैं या खाना कम खाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे सैटर्न है, क्योंकि शनि जो है वो कुपोषण पैदा करता है। तो जो लोग लापरवाही में खाना नहीं खाते या खराब आदतों की वजह से खाना नहीं खाते, वहां पर शनि इसके लिए जिम्मेदार है, और ऐसे लोगों को ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत खाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कम खाइए, बैलेंस के हिसाब से जितनी आपकी जरूरत है, जितने आपके शरीर को आवश्यकता है, संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण करिए, अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहूंगा कि अपने भूख को, अपने डाइजेशन को, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना या पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर वो पानी पीना अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य की रोशनी में सुबह लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट खड़े रहना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है।

0: सुबह लगभग एक मिनट डेढ़ मिनट खड़े रहना भी काफी फायदेमंद रहता है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 जुलाई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: जन्मदिन 10 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी अब आपको जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: बहुत सारे लोग आजकल अपने घर में, अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं, तो क्या अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं? देखिए, दौड़ते हुए घोड़े निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रतीक हैं, लेकिन ये अत्यधिक मेहनत और संघर्ष का प्रतीक भी हैं। इनको लगाने से जीवन में दौड़ भाग और आपका संघर्ष बढ़ सकता है।
1: पंडित जी से जान लेते हैं 10 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है। रात के 9 बजे से 10:30 तक इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का ये समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है धनु। इस समय अपने स्वास्थ्य और अपनी पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखिएगा और करियर के मामले में किसी तरह का रिस्क, किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा।
1: चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां इस शो से जुड़ी हुई पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय, खास उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी संतान है, बेटा है, बेटी है, उसकी शिक्षा में बाधा आ रही है तो क्या करेंगे? संतान के नाम से रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और संतान की शिक्षा में उन्नति की प्रार्थना करिएगा। और ये लाल फूल सुबह पूजा करने के बाद अपने बेटे या बेटी को उनके हाथ में दीजिएगा।

0: वो अपने पढ़ाई की जगह पे ले जाके रखेंगे, अगले दिन पुराना फूल हटा देंगे और नया फूल ले जा करके रख लेंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और बड़ी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: और आइए बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की। बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई और लोगों को जैम से जूझना पड़ा। लेकिन इस बारिश के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर भी निकल कर आई। खबर यह है कि इस साल मानसून सीजन की पहली जोरदार बारिश के दौरान दिल्ली करीब 45 हॉटस्पॉट में कई पर जलजमाव देखने को नहीं मिला और इनमें कई अंडरपास भी शामिल हैं। आखिर दिल्ली में यह बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? क्या गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर भी दिल्ली की राह पर चलकर जलजमाव की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? रिपोर्ट देखिए।

0: मॉनसून आने के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में पहली बार झमाझम बारिश हुई और ऐसी बारिश हुई कि बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी। वैसे तो ये समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए नई नहीं है, लेकिन इस बार देश के राजधानी दिल्ली के करीब 40 हॉटस्पॉट्स पर इतनी बारिश होने के बावजूद जल भराव नहीं हुआ, ये दावा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है।
1: ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है। इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: दिल्ली सरकार के इस दावे की हकीकत को जानने के लिए जब गुड न्यूज टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो हकीकत वैसे ही नजर आई जैसी सरकार के कंट्रोल रूम में दिखाई गई। गुड न्यूज टुडे की टीम मिंटो रोड पर बने अंडरपास और आईटीओ पर पहुंची, जहां जल जमाव का नामो निशान नजर नहीं आया और ट्रैफिक जाम भी दिखाई नहीं दिया। मॉनसून में मिंटो रोड की ये नई तस्वीर दिल्ली वालों के लिए चौंकाने वाली लेकिन सुखद है।
2: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज़ होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहाँ हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जल भराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जल भराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफी आराम से राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबूजी, इस बार बारिश हुई लेकिन जल भराव नहीं हुआ, आराम है?
3: नहीं, जल भराव नहीं है, ठीक है। ये
2: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा है?
3: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग की बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है।
0: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जिन बड़े हॉटस्पॉट्स की पहले से पहचान की गई थी, वहां जल भराव को रोकने के लिए पहले से पूरे इंतजाम किए गए, जिसके चलते इस बार बड़े पैमाने पर जल भराव नहीं हुआ है। मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है और हर फोन कॉल पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, जिसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है।
4: जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। और उसकी ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
5: हॉटस्पॉट जो थे,
4: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं।
0: लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नोएडा जैसे बड़े शहरों में दिल्ली से उलट तस्वीरें देखने को मिली है। हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जैम में रेंगती गाड़ियां नजर आई। सड़कों पर इस जल भराव के पीछे बड़ी वजह बिना प्लानिंग के विकास, खराब ड्रेनेज सिस्टम, नालों पर अतिक्रमण, मॉनसून से पहले नालों की सफाई ना होना, सड़कों का कंक्रीट से निर्माण जिससे पानी को जमीन में रिसने की जगह नहीं मिलती और सीधे सड़कों पर जमा हो जाता है। टाउन प्लानर हरीश त्रिपाठी का मानना है कि नोएडा के मुकाबले गुरुग्राम में ये समस्या ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहाँ निर्माण के हिसाब से ड्रेनेज और बारिश के पानी के निकासी की प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लिया गया।
5: सपोज नोएडा है, ये एक मास्टर प्लान के तहत तो उस तरीके से बसा हुआ शहर है और गुड़गांव के साथ ये फर्क है कि ये ओवरऑल पीपीपी मॉडल्स में अलग अलग अलग डेवलपर्स के द्वारा अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से किया गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे यूनिफाइड एक एक जिस तरह की हायरार्की वाली ड्रेन्स होती हैं और जिस तरीके से बड़ी ड्रेन फिर छोटी ड्रेन फिर उससे बड़ी ऐसे करके जो एक सिस्टम पूरा का पूरा जो प्लान्ड सिटीज़ का होता है वो नहीं है। जो लार्जर सिचुएशन रही है कि अरावली हिल्स के नीचे ये बसा है और अरावली हिल्स के नीचे बसा है तो जो इसका एक नेचुरल सिस्टम था वो क्या हुआ कि जैसे जैसे बिल्डर्स और डेवलपर्स अपना आते गए तो सब अपने हिसाब से उसको रोकते गए तो वो रुके और जो जितनी जोहड़ या नेचुरल जो वाटर बॉडी पॉन्ड्स जिसको बोलते हैं वो सारे वो ख़त्म हो गए तो वो भी एक रीज़न रहा है कि ये पूरा का पूरा इलाका जरा भी बारिश होने पे जो है फ्लडेड हो जाता है।
0: गुरुग्राम को अगर जलभराव की समस्या से निजात पाना है तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना होगा, नालों की नियमित डिसिल्टिंग करनी होगी, पंपिंग स्टेशन बढ़ाने होंगे, नालों के पास से अतिक्रमण हटाना होगा, प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे तालाब और पोखरों को पुनर्जीवित करना होगा और तो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को घरों, पार्कों, सड़कों और बिल्डिंग्स में जरूरी करना होगा। पूर्व टाउन प्लानर उमेश सहगल का मानना है कि इस मामले में आईआईटी जैसे संस्थानों से मदद भी काफी कारगर साबित होगी।
6: एक ही सलूशन है, वो टेक्नोलॉजिकल सलूशन है। टेक्नोलॉजी इसके लिए प्रॉपर चाहिए कि जितना सड़क का पानी है, ज्यादातर जो पानी सड़क से आ रहा है उसको हम ग्राउंड में ले जाए। अब किस तरीके ग्राउंड में ले जाए, कितनी उसकी सफाई की जाए और ग्राउंड में जाए, ये मेटर स्टडी का मेटर है। इसमें टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी यूजफुल रहेगी, सिर्फ जो ग्राउंड वाटर दिल्ली जल बोर्ड ने डेवलप किए हुए हैं घरों के लिए सिर्फ उससे काम चलेगा या उससे नहीं चलेगा, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जितनी आईआईटीज हैं दिल्ली में, नीरी है नागपुर में, दुनिया भर की लेबॉरेटरीज हैं, हम क्यों नहीं स्टडी करते हैं इस इशू को? इस इशू को स्टडी करना चाहिए है कि किस तरीके से इस पानी को जमुना में ना जाने दिया जाए, इसको ग्राउंड के अंदर ले जाए। और दिल्ली और गुड़गांव दोनों जगह पे ग्राउंड वाटर बहुत लो है, काफ़ी पानी अभी उसमें जा सकता है और इससे फ़ायदा भी। और तीसरी एक और एडवांटेज दोनों जगह में है, पथरीली है, नीचे की ज़मीन जो है पथरीली है, इसका मतलब है जो नेचुरल फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। नेचर भी तो फिल्टर कर रहा है ना पानी को, ये थोड़ी है कि सारा पानी जा रहा है, सिर्फ जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं वो नहीं जाएंगी, वो नहीं फिल्टर हो पाती, बाकी तो सारी फिल्टर हो जाएंगी।
0: कुल मिलाकर मानसून के सीजन में जलभराव की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बेहतर प्लानिंग और फिर उस पर अमल बहुत जरूरी है ताकि दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए यहाँ पर 7 दिनों के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
0: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
6: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है, लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं, क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ मिलाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं। लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहां जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इस बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहाँ पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ, पहले भरता था।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था?
3: हाँ सर, भरता था। अब नहीं, अब नहीं, अब सफाई सफाई होगी। ओके, अब जब नहीं तो इतना इतना पानी यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ तक इतना
1: घुटने के ऊपर तक।
3: हाँ, अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते है।
1: इस बार नहीं भरा?
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग न करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबू जी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा है?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है।
1: ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मानसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी।
1: कैसे हालात होते थे?
6: ये बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खास तौर पे, हम एक आधा डिलीवरी हुआ है और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के वासिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसको कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतजार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, एमसीडी पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फ़िलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था, बारिश के बाद उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली।
7: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंपसेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहां पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहां पर गई, मैं वहां पर कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहां पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अब ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहां से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहां से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाय चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सोल्यूशन किया।
0: तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली वहाँ अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी।
3: ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: ये तमाम तैयारियां विस्तृत प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से ग्राउंड एप्लीकेशन की गवाही दे रही हैं। उम्मीद बस यही है कि मॉनसून की शुरुआत में दिख रही ये अच्छी तस्वीरें मॉनसून के खत्म होने तक भी यूं ही अच्छी बनी रहे। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है, और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजहें दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
5: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है, और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटो शूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
6: तेलंगाना
5: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
6: Want to enjoy rainy season.
5: Exactly. हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को?
6: Yeah. Yeah. So much.
5: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी, लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे, सर के पास चलते हैं, आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी,
5: अच्छा लग रहा है सर।
7: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, मजा ऐसे ही रहेगा।
5: अच्छा ऐसे ही रहेगा। अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो आप? कैसा लग रहा है मौसम?
8: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
5: अच्छा ये तो नहीं लग रहा है कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
8: नहीं,
5: बारिश आई है, मजे करने,
8: मजे करने,
5: मजे करने। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
9: हाँ जी, बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा, कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
5: अच्छा हाँ, बारिश होती थी थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
9: हाँ वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
5: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
4: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मॉनसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: को पावर्ड बाय लंबा बैकअप लंबी लाइफ, सुंदर भी स्मार्ट भी एटमवर्क बीएलडीसी फैंस। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती है कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
4: भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
3: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जनाब का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए। कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाई तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाई तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
1: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
0: भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए जीएनटी व्हाट्सएप चैनल के साथ।
5: जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप करें, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन पर टैप करें।
1: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
2: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे ने सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं। हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। चलती हुई बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का यह वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षाकर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षाकर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम

0: बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो की सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसल कर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना

0: करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पपाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उपनिरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
2: ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं GMT, यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
3: चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही है और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है जिससे वो भीगती नहीं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती हैं और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती हैं। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थामकर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के गुआंगशी इलाके में है जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही है जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन तालाब बन चुका था, वही दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ये हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर ये रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम न दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकाटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: को पावर्ड बाय ओकाया, लंबा बैकअप लंबी लाइफ, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
2: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
3: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए यहां पर 7 दिनों के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: अमरनाथ यात्रा इन दिनों पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी हों, सभी इस अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
1: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं।
2: जी जी।
1: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
1: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
2: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। 1 महीने पहले ही गांवों से घोड़े वाले और पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट से लेकर पानी की व्यवस्था और टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें काम कर रहे हजारों कामगारों के लिए ये यात्रा कमाई के एक अच्छे अवसर से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
3: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
1: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
3: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतजार करते रहते हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनमें से कई तीर्थयात्री राज्य के दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जाते हैं, जिसका असर भी कारोबार पर दिखता है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं कि स्थानीय लोग की मदद और सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
4: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं, मैं 2014 से आ रहा हूँ, लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सकते हैं। लोकल वालों को बड़ा सहयोग रहता है हमको।
1: तो साथ साथ में कितना यहाँ आपके आने से, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं,
4: अभी
1: दुकानें चलती हैं, चाय की दुकान,
4: अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का सोनमर्ग लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा तो भोलेनाथ का नाम लेके करें, अच्छे से सबकी बर्फानी बाबा सबके ऊपर रक्षा करें।
5: यात्रा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतना सारा रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप हमारे कश्मीरी भाई हो, यहाँ पे पालकी वाले, घोड़े वाले, दुकानदार, उनका भी रोजगार है और उनको भी इतनी खुशी होती है कि जितना कि हमें है, कि जैसे कि जुलाई का महीना आएगा हम वहाँ पे मेले पे जाएंगे, है ना, कि हमारा रोजगार चलेगा, बस ऐसे ही बोले शंकर की सबसे सभी का प्यार है।
1: क्योंकि प्रशासन अपना काम करती है, फौज अपना काम करती है आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ के लोग आपकी सुविधा करते हैं, वो रोजगार भी कमाते हैं, ये माहौल दुनिया में किसी जगह एक भाईचारे वाला माहौल।
5: मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं तो यही अरदास करूँगा बोले शंकर के ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है, अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
7: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा। सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ में लाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं, लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहाँ जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीयू का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहाँ पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली एनसीआर वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे, पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ पहले भरता था,
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था।
3: हाँ सर भरता था, अब नहीं, अब नहीं, अब सफाई सफाई होगी, ओके, अब जब नहीं था इतना पानी, यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ पे
1: घुटने के ऊपर तक।
3: हाँ अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते हैं।
1: इस बार नहीं भरा,
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग न करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबू जी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ता?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी क्या निकल जाता है इसमें,
1: निकल जाता है। ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मॉनसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी।
1: कैसे हालात होते थे
6: ये? बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खासतौर पर, हम एक आधा डिलीवरी बॉय है और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था, तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के वासिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसका कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतजार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, एमसीडी पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है। और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फ़िलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था, बारिश के बाद उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली NCR में बारिश हुई है। दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
7: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंप सेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहां पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहां पर गई, मैं वहां पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहां पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 100 एक दिन में 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अब ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहां से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाई चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सॉल्यूशन किया।
0: तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली वहाँ अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी।
3: ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: ये तमाम तैयारियां विस्तृत प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से ग्राउंड एप्लीकेशन की गवाही दे रही हैं। उम्मीद बस यही है कि मॉनसून की शुरुआत में दिख रही ये अच्छी तस्वीरें मॉनसून के खत्म होने तक भी यूं ही अच्छी बनी रहे। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है, और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजह है दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
5: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है, और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटोशूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
6: तेलंगाना
5: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
6: Want to enjoy rainy season.
5: Exactly. हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को?
6: सो मच।
5: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी। लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे, सर के पास चलते हैं आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी,
5: अच्छा लग रहा है सर।
7: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, मुझे ऐसे ही रहेगा।
5: अच्छा ऐसे ही रहेगा। अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो आप? कैसा लग रहा है मौसम?
8: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
5: अच्छा ये तो नहीं लग रहा है कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
8: नहीं लग रहा,
5: बारिश आई है, मजे करने,
8: मजे करने,
5: मजे करने। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
9: हाँ जी बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा, कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
5: अच्छा हाँ, बारिश होती तो थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
9: हाँ वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
5: आप देख सकते कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
4: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मॉनसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए जीएनटी व्हाट्सएप चैनल के साथ।
10: जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप करें, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन पर टैप करें।
11: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
12: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
13: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में दही है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
14: राज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
13: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जराफ का जुगाड़ मोड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए, कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
11: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
4: भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए जीएनटी के व्हाट्सएप चैनल से।
10: जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप करें, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन पर टैप करें।
11: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
12: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचो समझे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं। हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। चलती हुई बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्सयूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का यह वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही है, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षाकर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षाकर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम बेंगलुरु में ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के नीचे केरल राज्य परिवहन की बस में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के बाद बस धू धू कर जलने लगी। जब ये घटना हुई उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिर्फ 2 यात्री थे। वे चारों समय रहते बस से बाहर आ गए और सुरक्षित बच गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। धुआं उठते ही बस में सवार यात्री और स्टाफ बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो

0: वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो कि सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसल कर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पापाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उप निरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2000

0: 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: को पावर्ड बाय ओकाया, लंबा बैकअप लंबी लाइफ, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
4: चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही है और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है जिससे वो भीगती नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सहारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती है और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती है। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थामकर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के गुआंगशी इलाके में है जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही है जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन ताला बन चुका था, वहीं दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर यह रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम न दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकाटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।

0: ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं GMT यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
2: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए, यहां पर 7 दिनों के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: अमरनाथ यात्रा इन दिनों पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी हों, सभी इस अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
1: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं।
2: जी जी।
1: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
1: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
2: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। 1 महीने पहले ही गांवों से घोड़े वाले और पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट से लेकर पानी की व्यवस्था और टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें काम कर रहे हजारों कामगारों के लिए ये यात्रा कमाई के एक अच्छे अवसर से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
3: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
1: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
3: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतजार करते रहते हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनमें से कई तीर्थयात्री राज्य के दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जाते हैं, जिसका असर भी कारोबार पर दिखता है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं कि स्थानीय लोग की मदद और सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
4: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं, मैं 2014 से आ रहा हूँ, लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सक पाए। लोकल वालों को बड़ा सहयोग रहता है हमको।
1: तो साथ साथ में कितना यहाँ आपके आने से, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अभी दुकानें चलती हैं, चाय की दुकान,
4: अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का सोनमर्ग लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा तो भोलेनाथ का नाम लेके करें, अच्छे से सबकी बर्फानी बाबा सबके ऊपर रक्षा करें।
5: यात्रा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतना सारा रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप हमारे कश्मीरी भाई हो, यहाँ पे पालकी वाले, घोड़े वाले दुकानदार, उनका भी रोजगार है और उनको भी इतनी खुशी होती है कि जितना कि हमें है, कि जैसे कि जुलाई का महीना आएगा हम वहाँ पे मेले पे जाएंगे, है ना, कि हमारा रोजगार चलेगा, बस ऐसे ही बोले शंकर की सबसे सभी का प्यार है।
1: क्योंकि प्रशासन अपना काम करते हैं, फौज अपना काम करते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ के लोग आपकी सुविधा करते हैं वो रोजगार भी कमाते हैं, ये माहौल दुनिया में किसी जगह नहीं, भाईचारे वाला माहौल।
5: मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं तो यही अरदास करूंगा बोले शंकर के ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है, अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ में लाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं। लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहाँ जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इस बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहां पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ, पहले भरता था।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था?
3: हाँ सर, भरता था। अब नहीं, अब नहीं, अब सफाई सफाई होगी। ओके, अब जब नहीं था इतना इतना पानी, यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ तक इतना
1: उठने के ऊपर तक।
3: हाँ, अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते है।
1: इस बार नहीं भरा?
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबू जी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है इसमें।
1: ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो, बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मानसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी,
1: कैसे हालात होते थे?
6: ये बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खास तौर पे, हम ये कहते डिलीवरी हुआ है और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था, तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के बाशिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसको कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतज़ार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, MCD पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है, और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फिलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज, जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था बारिश के बाद, उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली NCR में बारिश हुई है। दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली।
7: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंपसेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अभी ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुँचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहाँ से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाई चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सॉल्यूशन किया।
0: इन तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल दो तीन जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली वहाँ अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी।
3: ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: ये तमाम तैयारियां विस्तृत प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से ग्राउंड एप्लीकेशन की गवाही दे रही हैं। उम्मीद बस यही है कि मॉनसून की शुरुआत में दिख रही ये अच्छी तस्वीरें मॉनसून के खत्म होने तक भी यूं ही अच्छी बनी रहे। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है, और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजहें दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
5: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है, और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटो शूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
6: तेलंगाना
5: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
6: Want to enjoy rainy season.
5: Exactly. हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को?
6: सो मच।
5: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी। लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे, सर के पास चलते हैं आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी,
5: अच्छा लग रहा है सर।
7: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसी रहेगा, मजा ऐसी रहेगा।
5: अच्छा ऐसी रहेगा। अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो?
8: हाँ,
5: कैसा लग रहा है मौसम?
8: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
5: अच्छा ये तो नहीं लग रहा है कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
8: नहीं लग रहा,
5: बारिश आई है, मजे करने।
8: अच्छा, करने
5: मजे करने। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
9: हाँ जी बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा, कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
5: अच्छा हाँ, बारिश होती थी, थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
9: हाँ वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
5: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
4: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मॉनसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
12: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ के बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए, ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती है कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
13: जय भारत माता की, जय हिंदू धर्म की, जय गो माता की, जय।
12: अब इन तस्वीरों को देखिए, इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए, कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाई तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाई तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा, बल्कि उनके मुँह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
14: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे ने सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं, हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
14: चलती हुई बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
0: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्यूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
14: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का यह वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। सिम इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही है, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षा कर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षा कर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम बेंगलुरु में ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के नीचे केरल राज्य परिवहन की बस में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के बाद बस धू धू कर जलने लगी। जब ये घटना हुई उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिर्फ 2 यात्री थे। वे चारों समय रहते बस से बाहर आ गए और सुरक्षित बच गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। धुआं उठते ही बस में सवार यात्री और स्टाफ बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
14: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी।

0: लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो की सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसल कर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पापाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उप निरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल

0: मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
0: चाचा के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
4: चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही है और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है जिससे वो भीगती नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सहारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती है और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती है। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थामकर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के गुआंगशी इलाके में है जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही है जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन ताला बन चुका था, वहीं दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर यह रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

0: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम न दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकाटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए, यहाँ पर 7 दिनों के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: अमरनाथ यात्रा इन दिनों पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी हों, सभी इस अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
1: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत कर रहे
2: हैं। जी जी।
1: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग?
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
1: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
2: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एक महीने पहले ही गांवों से घोड़े वाले और पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट से लेकर पानी की व्यवस्था और टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें काम कर रहे हजारों कामगारों के लिए ये यात्रा कमाई के एक अच्छे अवसर से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
3: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
1: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
3: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतजार करते रहते हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है, और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनमें से कई तीर्थयात्री राज्य के दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जाते हैं, जिसका असर भी कारोबार पर दिखता है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं कि स्थानीय लोग की मदद और सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
4: लोकल वाले हमको टोटल सहायता करते हैं, मैं 2014 से आ रहा हूँ, लोकल वाले अगर ना हमको सहायता करें तो हमारी यात्रा हम लोग कर नहीं सक पाए। लोकल वालों को बड़ा सहयोग रहता है हमको।
1: तो साथ साथ में कितना यहाँ आपके आने से, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अभी दुकानें चलती हैं, चाय की दुकान,
4: अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का सोनमर्ग लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा तो भोलेनाथ का नाम लेके करें, अच्छे से सबकी बर्फानी बाबा सबके ऊपर रक्षा करें।
5: यात्रा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतना सारा रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप हमारे कश्मीरी भाई हो, यहाँ पे पालकी वाले, घोड़े वाले, दुकानदार, उनका भी रोजगार है और उनको भी इतनी खुशी होती है कि जितना कि हमें है, कि जैसे कि जुलाई का महीना आएगा हम वहाँ पे मेले पे जाएंगे, है ना, कि हमारा रोजगार चलेगा, बस ऐसे ही बोले शंकर की सबसे सभी का प्यार है।
1: क्योंकि प्रशासन अपना काम करती है, फौज अपना काम करती है आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ के लोग आपकी सुविधा करते हैं, वो रोजगार भी कमाते हैं, ये माहौल दुनिया में किसी जगह भाईचारे वाला माहौल?
5: मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं तो यही अरदास करूंगा भोले शंकर के ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है, अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ मिलाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं, लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहां जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इस बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहां पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ, पहले भरता था।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था?
3: हाँ सर, भरता था। अब नहीं, अब नहीं, अब सफाई सफाई होगी। ओके, अब जब नहीं था इतना इतना पानी, यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ तक इतना
1: उठने के ऊपर।
3: हाँ, अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते है।
1: इस बार नहीं भरा?
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबू जी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेडिंग कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है इसमें।
1: ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो, बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मानसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी,
1: कैसे हालात होते थे?
6: ये बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खास तौर पे, हम ये कहते डिलीवरी हुआ है और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था, तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के बाशिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसको कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतज़ार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, MCD पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है, और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फिलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज, जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था बारिश के बाद, उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली NCR में बारिश हुई है। दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली।
7: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंप सेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अब ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहां से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाय चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सॉल्यूशन किया।
0: इन तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का यही इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली वहाँ अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी।
3: ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मिंटो ब्रिज की है, जो अक्सर जो है वो पानी में डूब जाया करता था, बसें डूब जाया करती थी, लेकिन अब उसकी ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग हॉटस्पॉट है वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का जगह पर आपको पानी नजर आएगा, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए आपको लोग भी नजर आएंगे कि अगर कहीं पर भी पानी भरता है तो कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल जाती है, वहां से पानी की निकासी को निकालने के लिए तमाम पंप जो है भेजे जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: ये तमाम तैयारियां विस्तृत प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से ग्राउंड एप्लीकेशन की गवाही दे रही हैं। उम्मीद बस यही है कि मॉनसून की शुरुआत में दिख रही ये अच्छी तस्वीरें मॉनसून के खत्म होने तक भी यूं ही अच्छी बनी रहे। दिल्ली से मनीष चौरसिया और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है, और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजहें दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
5: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है, और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटो शूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
6: तेलंगाना
5: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
6: वांट टू एंजॉय रेनी सीजन।
5: एग्जैक्टली, हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को?
6: सो मच।
5: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी, लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सर के पास चलते हैं, आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी,
5: अच्छा लग रहा है सर?
7: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसी रहेगा, मुझे ऐसी रहेगा।
5: अच्छा ऐसी रहेगा। अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो?
8: हाँ,
5: कैसा लग रहा है मौसम?
8: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
5: अच्छा ये तो नहीं लग रहा कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
8: नहीं,
5: बारिश आई है, मजे करने,
8: मजे करने,
5: मजे करने। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
9: हाँ जी बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
5: अच्छा हाँ, बारिश होती तो थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते हैं, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
9: हाँ वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
5: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
4: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मॉनसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ ये बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
5: भारत की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
4: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए। कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: have. The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
2: Good news today is really good. It's in this case, right? वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा। सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की। भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं। हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: जलती हुई बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
11: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। इन सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही। श्रीनगर में अमरनाथ से यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का ये वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई थी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षाकर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षाकर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या, इस रिपोर्ट में जानिए।
11: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम बेंगलुरु में ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के नीचे केरल राज्य परिवहन की बस में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के बाद बस धू-धू कर जलने लगी। जब ये घटना हुई उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिर्फ 2 यात्री थे। विचारों समय रहते बस से बाहर आ गए और सुरक्षित बच गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। धुआं उठते ही बस में सवार यात्री और स्टाफ बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
11: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुजारी

0: करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो की सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसल कर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पापाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उपनिरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes.

0: episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही, और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है, जिससे वो भीगती नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सहारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती हैं और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती हैं। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थामकर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के गुआंगशी इलाके में है, जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है, जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही, जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन ताला बन चुका था, वहीं दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर यह रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

0: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम ना दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकाटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए, यहाँ पर 7 दिनों के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: अमरनाथ यात्रा इन दिनों पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी हों, सभी इस अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
1: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं।
2: जी जी।
1: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग?
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
1: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
2: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एक महीने पहले ही गांवों से घोड़े वाले और पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट से लेकर पानी की व्यवस्था और टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें काम कर रहे हजारों कामगारों के लिए ये यात्रा कमाई के एक अच्छे अवसर से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
3: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
1: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
3: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतजार करते रहते हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है, और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनमें से कई तीर्थयात्री राज्य के दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जाते हैं, जिसका असर भी कारोबार पर दिखता है। इस यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं कि स्थानीय लोग की मदद और सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है।
4: लोकल अब हम ही लोगों की देन है सर, जो ये सब लोग चलाते हैं, घोड़े वालों का भी रोजगार चलता है, दुकानों का भी चलता है, सभी लोगों का सोनमर लगा के कश्मीर तक, पूरा श्रीनगर तक सभी लोगों का चल रहा है, और डंडे लिए इनका सभी लोगों का रोजगार इसी से सहयोग रहता है। और हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब मिलजुल के रहें और यात्रा तो भोलेनाथ का नाम लेके करें, अच्छे से सबकी बर्फानी बाबा सबके ऊपर रक्षा करें।
5: यात्रा के साथ इतनी सारी यादें हैं, इतना सारा रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप हमारे कश्मीरी भाई हो, यहाँ पे पालकी वाले, घोड़े वाले, दुकानदार, उनका भी रोजगार है और उनको भी इतनी खुशी होती है कि जितना कि हमें है, कि जैसे कि जुलाई का महीना आएगा हम वहाँ पे मेले पे जाएंगे, है ना, कि हमारा रोजगार चलेगा। बस ऐसे ही भोले शंकर की सबसे सभी का प्यार है,
1: क्योंकि प्रशासन अपना काम करती है, फौज अपना काम करती है आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ के लोग आपकी सुविधा करते हैं वो रोजगार भी कमाते हैं, ये माहौल दुनिया में किसी जगह भाईचारे वाला माहौल?
5: मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं तो यही अरदास करूंगा भोले शंकर के ऐसा भाईचारा बना ही रहे, क्योंकि ये यात्रा भी आपके साथ ही है, अगर आप नहीं यहाँ पे हो तो ये यात्रा भी ना हो।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा, सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा, व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की, भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार न्यूज, अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ मिलाता है। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में मॉनसून की बारिश अगर लगातार हो जाए तो सिटी लाइफ की चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आती दिख रही हैं, लेकिन अब की बार राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो बेहद अलग है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मॉनसून के बादल झूम कर बरसे। कल से अब तक कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और बीते सालों में हम ये देखते रहे हैं कि इतनी बारिश में तो दिल्ली के कई अंडरपास और सड़कें दरिया बन जाते हैं, लेकिन अब की बार मंजर कुछ और नजर आ रहा है। ना तो यहाँ जल जमाव है और ना ही ट्रैफिक जाम है, यानी देश की राजधानी में मॉनसून से पहले की गई तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश का पहला टेस्ट दिल्ली ने पास कर लिया है।

0: आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के दो महानगरों की मॉनसून वाली दो तस्वीरें हैं, एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी। लेकिन मॉनसून में दोनों की अलग कहानी। एक तस्वीर है दिल्ली की, ये वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और इस बार दिख भी रही है, और दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जो लगभग हर साल जैसी ही है। मॉनसून की पहली बारिश ने हर साल की तरह इस बार भी देश के दो सबसे बड़े शहरों का खूब इम्तिहान लिया। मुंबई में जहां मॉनसून जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचा था, तो वहीं दिल्ली में मॉनसून ने जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक दी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इस बार भी मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें बारिश की शुरुआत के साथ ही आने लगी थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली ने मॉनसून का पहला टेस्ट अब की बार पास कर लिया है। मॉनसून के मौसम में बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती रही है। दिल्ली में आईटीओ, मिंटो रोड, रोहतक रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास जैसे कई इलाके हैं जहां हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता था। कई जगहों पर तो जल जमाव का स्तर इतना ज्यादा हो जाता था कि बड़े हादसों की वजह बन जाता था। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया गया था, और अब की बार तस्वीर वाकई अलग नजर आ रही है। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ ब्रिज का, जहां रात भर की बारिश के बावजूद भी अब की बार न तो जल जमाव हुआ न ट्रैफिक जाम।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ ब्रिज पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। अभी भी झमाझम बारिश हो रही है, लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि रफ्तार कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है, कभी मध्यम होती है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बारिश का एक भारी स्पेल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहां पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
2: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
1: पहले भरता था?
2: हाँ, पहले भरता था।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था?
3: हाँ सर, भरता था। अब नहीं, अब नहीं, जब सफाई सफाई होगी ओके, अब जब नहीं तो इतना इतना पानी यहाँ तक पानी आ जाता था, यहाँ तक
1: उठने के ऊपर तक।
3: हाँ, अभी बहुत दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत पानी भर जाता पिछली बार से, अब तक कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे।
1: पहले यहाँ बारिश में पानी भरता था इस रोड पे?
4: भरते थे, आप पंप लगाया ना, अभी वो पंप का गाड़ी है, बहुत कीचड़ होते थे, पानी पानी रहते है।
1: इस बार नहीं भरा?
4: इस बार नहीं भरा।
0: दिल्ली की बदली कहानी का एक और चैप्टर मिंटो ब्रिज एरिया में भी नजर आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मिंटो ब्रिज के नीचे लगे इस बोर्ड को पढ़ लेना जरूरी है। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। हर चेतावनी लेबल की तरह ही इस बोर्ड के पीछे भी एक हादसे की कहानी है। साल 2020 में मिंटो ब्रिज के नीचे हुए जल जमाव में डूबने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि देर से ही सही, लेकिन सबक लिया गया है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज एरिया की ये दो तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि राजधानी में वाकई अब की बार मॉनसून से निपटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी दिल्ली के इन हॉटस्पॉट्स पर अब की बार पानी जमा नहीं हुआ।
1: मिंटो ब्रिज के नीचे इस तरह सड़क के दोनों तरफ आपको ये पुलिस के बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। ये बैरिकेडिंग सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि मानसून में इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती थी, जरा सा भी जलभराव होता है, तो ट्रैफिक पुलिस बकायदा इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर रोड पर लगा देती है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं है, बारिश हुई है रात भर, उसके बावजूद आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हर साल मानसून में यही ड्यूटी होती है कि जैसे ही यहाँ बारिश हो, जलभराव हो, आप बैरिकेडिंग करिए और दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दीजिए। लेकिन इस बार आप देखिए कि वो भी काफ़ी आराम से, राहत के साथ खड़े हैं। क्या बाबूजी, इस बार बारिश हुई लेकिन जलभराव नहीं हुआ, आराम है?
5: नहीं, जलभराव नहीं है, ठीक है। ये
1: तो हर साल जो करते थे कि बारिश हुई बैरिकेडिंग लगा दो, इस बार नहीं करना पड़ रहा है?
5: नहीं, इस बार कोई बैरिकेड कोई बात नहीं है, नहीं कोई बारिश आती है, लेकिन पानी यह निकल जाता है।
1: ड्यूटी करने में आसान हो रहा है आप लोग को?
5: नहीं, ठीक चला, ठीक है,
1: ठीक चल रहा है। देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम ही यही था कि कितनी भी बारिश हो रही हो, आप अपना छाता लेकर आइए और जैसे ही जलभराव हो बैरिकेडिंग कर दीजिए। लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
0: ये नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए मानसून की आफत के बीच राहत लेकर आया है।
1: पहले आईटीओ या मिंटो ब्रिज पे बारिश के बाद पूरा भर जाता था।
6: हाँ जी,
1: कैसे हालात होते थे?
6: ये बहुत पूरा स्थिति होता था। हम लोग खास तौर पे, हम एक आधा डिलीवरी हुआ है और यहाँ का ही नहीं, ये बाकी सारे जगह है ना, पानी भराव होने के कारण एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लंबी लाइनें लगती है, फिर जाके एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़े होने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए।
1: अभी तो ठीक है ये मिंटो ब्रिज वाला?
6: हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है।
1: तो जब ये रास्ता मान लो बंद हो जाता था, तो फिर आप लोग डिलीवरी कैसे करते थे?
6: ये हम लोग सर वो कहते हैं पैदल डिलीवरी करने जाते थे, ये डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, इसी
1: पैदल
6: पैदल पैदल।
0: वैसे दिल्ली की ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। अब की बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने राजधानी के बाशिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा था। क्या था वो अभियान और कैसे बदली दिल्ली की मानसून वाली तस्वीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल भर कर दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि बरसों बाद मानसून में दिल्ली के इन इलाकों का ऐसा नजारा सामने आया है।
1: आज मिंटो ब्रिज की जो ये खुशगवार तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इस तस्वीरों के बीच में अब ये नीला बोर्ड भी कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो चला है। इसका लगता है जैसे इसको कोई अब मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तस्वीर का इंतज़ार दिल्ली वाले बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बार बार बारिश के बाद सरकार पर, एमसीडी पर तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली सरकार ने बारिश के पहले डिसिल्टिंग पर, नालों की सफाई पर बहुत सारा काम किया है। और यही वजह है कि पूरा जो ये मिंटो ब्रिज का इलाका है, जो ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना तो ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है, ना किसी और चीज़ में। और तो और आप देखिए कि इस ब्रिज के नीचे भी अब दूसरी तरफ तमाम लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन अब वही ब्रिज उनके लिए फ़िलहाल सहारा बन गया है बारिश से निपटने का। अगर ये खुली सड़क में जाएंगे तो बारिश से दिक्कत होगी, लेकिन अब यही मिंटो ब्रिज जो कभी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन पर भारी पड़ता था, बारिश के बाद उसी ब्रिज के नीचे आज लोग आराम से बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, अपने और अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि सरकार अगर चाह ले, प्रशासन अगर चाह ले, तो वे किस तरह से पूरे दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। हालांकि अभी ये मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई थी, रात भर दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, दोपहर का ये वक्त है जब हम खड़े हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तब भी मिंटो ब्रिज की और पूरे दिल्ली की तस्वीर यही बनी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
7: वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या हर मॉनसून सीजन में दिल्ली वालों के लिए रही है। जगह जगह जल जमाव के चलते हर बारिश में दिल्ली की रफ्तार थम सी जाती थी। तमाम वादों और दावों के बीच में हर बार वही कहानी साल दर साल दोहराई जाती थी। टाउन प्लानिंग का जाने ये कौन सा चैप्टर था जो दिल्ली बसाते और बढ़ाते वक्त पढ़ने से छूट गया था, लेकिन अब की बार ये बदलाव कैसे आया, ये कौन सा एक्शन प्लान था जो जमीन पर उतरा तो शहर की सूरत बदल गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की तस्वीर इस बारिश में नई क्यों नजर आ रही है।

0: दिन गुजरे माह फिर साल हुए, हम राह देख बेहाल हुए, नालों में सड़क ढूंढते थे, रस्ते जी का जंजाल हुए। साल दर साल बारिश के मौसम में यही कहानी राजधानी में दोहराई जाती थी। बारिश में बेहाल शहर को देखकर लगता था हमने शहर तो बसा लिए, पर उन शहरों में रहना हमें नहीं आया। लेकिन अब के साल पहली बारिश में दिल्ली वालों का ये मलाल धुल सा गया है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सरकार की तैयारी दिख रही है। इस तैयारी के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और कई विभागों की मेहनत दिख रही है। अब के साल दिल्ली सरकार ने मॉनसून में जल जमाव से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने आपसी कोऑर्डिनेशन से दिल्ली की सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव के लिहाज से संवेदनशील अंडरपास और 169 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई। फिर वहां जमा होने वाले बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। पानी निकालने के लिए बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी पंपसेट्स लगाए गए ताकि पानी भरने के साथ ही तेजी से उसकी निकासी की जा सके।
1: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा।
0: बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल 750 से ज्यादा पंप जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।
1: ये वाला पंप जैसे चला है तो उसमें ग्रीन आ गया, और अभी ये बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और ये हमको पता लगता है कि कितने घंटे चला, कितने मिनट चला। इसका मतलब है कि वहां पे जैसे ही चैम्बर में पानी भरता है तो एकदम से पंप हमारा ऑन हो जाता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि दिल्ली के सारा पंप सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा है।
0: ये पंप सेट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं। बिजली गुल होने की स्थिति में भी इन पंप्स को निर्बाध चलाने का इंतजाम डीजल जनरेटर लगाकर किया गया है। मिंटो ब्रिज, जखीरा, मूलचंद और इसी तरह के दूसरे संवेदनशील अंडरपासों पर पानी का स्तर 6 से 8 इंच तक पहुंचते ही ये पंपिंग सेट अलर्ट मोड में आकर काम शुरू कर देते हैं।
1: ये हमारा सेंट्रली कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारे पंप को हम एक बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, हम उसको यहां से मॉनिटर करके उसको एक बटन दबाकर उसको चला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो सारा पंप सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है, मगर फिर भी अगर बाय चांस वो नहीं चलता है या हमारा पंप ऑपरेटर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, तो हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं अमन, ये इसको देखते रहते हैं।
0: पंपिंग सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ अब की बार मॉनसून में पानी की निकासी को निर्बाध बनाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर नालों की डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने का काम किया गया। इस साल मॉनसून से कई महीनों पहले ही सरकार ने युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का अभियान छेड़ा था, जिसके तहत दिल्ली के नालों से लाखों टन गाद निकाली गई।
1: एक साल में 40 लाख मैट्रिक टन, पिछले साल में 20 लाख उठाई, इस साल में 30 लाख उठाई, 50 लाख मैट्रिक टन सिल्ट दिल्ली के नालों से, छोटे नाले से, बड़े नाले से निकाली जा चुकी है, और उनको डंपिंग ग्राउंड में लेके गया, उनका हमने सिल्ट का सोल्यूशन किया।
0: इन तमाम तैयारियों के साथ ही मॉनसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अब की बार 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी जल भराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है।
1: ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
2: हॉटस्पॉट जो थे,
1: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस कंट्रोल रूम का दौरा,
3: तो रास्ते क्लियर हैं, पानी नहीं भरा, ट्रैफिक जाम नहीं है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है, मौसम सुहाना है और इंडिया गेट पर मौज मस्ती भरा दिन बिताने के लिए इससे ज्यादा वजहें दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। मॉनसून ने मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की मौज भी हो गई।
4: देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं कि नजारा बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। लोगों को जहां गर्मी से परेशानी थी, वहीं अब जाकर उनको राहत जो है वो मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो राहत वाली ही बारिश है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे इंजॉय करते हुए। हालांकि जब भी तेज बारिश होती है तो लोग जो है घर के भीतर नजर आते हैं, लेकिन अभी की तस्वीरें एकदम ही शानदार जो है वो नजर आने वाली कि किस तरीके से बारिश जो है वो दिल्ली NCR में कल से ही जारी है, और आज आप देख सकते हैं कि लोग रेनकोट के साथ, छाते के साथ, लेकिन बाहर जरूर आपको नजर आएंगे बारिश में भीगते हुए, फोटो शूट करवाते हुए, क्योंकि ये जो मॉनसून की बारिश है हर किसी को इसका इंतजार था, क्योंकि दिल्ली में लगातार उमस और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और हर किसी को था कि कब जो है दिल्ली NCR में भी जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी और उनको भी राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आए हो आप लोग?
5: तेलंगाना
4: से आया। आपको तो बिना छाते की, मतलब छाता, अम्ब्रेला कुछ भी नहीं चाहिए, रेनकोट, आप भीगते हुए नजर आ रहे हो।
5: वांट टू एंजॉय रेनी सीजन।
4: एग्जैक्टली, हर किसी को जो है मॉनसून का वेट था, तो हालांकि कुछ लोग छाते और अम्ब्रेला रेनकोट के साथ नजर आ जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे कि अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को?
5: सो मच।
4: रेनकोट उतार दीजिए आप। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अलग ही रौनक जो है वो नजर आ जाएगी, लोग हंसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सर के पास चलते हैं, आप भी, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को तो खासकर जब भी बारिश हो घर के अंदर रखो क्योंकि तबीयत ना खराब हो जाए, बट आप मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
6: हाँ जी, हाँ जी,
4: अच्छा लग रहा है सर।
6: बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसी रहेगा, मुझे ऐसी रहेगा।
4: अच्छा ऐसी रहेगा। अच्छा मौसम होता है तो लोगों का वॉक करने का भी जो है वो मन करता है, इनके पास जाते हैं, बहुत ही प्रिटी फेसेस नजर आ रहे हैं, कलरफुल अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम से आए हो?
7: हाँ,
4: कैसा लग रहा है मौसम?
7: अच्छा लग रहा है मौसम, तो बारिश आ रहा है अभी, ठीक ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
4: अच्छा ये तो नहीं लग रहा कि मैं भीग जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी?
7: नहीं,
4: बारिश आई है, मजे करने,
7: मजे करने,
4: मजे करने। आप बताइए, बेटी हो आप इनकी?
8: हाँ जी, बेटी हूँ मैं। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई दिल्ली पर, अच्छा लगा, लेकिन बारिश हुआ थोड़ा कोई घूमने की कुछ मजा नहीं आ रहे।
4: अच्छा हाँ, बारिश होती तो थोड़ा ट्रैफिक जैसी चीजें भी हो जाती है, लोग निकलने से पहले सोचते हैं, लेकिन वैसे वेदर एंजॉय कर रहे हो?
8: हाँ, वेदर एंजॉय कर रही हूँ।
4: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको, ये देखिए, ना छाता है ना रेनकोट है, है तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान है। इस तरीके से जो बरसात जो यहाँ पर लगातार हो रही है उसका आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट पे फोटोशूट ना करवाया जाए, एकदम अधूरा होता है, आपकी ट्रिप का हिस्सा होता है ये फोटोशूट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपको यहाँ पर चेहरे पे मुस्कान के साथ जो है भीगते हुए नजर आ जाएंगे।
3: चलिए ये तो बात हुई दिल्ली की, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मॉनसून की एक मजेदार तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। मुंबई के ठाणे में बारिश के बीच में स्पाइडरमैन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ नजर आया। अब मुंबई की बारिश और जाम के किस्से तो आपने सुने होंगे, हाँ, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक के मूवमेंट में बाधा होने लगी। ऐसे में ठाणे का ये लोकल सुपर हीरो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आया और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में जी जान के साथ जुट गया। स्पाइडरमैन भले ही कॉमिक्स और फिल्मों का किरदार है, लेकिन मुंबई का ये मुर्गा रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं। ये विलन से नहीं लड़ रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन इतनी बारिश और जाम के बीच में मुंबई की सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं। दूसरों की जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाने वाला हर आदमी असल में भी सुपर हीरो ही तो है। चलिए फिलहाल तो यही कहेंगे कि इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
9: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
11: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ के बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं। छू लेने वाली ये तस्वीरें जरा देखिए। ये गाय अपने बछड़े समेत नए मालिक के साथ नए घर जा रही है, लेकिन जाने से पहले दूर खड़े अपने असली मालिक के पास गले लगने के लिए पलट पलट कर फिर आती है। मानो अपने दुख के साथ वो अपने असली मालिक का भी दूर होने का दर्द समझ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से बनता है। इस एक पल ने दिखाया कि प्यार, अपनापन और कृतज्ञता इंसान तक ही सीमित नहीं होती, जानवर भी अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाते हैं। ये तस्वीरें सच में लोगों को भावुक कर गई और उनकी आंखें नम कर गई। ये जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में दही है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
12: भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
11: अब इन तस्वीरों को देखिए। इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए। कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाईं तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाईं तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
9: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
9: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण पूरा। सजावट में जुटे 200 से ज्यादा चित्रकार और कारीगर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा होंगे सवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट शिविर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से बातचीत की। भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जगह स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर में भी रहेगी छुट्टी। बिहार के 98 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार न्यूज। अब हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में आएगी सामाजिक